मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आज गुरुवार है, आज बुधवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 23वीं तिथि, तदनुसार 13 मई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:55 हुए हैं। आरंभ हो रही है आज की प्रातःकालीन सभा।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रातः काल का समय प्रकृति के आनंद लेने का सुखद अनुभव होता है। सूर्य की किरणें धरती पर अपनी मधुर रोशनी बिखेर रही हैं। आसमान के रंग और सूर्य की किरणों के बीच पेड़ों की पत्तियां अद्भुत ही छटा बिखेर रही हैं। हम में से कुछ व्यायाम के लिए तैयार हैं तो कुछ अपनी दिनचर्या में लग गए हैं, और हमारे श्रोता जो आकाशवाणी लखनऊ सुनना चाहते हैं, पसंद करते हैं, वो अपना रेडियो सेट ऑन कर चुके हैं। तो श्रोताओं, हम भी आ चुके हैं स्टूडियो लेकर आपके लिए मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ। आपको सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हमारे श्रोताओं को इंतजार होगा देश दुनिया में हो रही गतिविधियों को जानने का। तो देर कैसी श्रोताओं, प्रातः के 6 बजने ही वाले हैं। चलते हैं दिल्ली स्टूडियो, सुन लेते हैं समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। राष्ट्रीय पात्र परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
2: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे।

0: ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
1: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति में नाटकीय मोड़ आया जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडापड्डी के पलानी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवीके सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना है। अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीवी के सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान के दौरे पर रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य भारत भूटान संबंधों को और मजबूत करना है। 51 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। कल राज्य में सबसे गर्म स्थान बाड़मेर रहा, जहां अधिकतम तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि राज्य के पश्चिमी जिलों में अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम की यथास्थिति बनी रहेगी। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स की टीम 15वें ओवर में 86 रन पर ही सिमट गई। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ में। समय हुआ है सुबह के 6:05 का और ये समय होता है कृषि चर्चा कार्यक्रम का। तो आज की कृषि चर्चा में हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी अपने किसान भाइयों को बताएंगे जिमीकंद की उन्नत खेती के बारे में।
1: शुभ प्रभात। जिमीकंद या सूरन एक कटिबंधीय कंद वाली फसल है और हमारे यहाँ सब्जियों में इसका विशिष्ट स्थान है। दीपावली के दिन तो इसकी सब्जी अनिवार्य रूप से कुछ क्षेत्रों में बनती ही बनती है। सूरन का प्रयोग आयुर्वेदिक दवाइयों के बनाने में भी किया जाता है, इसलिए इसकी सतत मांग बनी रहती है। इसके घन कंद में काफी पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसका प्रयोग विभिन्न

0: बीमारियों जैसे कि बवासीर, सांस फूलना, फेफड़ों में सूजन, उल्टी, दस्त, दर्द एवं रक्त शुद्धिकरण के लिए आयुर्वेदाचार्यों द्वारा सुझाया जाता रहा है। इसलिए इसकी खेती भी उतनी ही व्यापक आज भी है जितनी पहले कभी हुआ करती थी। इसकी आवश्यकता, बाजार की मांग, इन सब स्थितियों के बीच हम कहें तो जो अच्छी अच्छी किस्में आई हैं उसकी खेती करें तो लाभ हमारा और भी बढ़ सकता है। गजेंद्र यह एक अच्छी किस्म है। इसके पौधों की ऊंचाई 100 से 120 सेंटीमीटर होती है। कंदों में गला काटने वाला तत्व बहुत ही कम पाया जाता है। इसके कंद काफी बड़े एवं काले रंग के होते हैं। यह पकाने पर आसानी से गल भी जाता है और साथ ही साथ इस किस्म के छोटे छोटे कंद नहीं निकलते हैं। इसकी औसत पैदावार 500 से 800 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसलिए अपने उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है उसमें इसकी खेती यानी इस जाति की खेती बेहतर रूप से की जा सकती है। संतरा गाची भी है। इस प्रजाति के पौधे काफी बढ़ने वाले होते हैं। कंद खुरदुरी सतह वाले होते हैं जिससे काफी संख्या में छोटे छोटे कंद निकलते हैं। इसके कंदों में गला काटने वाला तत्व अधिक पाया जाता है इसलिए अब लोग इसे पसंद नहीं करते हैं। लेकिन आयुर्वेद की जो दवाएं बनती हैं उसमें इसका प्रयोग बहुतायत से होता है इसलिए इसकी मांग अभी कम न हुई है। यह किस्म हमारे देश के पूर्वी क्षेत्रों में उगाने के लिए ज़्यादा अच्छी मानी गई है लेकिन अपना उत्तर प्रदेश भी इसमें अपना विशिष्ट स्थान रखता है। इस किस्म की औसत पैदावार 500 से 700 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मानी गई है। बात आती है अब यहाँ की सूरन की खेती के लिए भूमि कैसी हो। तो सूरन के लिए गर्म जलवायु होना बहुत जरूरी है। इसमें इसकी बुआई करेंगे तो देखेंगे कि निश्चय ही बरसाती फसल के रूप में इसकी बुआई मई जून में करने से ज्यादा उत्पादन प्राप्त होगा। बुआई के लिए यह जरूरी है कि खेत की जुताई 3 से 4 बार अच्छी तरह से करें यानी 3-4 बार कल्टीवेटर या फिर देशी हल जो भी आपके पास है और खेत को समतल कर लें। मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई की गई है तो वह और भी अच्छी स्थिति प्रदान करेगा। सूरन की बुआई गड्ढे में करनी चाहिए। गड्ढे का आकार एवं जो दूरी है एक गड्ढे से दूसरे की वह सूरन के कंद पर निर्भर होती है। सूरन का कंद जिसका वजन 500 ग्राम हो उसके लिए गड्ढे 35 सेंटीमीटर × 35 सेंटीमीटर × 35 सेंटीमीटर यानी लंबाई, चौड़ाई और गहराई इतनी ही होनी चाहिए। दूरी जो है 50 सेंटीमीटर × 50 सेंटीमीटर के रखने पर अच्छी पैदावार मिलेगी। यदि सूरन बीजोत्पादन के लिए बोया जा रहा है और कंद का वजन 100 ग्राम है तो इसे 30 सेंटीमीटर × 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बोना चाहिए। गड्ढे में 1 से 2 किलोग्राम गोबर की सड़ी हुई खाद डालकर मिट्टी में मिला देना चाहिए। सूरन की कंद को बुआई के पहले गाय के गोबर का घोल बनाकर उपचारित करके छाया में सुखाकर बुआई करें। देखेंगे आश्चर्यजनक स्थिति उत्पन्न होगी सुरक्षा के दृष्टिकोण से। कंद की बुआई खड़े रूप में 10 से 15 सेंटीमीटर गहराई पर करना चाहिए। बुआई के बाद उसे पुआल से ढक देना भी एक अच्छा तरीका है, उससे नमी बनी रहती है और साथ ही साथ तापमान भी नियंत्रित रहता है। खाद एवं उर्वरकों का भी प्रयोग करना ही करना होता है इसलिए 25 से 40 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में अच्छी तरह मिलाएं। नत्रजन, फास्फोरस और पोटाश की मात्रा भी 150, 60 और 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से मिलाना होगा। बुआई के समय पूरी मात्रा फास्फोरस की तथा आधी मात्रा नत्रजन और पोटाश की गड्ढे में मिला देना चाहिए। शेष बची हुई नत्रजन और पोटाश की मात्रा बुआई के 35 से 75 दिन पर खरपतवार निकालकर तब प्रयोग करना होगा। बुआई के तुरंत बाद सिंचाई कर देना चाहिए। इसके पश्चात आवश्यकता अनुसार समय समय पर सिंचाई करते रहने की जरूरत पड़ेगी।
1: जिमीकंद की उन्नत खेती, इस विषय पर अभी किसान भाई जानकारी प्राप्त कर रहे थे। आज की कृषि चर्चा में जानकारी दे रहे थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी। आकाशवाणी लखनऊ से इस समय आप सुन रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ वैशाली के साथ। आप आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों का प्रसारण सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH के माध्यम से भी। अपार पुण्य और सफलता की दाई प्रभु विष्णु की कृपा बरसाए, अपरा एकादशी का पावन व्रत जीवन के सभी कष्ट मिटाए। आइए सुनते हैं आज का सुविचार। विषय है अपरा एकादशी, वाचन स्वर डॉक्टर शिवा राकेश का है।

0: वर्ष में 12 माह और 365 दिवस होते हैं और हर दिन की अपनी एक विशेषता है। धार्मिक महत्ता की दृष्टि से देखें तो वर्ष के 12 महीनों में एक पूर्णिमा, एक अमावस्या और दो एकादशी की तिथि होती हैं और ये सभी तिथियां विशेष मानी जाती हैं। आज बात करेंगे एकादशी की। हिंदू पंचांग की 11वीं तिथि को एकादशी कहा जाता है। माह में दो एकादशी होती है, एक कृष्ण पक्ष जो पूर्णिमा की तिथि के बाद आती है और एक शुक्ल पक्ष जो अमावस्या की तिथि के बाद आती है। मान्यता के अनुसार वर्ष में 24 एकादशी होती हैं और अधिक मास होने पर इनकी संख्या 26 तक पहुंच जाती है। ये सभी एकादशियां भगवान विष्णु को समर्पित होती हैं और पापों के नाश एवं मनोकामना पूर्ति के लिए की जाती हैं। इन एकादशियों में शामिल हैं उत्पन्ना, मोक्षदा, सफला, पौषपुत्रदा, षट्तिला, जया, विजया, आमलकी, पापमोचनी, कामदा, वरुथिनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवशयनी, कामिका, श्रावण पुत्रदा, अजा, परिवर्तिनी, इंदिरा, पापनकुशा, रमा, देव प्रबोधिनी, पद्मिनी एवं परमा एकादशी। आज अपरा एकादशी है। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। अपरा अर्थात अपार पुण्य देने वाला। इसे अचला अर्थात जो अपनी जगह से ना हिले या स्थिर रहे, ऐसी एकादशी भी कहा जाता है। अपरा एकादशी का व्रत अपार पुण्य और धन प्रदान करने वाला माना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार ये एकादशी समस्त पापों का नाश करती है। ये व्रत करने से गंगा स्नान, कुंभ में स्नान के साथ साथ वर्षों की तपस्या के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की पूजा और व्रत कथा पढ़ने से मोक्ष प्राप्त होता है, साथ ही व्यक्ति को धन, वैभव, प्रसिद्धि और अंत में बैकुंठ धाम मिलता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से ज्येष्ठ महाकृष्ण पक्ष एकादशी व्रत के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, हे महाराज, ये अत्यंत ही शुभ एकादशी और आशीर्वाद प्रदान करने वाली तिथि है। इसे अपरा एकादशी कहा जाता है, जिसके प्रभाव से पाप और समस्त अंधकार नष्ट हो जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में महीध्वज नामक एक राजा था। राजा का छोटा भाई वज्रध्वज बहुत ही दुष्ट और पापी था। वज्रध्वज ने धोखे से राजा महीध्वज का वध किया और तब राजा की रानी ऋषि धौम्य से अपने पति की मुक्ति का उपाय पूछने गई। ऋषि ने ज्येष्ठ महाकृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का व्रत उन्हें करने के लिए कहा। उनकी आदेश अनुसार रानी ने पूरी निष्ठा से व्रत का पालन किया और उसका फल अपने पति को समर्पित कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से राजा महीध्वज अपने दिव्य स्वरूप को धारण कर पूर्व की भांति सुकर्म और भूलोक का सुख भोग कर स्वर्ग को चले गए। अपरा एकादशी के दिन व्रती को प्रातः उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु को शुद्ध मन से याद करना चाहिए। उन्हें फल, फूल और तुलसी दल आदि का भोग निवेदन करना चाहिए। साथ ही अपरा एकादशी की कथा सुननी और पढ़नी भी चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत रखने का अर्थ है भक्ति और उत्साह पूर्वक जीवन की समस्त गतिविधियों को आगे बढ़ाना। एकादशी एक और दशी शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि एक और दस। ये 11 दिन हमारी 11 इंद्रियों, जिनमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मनोवैज्ञानिक इंद्री को वश में करने और मन को शुद्ध करने का प्रतीक माना जाता है। इंद्रियों और मन की क्रियाओं को भौतिक संसार से हटाकर ईश्वर में लगा देना ही वास्तविक एकादशी है। इसीलिए कहा भी जाता है कि हमें अपनी समस्त इंद्रियों और मस्तिष्क को नियंत्रित रखना चाहिए। किसी को भी इच्छा के संबंध में भयानक विचारों को मन में प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। एकादशी का व्रत महिला एवं पुरुष कोई भी कर सकता है। इस व्रत में विशेषकर भगवान विष्णु का पूजन और उनकी कथा का श्रवण किया जाता है। ये व्रत समस्त पापों का नाश, मनोकामनाओं की पूर्ति, मोक्ष प्राप्ति के साथ साथ मन एवं इंद्रियों पर नियंत्रण रखने के लिए किया जाता है। मान्यता है कि मुर नामक राक्षस का वध करने के लिए ही भगवान विष्णु के शरीर से एकादशी देवी उत्पन्न हुई थी, इसीलिए प्रभु ने उन्हें सबसे प्रिय तिथि का वर दिया था। आयुर्वेद और वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो चंद्रमा की स्थिति के कारण एकादशी के दिनों में वायुमंडलीय दाब सबसे कम होता है, जो उपवास के माध्यम से शरीर को शुद्ध करने का सबसे उत्तम समय माना जाता है। साथ ही हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने में भी अत्यंत सहायक होता है। यही कारण है कि एकादशी व्रत में अन्न का भोजन ना करके फल एवं नैवेद्य आदि ग्रहण करना चाहिए। ये व्रत मानसिक शांति, स्थिरता और शारीरिक शुद्धि के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इसीलिए इस तिथि को भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है और भक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हैं। एकादशी का अर्थ है शरीर का उपवास और आत्मा का भोज। एकादशी के दिन हम सभी को भक्ति से जुड़े कर्म और भगवान विष्णु का निरंतर स्मरण करना चाहिए।
1: अपरा एकादशी। अभी आप सुन रहे थे आज का सुविचार, वाचन स्वर डॉक्टर शीबा राकेश का था।

मन की शुद्धि वाणी की पवित्रता और निःस्वार्थ कर्म ही सच्ची पूजा है। अपरा एकादशी के शुभ अवसर पर स्वयं को ईश्वर के चरणों में समर्पित करें। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

सदियों से यही परंपरा रही है। हर मंगल कार्य की शुरुआत होती है विघ्नहर्ता गणपति बप्पा की आराधना से। आराधना का आइए शुभारंभ करते हैं एक दंत गजवदन मंगल मूर्ति के पावन नाम से।

माँ की गोद में सारा जग सुकून पाता है, ममता की छांव है माँ, दुआओं का गांव है माँ, जितना कहें उतना कम है, अनमोल वरदान है माँ।

प्रभु का नाम ही शांति और आनंद का स्रोत है। भगवान के भजनों में डूबकर भक्त अपनी हर चिंता भूल जाते हैं। आइए अपनी समस्याओं को ईश्वर के चरणों में रखें, भगवान का गुणगान करें।

संसार कर्म के सिद्धांत पर चलता है। हम जैसी ऊर्जा ब्रह्मांड में भेजते हैं वो वापस हमारे पास ही आती है।

ईश्वर सभी भक्तों का कल्याण करें, सभी का मंगल करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की आराधना अब संपन्न होती है।

आप सुन रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ, आकाशवाणी लखनऊ से 747 किलो हर्ट्स पर। अब आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। आज सुनेंगे भाग 170 में राह में प्रभु श्री राम लक्ष्मण और माता सीता के प्रति वनवासी नर नारियों के अनुराग का प्रसंग।

निषाद राज को अनेक प्रकार से समझा बुझाकर श्री रामचंद्र ने अपने घर लौट जाने को सहमत किया तथा स्वयं सीता और लक्ष्मण समेत वन की राह ली। राह में मिलने वाले वनवासियों को उन्हें तापस वेश में देखकर अत्यधिक चिंता होती है। श्री राम, सीता और लक्ष्मण के प्रति उनके हृदय में ऐसा अनुराग उमड़ पड़ता है जिसके वशीभूत वे उनके साथ साथ चल पड़ते हैं। वट वृक्ष की शीतल छांह देख कोई नरम घास और पत्ते बिछाकर वहां उनसे थोड़ी देर विश्राम कर लेने को कहता है, तो कोई कलश भर पानी लाकर प्रभु से आचमन कर लेने का आग्रह करता है। ऋषि कुमारों के वेश में श्री राम लक्ष्मण का अनुपम रूप देख गांव के स्त्री पुरुष इस प्रकार स्तब्ध रह जाते हैं जैसे दीपक का प्रकाश देख हिरणों का जोड़ा निस्तब्ध हो जाता है। गांव की स्त्रियां अपनी अल्प बुद्धि की विवशता बताकर सीता जी से दोनों कुमारों का परिचय जानना चाहती हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। गायक कलाकार थी अनुराधा पौडवाल। आकाशवाणी की इस प्रस्तुति के संगीत संयोजक सतीश भाटिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था। आप सुन रहे हैं 747 किलो हर्ट्स पर मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
0: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। प्रत्येक बुधवार सायं 6:30 पर कार्यक्रम हेलो किसान, प्रायोजक इफको। ये आकाशवाणी लखनऊ है। 6:55 सुबह के होने वाले हैं, सुनेंगे संस्कृत समाचार।
3: इयम् आकाशवाणी, सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणेन अस्य वर्षस्य राष्ट्रिय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी इत्यस्याः आयोजने प्रश्नपत्रम् अनधिकृतरीत्या बहिरागमन विषयमालक्ष्य प्रकरणं पञ्जीकृतम्। शिक्षा मन्त्रालयस्य उच्च शिक्षा विभागात् प्राप्तस्य लिखित परिवादस्य आधारे संस्थया एतत् प्रकरणं पञ्जीकृतम्। संस्थया संसूचितं यत् विशेषाणां केन्द्रीयावेषणाभिकरणदलानां निर्माणं जातं तथा प्रकरणम् अन्वेषणार्थं विभिन्नेषु स्थानेषु एतानि दलानि प्रेषितानि सन्ति। एषा नीट परीक्षा अस्य मासस्य तृतीयदिनाङ्के राष्ट्रिय परीक्षण संस्थया आयोजिता आसीत्। नवदिल्ल्यां नीट परीक्षायाः निरस्तीकरणविषये वार्ताहर सम्मेलनं सम्बोधयन् राष्ट्रिय परीक्षण संस्थायाः महानिदेशकः अभिषेक सिंहः अवदत् यत् राष्ट्रिय परीक्षण संस्था छात्रेभ्यः पुनः परीक्षाम् आयोजयिष्यति, सा च परीक्षा निष्पक्षरूपेण भविष्यति, पुनः परीक्षायै अति

0: मुक्तशुल्कं न भविष्यति इति। भारतं श्वः आरभ्य ब्रिक्स विदेशमन्त्रिणाम् उपवेशनस्य आतिथ्यं करिष्यति। अद्य उपवेशनस्य अध्यक्षतां विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः करिष्यति। नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् संसूचयन् विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः उक्तवान् यत् उपवेशनावधौ ब्रिक्स सदस्य देशानां विदेशमन्त्रिणः पारस्परिकहितस्य वैश्विक क्षेत्रीय विषयेषु विचार विनिमयं करिष्यन्ति इति। लोकसभाध्यक्षस्य ओम बिरला वर्यस्य नेतृत्वे एकं उच्चस्तरीयं भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमण्डलं भारत भूटान संबंधान सुदृढीकरणोद्देश्येन सह अद्य भूटानस्य यात्रां करिष्यति। एकपञ्चाशत् सदस्याः भूटान भारत सम्बन्धानां विभिन्नेषु विषयेषु उभययोः प्रतिवेशिदेशयोः मध्ये सहयोगं संवर्धयितुं च चर्चां करिष्यन्ति इति अपेक्षा अस्ति। यात्रावधौ प्रतिनिधयः भूटान देशस्य राज्ञा तत्रत्य प्रधानमन्त्रिणा च सह मेलनं करिष्यन्ति। उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथः राज्यस्य जनान् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः आह्वानं व्यावहारिकरूपेण प्रवर्तयितुं प्रार्थयत्। अनेन नागरिकेभ्यः इन्धनस्य उपभोगं न्यूनीकर्तुम् अनावश्यकं स्वर्णक्रयणं परिहर्तुं च आग्रहः कृतः। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः निर्देशं प्रदत्तवान् यत् मुख्यमंत्रिणः मन्त्रिणाम् अन्ये च जनानां संख्या तत्क्षणमेव 50% यावत् न्यूनीकर्तव्यमिति। असौ प्रार्थयत् यत् राज्ये गृहात् कार्यं कुर्वन्तु इति। महिलानां सुरक्षायै संस्थागत समन्वयं सुदृढीकर्तुं राष्ट्रिय महिला योगेन दिल्ली आरक्षकै सह एकं उच्चस्तरीयं समीक्षोपवेशनम् आयोजितम्। उपवेशनावधौ राष्ट्रिय महिला योगस्य अध्यक्षा विजया राहतकर इत्येषा समन्वितस्य पीडित केन्द्रितस्य च दृष्टेः आवश्यकतायै बलं प्रदत्तवती। एषा अवदत् यत् महिलाभ्यः समयोचित समर्थनं न्यायञ्च सुनिश्चेतुं गृहहिंसा अधिनियमस्य अन्तर्गतम् आरक्षकयन्त्रस्य सुरक्षाधिकारिणाञ्च मध्ये प्रभावी सम्पर्कः आवश्यकः अस्ति। अमेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प अद्य चीनदेशस्य त्रिदिवसीया यात्रायै बीजिंग नगरं सम्प्राप्स्यति। डोनाल्ड ट्रम्प इत्यस्य चीनदेशस्य राष्ट्रपतेः शी जिनपिंग इत्यस्य च मध्ये बहुप्रतीक्षिते उपवेशने द्विपाक्षिकसम्बन्धानाम् अनेकेषु विषयेषु चर्चा भविष्यति इति आशास्यते। आईपीएल इति क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां ह्यः रात्रौ अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडाङ्गणे गुजरात टाइटन्स दलेन सनराइजर्स हैदराबाद दलं 82 पराजितम् इति वार्ताः।
1: अपने रेडियो सेट पर इस वक्त आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र और सुन रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ। सुबह के 7 बजे हैं और ये वक्त होता है स्वास्थ्य चर्चा सेगमेंट का। श्रोताओं, कहते हैं कि हमारा उत्तम स्वास्थ्य ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा उपहार है और स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी भी है। और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम आपके लिए लेकर आता है तरह तरह की जानकारियाँ जो आपके सेहत के लिए लाभप्रद होती हैं। तो आज की स्वास्थ्य चर्चा में नीना सोनकर आप सभी श्रोताओं के लिए लेकर आई हैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी। आइए सुनते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा।
2: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे एक ऐसे फल की जो शायद अब पहले की तरह आसानी से हर गली मोहल्ले में दिखाई नहीं देता, लेकिन जिसके गुण आज भी उतने ही अद्भुत और प्रभावशाली हैं। ये फल है शहतूत। काले बैंगनी या कभी कभी सफेद रंग के छोटे छोटे इस रसीले फल को हम में से बहुतों ने बचपन में पेड़ों से तोड़कर खाया होगा। जीभ और होंठ रंगे होंगे और उसकी खट्टी मीठी मिठास को याद किया होगा। पर शहतूत केवल स्वाद का खेल नहीं है।

0: बल्कि ये एक संपूर्ण औषधीय फल है जो शरीर के कई हिस्सों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। शहतूत का पेड़ बहुत ही साधारण सी जमीन में कम देखभाल में भी उग जाता है, परंतु इसके फल में जितने पोषक तत्व होते हैं उतने कई बार बाजार में मिलने वाले चमकदार विदेशी फलों में भी नहीं होते। शहतूत में आयरन, विटामिन सी, विटामिन के, कैल्शियम और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे शरीर को भीतर से मजबूती देते हैं और रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ाते हैं। शहतूत का सबसे पहला और गहरा असर हमारे रक्त यानी खून पर पड़ता है। ये खून को शुद्ध करने में बेहद मददगार होता है। शरीर में यदि किसी कारणवश विषैले तत्व जमा हो जाएं, तो शहतूत उन्हें बाहर निकालने में सहायता करता है। आयुर्वेद में इसे रक्त शोधक यानी ब्लड प्यूरिफायर माना गया है, खासकर उन लोगों के लिए जो बार बार फोड़े फुंसी, त्वचा के दाग धब्बे या पिंपल्स जैसी समस्याओं से जूझते हैं। शहतूत एक प्राकृतिक इलाज की तरह कार्य करता है। इसके अलावा शहतूत का एक और बड़ा लाभ है, वो ये कि ये आंखों की रोशनी के लिए भी बहुत फायदेमंद माना जाता है। इसमें विटामिन ए होता है जो नेत्र ज्योति को बनाए रखने में सहायक होता है, खास तौर पर आज के समय में जब बच्चों से लेकर बड़ों तक स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है और आंखों की थकान आम हो गई है। ऐसे में शहतूत जैसे फलों का सेवन एक सरल और स्वादिष्ट उपाय हो सकता है। शहतूत में प्राकृतिक रूप से उपस्थित शर्करा यानी नेचुरल शुगर होती है जो शरीर को तुरंत ऊर्जा देती है, लेकिन ब्लड शुगर को असंतुलित नहीं करती। यही कारण है कि मधुमेह से पीड़ित कई लोग डॉक्टर की सलाह लेकर सीमित मात्रा में शहतूत का सेवन कर सकते हैं। ये शरीर में इंसुलिन के स्तर को संतुलित रखने में मदद करता है। एक और विशेषता जो शहतूत को खास बनाती है वो है उसका प्रभाव मस्तिष्क पर। ये मानसिक तनाव को कम करता है, मन को शांत करता है और नींद को बेहतर बनाने में सहायक होता है। जिन लोगों को अनिद्रा की समस्या है या नींद ठीक से नहीं आती है, उनके लिए शहतूत एक प्राकृतिक और मीठा समाधान हो सकता है। ये दिमाग को आराम पहुंचाता है और स्मृति शक्ति को भी सुधारने का काम करता है। शहतूत का रस गले की खराश, खांसी और जुकाम में भी राहत देता है। पुराने समय में जब किसी का गला बैठ जाता था, आवाज भारी हो जाती थी, तो शहतूत के रस को गुनगुने पानी के साथ मिलाकर पीने की सलाह दी जाती थी। ये गले के अंदर की सूजन को कम करता है और एक कोमल ठंडक प्रदान करता है जो राहत देने का काम करती है। शहतूत को कई बार हम नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि ये बाजारों में ज्यादा नहीं दिखता या दूसरे फलों की तरह विज्ञापनों में नहीं आता, लेकिन यही इसकी खूबसूरती है। ये शांत है, घरेलू है और गुणों से भरा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बच्चे पेड़ों से इसे तोड़ते हैं और बुजुर्ग इसकी चटनी या शरबत बनाकर गर्मियों की तपिश में राहत पाते हैं। शहतूत को आप ऐसे ही खा सकते हैं या फिर उसका रस, शरबत या हल्का सा जैम बनाकर सेवन कर सकते हैं, पर ध्यान ये भी रखना चाहिए कि ये फल नाजुक होता है, जल्दी खराब होता है, इसलिए इसे ताजा खाना ही सबसे अच्छा होता है। श्रोताओं, अगली बार जब आप किसी बगीचे में जाएं या किसी देहात के हाट में शहतूत दिखे तो उसे अनदेखा न करें। ये छोटा सा फल आपके स्वास्थ्य को अंदर से पोषण देने वाला, आपके खून को साफ करने वाला, आंखों को रोशनी देने वाला और मन को शांति देने वाला फल है। आज की स्वास्थ्य चर्चा यहीं समाप्त होती है। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।
1: सेहत के लिए रसीला और स्वादिष्ट शहतूत, इस विषय पर अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में जानकारी दे रही थी नीना सोनकर। नमस्ते लखनऊ, मॉर्निंग प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ से, और अब समय है आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में जानकारी का। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आज रात 9:30 पर आप सुनेंगे चर्चा का विषय है कार्यक्रम। सुबह 9:15 पर जिले की हलचल का प्रसारण किया जाएगा। आज के जिले मेरठ और बाराबंकी। उर्दू कार्यक्रम में आकाशवाणी के गोरखपुर मरकज की पेशकश के तहत समात फरमाइएगा डॉक्टर

हिंदी कार्यक्रम में रात 8 बजे डॉक्टर राकेश धर त्रिपाठी की वार्ता प्रसारित की जाएगी, बदलते समय में बदलते सामाजिक मूल्य। मानसिक स्वास्थ्य और हम सुनिए विविधा सुबह 7:10 पर। सुबह 7:31 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा पंडित सी आर व्यास का राग भैरव में ख्याल गायन, और रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में ही आप सुनेंगे पंडित सी आर व्यास का राग मालव में गाया ख्याल। अच्छे लाल सोनी के गाए भोजपुरी लोकगीतों का आनंद लीजिएगा लोकरंग कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर, और लोक माधुरी में दिन में 2:45 पर। दोपहर 12 बजे प्रसारित किया जाएगा NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। मातृ शिशु स्वास्थ्य का कार्यक्रम आंगनबाड़ी हमारी बहनें सुनेंगी दिन में 1:15 पर। आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा डॉक्टर संदीप सक्सेना प्रोफेसर नेत्र रोग विभाग KGMU लखनऊ से की गई भेंटवार्ता, गर्मियों में होने वाले आंखों के विभिन्न रोग, इस विषय पर आपसे बातचीत करेंगी नीना सोनकर। विज्ञान और किसान कार्यक्रम में दिन में 2:30 पर सुनना ना भूलें डॉक्टर यशपाल सिंह से की गई भेंटवार्ता ऊसर सुधार की उन्नत तकनीक, भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। शाम 5:10 पर युवा तरंग कार्यक्रम में हमारे युवा साथी सुनेंगे यूथ आउटरीच इंटरव्यू कार्यक्रम के अंतर्गत येरा मेडिकल कॉलेज में प्रश्नोत्तरी एवं संवाद प्रतियोगिता की रिकॉर्डिंग के संपादित अंश। इसके अलावा आयुषी बताएंगी तहजीब नजाकत और शाही स्वाद का मिश्रण लखनऊ के बारे में। शाम 5:45 पर नई उड़ान कार्यक्रम में प्रगति के पथ क्रम में सुनिएगा एंटरप्रेन्योरशिप और सॉफ्ट स्किल्स, जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर हेतु डिजिटल एग्रीकल्चर के बारे में ओबी आधारित बातचीत। किसानों के लिए सजीव फोन इन कार्यक्रम हमारे किसान भाई सुनेंगे हेलो किसान शाम 6:30 से। आज इस कार्यक्रम में विषय होगा जायद फसलों की सामयिक देखभाल, ग्रीष्मकालीन जुताई और हरी खाद उत्पादन, कृषि विभाग से देय सुविधाएं, खरीफ उत्पादन की योजना और तैयारी। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर पंकज त्रिपाठी, कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश। प्रस्तुति एवं संचालन डॉक्टर सुशील कुमार राय का होगा। ये थे आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम जिन्हें आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। आप सुन रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ 747 KHz पर वैशाली के साथ। हाजिर होते हैं कुछ ही पलों में कार्यक्रम विविधा लेकर।

विविधा के सभी साथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। क्या आपने कभी गौर किया है, जब हमें सर्दी खांसी होती है तो हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन जब मन बोझिल हो, दिमाग में तूफान चल रहा हो, नींद उड़ गई हो तो हम क्या करते हैं? हम यही तो कहते हैं ना, अरे कुछ नहीं, बस थोड़ा स्ट्रेस है, सब ठीक हो जाएगा। क्यों भाई, क्या हमारा मन, हमारा दिमाग शरीर का हिस्सा नहीं है? आपने कभी सोचा है, हम रोज अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, खाना पानी एक्सरसाइज, लेकिन जो सबसे ज्यादा काम करता है, हमारे लिए सोचता है, महसूस करता है, उस

मन का ख्याल हम कितनी बार रखते हैं। तो आज की विविधा में बात मानसिक स्वास्थ्य और हम की, जो हम सब की जिंदगी से जुड़ी है, लेकिन फिर भी हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं। सच तो ये है दोस्तों, अगर मन बीमार है तो जिंदगी की कोई दवा काम नहीं करती। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब कहीं ना कहीं थोड़े थके हुए हैं, थोड़े उलझे हैं और कभी कभी बिल्कुल अकेले भी। मानसिक स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ पागलपन या बीमारी नहीं होता, बल्कि हम कैसा सोचते हैं, महसूस करते हैं और मुश्किल हालातों से कैसे निपटते हैं, यही मानसिक स्वास्थ्य है। हमारे मन, सोच, भावनाओं और व्यवहार का संतुलन। सवाल ये उठता है कि मानसिक स्वास्थ्य इतना जरूरी क्यों है? जब मन शांत होता है तो छोटी छोटी खुशियां भी बड़ी लगती हैं, और जब मन भारी हो तो पूरी दुनिया भी छोटी लगने लगती है। तो आज की सबसे बड़ी समस्या, आज हर किसी के पास सब कुछ है, मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, लेकिन फिर भी सुकून नहीं है, क्योंकि हम दूसरों की हाईलाइट लाइफ देखकर अपनी रियल लाइफ को कम समझने लगते हैं। हम कहते नहीं, पर अंदर ही अंदर तुलना, तनाव और डर हमें खाता जाता है। समस्या गंभीर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की माने तो भारत में स्थिति और भी गंभीर है। हम में से कई मानसिक परेशानी से जूझ रहे हैं, लेकिन असल में त्रासदी ये है कि हम में से केवल कुछ लोग ही मदद लेते हैं, बाकी लोग चुपचाप सहते रहते हैं। अब जैसे कोई 28 साल का युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी भी है, बाहर से देखने पर सब कुछ परफेक्ट, लेकिन अंदर से रोज रात को 3 बजे तक नींद नहीं आती, ऑफिस में काम पर ध्यान नहीं लगता, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ाहट, दोस्त बोलते हैं चल यार पार्टी कर लेते हैं, मूड फ्रेश हो जाएगा, मम्मी कहती हैं शादी कर लो सब ठीक हो जाएगा, तो पापा कहते हैं पुरुष होकर रोते हो, हिम्मत रखो, पर कोई ये नहीं कहता बेटा तुम्हें किसी प्रोफेशनल से बात करनी चाहिए। यही है हमारी असली समस्या, जागरूकता की कमी।

मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसी अवस्था है जहां हम और आप अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं, जीवन के सामान्य तनावों से निपट सकते हैं, उत्पादक तरीके से काम कर सकते हैं, अपने समुदाय में, समूह में, दोस्तों के बीच योगदान दे सकते हैं। सीधी भाषा में कहें तो जब हमारा दिमाग शांत हो, दिल खुश हो और जिंदगी को एंजॉय कर पा रहे हो, तभी हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। और दोस्तों, जब हम मानसिक स्वास्थ्य को इग्नोर करते हैं तो जानते हैं क्या होता है? लगातार तनाव से एंग्जाइटी डिसऑर्डर, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां, डायबिटीज और कमजोर इम्यूनिटी हो सकती है। जब आप खुद से परेशान हो तो दूसरों के साथ कैसे अच्छा व्यवहार करेंगे? परिवार, दोस्त, पार्टनर, सभी रिश्ते प्रभावित होते हैं। मन नहीं लगता, गलतियां बढ़ती हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी गिरती है।

तो दोस्तों, सबसे जरूरी बात ये कि मानसिक स्वास्थ्य को अहम बनाएं, खुद से बात करें, खुद को समझें, हर दिन 10 मिनट अपने साथ बिताएं। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करना कमजोरी नहीं, बहादुरी है। अगर समस्या गंभीर है तो मदद लेने में बिल्कुल ना झिझकें। ये बिल्कुल नॉर्मल है। जैसे बुखार में हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, वैसे ही मन के लिए भी होते हैं काउंसलर और थेरेपिस्ट।

बस कुछ बातों का रखें ख्याल, जैसे 7 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है और 30 मिनट की वॉक भी हमारे आपके मूड को बेहतर बना सकती है। हमेशा खुश रहें और खाना खाएं तो पौष्टिक, जंक फूड से दूर रहें। आपका खाना आपके मूड को प्रभावित करता है। और सबसे जरूरी, डिजिटल ब्रेक लें, थोड़ा वक्त मोबाइल से दूर रहें, अपने आप के पास समय बिताइए। याद रखिए दोस्तों, आप अकेले नहीं है, हर किसी के जीवन में संघर्ष है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग छुपा लेते हैं और कुछ लोग बोल देते हैं, और बोल देना हीलिंग की शुरुआत है। तो आज से मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ अपने मन का भी रखिए ख्याल, क्योंकि अगर मन स्वस्थ है तभी खुशहाल जीवन है। तो आज की विविधा में बस इतना ही। दीजिए अनुमति वैशाली को नमस्कार। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाएं, पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाएं, मन में ये संकल्प बनाएं।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
0: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। CBI ने कथित नीट पेपर लीक के संबंध में दर्ज किया मामला, देश भर से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। पेपर लीक के आरोपों के कारण 3 मई को आयोजित हुई नीट UG परीक्षा रद्द, अलग से अधिसूचित की जाएगी नई परीक्षा तिथि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक कर ईंधन की बचत और संसाधनों के बेहतर उपयोग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील से जुड़ने की पहल की। मुख्यमंत्री और मंत्रियों की फ्लीट में 50% कटौती सहित दिए कई अहम निर्देश। और मौसम विभाग ने कल से मौसम साफ होने की संभावना जताई, आने वाले दिनों में तापमान बढ़ने के संकेत। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस प्रकरण में देश भर से कई लोगों

0: को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी। एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: इस बीच एनटीए ने स्पष्ट किया है कि दोबारा परीक्षा के लिए फिर से पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी। एक रिपोर्ट।
2: एनटीए ने कहा है कि परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे और दोबारा होने वाली परीक्षा में उपयोग किए जाएंगे। एजेंसी ने कहा है कि दोबारा परीक्षा के लिए फिर से पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
0: सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता के विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई और मामले की जांच जारी है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल एआईआर न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में ईंधन की बचत और संसाधनों के बेहतर उपयोग को लेकर प्रदेशवासियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान से जुड़ने की अपील के साथ ही कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
3: राज्य सरकार की तैयारियों के संबंध में कल अपने सरकारी आवास पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने स्वयं और मंत्रियों की फ्लीट में तत्काल 50% तक कटौती करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत अनावश्यक वाहनों को हटाया जाएगा। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से भी जिम्मेदारी निभाने को कहा है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सरकारी कार्यों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक उपयोग किया जाए और सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे मनाया जाए। साथ ही मंत्री, सांसद और विधायक भी सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। श्री योगी ने कहा कि सरकारी बैठकों, सेमिनारों और कार्यशालाओं का अधिक से अधिक आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया जाए जिससे अनावश्यक यात्रा और ईंधन की खपत कम हो सके। इसके अलावा उन्होंने वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को भी प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से भी अपील की है कि वे मेट्रो, बस, साइकिलिंग और कार पूलिंग जैसे विकल्प अपनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए सभी को सतर्क और जिम्मेदार व्यवहार अपनाने की आवश्यकता है। समाचार अरुण।
0: प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कल गोरखपुर में संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में सरकार, उद्योग जगत, निजी आईटीआई संचालकों और प्रशिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों ने युवाओं को रोजगार परक और भविष्य आधारित प्रशिक्षण उपलब्ध कराने को लेकर

0: मंथन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि कौशल विकास संस्थान आत्मनिर्भर भारत की मजबूत आधारशिला हैं। गोरखपुर के रामगढ़ ताल में आज से अस्मिता नेशनल महिला रोइंग लीग का शुभारंभ होगा। 5 दिवसीय इस प्रतियोगिता में मेजबान यूपी और तेलंगाना सहित विभिन्न राज्यों की 16 टीमों के 275 खिलाड़ी शामिल होंगे। मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में आज भी कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने पूर्वी जिलों में कहीं कहीं बिजली गिरने और तेज झोंकेदार हवा चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया है। इस बीच प्रदेश के पश्चिमी जिलों में कल हुई तेज बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं और आसपास के जिलों में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। एक रिपोर्ट।
1: बदायूं जिले में जमकर बारिश हुई, जिस कारण जगह जगह पेड़ टूटने से यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई। जिले के कई इलाकों में अचानक घने बादलों के साथ आई तेज आंधी से जहां पेड़ टूटकर गिर गए, वहीं तेज बारिश से मौसम सुहाना हो गया। साथ ही बारिश को देखते हुए किसानों ने भी खेतों की जुताई शुरू कर दी है। मौसम के लगातार करवट बदलने से लोगों को गर्मी से भी काफी राहत मिली है। मोहम्मद नईम, आकाशवाणी समाचार, बदायूं।
0: मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने आगामी दिनों में तापमान में बढ़ोतरी की संभावना व्यक्त की है।
2: आने वाले दिनों में अगर लखनऊ की बात करें तो मौसम साफ रहेगा और दिन में धूप खिलेगी, लेकिन तापमान ऐसा कोई एक्सट्रीम लेवल तक का नहीं पहुंचेगा। हालांकि तापमान में यहां धीरे धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम आने वाले दिनों के लिए पूरी तरीके से साफ है। अब यहां से धीरे धीरे तापमान में हल्की हल्की आने वाले दिनों में बढ़ोतरी होने की संभावना है।
0: आगरा जिले के कमलानगर थाना क्षेत्र में कल यमुना नदी में नहाने के दौरान 6 बच्चे डूब गए। पीएसी और गोताखोरों की रेस्क्यू टीम ने बच्चों को नदी से बाहर निकाल लिया। सभी बच्चों को गंभीर हालत में एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां उपचार के दौरान 4 बच्चों की मौत हो गई। अंतिम समाचार मिलने तक 2 बच्चों का उपचार जारी था। पुलिस उपायुक्त नगर सैयद अली अब्बास ने बताया कि सभी बच्चे एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आगरा आए थे। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सीबीआई ने कथित नीट परीक्षा पेपर लीक के संबंध में दर्ज किया मामला। देश भर से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। पेपर लीक के आरोपों के कारण 3 मई को आयोजित हुई नीट यूजी परीक्षा रद्द। अलग से अधिसूचित की जाएगी नई परीक्षा तिथि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक कर ईंधन की बचत और संसाधनों के बेहतर उपयोग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील से जुड़ने की पहल की। मुख्यमंत्री और मंत्रियों की फ्लीट में 50% कटौती सहित दिए कई अहम निर्देश। और मौसम विभाग ने कल से मौसम साफ होने की संभावना जताई। आने वाले दिनों में तापमान बढ़ने के संकेत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। एपीजे अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
4: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा। सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
5: सात सौ 47 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से ही बोल रहे हैं। मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ, आप सुन रहे हैं वैशाली के साथ। आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों का प्रसारण आप सुन सकते हैं।

सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH के माध्यम से भी। आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में सुनेंगे पंडित CR व्यास का राग भैरव में ख्याल गायन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित सी आर व्यास का राग भैरव में ख्याल गायन। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ आकाशवाणी लखनऊ से, जिसे संपन्न करने का वक्त हो चला है। तो दीजिए अनुमति हमें कार्यक्रम संपन्न करने की। श्रोताओं बने रहिए 747 किलोहर्ट्ज़ पर और सुनते रहिए आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित कार्यक्रमों को। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार का बहुमत परीक्षण आज। राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में अब टीवी के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है।
1: मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में हैं। सहयोगियों के समर्थन के साथ साथ टीवी के सरकार को अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK से अलग हुए गुट का समर्थन प्राप्त है। इस बीच तमिलनाडु में AIADMK सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बंट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडप्पाडी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वरिष्ठ नेता एग्री कृष्णमूर्ति ने चेतावनी दी है कि पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने वाले किसी भी विधायक को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने SP वेलुमणि को AIADMK विधायक दल का नेता चुना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जसपाल कौर।
0: वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने राज्य सरकार में IAS अधिकारियों का तबादला किया है, जिनमें पूर्व मुख्य सचिव एन

0: मुरुगंदम और वित्त सचिव टी उदय चंद्रन शामिल हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में ज्योतिषी रिकी राधान पंडित को विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किए जाने पर गठबंधन सहयोगियों ने कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल और ज्योतिमणि ने इस नियुक्ति पर सवाल उठाए, जबकि सीपीआईएम के राज्य सचिव पी शुनगुमुगम ने कहा है कि कदम सरकार के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के खिलाफ है। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के नेता एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पुदुचेरी में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। एन रंगासामी एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 76 वर्षीय एन रंगासामी का मुख्यमंत्री के रूप में यह 5वां कार्यकाल होगा। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा पुदुचेरी प्रभारी निर्मल कुमार सुराना और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीपी रामलिंगम सहित कई प्रमुख नेताओं के शामिल होने की संभावना है। इससे पहले श्री नितिन नवीन ने पार्टी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और विधायकों के साथ बैठक की। पुदुचेरी से विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में ले लिया है। राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर नासिक पुलिस ने कल महाराष्ट्र के नासिक से शुभम को हिरासत में लिया था। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा कल पेपर लीक के आरोपों के बीच रद्द कर दी गई। नीट यूजी के एक उम्मीदवार के अभिभावक ने लातूर एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है और आरोप लगाया है कि एक निजी कोचिंग संस्थान ने परीक्षा से पहले एक मॉक टेस्ट आयोजित किया था, जिसमें कथित तौर पर 42 प्रश्न नीट परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से मेल खाते थे। इससे पहले राजस्थान पुलिस के विशेष जांच दल ने संदिग्ध नेटवर्क और धन के लेनदेन की जांच के दौरान 15 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने कल जयपुर से कथित मास्टरमाइंड मनीष को भी गिरफ्तार किया। इसी महीने की 7 तारीख को सीकर के करियर काउंसिलर राकेश कुमार समेत 5 लोगों को देहरादून से गिरफ्तार किया गया था और अगले दिन 4 नीट उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया। इस बीच राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर राज्य भर के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मितव्ययिता के आह्वान पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया और साप्ताहिक वाहन मुक्त दिवस को प्रोत्साहित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने और सोने की अनावश्यक खरीद से बचने का आग्रह किया। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री और अन्य लोगों के वाहनों के बेड़े को तत्काल 50% तक कम करने का निर्देश दिया। उन्होंने आधिकारिक काफिलों से अनावश्यक वाहनों को हटाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में घर से काम करने की संस्कृति को प्राथमिकता देने की भी अपील की। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो सेवाओं और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों के उपयोग पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। सप्ताह में एक बार वाहन निषेध दिवस यानी नो व्हीकल डे का भी आयोजन किया जाना चाहिए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है।

0: मुख्यमंत्री के काफिले में अब केवल 8 वाहन होंगे और कोई भी वाहन रैली आयोजित नहीं की जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो और बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातु के प्रयुक्त उत्प्रेरक पर 4.35% आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के चलते लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के वार्षिक और चौथी तिमाही के अनुमानों की प्रकाशन तिथि को संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये संशोधन आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसद का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान की यात्रा पर जाएगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और भूटान के संबंधों को और मजबूत करना है। यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल भूटान और भारत के बीच संबंधों के विभिन्न पहलुओं तथा दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेगा। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि व्यापार इस वार्ता का प्रमुख विषय रहेगा। युगांडा के राष्ट्रपति यूवेरी मुसवेनी ने जनवरी में हुए चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद अपने 7वें कार्यकाल की शपथ ली। राष्ट्रपति मुसवेनी पिछले 40 साल से राष्ट्रपति पद पर हैं। श्री मुसवेनी ने कल युगांडा की राजधानी कंपाला के कोलोलो इंडिपेंडेंस ग्राउंड्स में आयोजित समारोह में हजारों लोगों के बीच पद की शपथ ली। श्री मुसवेनी ने 71% से अधिक वोट हासिल किए। भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन इस सप्ताह हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मानसून आ सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र कल भी इसी क्षेत्र में था और इससे संबंधित चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ था। इस बीच राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम केंद्र ने सीमावर्ती बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी जिलों के लिए आज भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 4 पश्चिमी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 6 दक्षिणी पूर्वी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिन के साथ रातें भी तप रही हैं और कई स्थानों पर रात का पारा 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा जा रहा है। गर्मी की इन परिस्थितियों से जनजीवन पर खासा असर हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिन तापमान के यही हालात रहने के आसार हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: महाराष्ट्र के सांगली जिले की जाट तहसील में कल एक धार्मिक सभा के दौरान दीवार गिरने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 15 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जम्मू कश्मीर में सेना के कल पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास कृष्णा घाटी सेक्टर में एक आतंकवादी को मार गिराया गया। हमारे संवाददाता के अनुसार सेना को मिली सूचनाओं के बाद शाम करीब 4 बजे नियंत्रण रेखा के अंदर संदिग्ध गतिविधि देखी गई। इस पर सैनिकों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। खेलों में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में फोगाट ने कोरिया के सेंगुमिन ली को पराजित किया। वहीं 8 भारतीय लड़कियों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए फाइनल में जगह बनाई और 4 ने कांस्य पदक जीते।

0: बाकी समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। नीट यूजी 2026 की परीक्षा निरस्त करने का समाचार आज सभी अखबारों की सुर्खी बनी है। अमर उजाला लिखता है सीबीआई को पेपर लीक की जांच, एक गिरफ्तार, 20 संदिग्ध हिरासत में। दैनिक भास्कर की खबर है 22 लाख अभ्यर्थियों से खिलवाड़, परीक्षा दोबारा होगी, नई तारीखों की घोषणा जल्द। कल से ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की समिट, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। पत्र लिखता है पीएम से भी संयुक्त मुलाकात, खाड़ी संकट के बीच दिल्ली पर दुनिया की निगाहें। तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक के 30 विधायकों का टीवीके को समर्थन का ऐलान, विजय आज बहुमत साबित करेंगे, जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। अमर उजाला ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है नया भारत और बदलती सियासी समझ, संपादक का कहना है कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे बताते हैं कि देश का मिजाज अब राजनीति में किसी तरह की संकीर्णता को बर्दाश्त नहीं करेगा। कोलकाता से लेकर चेन्नई और तिरुवनंतपुरम तक नए की उम्मीद और पुराने के प्रति गुस्से के चलते मौजूदा व्यवस्था बहती दिखी। दैनिक जागरण ने पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के शब्द प्रकाशित किए हैं, पेट्रोल उत्पादों की दिक्कत नहीं लेकिन कंपनियों का घाटा चिंताजनक। शेयर मार्केट में निवेशकों के 9 लाख करोड़ स्वाहा, आखिरी घंटे और बढ़ी गिरावट, सेंसेक्स 1500 पॉइंट टूटने से मचा हाहाकार। लोकसत्य ने कारोबार पन्ने पर यह खबर प्रकाशित की है। जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस बनी लोगों की पहली पसंद, 10 दिनों में करीब 45,000 यात्रियों ने किया सफर, देश बंधु की खबर है। नवभारत टाइम्स ने जनगणना 2027 पर खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है अब क्यूआर कोड से जनगणना कर्मियों की होगी पहचान, फर्जी मैसेजेस को लेकर किया फैसला, मेहनत के बिना जवाब, चैटबॉट खत्म कर रहा रचनात्मकता। राजस्थान पत्रिका ने डिजिटल एडिक्शन शीर्षक से खबर प्रकाशित की है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार का बहुमत परीक्षण आज। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। मौसम विभाग का अनुमान, समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Political activities in Tamil Nadu turn hectic ahead of C. Joseph Vijay-led TVK government's floor test today. All India NR Congress leader N. Rangasamy to take oath as Chief Minister of Puducherry today. Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Delhi governments implement measures for fuel consumption following Prime Minister Narendra Modi's austerity appeal. Centre increases import duty on gold and other precious metals. IMD predicts early arrival of monsoon this year. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Sunrisers Hyderabad by 82 runs in Ahmedabad. And now the news in detail. In Tamil Nadu, political activities have turned hectic ahead of C. Joseph Vijay-led TVK government's floor test in the assembly today. In a dramatic turn of events, the AIADMK has split into two groups over extending support to the TVK government. Lone AMMK MLA S. Kamaraj has decided to support the TVK government. We have more from our correspondent.
3: The TVK with allies like the Congress, VCK, CPI, CPIM and IUML had enjoyed a majority of 120 to form the government in Tamil Nadu. After the government was sworn in, now it has the support of 30 AIADMK MLAs from the breakaway faction and one AMMK MLA, having a total of 151 MLAs. TVK will now have to prove the strength of the government today. The AIADMK led by General Secretary E. Palaniswamy has already said that those who do not adhere to the rules of the whip will be expelled from the party. The party founded by MGR will be facing a major political crisis presently. Joy, Akashwani reporting from Chennai.
2: Meanwhile, Tamil Nadu Chief Minister Joseph Vijay has reshuffled IAS officers in the state government, including former Chief Secretary N. Muruganandam and

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय की क्यादत वाली नौमुंतखबा टीवी के सरकार आज असेंबली में अपनी अक्सरियत साबित करेगी। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के रहनुमा एन रंगासामी आज पुदुचेरी के वजीर आला का हलफ लेंगे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई किफायत शहरी की अपील के बाद ईंधन की खपत से मुतालिक इकदाम पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। मरकज ने सोने और दीगर कीमती धातों पर दरामदाती ड्यूटी में इजाफा कर दिया है। IMD ने इस साल मानसून जल्द शुरू हो जाने की पेशगोई की है। और IPL में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से शिकस्त दी। अब खबरें तफसील से। तमिलनाडु में आज टीवी के हुकूमत असेंबली में अपनी अक्सरियत साबित करेगी। वजीर आला सी जोसेफ विजय इस आजमाइश से पहले हिमायत हासिल करने की गरज से अपनी हामी पार्टियों के रहनुमाओं के साथ मीटिंग्स करते रहे हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: तमिलनाडु में हुकूमत तश्कील देने के लिए कांग्रेस, VCK, CPI, CPIM और IUML जैसी इत्यादि पार्टियों के साथ TVK के पास 120 अरकान की अक्सरियत है। सरकार की हलफबरदारी के बाद अब TVK को AIADMK के 29 अरकान असेंबली की हिमायत हासिल है जो इस पार्टी से अलग हुए हैं। TVK को अम्मा मक्कल मुनेत्र कडगम के एक MLA एस कामराज की भी हिमायत हासिल है। अब असेंबली में TVK के पास कुल 151 अरकान हैं। जनरल सेक्रेटरी ई पलानीस्वामी की क्यादत वाली AIADMK ये कह चुकी है कि जो लोग व्हिप के जाब्तों पर अमल नहीं करेंगे उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा। इस पार्टी की बुनियाद MGR ने रखी थी और इसे फिलहाल एक बड़े सियासी बुहरान का सामना है।

0: चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के रहनुमा एन रंगासामी आज पुडुचेरी के वजीर आला का हलफ लेंगे। एक सादा सी तकरीब में जो लोक निवास में मुनाकिद की जाएगी, पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के कैलाश नाथ जनाब रंगासामी को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगे। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: पुडुचेरी में हलफ बरदारी की तकरीब मुनाकिद की जाएगी। एन रंगासामी वजीर आला के ओहदे की एक बार फिर जिम्मेदारी संभालने को तैयार है। 76 साल सियासी कदावर शख्सियत की

0: पुडुचेरी में हलफ बर्दारी की तकरीब मुनाकिद की जाएगी। एन रंगसामी वजीर आला के ओहदे की एक बार फिर जिम्मेदारी संभालने को तैयार है। 76 साल सियासी कदावर शख्सियत की वजीर आला के तौर पर यह पांचवीं मुद्दत होगी। इस तकरीब में वजीर आला के साथ साथ कुछ वजीरों को भी हलफ दिलाया जाएगा। मरकजी वजीर और बीजेपी के चुनाव इंचार्ज मनसुख पांडविया, बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन, बीजेपी पुडुचेरी के इंचार्ज निर्मल कुमार सुराना और रियासती बीजेपी के सदर वीपी रामलिंगम उन मुमताज रहनुमाओं में शामिल हैं जिनकी इस तकरीब में शिरकत की उम्मीद है। जनाब नवीन कल शाम पुडुचेरी पहुंचे थे। उन्होंने पार्टी अहदेदारों और पार्टी हेडक्वार्टर में कानून साज अरकान से बातचीत की थी। पुडुचेरी से बिपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए
1: खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया गया है। मगरबी एशिया के बहरान के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी की किफायत की अपील के बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के वज़राए आला ने वजीरों, अरकान असेंबली और अवामी नुमाइंदों की सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करने के इकदाम का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने वजीर आला, वजीरों और दीगर अफसरान के गाड़ियों के काफिले में 50% कटौती करने का हुक्म जारी किया है और हिदायत दी है कि सरकारी काफिलों से गैर जरूरी गाड़ियों को हटाया जाए। रियासती सरकार ने पीएनजी, मेट्रो खिदमात और सरकारी ट्रांसपोर्ट के ज्यादा इस्तेमाल पर जोर दिया है और मीटिंगें वर्चुअल वसीले से मुनक़िद करने, नीज हफ्ते में एक बार कोई गाड़ी नहीं चलेगी का उसूल अपनाने की हौसला अफजाई की है। तफसील हमारे नामानिगार से।
2: उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने लोगों से कहा है कि वो कम ईंधन इस्तेमाल करें और सोने की गैर जरूरी खरीदारी से गुरेज करें। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और मुख्तलिफ महकमों के तमाम एडिशनल चीफ सेक्रेटरियों और प्रिंसिपल सेक्रेटरियों के साथ मीटिंग के दौरान योगी आदित्यनाथ ने हिदायत दी कि वजीर आला, वज़रा और दीगर के काफिलों में फौरी तौर पर 50% की कमी की जाए। उन्होंने हिदायत दी कि गैर ज़रूरी गाड़ियों को सरकारी काफिलों से हटाया जाए। वजीर आला ने रियासत में घर से काम करने के कल्चर को तरजीह देने की अपील की। उन्होंने पीएनबी मेट्रो सर्विस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के जरिए चलाई जा रही बसों के इस्तेमाल पर ख़ास तौर से जोर दिया। वजीर आला ने कहा कि वज़रा, एमपी, एमएलए और सरकारी नुमाइंदों को हफ्ते में कम से कम एक दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करना चाहिए। हर हफ्ते एक बार नो व्हीकल डे भी मनाना चाहिए। लखनऊ से सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: मध्य प्रदेश के वजीर आला मोहन यादव ने मजीद अहकामात जारी होने तक अपने काफिले में गाड़ियों की तादाद कम कर दी है। पीर को एक काबीना मीटिंग में जनाब यादव ने वजीरों की कौंसिल के अरकान से अपील की है कि वो कौमी मफाद के तहत पेट्रोल और डीजल की खपत में कमी लाएं। उन्होंने सरकारी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। एक अफसर ने बताया कि उनके दौरे में जो रैलियाँ मुनक़िद की जाएंगी उनमें गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने भी वजीरों, अरकान असेंबली, अफसरान और सरकारी महकमों से कहा है कि वो सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल महदूद कर दें, कार पूलिंग यानी गाड़ियों को मुश्तरक तौर पर इस्तेमाल करें और मेट्रो और बस खिदमात को तरजीह दें। हुकूमत ने सोने और दीगर कीमती धातुओं पर दरामदी ड्यूटी में इजाफा किया है जो आज से नाफिजुल अमल होगी। एक बयान में वजारत खजाना ने कहा कि सोने और चांदी के जेवरात के हिस्सों पर 5% ड्यूटी और प्लेटिनम के हिस्सों पर 5.4% ड्यूटी लगेगी। मजीद बरां कीमती धातुओं के इस्तेमाल शुदा कैटलिस्ट की शरह 4.35% मुकर्रर की गई है जो कि तामील के मेयारात को पूरा करने से मशरूत है। इससे पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया में जारी बहरान के मद्देनजर लोगों से सोना न खरीदने की अपील की थी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। तहकीकात के मरकजी ब्यूरो सीबीआई ने मुबैना नीट पेपर लीक के मामले में शुभम खैर नार को हिरासत में ले लिया है। शुभम को राजस्थान पुलिस की दरख्वास्त पर नासिक पुलिस के क्राइम ब्रांच यूनिट ने कल महाराष्ट्र के शहर नासिक से गिरफ्तार किया था। मेडिकल कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले के लिए नीट यूजी 2026 इम्तिहान इस महीने की 3 तारीख को कराया गया था जिसे कल पेपर लीक के इल्जाम के तहत मनसूख कर दिया गया। हुकूमत ने सीबीआई से कहा है कि वो बदउनवानी के खिलाफ मुकम्मल इंक्वायरी करे। एक और मुतालिका वाक़े में नीट यूजी 2026 के एक उम्मीदवार के वालिदैन ने लातूर के एसपी ऑफिस में एक दरख्वास्त दाखिल की है जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया है

0: कि एक प्राइवेट कोचिंग इदारे ने इम्तिहान से पहले एक मॉक टेस्ट लिया था जिसमें मुबैना तौर पर 42 सवालात उन सवालात से यकसानियत रखते थे जो असल नीट पेपर में पूछे गए थे। एस पी अमूल तांबे ने सब डिविजनल पुलिस अफसर को हिदायत दी है कि वो फौरी तौर पर इंक्वायरी शुरू करें और कसूरवारों के खिलाफ कानूनी कदम उठाएं। इससे पहले राजस्थान पुलिस के खसूसी ऑपरेशंस ग्रुप ने मुश्तबा नेटवर्क और पैसे के लेन देन की तफ्तीश के दौरान 15 लोगों को हिरासत में लिया था। इस ग्रुप ने कल एक मुबैना सरगना मनीष को जयपुर से गिरफ्तार किया है। हुकूमत ने सालाना मजमू घरेलू पैदावार जीडीपी के आर्जी तखमीने और चौथी सहमाही के लिए जीडीपी के सहमाही तखमीने के इजरा की तारीख दोबारा मुकर्रर की है। पहले यह तारीख मई का कामकाज का आखिरी दिन होता था लेकिन अब इसे हर साल जून की 7 तारीख कर दिया गया है। इजरा की तारीख में यह तब्दीली कौमी अकाउंट्स के आदाद शुमार से मुतालिक मशावरती कमेटी के साथ सलाह मशवरे के बाद की गई है। वजारत ने कहा है कि इस तब्दीली का मकसद आदाद शुमार की क्वालिटी को मजीद मुस्तहकम बनाना है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला की क्यादत में एक आला सतही भारतीय पार्लिमानी वफद आज से भूटान का दौरा करेगा। इसका मकसद भारत भूटान रिश्तों को मजीद मुस्तहकम करना है। इस 51 रुकनी वफद में राज्यसभा और लोकसभा के अरकान पार्लिमान और वजारत खारजा के अहलकार शामिल हैं। महाराष्ट्र के ज़िला सांगली की जाट तहसील में कल एक मजहबी तकरीब के दौरान दीवार गिरने से 6 अकीदतमंद हलाक और तकरीबन 15 जख्मी हो गए। तकरीब में 300 से ज़्यादा अकीदतमंद जमा थे जब इलाके में तेज़ हवाओं के साथ शदीद बारिश हुई। तकरीबन 30 अकीदतमंद एक दीवार के पास खड़े हो गए और इसी वक्त दीवार गिर गई जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। जख्मियों को इलाज के लिए जाट और सांगली सिविल अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दीवार गिरने के हादसे में होने वाली अमवात पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। उन्होंने जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की तमन्ना की। सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान की ताज़ा तरीन अमन तजवीज़ को मुस्तरद किए जाने के बाद अमरीका और ईरान के दरमियान जंग बंदी में और भी कमजोरी पैदा हो गई है। जनाब ट्रंप ने ईरान की तरफ से की गई जवाबी पेशकश को कचरा बताया है। इस इल्ज़ाम तराशी के सबब मगरबी एशिया में तनाज़े को फैलने से रोकने की कोशिशों में गैर यकीनी पैदा हो गई है। जम्मू कश्मीर में फौज ने कल पुंछ जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब दरअंदाजी की कोशिश नाकाम कर दी। कृष्णा घाटी सेक्टर में एक दहशतगर्द को हलाक कर दिया गया। भारत में इस हफ्ते जुनूब मगरबी मानसून दस्तक दे सकता है। महकमे मौसमियात IMD के मुताबिक इस हफ्ते के अख्ताम तक जुनूब मगरबी मानसून के जुनूबी खलीज बंगाल अंडमान समुंदर और अंडमान और निकोबार जजायर के हिस्सों में आगे बढ़ने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक जुनूब मगरबी खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव का हल्का कल उसी इलाके में बरकरार है। इसके साथ ही हवा का गिरदाबी निज़ाम सतह समुंदर से 4.5 किलोमीटर की बुलंदी तक फैला हुआ है। भारत के महकमे मौसमियात ने राजस्थान में शदीद गर्मी और लू के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। रियासत के सरहदी अजला में इस वक्त सख्त गर्मी है। कई मुकामात पर दर्ज हरारत 45 से 47 डिग्री के दरमियान रिकॉर्ड किया जा रहा है। IPL क्रिकेट में कल रात अहमदाबाद में खेले गए मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से शिकस्त दी। आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात ने आज अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार इंकलाब ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इस बयान को अपनी शह सुर्खी बनाया है कि मगरबी बंगाल के अवाम की फलाह व बहबूद हुकूमत की अव्वलीन तरजीह, रियासत के अवाम को आयुष्मान भारत सेहत बीमा स्कीम के फवायद हासिल होंगे। अखबार प्रताप ने भी इस खबर को अहमियत के साथ शाया किया है। इसी अखबार की एक और सुर्खी है, सदर जमहूरिया ने 15 नर्सिंग स्टाफ को नेशनल फ्लोरेंस नाइटेंगेल अवार्ड से नवाजा। अखबार हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने हेमंत बिस्व शर्मा के मुसलसल दूसरी बार आसाम के वजीर आला के तौर पर हलफ लेने की खबर को नुमायां तौर पर शाया किया है। अखबार इनकलाब ने वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल की इस बयान को अहमियत दी है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान की मदद की। हिंदुस्तान एक्सप्रेस लिखता है, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से असलहा धमाका खेज।

0: मवाद और 1 करोड़ नकद बरामद। इसी अखबार की एक और सुर्खी है, भारत नेपाल सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश, 4 अफराद गिरफ्तार। अखबारात की अहम बैनुल अक्वामी खबरें इस तरह है, मुज़ाकरात में हो रही नाकामी पर ट्रंप का ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का मंसूबा जेर गौर, दोबारा हमला हुआ तो 90% यूरेनियम अफजूदगी शुरू हो सकती है, ईरान का बयान।
1: खास खास खबरें एक बार फिर, तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय की क़यादत वाली नौ मुंतखबा टीवी के सरकार आज असेंबली में अपनी अक्सरियत साबित करेगी। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के रहनुमा एन रंगासामी आज पुडुचेरी के वज़ीर आला का हलफ लेंगे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकारों ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई किफ़ायत शियारी की अपील के बाद ईंधन की खपत से मुतालिक इकदाम पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। मरकज ने सोने और दीगर कीमती धातों पर दरामदाती ड्यूटी में इजाफा कर दिया है। आईएमडी ने इस साल मानसून जल्द शुरू हो जाने की पेशगोई की है। और आईपीएल में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से शिकस्त दी। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।

मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। समय हुआ है सुबह के 8:45 का। ये समय होता है आपके पसंदीदा कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत का। अगर आप भी सुनना चाहते हैं अपने फरमाइशी फिल्मी गीतों को तो हमें ईमेल लिख भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है आपके पत्र आपके मेल @gmail.com। गांव और डाकघर निमनाबाद जिला जींद हरियाणा से हमें मेल भेजा है जसबीर सिंह अरोड़ा, जितेंद्र कौर, गुरप्रीत, लवप्रीत, करमजीत कौर ने। और इन्होंने नमस्कार के साथ साथ अपना पसंदीदा गीत भी सुनने की फरमाइश की है, तो ज़रूर सुनवाएंगे आपका पसंदीदा गीत। ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत, संचित, प्रथमेश, प्रणाली, सरबत देशमुख, सानवी देशमुख, इन्होंने मेल भेजा है और अपनी फरमाइश भी लिख भेजी है। और ये हैं दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता, सुभाष योगी, डब्बू, बब्बू और इनके बहुत सारे साथी, इन्होंने भी अपनी फरमाइश हमें लिख भेजी है। और ये हैं, इन्होंने लिखा है सलाम जी, तो आपको भी प्यार भरा नमस्कार। इन्होंने ये हैं लखनऊ से अमरजीत, सोनम कौर, परमजीत, आसमा और धर्मजीत, इनका मेल है और अपना फरमाइशी गीत ये सुनना चाहते हैं आकाशवाणी लखनऊ से। एक और श्रोता हैं हमारे गांव नथाना पंजाब से, हरजिंदर छिंदा, जसीर जसी, सीता, गीता और इनके परिवार के बहुत सारे सदस्य। आप सभी ने सुनना चाहा है मैं हूं ना फिल्म का गीत, जिसे गाया है अभिजीत और श्रेया घोषाल ने।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत।

0: कीजिए। RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: जनकपुरी सहारनपुर से मेल भेजा है जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल विलिस डिकेस्ट्रो ने, और ये अपनी पसंद का गीत भी सुनना चाहते हैं। और अब जो अगला मेल हमें भेजने वाले हमारे श्रोता हैं, ये हैं, इन्होंने लिखा है, धन्यवाद, कार्यक्रम में आप हमारे ईमेल को ज़रूर शामिल करें, और नमस्कार भी लिखा है, और इन्होंने एक संदेश लिखा है, पानी बचाएं, जीवन बचाएं, वृक्ष लगाएं। ये हैं हमारे श्रोता। मंसूरी रेडियो लिसनर्स बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन निशान, शबिस्ता मोहम्मद, नसीब पलक लुबना और यश मंसूरी का। और एक मेल और है, ये हमारे श्रोता जो हैं इन्होंने लिख भेजा है, ये हैं शांति देवी, भागवत वर्मा, लीलावती, रुद्र वर्मा दतरेंगी से इन्होंने मेल भेजा है, और अपनी फरमाइश का ये गीत सुनना चाहते हैं। और एक और हमारे श्रोता हैं, ये गांव फ्रांसी हिसार से हैं, राजकुमार प्रमोद कुमार और पुष्पेंद्र कुमार जी ने हमें मेल लिख भेजा है, और अपनी पसंद का ये गीत सुनना चाहते हैं। और गांव जाखोद से मेल है शंभू दयाल, विमला देवी, योगेश कुमार, दीपक कुमारी, पूजा खटक का, और आप सभी सुनना चाहते हैं एक गीत जिसे हमने लिया है दिल चाहता है फिल्म से, शंकर महादेवन और साथियों की आवाज़ है।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
4: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
5: सुगंध, क्या हो रहा है?
6: बिल हो रहा है।
5: चल अपना कार्ड दे।

0: बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज़्ज़ा पार्टी, ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
0: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: सलाम नमस्ते, ये लिख भेजा है हमें हमारे श्रोता महसूल सीतामढ़ी से अक्रम हुसैन, प्रिंस बेगम इशरत, वसीम अक्रम, रूबीना आरिज, वसीम नदीम, शमीम, ममता रानी, पूनम कुमारी शर्मा। कुआत बिहार से मेल भेजा है शेख जफर और नरगिस जफर ने, और इन्होंने सलाम के साथ साथ अपनी पसंदीदा गीत को भी सुनने की फरमाइश हमें लिख भेजी है, तो ज़रूर सुनवाएंगे आपका फरमाइश किया हुआ गीत। और ये मेल है बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से, विजेंद्र विश्वकर्मा, तारा, सोनाली, सोनम, आशीष और उनके घर परिवार के बहुत सारे सदस्यों का। एक है ग्राम दुल्लापुर उत्तर प्रदेश से, मुकेश, सोनू, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, बलबीर सिंह और इनके बहुत सारे मित्र बंधु हैं। इन्होंने मेल लिख भेजा है और अपनी फरमाइश का गीत भी सुनना चाहते हैं। ये हमारे श्रोता हैं, इन्होंने नमस्कार लिखा है और इन्हें आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों को सुनना बहुत पसंद है। ग्राम व पोस्ट मुंगी सापुर, कानपुर देहात से रामेश्वर, उमा कांति, कमलेश और निशा, प्रज्ञा, प्रतिमा और वेद बाबू ने। तो आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं सरफरोश फिल्म का गीत जिसे गाया है अलका याग्निक ने।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए।

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: पुलिस।
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1 लाख दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: बड़ी बहू, ये तुम्हारे नाम।
6: इतनी भी क्या जल्दी थी?
5: अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम।
6: और ये
7: मेरी गुड़िया के नाम।
8: पर दादी,
5: हाँ,
8: आपके नाम?
9: सब कुछ, मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
5: शुभ शुभ बोलो।
4: क्या?
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
10: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
11: ब्रो ये फटा है।
12: सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को?
13: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
11: वाओ, नया नोट मिलेगा?
12: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
13: RBI कहता है, स्मार्ट बनो,
14: कूल रहो।
15: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का आपके पसंदीदा कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत में, जिसे आप सुन रहे हैं 747 किलो हर्ट्स पर आकाशवाणी लखनऊ से। और आकाशवाणी लखनऊ से आप सुन रहे हैं पसंदीदा कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत। और अब जो हमको मेल भेजने वाले हमारे श्रोता हैं, इन्होंने अपना पसंदीदा गीत हमें लिख भेजा है। यह है नंगला खेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण, प्रवीण, मुनीश, राहुल और इनके बहुत सारे मित्र बंधु। और एक मेल और आया है, इसे भेजने वाले हमारे श्रोता हैं। ये

हर्ष विनय विनीत रोजस भाई मनाली हिमाचल से मेल भेजा है, और चंडीगढ़ से शेफाली डेविस विमला सतीश अनेजा शेफी इन्होंने मेल भेजा है और अपनी फरमाइश भी हमें लिख भेजी है। और ये जो है ये है फूलई नगर बीड महाराष्ट्र से बादल प्रसाद करवा, गीतांजलि और आकांक्षा आकाश और इनके बहुत सारे मित्र बंधुओं का मेल है। और एक मेल है और ये भेजने वाले हमारे श्रोता हैं नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक, मोहम्मद उमर, राजेंद्र कटारे, भाटापारा छत्तीसगढ़ से मेल है सोहन जोशी और पायल जोशी का। और आप सभी सुनना चाहते हैं लाइफ इन अ मेट्रो फिल्म का गीत जिसे गाया है सोहम ने।

0: इस गीत के साथ ही श्रोताओं, वक्त हो चला है आपके मेल आपके गीत कार्यक्रम से अनुमति लेने का। तो दीजिए अनुमति वैशाली को, आपको नमस्कार। 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से ही बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आइए सुनते हैं जिले की हलचल।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए मेरठ और बाराबंकी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं मेरठ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है संगीता श्रीवास्तव का।
2: IIMT विश्वविद्यालय मेरठ के तृतीय दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने मेधावियों को मेडल प्रदान किए। डिग्री प्राप्त करना शैक्षिक जीवन का समापन नहीं बल्कि यह शुरुआत है। भारत के विकास में सहयोगी बनने की IIMT विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने विद्यार्थियों से नौकरी पाने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनने के लिए प्रेरित किया। उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने मंच से 4 विश्वविद्यालयों टॉपर और 13 विभिन्न कॉलेजों के टॉपर सहित 17 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की। उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन द्वारा निरंजन पीठाधीश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज, परमार्थ निकेतन आश्रम के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज, महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय के डायरेक्टर डॉक्टर हरि सिंह रावत को डायरेक्टरेट की मानक उपाधि प्रदान की। दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए छात्रों को संस्कारों का महत्व समझाया। उपराष्ट्रपति ने डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करने की सीख दी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सभी विद्यार्थी अपनी शिक्षा को राष्ट्र सेवा का माध्यम बनाएं और नवाचार स्टार्टअप के क्षेत्र में भी आगे बढ़े। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम, लक्ष्य के प्रति समर्पण और लगन जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने नए स्नातकों से कहा कि वर्ष 2047 में जब देश की आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, तब तक हम सबको मिलकर भारत को विकसित बनाना है। देश को ग्लोबल लीडर के रूप में सामने लाने के लिए ईमानदारी, कार्य के प्रति समर्पण और सेवा भाव से काम करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण UPDA द्वारा तैयार यह 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक राज्य का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, जो 12 जिलों से होकर गुजरते हुए प्रदेश में कनेक्टिविटी के साथ साथ पर्यटन को भी नई रफ्तार देगा। मेरठ गंगा एक्सप्रेसवे के शुभारंभ पर मेरठ के बिजौली गाँव में भी एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि पशुधन कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह और ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने भी प्रधानमंत्री का लाइव प्रसारण देखा। इस अवसर पर पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा,
3: मेरठ से प्रयागराज तक जो 600 किलोमीटर की दूरी है, जो 12 घंटे में पूरी होती थी, वो 6 घंटे में पूरी हो जाएगी, और 120 किलोमीटर की स्पीड से, जिसमें निर्वाध गति से ये यात्रा पूरी होगी। अब लोग हवाई यात्रा की ओर कम मुखातिब होंगे, एक्सप्रेस वे से ज्यादा लाभ उठाएंगे।
2: मेरठ में जनगणना का पहला चरण शुरू हो गया है। इसमें नागरिक अपना

0: खुद दर्ज करा सकेंगे। जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह ने बताया कि यह प्रक्रिया बेहद आसान है और इसमें बहुत कम समय लगता है। जनगणना की वेबसाइट पर जाकर निर्देशों का पालन करते हुए इसे आसानी से भरा जा सकता है। नागरिक 7 से 21 मई के बीच अपने मोबाइल या लैपटॉप पोर्टल पर अपनी जानकारी अपलोड कर सकते हैं। जिलाधिकारी ने बताया
1: आपके घर में क्या क्या सुविधाएं हैं, कपल कितने रहते हैं, फैमिली में कितने मेंबर हैं, रूम्स कितने हैं, ड्रिंकिंग वाटर की क्या सुविधा है, कुकिंग गैस आपके यहाँ अवेलेबल है कि नहीं है, रेडियो टीवी ट्रांजिस्टर है कि नहीं है, नेट की फैसिलिटी है कि नहीं। वर्ड्स पर एक ओटीपी आती है, ओटीपी को आपको फिल करने के बाद, सबमिट करने के बाद एक इम्यूनेशन आईडी जो है जनरेट हो जाती है। उस आईडी को आपको सुरक्षित रखना है ताकि जब 22 तारीख से जब हाउस टू हाउस हाउस लिस्टिंग का कार्य जो है न्यूमेटर के द्वारा किया जाएगा प्रगणक के द्वारा, तो आईडी मांगने पर आपको देना है।
0: तकनीकी सहयोग जोहद शो इंडिया एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वधान में मेरठ मंडल के प्रथम नागरिक स्वास्थ्य केंद्र पुलिस लाइन में मॉडल टीकाकरण केंद्र का उद्घाटन राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी द्वारा किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी द्वारा मॉडल टीकाकरण केंद्र एवं HPV वैक्सीनेशन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वैक्सीन 14 वर्ष से अधिक और 15 वर्ष से कम आयु की किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर से मुक्त करेगी। उन्होंने कहा कि मेरठ में 10,000 से लगभग वैक्सीन आ चुकी हैं। डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बताया कि ये वैक्सीन अत्यंत प्रभावी है और बालिकाओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अशोक कटारिया ने बताया कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, इसके कोई गंभीर दुष्प्रभाव नहीं है। सभी अभिभावकों से अपील की गई है कि अपनी बेटियों को यह वैक्सीन अवश्य लगाएं। मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षागृह में पुलिस एवं प्रशासन के संयुक्त तत्वधान में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण अनंता का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नारी शक्ति के सम्मान, प्रतिभा के उत्कृष्ट और सामाजिक जागरूकता के प्रभावी संगम देखने को मिला। कार्यक्रम में जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं, खिलाड़ियों एवं स्कूली छात्र छात्राओं को जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।
2: मेरठ जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बाराबंकी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है परवेज सिद्दीकी का।
3: बाराबंकी के जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने विभागों और विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया, साथ ही लापरवाही करने वाली कार्यदायी संस्थाओं और संबद्ध अधिकारियों को कमी पाए जाने पर कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए हैं, साथ ही शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन और उन्हें जन जन तक पहुँचाने को कहा है। असानी रिजर्व पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में प्रशिक्षु आरक्षियों के आधारभूत प्रशिक्षण समापन के उपरांत दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया। दीक्षांत परेड समारोह के मुख्य अतिथि अमिताभ यश अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था द्वारा सलामी लेने के पश्चात परेड का निरीक्षण किया गया। मुख्य अतिथि द्वारा कठिन प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए प्रशिक्षु आरक्षियों के समर्पण और कड़ी मेहनत की सराहना की गई तथा कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने, नागरिकों की सेवा करने, ईमानदारी और पेशेवर पुलिसिंग के प्रति प्रतिबद्धता का आह्वान, जनता से मैत्रीपूर्ण संबंध और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्य करने हेतु प्रेरित किया गया, साथ ही राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने की शपथ दिलाई गई। दीक्षांत परेड में कुल 12 टोलियों के 293 प्रशिक्षु आरक्षियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह के निर्देश के क्रम में संयुक्त मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी एवं खास सुरक्षा अधिकारियों की गठित टीम द्वारा गत दिनों जनपद के समस्त तहसीलों एवं नगर पालिका क्षेत्र में मीट के अवैध कारोबार को रोकने के लिए पुलिस बल के साथ संपूर्ण जनपद में गहन छापेमारी एवं निरीक्षण अभियान चलाया गया। निरीक्षण के दौरान अस्वस्थकर एवं अस्वच्छ कर स्थिति में खाद कारोबार करने वाले खाद कारोबारकर्ताओं के विरुद्ध इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी की गई व बिना लाइसेंस करण की व्यवसाय संचालन करने वाले 9 खाद कारोबारकर्ताओं के प्रतिष्ठान को मौके पर ही बंद करा दिया गया। बैसाखी पूर्णिमा के पावन अवसर पर जनपद के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल श्री कटुआ धाम समर्थ साहेब जगजीवन दास बड़े बाबा में आयोजित मेले के दौरान जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने मंदिर में माथा टेक कर आशीर्वाद प्राप्त किया तथा जन कल्याण एवं जनपद की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने साफ सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंध एवं यातायात व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की असुविधा न होने पाए। 7 मई को राजस्व प्रशासन दिवस के रूप में सौगणना अभियान की शुरुआत की गई। जिला जनगणना अधिकारी अपर जिलाधिकारी निरंकार सिंह के अनुसार इस राष्ट्रीय महत्व के अभियान में अधिकतम से जन सहभागिता सुनिश्चित कर जनपद बाराबंकी

0: को सौगणना में अग्रणी बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। जनपद के प्रभारी मंत्री सुरेश राही ने विगत दिनों जनपद का दौरा किया। उन्होंने सर्वप्रथम जिला महिला चिकित्सालय पहुंचकर ओपीडी कक्ष, मॉडल इम्यूनाइजेशन सेंटर सहित विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने मरीजों से संवाद कर उन्हें उपलब्ध कराई जा रही व्यवस्था सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने चिकित्सालय परिसर में साफ सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए कहा कि किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने अल्ट्रासाउंड कक्ष सहित अन्य वार्डों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा अस्पताल के रसोई घर में पहुंचकर भोजन की गुणवत्ता का भी परीक्षण किया। मंत्री श्री राही द्वारा नगर पालिका परिषद नवाबगंज में कल्याण मंडल के समीप पुनर्गठन पेयजल योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन पानी की टंकी के कार्यों का स्थलीय अवलोकन किया गया। उन्होंने कार्यों को तीव्र गति एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश अधिशासी अभियंता जल निगम को दिए। मंत्री ने इसी क्रम में जिला कारागार का भी निरीक्षण किया, जहां उन्होंने सुरक्षा बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं एवं स्वच्छता की स्थिति का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाए जाने के निर्देश दिए। बाराबंकी पुलिस प्रशासन ने कुख्यात ड्रग माफिया और हिस्ट्री शीटर मिसबाहुर रहमान उर्फ अज्जन की लगभग 6 करोड़ रुपए से अधिक की अचल संपत्ति कुर्क की। पुलिस अधीक्षक अर्पित विजय वर्गी ने बताया कि मिसबाहुर रहमान को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अभियुक्त विगत 25 वर्षों से मादक पदार्थों के कारोबार में संलिप्त है। अभियुक्त की अवैध मादक पदार्थों की निगरानी हेतु थाना जैतपुर में हिस्ट्री शीट भी खोली गई है, साथ ही उसे जनपद स्तर पर ड्रग माफिया घोषित किया गया है।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अभी आप सुन रहे थे जिले की हलचल, और अब आइए सुनते हैं संवेद स्वर में देश गान।

0: अभी आप संवेद स्वर में देशगान सुन रहे थे। 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। प्रत्येक बुधवार सायं 6:30 पर कार्यक्रम हेलो किसान, प्रायोजक इफको NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा। हम आकाशवाणी लखनऊ से बोल रहे हैं। पेश है उर्दू कार्यक्रम। पेशकश आकाशवाणी के गोरखपुर मरकज की है।
1: उर्दू प्रोग्राम सुनने वालों की खिदमत में फर्रुख जमाल का आदाब कबूल हो। सामईन, आज के प्रोग्राम में पहले आप समाअत फरमाएंगे डॉक्टर शरीफुद्दीन से उनका एक मकाला, अमीर मीनाई की गजलिया शायरी, और इसके बाद कलामी शायर के तहत आज के शायर हैं डॉक्टर सरफराज नवाज। सामईन, आज उर्दू के मारूफ शायर और सहाफ़ी मौलाना हसरत मोहानी का योम वफात है। समाअत फरमाइए इस हवाले से एक मुख्तसर तकरीर बाहमी इत्तेहाद के नकीब हसरत मोहानी। उर्दू शायरी और उर्दू गज़ल को नई जहत से रोशनास कराने वाले और अजीम मुजाहिद आज़ादी मारूफ शायर मौलाना हसरत मोहानी की पैदाइश 1 जनवरी 1875 को ज़िला उन्नाव के मोहान में हुई थी। उनका असल नाम फैज़ुल हसन था और हसरत उनका तखल्लुस था। मोहान में पैदा होने की नस्बत से वो हसरत मोहानी हो गए। मौलाना हसरत मोहानी मुजाहिद आज़ादी होने के साथ साथ बुलंदपाया सहाफ़ी भी थे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम के साथ मौलाना हसरत मोहानी की सहाफ़त भी काबिले क़द्र थी। मौलाना हसरत मोहानी ने ज़माने तालिब इल्मी में ही सहाफ़त के मैदान में कदम रखा। उन्होंने सहाफ़त को अपने अफकारों नज़रियात की तर्जुमानी और हुसूल मकसद का वसीला बनाया। अरसाए सहाफ़त में उनके लाफानी नकूश जराइद उर्दू मुअल्ला और तस्करतुश्शोरा में नज़र आते हैं। सन 1903 में उन्होंने उर्दू मुअल्ला जारी किया जो दुनियाए सहाफ़त में इनफरादी और मुमताज़ मकाम रखता था। बकौल मजनू गोरखपुरी के, अगर हसरत न होते तो आज न जाने कितने उर्दू शोरा के कारनामे तल्फ होकर रह जाते और हम उनके नाम तक से बेखबर रहते। मौलाना हसरत मोहानी को कृष्ण जी से वालेहाना अकीदत थी। हसरत फरमाते हैं, इल्मो हिकमत का जिन्हें शौक़ हो आए न इधर, कुछ नहीं फ़लसफ़ा इश्क में हैरत के सिवा। हसरत मोहानी का नज़रिये इश्क सूफिया इकराम से मुतासिर है और बहुत वाजा भी है। वो फरमाते हैं, मेरा ईमान अजब क्या जो ईमाने तसव्वुफ़, तसव्वुफ़ जाने मज़हब है, आशिकी जाने तसव्वुफ़। मौलाना हसरत मोहानी कृष्ण जी की मोहब्बत से इस तरह लबरेज हैं कि कृष्ण जी के इश्क से उनका दिल मुनव्वर हो गया। अपने इन्हीं जज्बात का इजहार उन्होंने अपनी एक गज़ल में किया है। इरफाने इश्क नाम है तेरे मुकाम का, हामिल हूँ किसके नगमे मैं के प्याम का, मथुरा से अहले दिल को आती है वो बूए उन्स, दुनियाए जामे शोर है

जिसके दवाम का। एक दूसरी गज़ल में मथुरा जाने के आरजुमंद इसलिए हैं कि वह मथुरा को शहर मोहब्बत समझते हैं। हसरत का कहना है, मथुरा के नगर है आशिकी का, दम भरती है आरजू।

0: जिसके दवाम का। एक दूसरी गज़ल में मथुरा जाने के आरजुमन इसलिए हैं कि वह मथुरा को शहर मोहब्बत समझते हैं। हसरत का कहना है, मथुरा के नगर है आशिकी का, दम भरती है आरजू उसी का, हर जर्रा सरजमी गोकुल का, दारा है जमाले दिलबरी का, बरसाना और नंद गांव में भी देख आए हैं जलवा किसी का। गर्ज की हसरत मुहानी ने हिंदुस्तान की उस रूह को अपने अंदर बसा लिया जो यहाँ की गंगा जमनी तहजीब की अलम्बरदार है। हसरत की हमेशा ये कोशिश रही कि मुल्क फ़िरक़ावारियत से पाक रहे और लोगों में बाहमी इत्तेहाद कायम रहे। बाहमी इत्तेहाद के नकीब मौलाना हसरत मुहानी। सामईन, अभी आप ये मुख्तसर तकरीर समाअत फरमा रहे थे। पेश कर रहा था मैं मोहम्मद फर्रुख जमाल, और अब आइए सुनते हैं डॉक्टर शरीफुद्दीन से उनका मकाला अमीर मीनाई की गजलिया शायरी।
1: दिल्ली हिंदुस्तान का दिल रही है, इसलिए वो बार बार दुश्मनों के हमलों का निशाना भी बनी। दिल्ली में शोरा की कदरदानी और सरपरस्ती बहादुर शाह जफर के साथ खत्म हुई। लखनऊ के नवाब और रियाया की यह ख्वाहिश थी कि हर मामले में दिल्ली से बाजी ले जाएं। ये मरकज अब लखनऊ को मुंतकिल हुआ। शाह ने अवध शोरा की सरपरस्ती के लिए पहले से तैयार बैठे थे। आखिरी ताजदार अवध वाजिद अली शाह बहादुर शाह जफर की तरह खुद भी शायर थे। वाजिद अली शाह जलावतन करके कलकत्ता भेज दिए गए। शोरा रोजी की तलाश में सरगर्द थे। हैदराबाद, भोपाल, लाहौर और अजीमाबाद के अलावा शायरों की एक बड़ी तादाद रामपुर पहुंची। उसका सबब यह था कि यूसुफ अली नाजिम खां ताजदार रामपुर खुद साहिब इल्म और अजीम शायर थे। नाजिम ने जिन शायरों को अपनी सरपरस्ती से नवाजा उनमें अमीर मीनाई, दाग और जलाल खास तौर पर काबिले जिक्र है। बेशक रामपुर की रियासत ना दिल्ली के हमपल्ला थी ना लखनऊ की, इसके बावजूद यहाँ शेर व अदब को खूब फरोग हुआ। फन शायरी और कवायद पर किताबें लिखी गईं, लुगात तरतीब दी गईं, शायरी के अलावा नसर की तरफ भी तवज्जो दी गई, मर्सिया निगारी की रिवायत भी मुस्तहकम हुई। गोया दबिस्तान रामपुर दिल्ली और लखनऊ का संगम नजर आता है। मुराद ये कि जबान की रानाई तो बरकरार रही लेकिन तसन्नो और बनावट में कमी आई। सादगी, बरजस्तगी, शुस्तगी, सलासत और रवानी की तरफ शोरा का खास रुझान हुआ। मामला बंदी का सिलसिला भी जारी रहा। इस तरह उर्दू शायरी में एक नया रंग व आहंग पैदा हुआ। अमीर मीनाई का नाम अमीर अहमद था। अमीर तखल्लुस शाह मीना के खानदान से थे, इसलिए मीनाई नाम का जुज हो गया। लखनऊ में 1826 में विलादत हुई और वफात 1900 में हुई। इब्तदाई तालीम अपने वालिद से हासिल की, इसके बाद फरंगी महल में तहसील इल्म की। अरबी और फारसी में उबूर रखते थे। तिब, नुजूम और जफर का इल्म भी हासिल किया। बड़े नेक आबिद व जाहिद और आलिम व फाजिल थे। शायरी की तरफ बचपन से तबीयत रागिब थी। लखनऊ में आतिश व नासिक के उरूज का जमाना था। मीर मुजफ्फर अली असीर की शागिर्दी अख्तियार की। असीर की तरबियत और रहनुमाई से अमीर मीनाई की शेरी सलाहियतों ने फरोग पाया। अमीर मीनाई वाजिद अली शाह के दरबार से वाबस्ता हुई। इनकी फरमाइश पर हिदायतुस्सुल्तान और इशादुस्सुल्तान दो किताबें लिखी और इनाम इकराम से सरफराज हुई। सुकूत सल्तनत के बाद यानी जब अवध का दरबार उजड़ गया तो अमीर मीनाई लखनऊ छोड़कर काकोरी और मैनपुरी की खाक छानते हुए रामपुर चले गए और दरबार रामपुर के साये में फरागत पाई। नवाब के कलाम पर इस्लाह देने की खिदमत सुपुर्द हुई। रामपुर ही में शेख वहीदुज़्ज़मा की बेटी से निकाह हुआ और तकरीबन 43 साल कदर व मंजिलत के साथ रामपुर में रहने के बाद दाग की दावत व फरमाइश पर हैदराबाद चले गए। वहां जाकर बीमार हो गए और 1900 ईस्वी में इस जहान फानी से कूच कर गए। मुतअद्दिद तसानीफ अमीर मीनाई से यादगार हैं। अमीनाई साहब का पहला दीवान मीरातुल गायब लखनऊ के इसी मखलूत रंग में है और इसमें वो तमाम मायब मौजूद हैं जो नासिख व आतिश और उनके तलामजा के कलाम में पाए जाते हैं। मसलन नासिख वगैरह ने गजल में ऐसे मजामीन शामिल कर दिए थे जिनको गजल से कोई ताल्लुक ही नहीं था और इस किस्म के मजामीन मीरातुल गैब में

अंधेरी रात को सूरज में ढाल देता है। मैं सोया रहता हूं और जाने कब खुदा मेरा अंधेरी रात को सूरज में ढाल देता है। अब एक गजल के चंद अशआर समाअत फरमाए। मतला यूं अर्ज किया है कि पलक झपकते ही रूपोश होने वाला हूं, पलक झपकते ही रूपोश होने वाला हूं, मैं झील आंखों में खुद को डुबोने वाला हूं, मैं झील आंखों में खुद को डुबोने वाला हूं। तेरी हंसी में हजारों शरीक होते हैं, तेरी हंसी में हजारों शरीक होते हैं, मैं चुपके चुपके तेरे साथ रोने वाला हूं, मैं चुपके चुपके तेरे साथ रोने वाला हूं। और इस शेर पर खुसूसी तवज्जो दें, यहां एक लफ्ज का इस्तेमाल किया है, देखें कि वफा के तार में बुनता हूं दिल के करघे पर, वफा के तार में बुनता हूं दिल के करघे पर, बिखर गए हैं जो रिश्ते पिरोने वाला हूं, वफा के तार में बुनता हूं दिल के करघे पर, बिखर गए हैं जो रिश्ते पिरोने वाला हूं। मैं लम्स ओढ़ के तेरा कहीं भी सो लूंगा, मैं लम्स ओढ़ के तेरा कहीं भी सो लूंगा, जमी पे घास के फैले बिछोने वाला हूं, जमी पे घास के फैले बिछोने वाला हूं। तू जा रहा है ये कहता है मैं ख्याल रखूं, तू जा रहा है ये कहता है मैं ख्याल रखूं, तुझे पता है मैं तकिया भिगोने वाला हूं, तुझे पता है मैं तकिया भिगोने वाला हूं। एक गजल के चंद अशआर और समाअत फरमाए। मतला देखें कि नहीं ये चाहते कोई कमाल दे मौला, नहीं ये चाहते कोई कमाल दे मौला, हमारे ऐप पे पर्दा तू डाल दे मौला, हमारे ऐप पे पर्दा तू डाल दे मौला। और ये शेर देखें कि बढ़ा रहे हैं तेरी ओर कासए उम्मीद, बढ़ा रहे हैं तेरी ओर कासए उम्मीद, तू एक मिसरा कोई लाजवाल दे मौला, तू एक मिसरा कोई लाजवाल दे मौला। निगल के जाते हैं बिस्तर पे कैप्सूल में नींद, निगल के जाते हैं बिस्तर पे कैप्सूल में नींद, हमें भी शाम कोई तू निढाल दे मौला, हमें भी शाम कोई तू निढाल दे मौला। हमारा इश्क ये ख्वाहिश है कामयाब रहे, हमारा इश्क ये ख्वाहिश है कामयाब रहे, मजीद ये के जमाना मिसाल दे मौला, मजीद ये के जमाना मिसाल दे मौला। और इस शेर पर खुसूसी तवज्जो के, न जाने बेहिसी दिल का लिबास कैसे हुई, न जाने बेहिसी दिल का लिबास कैसे हुई, किया है तरके ताल्लुक मलाल दे मौला, किया है तरके ताल्लुक मलाल दे मौला। उसे चिराग बुझाने नहीं जलाने हैं, उसे चिराग बुझाने नहीं जलाने हैं, हवा के कान में ये बात डाल दे मौला, उसे चिराग बुझाने नहीं जलाने हैं, हवा के कान में ये बात डाल दे मौला। और एक गजल के चंद अशआर समाअत फरमा लें। मतला यूं अर्ज किया है कि चिराग चांद सितारे भी काम करते हैं, चिराग चांद सितारे भी काम करते हैं, मगर ये जुगनू अलग इंतजाम करते हैं, मगर ये जुगनू अलग इंतजाम करते हैं। और कलंदरों को भला ताज की जरूरत क्या, कलंदरों को भला ताज की जरूरत क्या, उन्हें तो शाह भी झुककर सलाम करते हैं, उन्हें तो शाह भी झुककर सलाम करते हैं। गुदाज हो तो सुनोगे जुबां मोहब्बत की, गुदाज हो तो सुनोगे जुबां मोहब्बत की, दरख्त फूल परिंदे कलाम करते हैं। गुदाज हो तो सुनोगे जबां मोहब्बत की, दरख्त फूल परिंदे कलाम करते हैं। फंसा हुआ है ये दिल बालियों के घेरे में, फंसा हुआ है ये दिल बालियों के घेरे में, खनकते आपके कंगन गुलाम करते हैं, खनकते आपके कंगन गुलाम करते हैं। हम ही तो हैं तेरी आंखों में चलते फिरते हुए, हम ही तो हैं तेरी आंखों में चलते फिरते हुए, हम ही हैं जान जो दिल में कयाम करते हैं।

0: हम ही हैं जान जो दिल में कयाम करते हैं।
1: कलामी शायर के तहत ये थे डॉक्टर सरफराज नवाज। सामेन, इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म होता है, हमें इजाज़त दीजिए। मुआविन था मैं मोहम्मद फर्रुख जमाल, पेशकश थी जनाब नूर मोहम्मद की। आज का उर्दू प्रोग्राम आपकी समातों के लिए आकाशवाणी गोरखपुर मरकज पर तैयार किया गया था।
2: आज का उर्दू कार्यक्रम नश्र किया जा रहा था आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से। हम आकाशवाणी लखनऊ से बोल रहे हैं 747 किलो हर्ट्स पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आइए सुनते हैं लोकगीत का कार्यक्रम लोक रंग। आज सुनेंगे अच्छेलाल सोनी के गाए भोजपुरी लोकगीत। सबसे पहले सुनते हैं अच्छेलाल सोनी के स्वर में लोक भजन, जिसके बोल हैं उतराई ना लेब।

उतराई न लेब हम तोहरा से। अभी आपने लोक भजन सुना, स्वर अच्छे लाल सोनी का था। और अब आइए सुनते हैं पूर्वी बोल हैं तोहरी अंगनवा उकाले। स्वर अच्छे लाल सोनी का है।

0: गोरी लागे नजरिया ना। अभी आप सुन रहे थे पूर्वी अच्छे लाल सोनी के स्वर में। लोकरंग कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे अच्छे लाल सोनी के गाए भोजपुरी लोकगीत। संगत करता थे नाल पर अवध बिहारी वर्मा, नाल पर मुन्ना अनवा और हारमोनियम पर थे संतोष तिवारी, बांसुरी पर दिगंत रजखिया और साइड रिदम पर थे शैलेंद्र सिंह। इसी के साथ लोकरंग कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आपको बता दें अच्छे लाल सोनी के गाए भोजपुरी लोकगीतों का आप आनंद ले सकते हैं लोक माधुरी कार्यक्रम में दिन में 2:45 पर। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं 747 किलो हर्ट्स पर।
1: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTUUP के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
0: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। सबसे पहले सुनते हैं महबूबा फिल्म का गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत के कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। प्रत्येक बुधवार सायं 6:30 से कार्यक्रम हेलो किसान, प्रायोजक इफको। ये आकाशवाणी लखनऊ है। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के कल से नई दिल्ली में होने वाले सम्मेलन की तैयारियां पूरी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज ब्रिक्स देशों के मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 3 दिन के चीन दौरे पर। रूस ने समरथ अंतर महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। युगांडा में युवेरी मुस्मेनी ने लगातार 7वीं बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली। और बैडमिंटन में बैंकॉक में थाईलैंड ओपन में कई भारतीय खिलाड़ियों के महत्वपूर्ण मुकाबले आज। अब समाचार विस्तार से। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडल भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बैठक से पहले डॉक्टर जयशंकर आज नई दिल्ली में कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। वे आज चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैकेना से मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरा वियेरा के साथ भी वे द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। शाम को डॉक्टर जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
1: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी।
0: विदेश मंत्रालय ने कैलाश मानसरोवर यात्रा में भाग लेने इच्छुक लोगों से 19 मई से पहले आवेदन करने का आग्रह किया है। इस यात्रा के पंजीकरण जल्द ही बंद होने वाले हैं। इच्छुक आवेदक आधिकारिक वेबसाइट kmy.gov.in के माध्यम से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और पंजीकरण करा सकते हैं। भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष ने 2033 तक के लिए नया 8 वर्षीय देश रणनीतिक अवसर कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण आय बढ़ाना, लोगों की क्षमता मजबूत करना और देश भर में टिकाऊ आजीविका के अवसरों का विस्तार करना है। इस अवसर पर आर्थिक मामलों की सचिव अनुराधा ठाकुर ने बताया कि भारत और कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष की साझेदारी केवल लंबे समय से ही नहीं बल्कि रणनीतिक तालमेल के लिए भी जानी जाती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन की 3 दिन की यात्रा पर रवाना हो चुके हैं। वे कल से पेइचिंग में चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ शिखर सम्मेलन करेंगे। वे द्विपक्षीय संबंधों के प्रमुख पहलुओं पर चर्चा करेंगे।

जिसमें व्यापार पर विशेष बल दिए जाने की संभावना है। ये शी जिनफिंग के साथ ट्रंप की सातवीं आमने सामने की बातचीत होगी और 2017 के बाद किसी अमरीका के राष्ट्रपति की चीन की पहली यात्रा होगी। अपनी यात्रा से पहले ट्रंप ने आशा व्यक्त की कि इससे आने वाले दशकों में दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध स्थापित करने में मदद मिलेगी। अमरीका के राष्ट्रपति के साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो और युद्ध मंत्री पीट हेक्सेथ सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से फोन पर बातचीत की। दोनों पक्षों ने रणनीतिक सहयोग और आपसी हितों के समर्थन में संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में नवीनतम घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया। उन्होंने क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा तथा स्थिरता पर गंभीर प्रभावों के साथ साथ उनसे निपटने के लिए चल रहे प्रयासों की भी समीक्षा की। उधर पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच कतर ने कल ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्स से संबद्ध एक सशस्त्र समूह की बिबुयान द्वीप में घुसपैठ की निंदा की। अमेरिका में उपभोक्ता महंगाई दर अप्रैल में पिछले तीन वर्षों के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान युद्ध से उत्पन्न हुए आर्थिक प्रभाव को इसकी बड़ी वजह माना जा रहा है। अमेरिकी श्रम सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI अप्रैल में सालाना आधार पर बढ़कर 3.8% हो गया, जबकि मार्च में ये 3.3% था। अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच संघर्ष के कारण फरवरी के अंत से पश्चिम एशिया में हिंसा बढ़ गई है। ईरान की जवाबी कार्रवाई से अमेरिका के क्षेत्रीय सहयोगी प्रभावित हुए हैं और होर्मुज जलडमरू मध्य लगभग बाधित हो गया है। सामान्य परिस्थितियों में दुनिया का लगभग 20% तेल और प्राकृतिक गैस इसी जलमार्ग से गुजरता है। इस रुकावट के कारण दुनिया भर में ऊर्जा कीमतों में भी तेज बढ़ोतरी हुई है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। रूस ने समृद्ध अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सफल परीक्षण पर रूसी सेना को बधाई दी। उन्होंने कहा कि समृद्ध दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल प्रणालियों में से एक है और इसकी क्षमता सोवियत दौर की वोयोमोदा मिसाइल प्रणाली के बराबर है। श्री पुतिन ने कहा कि समृद्ध मिसाइल प्रणाली को इस वर्ष के अंत तक तैनात कर दिया जाएगा। रूस की सामरिक मिसाइल सेना के कमांडर सर्गेई काराकाइव ने कहा है कि परीक्षण ने मिसाइल प्रणाली की क्षमता और उसकी तकनीकी मजबूती को साबित किया है। युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी ने जनवरी में हुए चुनाव में ली ऐतिहासिक जीत के बाद अपने सातवें कार्यकाल की शपथ ली। राष्ट्रपति मुसेवेनी पिछले 40 वर्ष से राष्ट्रपति पद पर हैं। श्री मुसेवेनी ने कल युगांडा की राजधानी कंपाला के कोलोलो इंडिपेंडेंस ग्राउंड्स में आयोजित समारोह में शपथ ली। चुनावों में मुसेवेनी ने 71% से अधिक वोट हासिल किए थे। वहीं विपक्षी नेता बोबी वाइन को 25% वोट मिले। ब्रिटेन में स्थानीय चुनावों में लेबर पार्टी की हार के बाद प्रधानमंत्री की स्टामर पर पद छोड़ने का दबाव बढ़ता जा रहा है। उनके मंत्रिमंडल में आवास, समुदाय और स्थानीय सरकार मंत्री मियाट्टा फाहुनबुले ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने श्री स्टामर से देश हित में सही कदम उठाते हुए पद छोड़ने की समय सीमा तय करने का भी आग्रह किया। उधर श्री स्टामर ने पद छोड़ने की बढ़ती मांगों पर प्रतिक्रिया देते हुए अपने आलोचकों को गलत साबित करने का संकल्प लिया। इससे पहले खबरों में कहा गया था कि इंग्लैंड और वेल्स में हाल में हुए स्थानीय चुनावों में पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद 60 से अधिक लेबर सांसद श्री स्टामक से पद छोड़ने का आग्रह कर रहे थे। कई लेबर सांसदों ने सार्वजनिक और निजी तौर पर चिंता व्यक्त की है और श्री स्टामक का नेतृत्व अगले आम चुनाव से पहले पार्टी की संभावनाओं को नुकसान पहुंचा सकता है। इसराइल में अमेरिका के राजदूत माइक हकाबी ने कहा है कि ईरान युद्ध के दौरान इसराइल ने आयरन डोम मिसाइल रोधी बैटरी और उन्हें संचालित करने के लिए कर्मियों को संयुक्त अरब अमीरात भेजा था। उनके इस बयान से इसराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच बढ़ते रक्षा संबंधों पर रेखांकित होते हैं। दोनों ही देश लंबे समय से ईरान को संदेह की नजर से देख रहे थे और संघर्ष में नाजुक युद्ध विराम अभी भी कायम है। नेपाल और भारत के बीच आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता समझौते को नेपाल के प्रतिनिधि सभा में पेश किया गया। नेपाल के विधि, न्याय और संसदीय कार्य मंत्री सुविता गौतम ने सदन में ये समझौता प्रस्तुत किया। ये समझौता इस वर्ष फरवरी में भारत और नेपाल के बीच हस्ताक्षरित हुआ था। श्री गौतम ने कहा कि समझौते का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच आपराधिक मामलों की जांच, अभियोजन और न्यायिक प्रक्रिया को कानूनी रूप से अधिक प्रभावी और आसान बनाना है। पश्चिमी और दक्षिणी श्रीलंका में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने

0: द्वीप के पास बने निम्न दबाव से मौसम बिगड़ने की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने कहा है कि बुधवार को पश्चिमी और सबरागुमा प्रांत में 200 किलोमीटर से अधिक बारिश होने की संभावना है। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन में आज से भारतीय दल सिंगल्स वर्ग के मुकाबले खेलेगा। महिला सिंगल्स में उन्नति हुड्डा थाईलैंड की पोनपावी चोचुवोंग के साथ खेलेंगी। वहीं देविका सिहा का सामना जापान की खिलाड़ी से होगा। तारा शर्मा का मुकाबला जापान की हीना केची और ईशारानी बरुआ का मुकाबला इंडोनेशिया की थालिया रोसियाना वरियानवान से होगा। भारत ने थाईलैंड में आयोजित BWF सुपर 500 टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए 27 सदस्यीय दल भेजा है। उज़्बेकिस्तान में आयोजित एशिया अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के कल से नई दिल्ली में होने वाले सम्मेलन की तैयारियां पूरी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज ब्रिक्स देशों के मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 3 दिन के चीन दौरे पर। रूस ने सरमत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। युगांडा में युवेरी मुस्मेनी ने लगातार 7वीं बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली। और बैडमिंटन में बैंकॉक में थाईलैंड ओपन में कई भारतीय खिलाड़ियों के महत्वपूर्ण मुकाबले आज। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं 747 किलो हर्ट्ज पर।
2: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आइए सुनते हैं कल हो ना हो फिल्म का गीत, जिसे गाया है अलका याग्निक और शान ने। जावेद अख्तर के बोल को संगीत से सवारा है शंकर एहसान लॉय ने।

चेन्नई एक्सप्रेस, इस फिल्म का गीत आइए सुनते हैं मधुमिता और गोपी सुंदर की आवाजों में। अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे गीत को संगीत दिया है विशाल शेखर ने।

सोनू निगम अलका याग्निक की आवाजों में आइए सुनते हैं फिर भी दिल है हिंदुस्तानी फिल्म का गीत। जतिन ललित के संगीत निर्देशन में गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने।

ओम शांति ओम। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत, सोनू निगम, श्रेया घोषाल और साथियों का गाया हुआ। गीत के बोल जावेद अख्तर के हैं और संगीत है विशाल दादलानी और शेखर रावजियानी का।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।

श्रोता, हम आपको बता दें NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। प्रत्येक बुधवार सायं 6:30 पर कार्यक्रम हेलो किसान, प्रायोजक IFFCO।

0: मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी लखनऊ से इस विशेष फोन इन कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त विभा श्रीवास्तव। श्रोताओं, ये एक ऐसा मंच है जहां आवाज़ बनेगी आपकी पहचान, आपके विचार, आपकी बातें और आपके अनुभव होंगे इस महफिल की असली रौनक। तो उठाइए फ़ोन और जुड़ जाइए हमसे और कहिए अपने मन की बात, क्योंकि ये कार्यक्रम है कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। तो सबसे पहले हम आपको अपना नंबर बता दें जिस पे आप हमें करिए फ़ोन और सुनिए अपनी मनपसंद फिल्मी गीत। हमारा नंबर है 0522-223-8825। 0522 ये लखनऊ का कोड है, 2238825 ये हमारा फ़ोन नंबर है। तो शुरू करते हैं सुरों की शानदार महफिल और जुड़ते हैं अपने कार्यक्रम के आज के पहले श्रोता से। हेलो।
1: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार, तो पहले अपना परिचय दीजिए।
1: श्रीवास्तव मैम जी नमस्कार, हम बोल रहे हैं सगोरिया स्कूल घाटी जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से, बसंतीलाल सूर्यवंशी बोल रहा हूँ। मैं डेढ़ महीना दो महीने में आज फिर जुड़ा मैम आप।
0: चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है बसंतीलाल जी। आप वैसे हमारे श्रोता तो नियमित ही है, हमारा कार्यक्रम तो रोज ही सुनते हैं।
1: जी जी जी जी मैम, और हाई फाई गर्मी चल रही है इन दिनों तो।
0: भाई
1: सप्लाई मचा दी गर्मी ने।
0: हाँ, तो गर्मी तो
1: तोड़ गर्मी पड़ रही है।
0: हाँ, गर्मी तो बहुत है, लेकिन इस गर्मी के मौसम में अपना ख्याल रखते हुए सारे काम करने पड़ेंगे। बस पानी पीते रहिए।
1: आप खेती बाड़ी का काम करते तो सुबह शाम ही करते हैं।
0: हाँ
1: मैं आराम से।
0: सही बात है, सुबह शाम करिए और पानी भी।
1: बाहर जब हम काम जरूरी काम हो तो
0: तभी जाइए, बिल्कुल
1: अन्यथा नहीं निकलना।
0: नहीं, और निकलिए भी तो सर पे अंगोछा या कुछ कपड़ा डाल लीजिए जिसमें कि सर पे धूप ना लगे। पानी का साथ में लेके निकलिए कि पानी पीते रहिए। ये सब चीजों का ध्यान रखिए। तो देखिए, काम तो सभी करने हैं, है कि नहीं?
1: जी जी जी।
0: अगर दिन में भी निकलना पड़े तो निकल लिए, लेकिन अपनी एहतियात बरतते हुए। तो आज बसंतीलाल जी कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप बताइए।
1: गर्मी का मौसम चल रहा है तो गर्मी का एक गाना मेरे जहन में आया था मैम, मुझे गाना सुनना था। फिल्म का नाम है गिरफ्तार। धूप में निकलो ना करो रूप की रानी, गोरा रंग काला ना पड़ जाएगा। कुछ मित्र है, मांगीलाल चंदन जी है, अनु भट्टाचार्य जी, अविनाश जी है और विजय पांडे जी है।
0: सबके जितने आपके दोस्त सुन रहे हैं उन सबके लिए गीत और आपके लिए भी। इसे गाया है आशा भोसले और किशोर कुमार ने। धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार विभा जी, नमस्कार। बहुत बहुत राधे राधे।
0: राधे राधे। और अपना परिचय दीजिए पहले पूरा।
1: विभा जी, मैं वीरों की भूमि बुंदेलखंड की धरती से, यानी महाराजा छत्रसाल की नगरी छतरपुर जिले के मनकारी गांव से, मैं फूलचंद पाल बोल रहा हूँ।
0: फूलचंद पाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और बताइए
1: बहुत
0: कैसे
1: बहुत
0: हैं?
1: धन्यवाद विभा जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और कैसे हैं आप फूलचंद जी?
1: विभाजी, बहुत तेज गर्मी है हमारे यहाँ छतरपुर जिले में, बुंदेलखंड में।
0: बुंदेलखंड
1: बहुत
0: में
1: धूप है।
0: हाँ, धूप होती है तो वहाँ तो और ज्यादा गर्मी होती है। जब यहीं पर इतनी गर्मी है तो वो तो बुंदेलखंड है।
1: जी जी जी जी
0: चलिए,
1: जी जी
0: लेकिन इसी गर्मी में अपने को बचा के रखिए, सुरक्षित रखिए, और हमेशा ढक के, सर को ढक के चलिए। और
1: जी जी
0: लेकिन
1: बिल्कुल।
0: वही है ना कि काम करना है, इसलिए थोड़ा सा सुरक्षित अपने को रखना पड़ेगा।
1: विभा जी देखिए, काम तो करना ही पड़ेगा, काम
0: बिल्कुल
1: तो जीवन में जरूरी है, लेकिन थोड़ा बचाव करें अपना और
0: बचाओ,
1: काम तो
0: बस
1: करना
0: बस
1: ही
0: थोड़ा
1: पड़ेगा।
0: सा हाँ बचाव करते हुए काम करिए, यही
1: जी
0: है।
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल।
0: आज
1: और अभी हाल जो है, इतनी तेज धूप है और सर्दियों का मौसम भी है, तो आना जाना भी
0: हाँ
1: बहुत ज्यादा
0: हाँ
1: है।
0: जान, सही बात है। तो बस पानी की
1: तो
0: बोतल साथ में रखिए और कपड़े को सर पे रखिए और चलिए
1: जी
0: अपने
1: जी
0: काम
1: जी बिल्कुल
0: पे। तो ये बताइए, आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप?
1: बिल्कुल। विभाजी, मैं और बता दूं आपको कि गाना तो एक बहाना है श्रोताओं की, लेकिन थोड़ा गीत जो है आप थोड़ा सा कम बजाएं और श्रोताओं
0: चलिए
1: के फोन ज्यादा शामिल करें आप।
0: ठीक है चलिए भाई।
1: और
0: हाँ
1: फिर ऐसे में जो है बहुत तेज धूप है, तो ऐसे में नहर का किनारा याद आ रहा है मुझे तो।
0: तो बिल्कुल सुनिए आप, नहर के किनारे का गीत कौन सा सुनना चाहते हैं
1: बिल्कुल।
0: बताइए।
1: फिल्म का नाम है पेंटर बाबू, गीत के बोल हैं कि हमखा ले चले यार ठंडी ठंडी नहर के किनारे। और ये गीत जो है डेडिकेट रहेगा, प्रेमदास बाबा जी हैं, बेटा सिंह यादव जी हैं,
0: सब
1: जितेंद्र पाल जी हैं, मणिराम
0: जितने
1: पाल जी हैं,
0: जितने आपके दोस्त सुनने वाले हैं सभी के लिए डेडिकेट
1: दिनकर सिंह जी
0: रहेगा।
1: हैं, मांगीलाल चंदेल जी हैं, विजय कुमार
0: हाँ
1: पांडे जी हैं, सभी श्रोताओं को डेडिकेट
0: सभी
1: रहेगा।
0: को नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ से फोन इन कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। तो एक बार हम अपना नंबर फिर से बता देते हैं जिसमें हमारे नए श्रोता हमसे जुड़ सकें और सुन सकें अपनी मनपसंद फिल्मी गीत। हमारा नंबर है 0522-223-8825 0522-223-8825। अब जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो,
1: हाँ नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कैसी हैं आप? अपना नाम बताइए, पूरा परिचय दीजिए।
1: मैं इंदौर से कोहिनूर कॉलोनी से जीनत परवीन बोल रही हूँ।
0: जीनत परवीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
1: फर्स्ट टाइम लगा मैंने।
0: चलिए भाई, बहुत बहुत बधाई। तब तो आपको फर्स्ट टाइम फोन लगा, हमें भी खुशी हो रही है। तो कुछ बताइए अपने बारे में, क्या करती हैं जीनत जी?
1: हाउस वाइफ हूँ।
0: चलिए, ये तो सबसे बड़ा काम है हाउस वाइफ होना। तो चलिए, तो घर आप रेडियो सुनती रहती हैं फिर?
1: जी सुनती रहती हूँ ना।
0: अच्छा, तो क्या क्या कार्यक्रम आपको बहुत अच्छे लगते हैं बताइए? आकाशवाणी सभी अच्छे लगते हैं। तो आपको जानकारियां भी तो मिलती होंगी कि आकाशवाणी के कार्यक्रम से। तो ये फोन इन कार्यक्रम
1: सुनती हूँ मैं।
0: अच्छा, चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। तो आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आप, बताइए?
1: दिल पिक्चर का सुना दीजिए।
0: दिल पिक्चर,
1: प्यार करने वाले।
0: चलिए भाई, सेना डरने वाले। चलिए आपको सुनवा देते हैं उदित।

0: सब लोग परेशान है।
1: जी, क्योंकि शिमला क्षेत्र में जो पर्यटक भी क्या गर्मी के मौसम में आते हैं,
0: बिल्कुल
1: ठंडी हवा खाने।
0: बिल्कुल सही बात कही। तो राकेश जी, आप हमारे नियमित श्रोता है, आप हमें फोन भी करते हैं।
1: जी, क्योंकि मैं आज प्रोग्राम सुनता हूँ, और मैं सबसे बड़ी बात है जो आपका जो बुधवार को 6:30 बजे का है, हेलो किसान
0: आ जाएगा,
1: आ जाएगा, तो उसमें मैं जुड़ता रहता हूँ। और कई बार जब मैं प्रोग्राम में कॉल करता तो हमारे जो राय साहब है, सुशील कुमार राय साहब, तो उनको परिचय देने की जरूरत, तो मैं मुझे
0: पहचान जाते हैं। बिल्कुल, जो हमारे नियमित श्रोता है हम लोग भी पहचान जाते हैं, लेकिन हम लोग नाम इसलिए पूछते हैं कि और लोग नाम जान सके।
1: जी, क्योंकि कई बार जैसे कई लोग जो है पहली बार रेडियो सुन रहे हैं,
0: हाँ, तो उनका नाम पता होना चाहिए, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है, इसलिए। तो राकेश जी, आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप बताइए।
1: जी, मोहब्बत मूवी का गाना सुनना है, दिल की धड़कन कहती है।
0: चलिए तो सुनवा देते हैं आपको, कविता कृष्णमूर्ति और उदित नारायण के आवाज में। नमस्कार
1: जी, नमस्कार।

0: हेलो,
1: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार। और पहले तो अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका, कहाँ से
1: मैं
0: बोल
1: राकेश
0: रहे?
1: बात कर रहा हूँ कोटखाई से, और मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ ठंडी ठंडी जगह से, हिमालय पर्वत से।
0: अरे वाह, तब तो आपका मौसम तो बहुत ही बढ़िया। यहाँ तो गर्मी के मारे हम लोग

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की, और कार्यक्रम चल रहा है कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। तो इस फोन इन कार्यक्रम में देखते हैं हमारे अगले कॉलर कहाँ से हैं और उनकी फरमाइश क्या है। हेलो।
1: हेलो,
0: नमस्कार।
1: नमस्कार दीदी जी।
0: हाँ, तो पहले तो अपना पूरा परिचय बताइए जिसमें कि हम आपसे बात कर सकें।
1: जिला इटावा पोस्ट कर रही, ग्राम लालपुरा से राहुल कुमार बात कर रहा हूँ दीदी जी।
0: राजकुमार जी, राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और बताइए क्या करते हैं राजकुमार जी, आप बताइए कुछ अपने बारे में बताइए।
1: राहुल कुमार नाम है।
0: अच्छा, राहुल कुमार जी, राहुल कुमार जी, आप पहले भी फोन कर चुके हैं। ठीक है, ठीक है। राहुल कुमार जी,
1: फोन मेरा कई बार लग चुका है, पहले नहीं लगता था, आप ट्राई करते हैं तो लग जाता है तुरंत।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। तो क्या करते हैं राहुल जी, बताइए।
1: कुछ नहीं दीदी, घर पे ही रहता हूँ क्योंकि मुझे जन्म से दिखाई नहीं,
0: दिखाई नहीं देता,
1: कोई प्रोग्राम सुनता रहता,
0: कोई बात नहीं, दिखाई नहीं
1: देता, टाइम व्यतीत करते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं,
1: कुछ मित्रों को याद कर सकता हूँ।
0: हाँ, कर लीजिए। पहले गाना तो बताइए, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं।
1: गाने के बोले क्योंकि गर्मी ज्यादा हो रही है, इसलिए गाने के बोले। तू जब जब मुझको पुकारे, मैं बढ़िया हूँ नदिया किनारे। और कुछ हमारे सुनने वाले जो मित्र हैं उनका नाम थोड़ा लेना चाहता हूँ।
0: जल्दी जल्दी से ले लीजिए जिसमें हम गाना सुनवा सकें आपको।
1: क्योंकि अनु कुमार भट्टाचार्य जी हैं और इटावा से ओम नारायण पुष्पवार जी हैं और पूर्ण चंद पाल भाई साहब हो गए मनकारी से, और सतीश भाई साहब हो गए और पूरन वर्मा जी हो गए।
0: चलिए भाई, आप जितने आपकी पसंद का और आपके दोस्तों के लिए डेडिकेटेड ये कुर्बान फिल्म का गीत लीजिए, सुनिए। धन्यवाद।
1: धन्यवाद दीदी।

0: हेलो,
1: हाँ हेलो,
0: नमस्कार।
1: नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते। और
1: जिला
0: बताइए।
1: औरैया ग्राम पुराने खल्ला से गगनदीप कमल बोल रहे। दीदी
0: गगनदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और बताइए।
1: आप कार्यक्रम बहुत बढ़िया कर रही दीदी।
0: धन्यवाद धन्यवाद आपका। और कैसे हैं आप, बताइए।
1: अच्छे हैं दीदी।
0: चलिए, तो आज कौन सा गीत चुना है आपने सुनने के लिए?
1: जंग फिल्म का दीदी, दीवाना दीवाना।
0: जंग फिल्म का दीवाना दीवाना, जिसे गाया अभिजीत भट्टाचार्य और कविता कृष्णमूर्ति ने, तो आपकी पसंद का ये गीत आपको सुनवा देते हैं।
1: सुनाना चाहते हैं दीदी, रामशंकर कमल और
0: हाँ,
1: आपको दीदी।
0: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमको भी गाना सुनवा रहे हैं, चलिए सुनते हैं फिर ये आपका प्यारा सा गीत जो
1: और
0: आपने चुना
1: जितने
0: है,
1: सुन रहे हैं सभी को
0: सभी
1: धन्यवाद
0: के लिए। धन्यवाद।
1: दीदी।

0: हेलो, उज्जैन से प्रेम सिंह
1: हेलो।
0: बोल रहा हूँ।
1: हाँ प्रेम सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और
0: जी
1: बताइए
0: कैसे
1: कैसे
0: हैं
1: हैं।
0: भाई आप?
1: हाँ
0: हेलो
1: हाँ बताइए।
0: जी, मैं ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ।
1: प्रेम सिंह जी, वही तो कह रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके
0: जी
1: दोस्त भी आपको बहुत नाम लेके गाने सुनवाते हैं आपको।
0: जी बिल्कुल, मैं आकाशवाणी लखनऊ का नियमित श्रोता हूँ।
1: बिल्कुल हाँ, ये तो पता है, आप नियमित श्रोता हैं। और आपको कार्यक्रम कैसे लगते हैं प्रेम सिंह जी, बताइए।
0: जी सर, आकाशवाणी लखनऊ का जो कार्यक्रम है ना, कुछ दिन को कुछ हम कहें,
1: हाँ हाँ
0: जी ये हमारा पसंदीदा प्रोग्राम है,
1: पसंदीदा
0: इसमें हम
1: कार्यक्रम,
0: पार्टिसिपेट भी करते हैं। इस
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: कार्यक्रम की सबसे अच्छी खासियत ये है शिखा विभा जी, कि
1: हाँ
0: इसमें जैसे कॉल कनेक्ट होता है, कॉल उठा लिया जाता है और जो आप गाना बताएंगे आपको वही गाना सर्च करके सुनाया जाएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कार्यक्रम इसीलिए बना है कि कुछ आप कहिए और हम आपकी फरमाइश पूरी करें और हम भी आपसे कुछ कह सकें।
0: जी
1: तो
0: विभा जी, जैसे मैं आपको बताऊं, अभी काफी गर्मी है हमारे यहाँ पे,
1: हाँ हाँ हाँ गर्मी तो
0: तो
1: सब
0: उसके लिए
1: जगह
0: मैं
1: है।
0: एक ये बताऊं आपको कि अगर किसी को डांस करना नहीं आता है ना,
1: हाँ
0: तो बिना चप्पल के आप छत पे चले जाइए 11-12 बजे के बाद में,
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल, तो अपने
0: आपको
1: आप
0: अच्छे
1: डांस
0: से
1: करने
0: अच्छे
1: लग
0: डांस
1: जाएंगे।
0: करना आ
1: बिल्कुल
0: जाएगा।
1: सही बात है। तो प्रेम सिंह जी, आपने बात तो सही कही, आज गाना कौन सा सुनना चाहते हैं बताइए।
0: जी विभा जी, फिल्म का नाम है हमराज और गाने के बोले नीले गगन के तले धरती का प्यार पले।
1: चलिए भाई, महेंद्र कपूर की आवाज़ में ये गीत आपको सुनवा देते हैं,
0: जी
1: फिल्म
0: बिल्कुल
1: हमराज से। नमस्कार।
0: जी, थैंक यू सो मच, नमस्ते, मुझे आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा।
1: हमें भी अच्छा लगा, धन्यवाद।

0: हेलो।
1: जय माता दी।
0: जय माता दी।
1: मेरा नाम
0: नमस्कार।
1: पूरन वर्मा है और मैं
0: अच्छा
1: डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान
0: हाँ
1: गांव का ना अनसुनल बुगला से बात कर रहा हूँ मैडम।
0: हाँ पूरन वर्मा जी, आप हमारी नियमित श्रोता हैं और
1: जी
0: आप,
1: मैडम।
0: हाँ, ये आपका नाम समझ जाते हैं हम कि पूरन वर्मा जी हमारे नियमित श्रोता हैं। तो पूरन वर्मा जी कैसे हैं आप बताइए।
1: जी मैडम बहुत बढ़िया हूँ
0: बहुत बढ़िया।
1: और बहुत देर से ट्राई कर रहा था और मेरी
0: हाँ
1: घंटी चल गई। पहले भी इस
0: चल
1: घंटी पर कॉल उठा नहीं, तीसरा कॉल पर अब घंटी भगवान की दया से चली गई और आपने उठा
0: चलिए।
1: लिया, तो आपका धन्यवाद मैडम।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारा धन्यवाद इसलिए क्योंकि हम तो सबके फ़ोन उठाते हैं, जहाँ जैसे ही जिसका फ़ोन आता है तुरंत उठा लेते हैं, और वो जो नेटवर्क की गड़बड़ होती है तो इसलिए आपका फ़ोन नहीं मिलता है, क्योंकि सब लोग मिलाते रहते हैं इसलिए फ़ोन थोड़ा देर से मिलता है, नहीं
1: जी
0: तो
1: क्योंकि आकाशवाणी लखनऊ में ऐसा है कि हर श्रोता की इच्छा होती है कि आप जैसे आरजे
0: बिल्कुल
1: से बात करें और उन तक हर श्रोता सुनने वाले उन तक आवाज पहुंच जाए, तो मैडम
0: बिल्कुल
1: बहुत खुशी
0: बिल्कुल।
1: हो
0: तो ये
1: जाती है।
0: कार्यक्रम ही इसीलिए रखा गया है कि हमारे श्रोता हमसे जुड़ सकें और अपनी फरमाइश सुन सकें और हमसे बात कर सकें, तो आप ही लोग के लिए तो ये कार्यक्रम है ना पूरन
1: जी।
0: जी। तो और बताइए, आज कौन सा गीत चुना है आपने सुनने के लिए, बताइए।
1: जी मैडम आज फिल्म का नाम है आंखियों से गोली मारे और ये गाने जो बोल रहे ये
0: हाँ
1: आकाशवाणी लखनऊ है, मोबाइल ऐप पे भी गूंजेगा और डीटीएस पे भी गूंजेगा, ये
0: हाँ
1: गाने जो
0: बिल्कुल
1: बोल
0: सही
1: रहा है
0: कहा
1: ये
0: आपने।
1: इश्क का जादू है, यानी मैं ये सब बोलना चाहूंगा ये आकाशवाणी लखनऊ है और
0: हाँ
1: ये कार्यक्रम हर श्रोता के पास न्यूज AIR ऐप और डीटीएस और रेडियो लखनऊ के श्रोता रेडियो के पास
0: सब
1: भी चल रहा
0: लोग
1: है
0: सुन
1: कार्यक्रम।
0: सकते हैं, अब आप चलते चलते भी सुन सकते हैं भाई आकाशवाणी लखनऊ, है ना।
1: जी, क्योंकि अब पहले तो हम ये ऐसा होता था कि हम चलो प्रोग्राम छूट रहा है तो या तो लखनऊ सुन
0: हाँ
1: के जाएंगे या फिर बिना सुने
0: बिल्कुल
1: रह जाते, पर अब तो
0: हाँ,
1: न्यूज
0: लेकिन अब
1: AIR
0: आप
1: ऐप के
0: मोबाइल
1: माध्यम से
0: पे,
1: ऐसा कार्यक्रम
0: हाँ
1: है कि कहीं भी
0: बिल्कुल
1: कौन सी भी
0: बिल्कुल
1: जगह जाओ मैडम आप
0: सुन
1: आकाशवाणी
0: सकते हैं,
1: लखनऊ जहाँ न्यूज
0: जहाँ भी
1: AIR
0: जाएं
1: ऐप वहाँ
0: बिल्कुल
1: आकाशवाणी
0: सुन
1: लखनऊ।
0: सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने,
1: तो कुछ मित्रों को
0: तो
1: याद कर लो, दो तीन को।
0: जल्दी से ले लीजिए नाम।
1: सबसे पहले तो आप है
0: धन्यवाद।
1: और मेरा दोस्त है राकेश है, भगवान सिंह परवान जी है,
0: हाँ
1: अभिनाथ जी है, रमेश प्रजापति जी
0: चलिए
1: है, रोहित है इटावा से
0: चलिए,
1: और
0: तो
1: जितने गोल्डी
0: जितने,
1: बाल
0: हाँ
1: पुरुषोत्तम और
0: जितने
1: जितने कॉलर आपके कार्यक्रम
0: सुन
1: में
0: रहे
1: हैं
0: हैं
1: दिनेश के
0: सभी
1: साथ
0: के
1: तमाम
0: लिए
1: कॉलर।
0: ये प्यारा सा गीत।

0: और अब देखते हैं हमारे अगले कॉलर कहाँ से हैं और उनकी फरमाइश क्या है। हेलो,
1: हेलो, नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्कार, अपना नाम बताइए, पूरा परिचय बताइए अपना।
1: मैं सतीश बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से। और आप किन से मेरी बात हो रही है? सोनाम है?
0: क्या फिर से बताइए, आप क्या, आप मेरा नाम नहीं जानते? विभा श्रीवास्तव बोल रही हूँ मैं।
1: अरे विवाह श्रीवास्तव जी, कल तो मेरी आपसे मेरी बात होने का थी। कल आपने मेरी गाना बता दिया था, मैंने
0: कल
1: दिलवाले का फिल्म का, और फिर आपने
0: कल
1: पता ना क्या हो
0: सुन
1: गया
0: तो
1: था, फोन कट गई
0: लीजिए,
1: कल।
0: सुन तो
1: हाँ
0: लीजिए, कल मैं नहीं थी, कल कोई और था। कब जब फोन कट जाता है ना, तो फिर हम बात नहीं करवा पाते हैं, इसलिए नहीं, वो अपने आप जब फोन कट जाता है तो कुछ हम कर नहीं सकते इसके लिए।
1: नहीं, वो ही तो बता रहे, वो काटा नहीं था।

0: कट गया होगा।
1: हाँ तो
0: कल बेकार
1: जो, हाँ कल हम नहीं थे, कल हम नहीं थे, कल जो भी होगा उससे फोन कटा होगा, इससे कोई बात नहीं, आज मिल गया
0: तो
1: तो।
0: आपके इधर मौसम मौसम कैसा है नखलोग का?
1: बस गर्मी है, गर्मी के मौसम में गर्मी।
0: क्योंकि गर्मी के मौसम तो अभी तो मैडम जी कहना चाहता हूँ टिप्स, जैसे आलू के जैसे अभी तो कलिंगे हैं, खरबूजा तरबूज है, ककड़ी है, खीरा है, तो
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: इनका
1: सही
0: सेवन
1: कहा,
0: करना चाहिए
1: बिल्कुल करना चाहिए, सही कहा आपने,
0: और ज्यादा से ज्यादा पानी पीना
1: पानी पीना
0: चाहिए
1: चाहिए। और जब खीरा ककड़ी
0: और
1: खाएंगे
0: ये
1: तो उससे
0: कोल्ड
1: भी
0: ड्रिंक ऑर्डर से इनसे दूर रहना चाहिए,
1: दूर रहना
0: क्यों
1: चाहिए
0: ये
1: भाई,
0: शरीर
1: जंक
0: के
1: फूड से
0: लिए
1: या कोल्ड
0: हानिकारक
1: ड्रिंक
0: है,
1: से
0: बीमारियां
1: बहुत
0: बढ़ाती हैं।
1: हानिकारक
0: जैसे
1: है।
0: कोई कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर होती है ज्यादा, कम से
1: बिल्कुल
0: कम पीना
1: करते,
0: चाहिए, लेकिन ज्यादा पीने से नुकसानदायक,
1: हाँ
0: केमिकल
1: नहीं
0: मिला
1: नींबू
0: हुआ है तो
1: पानी
0: इसीलिए
1: पीना
0: शरीर के
1: चाहिए,
0: लिए बहुत नुकसानदायक है।
1: हाँ नींबू पानी पीजिए सबसे अच्छा होता है,
0: हाँ
1: नींबू पानी पीजिए सबसे
0: हाँ
1: अच्छा,
0: नींबू पानी पीजिए, नारियल
1: हाँ
0: पानी
1: नारियल
0: पीजिए,
1: पानी
0: ऐसी चीजें
1: पीजिए,
0: पीजिए तो उनका
1: बस
0: सही
1: बस
0: शरीर के लिए सही है। ये कोल्ड ड्रिंक
1: बिल्कुल
0: ऑर्डर में
1: सही।
0: दिक्कत आती
1: हाँ
0: है,
1: तो आज कौन सा गाना
0: अब आजकल
1: पसंद
0: नन्हे
1: किया?
0: नन्हे बच्चे हैं, वे मानते नहीं है, बार बार यही
1: हाँ
0: कोल्ड ड्रिंक लेते
1: लेकिन
0: हैं, वे लाल वाली
1: हाँ
0: बौखा कहते वो भी पीते रहते हैं तो अच्छा
1: हाँ सही कहा आपने।
0: नहीं लगता है। तो
1: तो
0: ऐसे में
1: बताइए आज गाना कौन सा सुनना
0: और
1: चाहते हैं आप, बताइए।
0: तो ये अभी खाने पीने वाले में जी हरी पत्ती वाली सब्जियां, बहुत तेरी
1: बहुत
0: सब्जियां
1: तेरी सब,
0: आएंगी, ये
1: बहुत सब्जियां
0: बैंगन
1: हैं, सही
0: है,
1: बात है,
0: पटेल है, ये नई नई सब्जियां आई हैं, भिंडी
1: हाँ वो
0: वगैरह,
1: खाइए,
0: जिनके इस्तेमाल
1: बिल्कुल
0: कीजिए
1: सही कहा आपने। तो आज गाना भी बता दीजिए, जल्दी से आपका गाना भी सुनवा दें हम।
0: जी। और गाना फिल्म नाम बताया दिया मैंने, मैंने माफ कीजिए
1: माँ
0: सलाम,
1: तुझे
0: और
1: सलाम,
0: गाने वाले छोड़ के न जाओ पिया,
1: चलिए तो फिर
0: तो
1: आपकी
0: दे
1: पसंद
0: दिया
1: का,
0: है
1: हाँ तो आपकी पसंद का
0: क्यों,
1: ये
0: दोस्तों का नाम लेना चाहता हूँ मैडम जी।
1: लीजिए, जल्दी से ले लीजिए। और दोस्तों से,
0: हेलो,
1: हाँ बताइए बताइए कौन से दोस्त हैं आपके?
0: अबे मेरे दोस्त थे, उनको नाम का राहुल कुमार इटावा से है,
1: हाँ
0: और उनको गाना डेडिकेट करना चाहता
1: चलिए
0: हूँ,
1: भाई, राहुल कुमार जी
0: और
1: के लिए
0: राहुल कुमार
1: डेडिकेटेड,
0: इटावा से, और
1: हाँ
0: जितने तमाम सुनने और प्रेम
1: सब के
0: बाबा जी
1: लिए,
0: आएंगे, महोबा महोबा
1: चल
0: बंदेल दे,
1: जितने
0: उनको गाना
1: आपके,
0: डेडिकेट करना चाहता हूँ,
1: हाँ
0: और
1: जितने
0: तो
1: आपके
0: आपके लिए गाना
1: दोस्त,
0: डेडिकेट करना
1: हाँ
0: चाहता हूँ, और
1: धन
0: गाना प्ले कर दीजिए,
1: चलिए
0: धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: और अब देखते हैं कार्यक्रम के अंत में हमसे कहाँ से जुड़े हैं हमारे कॉलर और उनकी फरमाइश क्या है। हेलो,
1: नमस्कार मैम। हेलो,
0: नमस्कार। हेलो, और पहले तो अपना पूरा परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका और कहाँ से आप बोल रहे हैं।
1: नाम हमारा है सौस्थव त्रिपाठी और जनपद फतेहपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और मैं अध्यापक हूँ, अध्यापन कार्य करता हूँ।
0: अच्छा त्रिपाठी जी,
1: और
0: आप अध्यापन कार्य करते हैं, चलिए
1: जी,
0: बहुत
1: मैं
0: अच्छी
1: गणित का
0: बात,
1: अध्यापक हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी
1: जी
0: बात है।
1: जी
0: तो आज कौन सा गाना चुना है आपने सुनने के लिए, बताइए।
1: एक गोविंदा और जूही चावला पर फिल्माया गया गाना है, गीत है, दो बोल कह के हम तो हारे हैं।
0: हाँ, राधा का संगम पिक्चर
1: जी
0: से है।
1: जी राधा का संगम फिल्म का नाम है और
0: हाँ
1: काफी अच्छा गीत मुझे लगता है।
0: बहुत अच्छा है। हाँ, लता मंगेशकर और कीर्ति कुमार की आवाज़ में है। बताइए, बहुत अच्छी बात है। हाँ, और कुछ
1: और
0: कहना चाह
1: मैं
0: रहे
1: चार
0: हैं
1: पंक्तियां अगर इजाजत हो आपको सुनाना
0: तो
1: चाहता हूँ,
0: जल्दी
1: क्योंकि
0: से
1: मैं
0: कह
1: आखिरी
0: दीजिए।
1: आखिरी
0: हाँ,
1: कॉलर हूँ।
0: आखिरी कॉलर हैं आप, इसलिए आपका गाना भी सुनवाना है, तो जल्दी से आप पंक्तियाँ कह
1: जी
0: लीजिए अध्यापक जी।
1: जी जी जी सूर कबीरा मीरा की बातें यही बताती हैं, गीता और रामायण भी हमको यही सिखाती हैं। बड़े बुजुर्गों बच्चों का दिल ना कभी दुखाना तुम, बड़े बड़े बुजुर्गों बच्चों का दिल ना कभी दुखाना तुम। बड़े बुजुर्गों बच्चों से घर में खुशियां आती हैं,
0: बिल्कुल
1: बड़े
0: बिल्कुल,
1: बुजुर्गों बच्चों से घर में
0: घर में
1: खुशियां
0: खुशी आती
1: आती
0: है,
1: हैं।
0: बिल्कुल सही कहा त्रिपाठी जी आपने। तो जल्दी से आपका गाना भी सुनवा दे, बहुत अच्छी पंक्तियाँ कही आपने,
1: शुक्रिया,
0: बहुत।
1: मैं
0: हाँ
1: शुक्रिया, और आकाशवाणी लखनऊ को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: हाँ भाई, आपको भी नमस्कार। और लीजिए सुनिए ये प्यारा सा गीत जल्दी से, नमस्कार।

और इसी गीत के साथ ही फोन इन कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें यही समाप्त होता है। मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं और आइए अब सुनते हैं ये प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: जल संरक्षण के सारे काम सुख समृद्धि के रचे आयाम।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गर्मी के इस मौसम में आपके विचार की प्रासंगिकता और भी अधिक बढ़ जाती है। जी हाँ श्रोताओ, जल अमूल्य है, इसे बूंद बूंद बचाना हमारी जिम्मेदारी है। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: छत्तीसगढ़ रायपुर से नरेंद्र कुमार जाटव, संदीप जाटव, अनीता जाटव और राधिका रानी जयपुरिया जी ने लिखा है, मिठाइयों का सम्मेलन कहानी बहुत पसंद आई, आपको बधाई।
0: आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू।
2: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
2: तो श्रोताओ, कल हमने चर्चा की थी गर्मी से बचने के कुछ उपायों पर
0: जी,
2: और ये भी जाना था कि 12 बजे से 4 बजे तक खास तौर से हमें गर्मी के मौसम में बाहर क्यों नहीं निकलना चाहिए। तो अजीत जी, जरा श्रोताओं को ये भी जानकारी दे दें कि आज की चर्चा किस विषय पर होगी।
0: विमलेश जी, आज हम ये चर्चा करेंगे कि गर्मी के मौसम में हमारा खान पान कैसा होना चाहिए
2: जी।
0: लेकिन श्रोताओं, इससे पहले कि हमारी चर्चा आगे बढ़े, एक रोचक लेकिन महत्वपूर्ण बात आपको हम बताना चाहते हैं, और वो ये कि परंपरागत धारणाओं के अनुसार गर्मी के मौसम में सबसे कठिन दिन कब आते हैं।
2: जी अजीत जी, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि वो समय अब आने ही वाला है। आज 13 मई हो गई, बस कुछ दिन और। जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं नवतपा की। उत्तर और मध्य भारत में इसका प्रभाव विशेष रूप से दिखाई पड़ता है। इन दिनों हमें अपना बहुत ही खास ध्यान रखना चाहिए। अजीत जी, नवतपा किसे कहते हैं ये तो बताइए जरा।
0: जी विमलेश जी, नवतपा का अर्थ है 9 दिनों तक तपना, यानी 9 दिनों तक भयंकर ताप
2: जी।
0: ये वो अवधि है जब हमारे परंपरागत खगोल ज्ञान और मान्यता के अनुसार सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है, और इन दिनों में लगभग 9 दिनों तक प्रचंड गर्मी पड़ती है।
2: तो श्रोताओं, आइए अब जानते हैं कि सामान्यतः ये समय कब आता है। आमतौर पर मई महीने के अंत यानी लगभग 25 मई से जून महीने की शुरुआती यानी 2 जून तक। जलवायु परिवर्तन के कारण ये समय थोड़ा इधर उधर हो सकता है। इस समय विशेषकर उत्तर भारत में लू चलती है और आसमान साफ होता है, इसलिए छाया की भी गुंजाइश नहीं होती है।
0: जी बता दें श्रोताओं कि यह प्राचीन अनुभवों के आधार पर परंपरागत मान्यता है। वैसे नवतपे में गर्मी बड़ी खतरनाक हो जाती है, लेकिन इसे वरदान भी माना गया है। क्यों?
2: नवतपे में जितनी गर्मी पड़ेगी, माना जाता है कि मानसून उतना ही अच्छा आएगा
0: जी।
2: आइए अब करते हैं चर्चा गर्मी के मौसम में खान पान की।
0: तो विमलेश जी, आपसे ही शुरुआत करें।
2: जी अजीत जी, श्रोताओ, गर्मी के मौसम में खास ध्यान ये रखना चाहिए कि हमारा आहार पौष्टिक लेकिन हल्का हो।
0: और हाँ, इस मौसम में नींबू पानी, छाछ, दही जैसे प्राकृतिक उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करें।
2: सबसे जरूरी बात तो ये है श्रोताओ कि खाली पेट घर से न निकलें
0: जी।
2: अब बात करते हैं मौसमी फलों के बारे में। अजीत जी, मुझे लगता है कि प्रकृति को सचमुच हमारी बहुत चिंता रहती है।
0: जी बिल्कुल, इसलिए तो प्रकृति को माँ भी कहा गया है।
2: जी सही कहा, जैसे माता को हमारी चिंता रहती है, वैसे ही प्रकृति भी हमारी चिंता करती है। श्रोताओ जरा सोचिए ना, गर्मी के मौसम में ही खरबूजे, तरबूज जैसे फल प्रकृति क्यों उगाती है, खीरे और ककड़ियाँ क्यों उगाती है, आम और दूसरे मौसमी फल क्यों होते हैं, ये फल सर्दियों में क्यों नहीं उगते।
0: विमलेश जी, आमतौर पर लोग कहेंगे कि इसमें भला सोचने की क्या बात है, ये गर्मी के फल हैं तो गर्मी में तो होंगे ही।
2: जी अजीत जी, आम लोग ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन सच्चाई

0: ये है कि कुछ फल जैसे खरबूज, तरबूज, ककड़ी और खीरे में 80 से 90% तक पानी होता है।
1: जी
0: इन्हें खाने से हमारे शरीर में पानी की मात्रा बनी रहती है। इतनी अधिक पानी की मात्रा होने के कारण ये पचने में भी आसान होते हैं।
1: जी विमलेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। प्रकृति को सचमुच हमारी चिंता रहती है, तभी तो वो ऐसे फल उगाती है जिनसे कि हम स्वस्थ रहें। हमें प्रकृति माता को जरूर धन्यवाद देना चाहिए।
0: जी।
1: लेकिन दुखद है कि प्रकृति हमारे स्वास्थ्य की जितनी चिंता करती है ना, उतनी प्रकृति के स्वास्थ्य की चिंता हम नहीं करते।
0: तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी ये जानकारी, जरूर बताइएगा। और अब सुनते हैं आज का प्रश्न।
1: तो आज का प्रश्न है, प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है?
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है, और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, शीर्षक है गर्मी।
0: ये कार्यक्रम गर्मी के मौसम की जानकारी देते हुए बताता है कि गर्मी के मौसम में हमें अपना ध्यान किस तरह से रखना चाहिए, और गर्मी के मौसम में पैदा होने वाली साग सब्जियाँ और फल कौन कौन से होते हैं जिनका हमें भरपूर सेवन करना चाहिए।
2: बहुत पुरानी बात है, दो बहनें थी, सोना और रूपा। दोनों अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थी। गर्मी का मौसम था, दोनों बाग में खेल रही थी।
3: अक्कर बक्कर बम्बी वो 80-90 पूरे 100, 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा।
4: अब तेरी बारी है,
5: तेरी तुम्हारी बारी, तुम सुना।
4: अच्छा ठीक है, मुझे तो कहानी आती है,
5: तो कहानी सुना दो भाई।
4: अच्छा ठीक है। गर्मी का दिन था, एक कौआ प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था। कौआ लाया कंकर, घड़े में डाले कंकर, पानी आया ऊपर, कौए ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी।
5: अच्छी कहानी थी भाई। कौए ने तो पानी पी लिया, पर अब मुझे बहुत प्यास लग रही है।
4: हाँ, प्यास तो मुझे भी लग रही है। वो सामने घड़ा रखा है, चलो वहाँ चलकर देखते हैं।
5: हाँ चलो चलो, वहाँ
4: चलो,
5: पे पानी
4: चलो
5: होगा।
4: चलते हैं।
2: सोना और रूपा ने घड़े का ढक्कन हटाकर देखा तो उसमें पानी था। दोनों बहुत खुश हुई। रूपा पीने के लिए पानी निकाल ही रही थी कि तभी एक आवाज आई।
6: कौन है
5: दीदी?
6: कौन है
5: दीदी?
4: अम्मा जी, मैं हूँ सोना और ये है मेरी बहन रूपा।
5: अम्मा जी, हमें बहुत प्यास लगी है,
4: हम थोड़ा पानी पी लें?
7: हाँ हाँ, क्यों नहीं, पी लो पानी। बच्चों पानी पी लो, ढक्कन ठीक से लगा देना। पी लिया पानी? प्यास बुझी?
5: हाँ, बहुत ठंडा पानी था। लेकिन अम्मा, आप
4: कौन है?
7: मैं एक मौसम हूँ। मेरे आने से तुम्हें बहुत प्यास लगती है और बहुत गर्मी भी लगती है, पर मैं अपने साथ तरह तरह के फल भी लाती हूँ, जैसे खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी और भी बहुत सारी चीजें। अच्छा भला बताओ तो मैं कौन हूँ?
5: कौन है आप?
7: नहीं समझे?
5: नहीं।
7: अच्छा, तो फिर ये पहेली सुनो।

0: जलते हैं
1: और सारा दिन पानी भी पीते हैं।
0: ऐसा मौसम
1: अब
2: गर्मी अम्मा है।
3: बिल्कुल ठीक समझी, मैं गर्मी यानी गर्मी का मौसम ही तो हूँ।
1: गर्मी अम्मा, आप कब आती हैं पता ही नहीं चलता।
3: सीधी सी बात है, सर्दी जब जाने की तैयारी करती है गर्म कपड़ों में तुम्हें गर्मी लगती है, तो बस समझ लो कि मेरा मौसम शुरू यानी यानी
1: हाँ, जब होली आती है तो गर्मी भी तो लगनी शुरू हो जाती है।
3: हाँ
1: अम्मा, मुझे तो धूप में बहुत गर्मी लग रही है।
3: भाई मेरे मौसम में गर्मी तो लगती है। चलो ऐसा करते हैं, उस पेड़ की छाया में बैठते हैं, ठीक है?
1: हाँ चलो अम्मा, चलते हैं।
4: चलो।
5: सोना और रूपा गर्मी अम्मा के साथ जाकर पेड़ की छाया में बैठ गईं। इतने में पेड़ से दो आम गिरे।
1: अरे ये क्या गिरा?
3: मैं देखती हूँ, तुम लोग यहीं बैठो।
5: वहां दो आम गिरे थे, बच्चे भी दो और आम भी दो, लेकिन अम्मा ने वो आम छिपा लिए।
1: अम्मा आप क्या छुपा रही हैं?
4: अम्मा ये आपके हाथ में क्या है?
3: मेरे ही मौसम का एक फल है।
1: दिखाओ ना।
3: दूंगी तुम्हें, दूंगी, पर पहले तुम्हें इसका नाम बताना पड़ेगा।
1: इसका नाम
3: सोचो, मेरे मौसम का सबसे स्वादिष्ट फल जो बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद है, खट्टा मीठा रसदार फल। सोचो।
1: स्वाद है,
4: पसंद है,
1: सबसे अच्छा भी है।
4: कौन सा फल है?
1: कौन सा फल
3: नहीं समझी?
1: नहीं।
3: अच्छा तो फिर सुनो।

0: झट से तुम बोलो ये क्या है, बोलो ना।
1: तुम तो बड़ी समझदार हो।
2: आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम कुल्फी वाला, बर्फ का गोला ले लो, चुस्की ले लो,
1: आइसक्रीम। बच्चों, मेरे मौसम में तुम लोग खूब आइसक्रीम खाते हो, बर्फ के गोले खाते हो, है ना, कुल्फी भी खाते हो ना। अरे तुम्हारा बस चले तो तुम दिन भर आइसक्रीम ही खाते रहो, है ना?
3: अरे कोई खाने को दे तब ना।
4: अरे लगता है बहुत तेज आंधी आने वाली है, तुम लोग जल्दी से घर चले जाओ। और हाँ, ये आम तो लेती जाओ।
5: लाओ अम्मा,
4: लो।
3: गर्मी अम्मा, हाँ? आप बहुत अच्छी हैं।
1: तुम्हें मीठे मीठे आम जो खिलाती हूँ।
6: अभी आपने सुना कार्यक्रम गर्मी, और श्रोताओं आइए अब चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। और हमारा अगला कार्यक्रम है कारगिल।

0: की शौर्य गाथा।
1: ये कार्यक्रम कारगिल युद्ध से ठीक पहले की परिस्थितियों की जानकारी देता है और वर्णन करता है कि कारगिल युद्ध के दौरान विपरीत और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के होते हुए भी किस प्रकार से भारतीय सेना ने अपार धैर्य और शौर्य का प्रदर्शन करते हुए विजय की पताका फहराई।
2: मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। सुप्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां कितनी जीवंतता से उन पराक्रमी युद्ध सैन्य महानायकों के प्रति असीम श्रद्धा की भावनाओं को जगाती है।
3: विजयश्री उन्हीं के लिए निर्धारित होती है जो कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय के साथ अविचलित और अडिग खड़े रहते हैं। आज का कार्यक्रम हम श्रद्धा सहित समर्पित करते हैं उन पराक्रमी योद्धाओं को जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी।
2: जी हाँ, आज हम बात करेंगे कारगिल युद्ध की, जो नियंत्रण रेखा के पास जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह ऐसी पहली लड़ाई थी जिसे संचार माध्यमों के द्वारा निरंतर प्रसारित किया गया और परिणाम स्वरूप इस युद्ध का आंखों देखा हाल भारत की जनता के घर घर तक पहुंचाया गया।
3: देश के विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से पत्रकारों ने इस युद्ध का जीवंत रिपोर्टाज प्रस्तुत किया, जिसके कारण जनता द्वारा सेना को अपार समर्थन मिला और फलस्वरूप भारतीय सेना का मनोबल और अधिक बढ़ा, जिसने इतिहास रच दिया। एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय जिसे आने वाली पीढ़ियां गर्व के साथ याद करेंगी। कारगिल का युद्ध 3 मई से 26 जुलाई 1999 तक लड़ा गया।

0: इस युद्ध को ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है, जो मुख्य रूप से स्थल और वायु सेना द्वारा लड़ा गया। उल्लेखनीय है कि इस दौरान भारत की समुद्री सीमाओं पर भी भारतीय नौसेना ने शत्रुओं पर कड़ी निगरानी रखी।
1: दिन था 6 मई 1999 का। समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर दुर्गम बर्फीले पर्वतों के बीच एक भारतीय चौकी पर सैनिक मुस्तैदी से पहरा दे रहे थे।
2: बहुत ठंडी आज तो। वैसे भी ये एक ऐसी जगह है जहां लगता है कि हम दुनिया के किसी और ही कोने में हैं, है ना?
3: ठीक कहते हो तुम। अभी मई महीने में ही इतनी ठंड है तो पता नहीं सर्दियों में क्या हाल होता होगा।
2: वैसे तुम्हारी पोस्टिंग तो अभी हाल ही में हुई है ना? अरे मैंने तो यहाँ की 2 सर्दियां देख ली हैं।
3: जरा उधर देखो।
2: अब किधर?
3: वहां लगता है कोई इधर ही आ रहा है।
2: कोहरा काफी घना है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हाँ, इतना कह सकता हूं मैं कि कोई सैनिक नहीं है। उसका पहनावा तो देखो।
3: पहनावे से तो कोई कबायली लगता है। लेकिन इधर क्यों आ रहा है? कोई जासूस तो नहीं? वार्निंग दो इसे।
2: आने दो।
4: ए! कौन हो तुम? रुको, रुको! जाओ वहीं रुक जाओ, रुको!
5: कौन हो तुम?
6: साहब मैं एक चरवाहा हूँ साहब, मुझे एक बहुत जरूरी सूचना देनी है। अपने बड़े साहब से मुझे मिलवाओ।
5: क्या सूचना?
6: साहब साहब दुश्मनों के बारे में।
5: अच्छा यहीं रुको, चलो।

0: कमांडेंट साहब ने बुलाया तुम्हें।
1: नमस्कार सर, मेरा नाम ताशी नामग्याल है।
2: हाँ नमस्कार, कहो क्या कहना चाहते हो?
1: सर हम एक चरवाया है।
2: आगे बताओ।
1: सर ये 3 मई की बात है, कुछ दिनों पहले मेरा याक खो गया था। उसे खोजते हुए मैं पहाड़ों पर काफी ऊंचाई में चला गया था। एक ऊंची चट्टान पर खड़े होकर मैंने दूरबीन से नीचे देखा तो एक बड़ा अजीब सा नजारा मुझे दिखाई पड़ा।
2: क्या देखा तुमने?
1: शब मैंने देखा कि पठानी कपड़ों में बहुत से लोग एक जगह पर जमा हैं।
2: क्या?
1: उनमें बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक भी हैं। वे बंकर खोद रहे थे और उनके पास बहुत सारे हथियार भी थे। हाँ
2: कितने लोग रहे होंगे?
1: शब पूरी गिनती तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ इतना पक्का है कि वो बॉर्डर के उस पार से आए हैं और बहुत ही बड़ी संख्या में जमा हो रहे हैं।
2: ये तो बड़ी जरूरी बात बताई तुमने। हो सकता है कि हमें तुम्हारी फिर से जरूरत पड़े। तुम्हारा घर कहाँ है?
1: साहब मेरा गांव है घर कौन, ये कारगिल शहर से 60 किलोमीटर दूर बटालिक शहर के पास है।
3: तो साथियों, इस स्थानीय सजग चरवाहे की सूचना से सेना सतर्क हो गई। जब सेना ने इस बात की छानबीन की तो बात सच निकली। उन्हें पता चला कि सीमा पार से बहुत बड़ी घुसपैठ हुई है।
4: सही स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए भारतीय सेना ने मेजर सौरभ कालिया के नेतृत्व में एक गश्ती दल भेजा, लेकिन वो दल कभी वापस ही नहीं आया। 10 जून को पाकिस्तानी सेना ने उनके बुरी तरह से क्षत विक्षत शव वापस भेजे।
3: अब इस बात में कोई संदेह नहीं था कि पाकिस्तान द्वारा बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई थी। सेना द्वारा गहन जांच में पता चला कि मई 1999 की शुरुआत में ही पाकिस्तानी सेना नियंत्रण रेखा पार करके मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक क्षेत्रों में लगभग 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक घुस आई थी और पाकिस्तानी सेना के लगभग 2000 से अधिक पैदल सैनिकों और कमांडो ने यहां अपनी चौकियां बना ली थी।
4: यद्यपि पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा कहा गया कि ये घुसपैठिए कश्मीरी स्वतंत्रता सेनानी हैं, लेकिन छापेमारी में पकड़े गए लोगों और हल्की गोलाबारी में मारे गए सैनिकों के पास मिले सारे दस्तावेजों ने साबित कर दिया कि ये काम पाकिस्तान के अलावा किसी और का नहीं था।
3: दरअसल पाकिस्तान का उद्देश्य था सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इन क्षेत्रों में अपनी सेना भेजकर श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर कब्जा करके लद्दाख को कश्मीर से अलग करना और कारगिल व सियाचिन पर कब्जा करना।
4: ये भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर सीधा प्रहार था और इसलिए भारत को बड़े पैमाने पर कारगिल में एक सैनिक अभियान प्रारंभ करना पड़ा, जिसे कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस सैन्य अभियान का नाम था ऑपरेशन विजय। भारतीय सेना समझ चुकी थी कि विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों में शत्रुओं से युद्ध करना एक बेहद कठिन और दुष्कर कार्य होगा। भारत सरकार द्वारा नियंत्रण रेखा को पार न करने के निर्णय ने भारतीय सेना के कई सामरिक विकल्पों पर अंकुश लगा दिया।
3: भारतीय सीमा में घुसे हुए पाकिस्तानी पूरी तरह से सुरक्षित और अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे। उन्हें पहाड़ों की ऊंचाइयों पर होने का प्राकृतिक लाभ था, जबकि भारतीय सेना घाटी में खुले होने के कारण बेहद असुरक्षित थी। लेकिन युद्ध अवश्यंभावी था और भारतीय सेना ने युद्ध छेड़ दिया।
4: दिन में किए गए हमले खतरनाक हो सकते थे क्योंकि देख लिए जाने का जोखिम था, इसलिए भारतीय सेना द्वारा आक्रमण मुख्य रूप से रात को 0 डिग्री से भी कम तापमान में किए गए। सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी समुद्र तल से 18,000 फीट की खड़ी चढ़ाई को चढ़ना।
5: साथियों, हमारे सामने जो सबसे बड़ी कठिनाई है वो है इन पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई पर चढ़ना।
2: लेकिन सर, एक और बहुत बड़ा खतरा है और वो है दुश्मनों द्वारा देख लिए जाने का।
5: ठीक कहते हो, अगर हम चढ़ने की कोशिश भी करें तो वो बड़ी आसानी से हमें अपने निशाने पर ले सकते हैं।
6: जी सर।

0: इसलिए दिन की रोशनी में आक्रमण करना बिल्कुल संभव नहीं है। हमारे पास मात्र रात को ही आक्रमण करने का विकल्प बचता है।
1: सही बात। सुनो, सब इधर आओ।
2: जी, यस सर।
1: ये मेज के चारों ओर।
0: जी सर।
2: उधर से।
1: हाँ जी। तुम्हें याद होगा कि अभी 3 दिन पहले हमारी वायुसेना के विमान इस क्षेत्र में आक्रमण करने आए थे।
0: जी सर।
1: वायुसेना ने हमले के दौरान इस क्षेत्र के चित्र भी खींचे हैं और उन्हें हमारे पास भेजा है।
0: जी सर।
1: इन चित्रों के आधार पर मैंने ये नक्शा बनाया है।
0: जी सर।
1: इस नक्शे के अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि दुश्मनों की चौकी जहां है उसकी विपरीत दिशा से हमें पर्वत पर चढ़ना होगा, यानी दाहिनी ओर से।
2: जी सर, आप ठीक कहते हैं सर। इस तरफ से सर, यहां से पहाड़ की दाहिनी ढाल भी ज्यादा कठिन है सर। दुश्मन सोच भी नहीं सकता कि हम इस तरफ से चढ़ भी सकते हैं।
1: बिल्कुल ठीक। तो साथियों,
3: यस सर।
1: अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मेरा अंदाजा है कि इस चढ़ाई में हमें कम से कम 5 घंटे तो लगेंगे, तो क्यों ना रात 11 बजे से इस अभियान को शुरू किया जाए।
0: जी जी सर।
1: चढ़ाई करने वाली हल्की रस्सियां तैयार कर ली जाएं। हथियारों में राइफल्स, हल्की मशीन गन और हथगोले होंगे।
0: सर, जी सर।
1: कोई शक?
0: नो सर।
1: बी प्रिपेयर्ड फॉर द मिशन।
3: यस सर।
2: सर, अब हम चोटी के बिल्कुल पास आ गए।
1: धीमे बोलो, धीमे।
2: जी,
1: उन्हें पता ना चल जाए।
2: जी सर।
1: चोटी पर पहुंचते ही हम सभी रेंगते हुए उनके तंबुओं की ओर बढ़ेंगे।
2: जी।
1: और हथियारों के साथ अपनी अपनी पोजीशन ले लेंगे।
2: ठीक है सर।
1: और फिर तुम विपरीत दिशा में एक हथगोला फेंकना।
2: जी सर। जी सर।
1: बम के फटने की आवाज सुनकर अपने तंबुओं से कुछ सैनिक बाहर जरूर निकलेंगे और तुम्हें उन पर फौरन फायरिंग करनी होगी।
2: जी सर।
1: ठीक है, आगे बढ़ो। बहुत धीरे, आवाज नहीं निकलनी। जैसे धीरे
2: धीरे धीरे
1: तपे पो बस। अब हम चोटी पर आ गए हैं तो अब रेंगना शुरू करो।
2: रेंगेंगे। जी सर।
1: कोई भी उठ कर नहीं छोड़ेगा, सब रेंगेंगे। आवाज नहीं, आवाज नहीं, आवाज नहीं। हर कोई अपनी पोजीशन ले ले।
2: हाँ सर। एवरीबॉडी रेडी?
1: यस सर।
2: यस सर।
1: अब हथगोला फेंको।
2: गुड।
1: वो अपने बंकरों से बाहर आ रहे हैं।

0: इस मिशन में भारतीय सेना को भारी सफलता मिली। दुश्मन के अधिकांश लोग मारे गए और कारगिल की इस चोटी पर भारतीय सेना ने अपना परचम लहरा दिया। ऑपरेशन विजय में भारतीय वायुसेना की बहुत ही अहम भूमिका रही। इस युद्ध में सामरिक महत्व के मुख्य क्षेत्र थे मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक।
1: भारतीय सेना ने एक अपूर्व गरिमामय इतिहास रच दिया था।
0: 3 मई से 26 जुलाई 1999 के बीच लड़ी गई इस लड़ाई में 25 सैनिक अधिकारियों और 436 जवानों की शहादत हुई। इसके अलावा 54 सैनिक अधिकारी और 629 जवान घायल हुए।
1: इस युद्ध में 2 सैनिक अधिकारियों और 2 जवानों को परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। ये पराक्रमी योद्धा हैं कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, राइफलमैन संजय कुमार और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव।
0: देश इन रणवीरों को उनके असीम शौर्य हेतु श्रद्धा से नमन करता है। कारगिल युद्ध की गौरवशाली विजय की स्मृति में 26 जुलाई को अब देश भर में विजय दिवस मनाया जाता है।

0: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और श्रोताओ अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम, हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, मैं विभा आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ हमारी खास पेशकश सदाबहार नगमों के लिए। दोस्तों, संगीत वक्त की सरहदों में कैद नहीं होता। कुछ गीत ऐसे होते हैं जो पीढ़ियों बदल जाने के बाद भी दिलों में उसी तरह बसते हैं। आज का ये कार्यक्रम उन्हीं अनमोल धुनों और यादगार गीतों के नाम हैं जो कल भी हमारे थे, आज भी हमारे हैं और हमेशा हमारे रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत नगमे से, जो है फिल्म धर्मात्मा से। संगीतकार किशोर, गायक कलाकार किशोर कुमार, संगीतकार हैं आनंद जी विरजी शाह, कल्याण जी विरजी शाह, और गीतकार हैं इंदिवर।

0: यकीन नहीं आया।
1: रेशमा, तुम नहीं जानती तुम मेरे लिए क्या हो। जिंदगी में इतनी कमी का एहसास कभी नहीं हुआ। हाँ कह दो रेशमा, हाँ कह दो।

वाह क्या बात है, सचमुच पुराने गीतों की मिठास कुछ और ही होती है। इन गीतों में शब्द शायराना होते थे और संगीत में एक सादगी भरी गहराई। कहा भी गया है कुछ नगमे उम्र भर गूंजते रहते हैं, वो दिल से निकले तो असर रखते हैं। अब पेश है सदाबहार गीत जो मोहब्बत के एहसास को बड़ी खूबसूरती से बयां करता है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ से सदाबहार नगमे। उम्मीद है ये सुरों की महफिल आपको भी बीते सुनहरे पलों में ले जा रही होगी। पुराने दौर के गीतों में एक ख़ास बात थी, ना कोई शोर ना कोई जल्दबाजी, बस दिल से निकली आवाज़ और सीधे दिल तक पहुंचने वाला संगीत।

क्या खूबसूरत गीत! वाकई ऐसे गीत समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं, तभी तो आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं। दोस्तों, संगीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि भावनाओं की अभिव्यक्ति है, और जब बात हो सदाबहार नगमों की तो हर गीत अपने साथ एक कहानी लेकर आता है।

आप सुन रहे हैं सुरों की धड़कन आकाशवाणी लखनऊ और कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। दोस्तों, मोहब्बत, इंतज़ार, खुशी, जुदाई, पुराने गीतों ने हर एहसास को इतनी खूबसूरती से बयां किया है कि शब्द कम पड़ जाते हैं। तो आइए अब ये गीत सुनते हैं वादे के ऊपर।

0: इसी के साथ ही सदाबहार नगमों का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वित्री कड़गम सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। 144 विधायकों ने सरकार के पक्ष में मतदान किया, जबकि 22 विधायकों ने विश्वास

0: प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। प्रमुख विपक्षी दल डीएमके ने कार्यवाही के दौरान विधानसभा से वॉकआउट किया। तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने विजय को सदन में अपना बहुमत साबित करने का आदेश दिया था। विधानसभा चुनाव में विजय की पार्टी को 108 सीटें मिली थी। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के मल्लाडी कृष्ण राव और भाजपा के एन नमसिवियम ने भी समारोह में मंत्री पद की शपथ ली। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली की मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस मैककेना से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। श्री फ्रांसिस्को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने वांछित भगोड़े प्रदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के समन्वय से यह कार्य किया। सीबीआई ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रदीप वांछित था। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्नपत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए लगभग कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माय भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने बताया कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,881 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार दिन के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। सेंसेक्स 201 अंक बढ़कर 74,760 पर, जबकि निफ्टी 77 अंक के साथ 23,457 पर पहुंच गया। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 401.6 मीटर धात 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं और लीजिए अब सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। ये सूचना मिली है मोहल्ला बस्ती धनवंतराय कस्बा व थाना मलियाबाद लखनऊ से शैफ पुत्र जाबिर अली से कि उनकी बहन कुमारी सबा 13 अप्रैल सन 2026 से कहीं लापता हैं। सबा का हुलिया इस प्रकार है, उम्र लगभग 20 वर्ष, रंगोरा,

0: जिस समय सभाघर से निकली थी इन्होंने नकाब पहना हुआ था और पैरों में हवाई चप्पल पहनी हुई थी। कुमारी सभा के मिलने की सूचना अगर किसी को भी प्राप्त हो तो वो कृपया इस मोबाइल नंबर पर दे 7897225969। नंबर एक बार फिर से 7897225969। शिव प्रसाद पाल पुत्र चंदर ग्राम महमद खेड़ा मजरा गोशालालपुर थाना मलियाबाद से सूचित करते हैं कि मुस्कान 11 अप्रैल सन 2026 से कहीं लापता हैं। मुस्कान का हुलिया इस प्रकार है, उम्र लगभग 26 साल, लंबाई 152.4 सेंटीमीटर, रंग गेहुआ। जिस समय मुस्कान घर से निकली थी उन्होंने काही कलर की साड़ी और पैरों में हवाई चप्पल पहनी हुई थी। इनके मिलने की कोई भी सूचना आप इस मोबाइल नंबर पर दे सकते हैं 9198529586। नंबर एक बार फिर से 9198529586। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई। मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता, हम आपको बता दें NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनते हैं हर रोज सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। एक बार फिर से सुन लीजिए, NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। प्रत्येक बुधवार शाम 6:30 पर कार्यक्रम हेलो किसान, प्रायोजक IFFCO।
1: कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है। इनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें, वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
4: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
5: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 आकाशवाणी लखनऊ पर।
6: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
0: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। इस समय दोपहर के 1:10 होने को हैं। अब इलाकाई खबरें नश्र की जाएंगी।
7: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत में ईंधन की बचत और वसाइल के बेहतर इस्तेमाल को लेकर रियासत के लोगों से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अपील से जुड़ने के साथ ही कई अहम हिदायत दी हैं। एक रिपोर्ट।
8: सरकार की तैयारियों के संबंध में कल अपने सरकारी आवास पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में

0: मुख्यमंत्री ने स्वयं और मंत्रियों की फ्लीट में तत्काल 50% तक कटौती करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत अनावश्यक वाहनों को हटाया जाएगा। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से भी जिम्मेदारी निभाने को कहा है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सरकारी कार्यों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक उपयोग किया जाए और सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे मनाया जाए। साथ ही मंत्री, सांसद और विधायक भी सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। श्री योगी ने कहा कि सरकारी बैठकों, सेमिनारों और कार्यशालाओं का अधिक से अधिक आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया जाए, जिससे अनावश्यक यात्रा और ईंधन की खपत कम हो सके। इसके अलावा उन्होंने वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को भी प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से भी अपील की है कि वे मेट्रो, बस, साइकिलिंग और कार पुलिंग जैसे विकल्प अपनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए सभी को सतर्क और जिम्मेदार व्यवहार अपनाने की आवश्यकता है। समाचार कक्ष से अरुण।
1: मरकजी जांच एजेंसी CBI ने नीट इम्तिहान 2026 के मुबैना पेपर लीक होने के सिलसिले में एक केस दर्ज किया है। इस मामले में मुल्क भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने आला तालीम महकमे की तहरीर की बुनियाद पर मामला दर्ज किया है। मामले की जांच के लिए CBI की खसूसी टीमें मुख्तलिफ मकामात पर भेजी गई हैं। इस दरमियान NTA ने वाजह किया है कि दोबारा इम्तिहान के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं होगी।
2: NTA ने कहा है कि परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे और दोबारा होने वाली परीक्षा में उपयोग किए जाएंगे। एजेंसी ने कहा है कि दोबारा परीक्षा के लिए फिर से पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
1: मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव का 38 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। उन्हें आज सुबह लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मुर्दा करार दिया गया। मौत की वजह अभी वाजह नहीं हुई है। प्रतीक यादव की अहलिया अपर्णा बिष्ट यादव इस वक्त रियासती खवातीन कमीशन की नायब सदर हैं। वज़ीर-आला योगी आदित्यनाथ ने प्रतीक यादव के इंतकाल पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर-आला मुलायम सिंह यादव के बेटे और उत्तर प्रदेश रियासती खवातीन कमीशन की नायब सदर अपर्णा यादव के शौहर प्रतीक यादव का अचानक इंतकाल इंतहाई अफसोसनाक है। भारत कल से शुरू होने वाले दो रोज़ा ब्रिक्स वज़राए खारजा इजलास की मेज़बानी करेगा। वज़ीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर मीटिंग की सदारत करेंगे। इजलास में ब्रिक्स रुकन ममालिक के वज़राए खारजा और वफूद शिरकत करेंगे। वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान ब्रिक्स रुकन ममालिक के वज़राए खारजा बाहमी मफाद के आलमी और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने मुल्क भर की अदालतों को जदीद बनाने के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए जस्टिस अरविंद कुमार की सरबराही में एक आला सतही कमेटी के कायम का ऐलान किया है। हुकूमत से इस मकसद के लिए 40,000 से 50,000 करोड़ रुपए मख्तस करने को कहा गया है। कमेटी 31 अगस्त तक वज़ीर आज़म की इक्तसादी मशावरती काउंसिल के रुकन संजीव सान्याल को अपने तफसीली नतायज और मतलूबा फंडिंग की तफसीलात पेश करेगी। हुकूमत ने सोने और दीगर कीमती धातों पर दरामदादी ड्यूटी बढ़ा दी है, जो आज से लागू हो गई है। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि सोने और चांदी पर दरामदादी ड्यूटी 5% और प्लेटिनम पर 5.4% होगी। मजीद बरां तामील के उसूलों के तहत कीमती धातों में इस्तेमाल होने वाले कैटलिस्ट पर बरामदादी ड्यूटी 4.35% होगी। रियासत के काउंसिल और कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूलों में आज से इंडियन लैंग्वेज समर कैंप 2026 शुरू हो रहा है। ये खसूसी कैंप वजारत तालीम हुकूमत हिंद की हिदायत के मुताबिक मुनक्किद किया जा रहा है, जो आज से 19 मई 2026 तक जारी रहेगा। कैंप का इफ्तिताह मरकजी वजीर तालीम करेंगे। रियासत के बुनियादी तालीम के वजीर संदीप सिंह ने कहा कि नई तालीमी पॉलिसी 2020 के मुताबिक बच्चों को भारतीय जबानों, लोक रवायात और सकाफती इकदार से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि कैंप के जरिए तलबा को अपनी मादरी जबान और भारतीय जबानों को भरपूर विरसे को समझने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें ख़त्म हुईं।
3: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है मातृ शिशु स्वास्थ्य का कार्यक्रम।

आंगनबाड़ी कार्यक्रम सुनने वाले सब श्रोता पंचन का पंचे नीना सोनकर बहिनी के नमस्कार, जय हिंद। पंचे, जब ये कार्यक्रम हम प्रस्तुत करे के लिए आकाशवाणी की जो स्टूडियो है यहाँ आथन ना, तो ढेर सारे विचार हमारे मन में होते हैं कि हम काका एक दिन होता समय साप्ताहिक कार्यक्रम है आंगनबाड़ी, तो यूँ लगाता है कि हम काका इस चीज़ है जो आपके मतलब की है, काम की है, वो आपका उके जानकारी दई दई, और अगर जानकारी आपका है भी तो उका दोहराए दई उन पंचे के लिए या उन बहनियन के लिए जिनका एक ही जानकारी बिल्कुल नहीं ना, और है भी तो थोड़ी बहुत, और उससे वो लाभ नहीं उठा पा रही। अब जैसे ग्रामीण स्वास्थ्य की बात करी तो देखो सरकार इतने सारे उपाय कर रही, घर घर देखो एनएम पहुंचती हैं, आशा बहनी पहुंचती हैं, हैं जिका आशा बहुरिया के नाम से भी आप लोग जानत हुई हो, तो उनका क्या काम है? उनके काम यही है कि गाँवन की जौन है ग्रामीण क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवा जौन है वो सही रहे, और यही कहा जाता है कि जौनी आशा हैं, एएनएम हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री है, और ये जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, ये सब एक तरह से इका ऐसे समझा जाए कि प्राथमिक और जौन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ से लेके ग्रामीण जो गांव के क्षेत्र है यानी हमारे ग्रामीण अंचल के जौने अवध के क्षेत्र है वन ई जो हैं एक तरह से सेतु की तरह, यानी एक पुल होता है ना, जैसे कौनो नदी के ऊपर एक पुल बनावा जाता है, और यही कहा जाता है कि पुल जौन है हमका ऊ पार उतारी, तो बिल्कुल ऐसे ही आशा की भी भूमिका है, एएनएम की भी भूमिका है, लेकिन आज हम बात करब आशा की कि आशा है कौन। आशा जौन है एक ऐसी कार्यकर्ता है जिका मान्यता प्राप्त ही की तरह की मान्यता प्राप्त ही जो सरकार द्वारा मान्यता का प्राप्त थी, ई सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी कहलाती, ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवान की सबसे अहम कड़ी यही का माना जाता है। वैसे तो जीके जीके नाम लिया उस समय है, लेकिन इनके बारे में आज हम बतियाब। ई हमारे गाँव में स्वास्थ्य की देखभाल करती हैं, हर परिवार तक स्वास्थ्य सेवा पहुँचाए के काम करती हैं। इनके आशा कार्यकर्ता के मुख्य जौन काम अगर हम समझी, और सबका मालूम है कि गर्भवती महिलाओं और बच्चन की जौन छोटे छोटे लड़का बच्चा है उनकी देखभाल करे का इनका होता है। ये हर जौन गर्भवती बहनी है, महिला है, जो भी इस समय है उनका समय पर अस्पताल ले जाए के लिए, प्रसव पूर्व प्रसव के बाद की जांच करवाए के लिए, ध्यान से सुनो, और सब है जरूरी जौन टीका है उका लगवाए के लिए प्रेरित करती हैं। कहे से कि बहुत से अब है हाँ ऐसे ऐसे मनाई कि जो कहा था अरे टीका वीका लगवाए के लिए अस्पताल कौन जाए, मार बड़ी धूप पड़ रही, मार इससे तबीयत खराब हो जाए, तो देखा खाए से तबीयत नहीं खराब होती, खाना वाना भोजन वोजन भी तो आप पंचे खाते हो समय पर, तो समय पर जच्चा बच्चा के या जो नवजात शिशु है उके टीका भी लगे का चाहिए। ये समझ ले ये बात, हर काम छोड़ के आपका जायका है। आशा कार्यकर्ता ये सुनिश्चित करा थी कि हर महिला का जननी सुरक्षा योजना और 108 जैसी सेवा उके लाभ मिल पाए, यानी जो 108 नंबर सेवा है ये योजना है, मतलब ये लई जाती ये बस है, मतलब छोट जी पर 108 नंबर लिखा होता है इका जी का मिनी बस या फिर जो भी आप समझाओ, लेकिन उके ऊपर खूब सजी धजी रहा थी रंग बिरंगी से है, उके ऊपर 108 सेवा लिखा रहा था, तो वही के माध्यम से आपका लई जाती। बच्चन के टीकाकरण में भी आशा कार्यकर्ता की भूमिका बहुत अहम ही, वही सुनिश्चित करती कि हर बच्चे का पोलियो, खसरा, टीबी और अन्य तरह तरह की जो बीमारी है उके टीका समय पर लागे। वो घर घर जाए के लड़का बच्चन के स्वास्थ्य की निगरानी करती हैं, माता पिता का सही जानकारी देती हैं। आशा कार्यकर्ता न केवल स्वास्थ्य सेवा प्रदान करती है बल्कि का करती, लोगों का जागरूक भी करती, बताती आशा जो उन कार्यकर्ता है कि साफ सफाई कैसे रखाओ, खाना भोजन कैसे पकाओ, पोषण के ध्यान कैसे रखाओ और बीमारी से कैसे बचाओ। वो हमका ये सिखा थी कि जल कैसा पिए का है, पानी

ऐसा नहीं कि बम्बा खोल के पानी गड़गड़ गड़गड़ पी गए हैं, या फिर घड़े में हाथ डाल के पानी पी गए, वो हो जाए अशुद्ध। शुद्ध जल पिए का है, हाथ धोए की आदत डाले का है, स्वच्छता के पालन करे का है, और पानी अगर गंदा भी आ रहा है हल्का फुल्का, तो प्रधान जी से कहो वो ठीक करवाइए, और नहीं तो वो का अच्छी नीके तनीके उबाल ले, उबाल ले हो तो वो के जौन कचरा फचरा है वो नीचे जमा हो जाता है। और महीन कपड़ा से महिलाएं देखो आज धोती होती तो पहनती ही हैं ग्रामीण क्षेत्र की, और नहीं वो पहनती हैं साड़ी पहनती हैं सिफोन इफोन की या पोलिस्टर की, तो उनकी जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं जो मतलब सास ही या कोई और भी वो, मतलब सास की भी सास वो थी, वैसे ऐसा होता है ना कि कोई कोई घर में जौन है कि सास है तो सास की भी सास ही, तो वो लोग धोती पहनने की शौकीन होती हैं, तो उनके धोती का खूब अच्छे नीके तनीके साफ कर ले, और जो महीन कपड़ा होता है उसका चौपरत कर ले, उसका धोए के खूब अच्छी तरह से वो धूप में सुखाए ले, और फिर घड़ा के ऊपर रखा हो जो पानी उबाले हो उसका धीमे धीमे डालो, और उतना डालो कि जिम्मा कचरा अंदर ना जाए, ई है शुद्ध जल। अगर पानी मटमैला या गंदा आ रहा, ये एक देसी तरीका बतावा, वैसे अगर आप वैसा छाने के लिए कोई साफ सुथरा और कपड़ा ले सकती हो तो आपकी मर्जी है, ये एक तरीका है जो सही से आपका समझ में आद भी है और आप लोग समझत भी हुई हो, और ये जो छन्नी वन्नी होती है ना जिस चाय वाय छानी जाती इससे ना करे हो, है ना। और जो हम अभी बात कहा है ना कि नई नई बहुरियाँ हुई या फिर कम उम्र में, वैसे भी गांव में देखो शादी हो जाती 18 बरस के बाद बिटेवन की, तो सास सास नहीं लगती, बहू बहू नहीं लगती, ऐसे लगते बहनी बहनी चल रही, तो पॉलिस्टर साड़ी की धोती की बात किया है हम, तो इस समय गर्मी के मौसम है तो कोशिश करो कि सूती कपड़ा सूती धोती पहनो, और जब खाना वाना भोजन जो पकौती हो ना चूल्हा वूल्हा जलाए कि या फिर गैस वैस पर कितने कौनों साधन पर पकाओ, लेकिन अपनी सुरक्षा अपने हाथ होती, ये सब बातन का बहुत ध्यान में रखे का है। देखो कभी कभी ऐसे इस घटना सुन लेते हो आप पंचे सुन लेते हो कि एक चिंगारी से देखो सब झोपड़ी जल गई और जाने कितनी रही जो चपेट में आए गई, ये समय देखो घास सूखी हुई गई है, झोपड़ी पे जो खर पतवार डाला जाता वो बिल्कुल सूख के बिल्कुल खंखड़ हो गया है, और मतलब का बताइए अब हर तरफ धूप है धूप ही, और कहूँ कहूँ तो देखो जहाँ 45-45 बांदा जैसे जिले में टेम्परेचर है तापमान है वन, तो 45 के बाद तो कहा जाता है अगिया अपने आप ही लग जाती, तो अब हम लोग इधर रहा था तो मतलब इतना शुक्र है कि ऐसा नहीं होता, लेकिन जौन सावधानी है वो बरते का है। अब शुद्ध पानी की बात कर लिया, फिर गाँव में कई बार महिलाओं का अपने स्वास्थ्य समस्या के बारे में खुल के बात करे में झिझक होती, तो आशा जो कार्यकर्ता है वो बहनिन का समझा थी, उनकी समस्या का सुलझा थी और समझा थी, और उनका सही जानकारी और सलाह दे थी, वो हमरे आपके स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाती और हमका ये सिखा थी कि अपनी सेहत के ख्याल रखाओ, ये जरूरी है। मेहरिया सही रही घर की तो पूरा घर परिवार सही रहत है, मेहरिया बिल्कुल दुखियारी पड़ी भई बिल्कुल पीरी पीरी एकदम जैसे लगा कि पीलिया हुईगा सूखी साखी, एक बच्चा हाथ में और एक मतलब गर्भ में, ऐसी स्थिति ना करो, वो ऐसी स्थिति अब होत भी नहीं ना, समय बदल गया है तेजी से आगे बढ़ रहा समय, और सबका मालूम है स्मार्टफोन में का का आता है, तो ये तो हम एक मोटी मोटी बात बतावा, बाकी आप लोग सब समझदार हो। तो आशा जो बहनी है कार्यकर्ता है वो उनके बिना हमरे आपके जो ग्रामीण क्षेत्र है उम्मा स्वास्थ्य सेवाएं अधूरी रह जाएंगे, तो उनके आदर सत्कार करो। आती हैं ये धूप दोपहरी माँ तो पानी पत्ता खियाओ पियाओ बतासा खियाओ पियाओ, उनके सम्मान करो उनके स्वागत करो, और उनके काम न केवल आपके और हमरे जीवन का बेहतर बनाते बल्कि गांव के हर परिवार का स्वस्थ खुशहाल रखे माँ मदद करत है। गांव की बात होए, लड़का बच्चन की बात होए, नवजात शिशु की बात होए, आशा की बात होए, तो देखो कैसा चित्रण होते आखिर आँखिन के सामने कि जैसे लगा था खेत खलिहान के हम पहुँच गए, बिल्कुल खेत खलिहान में पहुँच गए, कोने में कौनों घर परिवार है उनके पास हम जाए कि उनके हाल चाल ले रहे बैठे हैं, और ऐसे में सोहरा सुनाई दे रहे, तो देखो का है

0: बड़ी बहू,
1: ये तुम्हारी ना।
2: इतनी भी क्या जल्दी थी?
1: अरे और छोटी, ये तुम्हारे ना।
3: और ये
2: मेरी गुड़िया की ना।
4: पर दादी, आपके नाम?
5: सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
1: शुभ शुभ बोलो।
4: क्या
6: आरबीआई कहता है?
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: पंची, एक बार फिर से आप सबकी स्वागत है। आप सुन रहे हो आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम आंगनबाड़ी, और हम आज ही कार्यक्रम को पेश कर रहे हैं नीना सोनकर। और देखो पंची,

0: रहती है। नीक गौ नहीं हम आपका सुन बाबा, घर परिवार जाना तो का है, घर परिवार सबके सामंजस्य से यानी एक दूसरे के मान सम्मान से चलत है, और जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका सम्मान दे का चाहिए, ये हमारी परंपरा है, इसके बारे में हम ज़्यादा ना बोलब। और सास के बिना बहू अधूर ही और बहू के बिना सास, तो ये नीक नीक हमका मेल वेल करे हो कि के घर में का चल रहा है, हैं हम आपके मेल के करब इंतजार। लेकिन देखो कुछ ऐसे विशेष दिन होते उनके बारे में अभी बताए का होते है। अब आज तो हुई गई 13 तारीख है ना, 13 मई, अब 15 यानी परसों, परसों के दिन का है, हर साल मनावा जाता है विश्व आर्थोडेंटिक स्वास्थ्य दिवस। ये का है मनावा जाता है, जौन बच्चा जौन होते हैं छोट होते हैं जब, तो देखे हुए कुछ बच्चन के दांत जौन है टेढ़ा मेढ़ा होता है, और टेढ़ा मेढ़ा दांत जैसे होता है तो मना ही सोचत भी है कि देखे मैं चेहरा मोरा इतना नीक नीक है और बच्चा मुस्कुरात है तो ये टेढ़ा मेढ़ा दांत अच्छा नहीं लगत है। तो ये दिन का है, ये दिन है कि मुस्कान जौन है वो स्वस्थ रहे, यानी जब मुस्कुरावे तो मोतियन जैसे झिलमिलात भय दांत जौन है लड़का बच्चन के दिखाई दे। लेकिन उके लिए का करे का है, जो बच्चन के डॉक्टर होते हैं ना उनसे पहले ही परामर्श करे का है कि डॉक्टर साहब ये टेढ़े मेढ़ा दांत निकला है तो इका हम का करी। और ये भी कहा जाता है जहाँ तक हमका जानकारी ही कि 7 से लेकर 12 साल तक के बीच में ये एक ऐसा समय होता है जब डॉक्टर कहते हैं कि इके हम टेढ़े मेढ़े दांतन में कौनों ऐसी व्यवस्था कर दे कि जिससे इके दांत जौन है सलोतर मतलब बिल्कुल मोतियन के तरीके बिल्कुल सही सही सुंदर सुंदर दिखाई दें। और ई दिवस यही वदे मनावा जाते कि पहले के समय में ये सब जानकारी मने का कम होत रही, लेकिन आज सारी जानकारी होती। तो जब अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टर हैं और सब आपका व्यवस्था ही, तो आप अगर कोनो के लड़का बच्चा के दांत टेढ़ा मेढ़ा है 5 साल के होगा 6 साल के, तो उससे पहले ही धीरे धीरे डॉक्टर से मिलना मतलब शुरू कर दो। लेकिन ये बात याद रखे हो कौनो झोला छाप के पास ना जाए, कौनो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हुए जिके रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जिला अस्पताल भी हो सकता है, जिला अस्पताल में तो सब रजिस्ट्रेशन वाले डॉक्टर बैठे थे, जिला अस्पताल में आओ और वन पे आए के अपन लड़का बच्चन का बचपन से छुटपन से उनका आपका दिखाए का है डॉक्टर का कहा ऐसे कि जब बड़ा हो जाते मनई मतलब 15-20 साल में थोड़ी ये सब होता है कि बिल्कुल पक्का होएगा दांत और बिल्कुल बच्चा जो उन्हें यंग होएगा मतलब युवावस्था का प्राप्त कर ली है ना, तो उससे पहले ही नन्ना बच्चा दूध के दांत जब टूटे वाले हैं मतलब टेढ़ा मेढ़ा निकला है टूटा है नहीं टूटा है वो तो आप ज़्यादा अच्छे जानत हुई हो, लड़का बच्चा आपके पास है और सभी के पास होते हैं तो वो ध्यान रखें कि समय रहा थी कि इलाज कराए का है। ये तो हो गई कि 15 मई का आ रहा है विश्व आर्थोडोंटिक दिवस। अब एक बात और बताई दी कि गर्मी में काका होता आप सोचियो कि लू लागती गर्म लागती बेहोशी आती गला सूखत है और कहीं निकले के जीव नहीं चाहते लगते पेड़ की छाँव में बैठी रही, लेकिन रुकाव जरा तनी सुनाओ गर्मी में ये सब तो होता है कहे से गर्मी ही, लेकिन गर्मी में आँखन के भी रोग होता है। अब वो का रोग है देखो ये बताइए डॉक्टर संदीप सक्सेना जी और इनके परिचय इम्मा है समय ना हम खराब करब आप इका सुनाओ इनसे बतकही करें ननी ना सुनकर। श्रोताओं आज आकाशवाणी लखनऊ के VIP स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ के जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप सक्सेना जी को। और आज हमारी चर्चा का विषय है चूंकि मौसम गर्मी का है तो गर्मी के मौसम में ऐसे कौन कौन से नेत्र रोग होते हैं जिससे किसी की भी आंख में दिक्कत हो सकती है, इसी बारे में आज हम इनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर संदीप सक्सेना जी प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो ये बताइए कि इस गर्मी के मौसम में, वैसे गर्मी का मौसम तो हर साल आता है लेकिन गर्मी के मौसम में ऐसे कौन से नेत्र के रोग होते हैं जिनको समय से पहचानना या फिर उसके लिए प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। सबसे पहले क्या आप बताना चाहेंगे, एक डॉक्टर साहब नाम सुना है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, तो क्या ये भी गर्मी में ही होती है?
1: जी हाँ, ये मौसम बदलने वाले सीजन्स में होती है जी। तो अमूमन गर्मियों में होती है जबकि गर्मी का सीजन स्टार्ट होता है, और जब उधर बारिश का सीजन खत्म होकर के सर्दियां शुरू होने वाली होती हैं तब भी ये देखा जाता है, हालांकि गर्मियों के मौसम में ये ज्यादा रहता है। इसमें बेसिकली ये है कि आंखें लाल होने लगती है
0: जी।
1: और खुजली बहुत जोर के आने लगती है, और साथ में अगर आंख के अंदर इन्फेक्शन भी आता है तो उसमें फिर कीचड़ भी आना शुरू हो जाता है। तो इसमें मुख्यतः लाली और जो है खुजली अगर आंख में हो रही है और आंख मलने का या रगड़ने का मन कर रहा है तो इसके मतलब ये एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है।

0: अच्छे नेत्र रोग विशेषज्ञ को, और साथ ही उसको रगड़िए नहीं, मलिए नहीं। अभी डॉक्टर साहब ने ये भी बताया कि आंख की जो पुतली है वो गल भी सकती है।
1: जी, तो ये काफी दिक्कत का मर्ज है, इसको शुरू में ही पकड़ना बहुत जरूरी है।
0: डॉक्टर साहब, ये तो आपने गेहूं की कटाई या फिर धान की कटाई भी जब करें भविष्य में किसान भाई बहन, तो इस बात का ध्यान रखें। अब जो बात हम आपसे करने जा रहे हैं वो थ्रेशर की है। थ्रेशर भी इस्तेमाल गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में होता ही है।
1: जी.
0: तो थ्रेशर के बारे में भी सुना है कि इससे भी बहुत सी इंजरीज होती है, तो इससे किस तरह की इंजरी होती है? क्या ऐसा है कि इसके प्रयोग से भी कुछ चीज छिटक कर आंखों में जा सकती है और फिर वही पीड़ा और फिर वही नेत्र के साथ कुछ ऐसा कुछ हो सकता है गंभीर? क्या बताना चाहेंगे?
1: जी, जिस समय किसान भाई थ्रेशर का इस्तेमाल कर रहे हों उस समय पे प्रोटेक्टिव ग्लासेस तो जरूर से लगाना चाहिए।
0: जी,
1: जिस चीज की कटाई हो रही है वो आंखों में आ सकती है, एक तो मामला ये हो गया। और दूसरा ये है कि कभी कभी थ्रेशर की जो बेल्ट होती है वो भी अक्सर आसपास आदमी जो खड़ा हुआ है या वो अगर जो है किसान भाई उसमें काम कर रहे हैं तो वो कभी कभार बेल्ट भी जो टूट करके चेहरे पे या आंख पर जोर से आके लगती है। और इसमें हम लोगों ने ये देखा है कि ये अगर बेल्ट बहुत जोर से आंख पे लगती है तो आंख जो है फट तक सकती है, इतनी जोर के जो है लगती है। या अगर किसी वजह से फटती नहीं है तो आंख के अंदर खून आ सकता है, आंख की जो है नस के ऊपर एक तरह से बहुत जोर का धक्का लगा तो जो है आंख की जो नस पे भी या आंख के पर्दे पे भी डैमेज हो सकता है और उससे देखने में दिक्कत आ सकती है। तो अगर ये दिक्कत आती है कि आंख जो है क्षतिग्रस्त हो गई है तो उसमें तो आप एक दिन भी रुक नहीं सकते हैं, आपको वही दिन जाकर के अपने नेत्र रोग विशेषज्ञ को जरूर से दिखाना है। यदि आंख फट गई है तो उसमें जो है फिर टांके लगाए जाएंगे काली पुतली पे या आंख पे कि कम से कम वो बह ना जाए, वरना अगर समय पर इलाज नहीं होता है तो आंख अगर बह गई और उसके जो भीतर के जो लेंस है और सब जो कंटेंट्स हैं वो बह गए तो रोशनी फिर वापस लौटनी ही नहीं है। तो ये बहुत ही सीरियस समस्या है जिसको कि थ्रेशर इस्तेमाल करते समय आपको प्रोटेक्टिव ग्लासेस लगा करके इससे बचना है।
0: डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि थ्रेशर से किस तरह से बचाव करना है। आपने उसकी बेल्ट का जिक्र भी किया कि अचानक से मान लीजिए टूट जाती है तो वो बहुत तेज से जैसे ऐसे लगता है कि किसी ने बिल्कुल मार दिया हो थप्पड़, इस तरह से लगती है।
1: जी, जी.
0: और ये आंख जो है ये बहुत कोमल अंग है शरीर का, इससे हम पूरी दुनिया को देखते हैं, तो प्रिकॉशन बहुत जरूरी है रखना। सावधानी बरतेंगे तो आंखें आपका साथ हमेशा देंगी। डॉक्टर साहब, अब जो बात मैं आपसे पूछने जा रही हूँ कि गर्मी जब होती है तो हर इंसान को कमरों को ठंडा करने की जरूरत पड़ती है। हर इंसान को लगता है कि थके हारे हैं, एक नींद आए तो अच्छी आए, अगर कमरा ठंडा हो तो क्या कहने। उस कमरे को ठंडा करने के लिए एयर कंडीशन का और कूलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठंडी हवा तो मिल जाती है लेकिन ड्राई आईज यानी कि आंखों में सूखेपन की समस्या बहुत आती है।
1: जी,
0: ऐसे में क्या करें?
1: तो ये ड्राई आई की समस्या अब बहुत ज्यादा कंप्यूटर यूज और मोबाइल यूज के कारण बढ़ती जा रही है समाज में, तो वो तो एक चीज हो गई। जो इनका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उनके तो ड्राई आईज वैसे ही होने की संभावनाएं हो जाती हैं। तो वहां पे चूंकि ये बात जो निकली तो उसमें अगर आप कंप्यूटर यूजर हैं या बहुत देर तक मोबाइल देखते हैं तो हर जो 20-25 मिनट के बाद आप जरूर से आंखों को रेस्ट दें। और मेरा तो कहना ये कि ऐसे जो घड़ी के हिसाब से नहीं, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि लगभग घंटा हो गया अपना मोबाइल इस्तेमाल करते हुए या लैपटॉप इस्तेमाल करते हुए तो उसको 2 मिनट के लिए छोड़ करके वहां से उस जगह को छोड़ करके चाय पानी के बहाने आप टहल जाएं और फिर लौट करके बैठें तो इस तरह से आंख को भी जो है रेस्ट मिलता है, आंख की जो पलक झपकना भी नॉर्मल हो जाता है तो ये दिक्कतें खत्म हो जाती हैं। अच्छा, अगर जो है किसी को ये ड्राई आई की वैसे समस्या नहीं है लेकिन आप एसी या कूलर की हवा के थ्रो के सामने बैठते हैं तो भी आंखों में बहुत जल्दी सूखापन आता है, तो ऐसे वाले केसेस में अगर आपको लगता है कि हम एसी के सामने बैठ करके आंखों में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, एक जो डिसकंफर्ट सा आंख में आने लगता है, एक जो है देखने में अच्छा फील नहीं होता है या आंख से बार बार पानी बहने लगता है तो इसका मतलब पानी बह रहा है, तो वो पानी रिएक्शन की वजह से बह रहा है और उसमें जो है कारण है ड्राई आई का। ऐसे केसेस में गर्मी के मौसम में आप एसी कूलर से हट तो नहीं सकते लेकिन हवा का जो थपेड़ा है, हवा का जो थ्रो है, उसके सामने नहीं बैठना एकदम कि वो सीधे सीधे आंखों पे आए। आप कमरे पे कहीं जगह बदल करके बैठ जाइए कि एसी की ठंडक तो महसूस होए लेकिन उसका चेहरे पे थपेड़ा ना लगे। और दूसरा एक और चीज है कि आप या तो डी ह्यूमिडिफायर्स भी यूज कर सकते हैं साथ में, या एक अपना आसान तरीका है कि अगर आपको लंबे

0: समय तक एसी में बैठना है, तो एक किसी तसले नुमा चीज में आपने पानी भर करके उस कमरे में रख दिया साइड में, तो वो जब हवा वहां पे चलती है उसके अंदर की जो है कमरे की सर्कुलेट होती है, तो वो थोड़ा सा ह्यूमिडिफिकेशन या ह्यूमिडिटी हवा को देता है, तो जो हवा का जो सूखापन है, जो कि एसी की हवा का सूखापन कम होता है, तो उससे भी एक हद तक रिलीफ मिल सकता है।
1: जी डॉक्टर साहब, आपकी सारी बातों को सुनने के बाद ये समझ में आती है बातें कि गर्मी के मौसम में आंखों में भी बहुत सी समस्याएं होती हैं और हमें पूरी सावधानी बरतनी होगी, तभी हमारी आंखें महफूज रह पाएंगी।
0: जी
1: आपने सबसे पहले एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस की बात की कि ये बड़ों में भी हो सकती है, बच्चों में भी हो सकती है, इसके बारे में आपने बताया। गेहूं की कटाई के वक्त बाली का आंखों में छिटक कर जाना, उसके कारण भी ऐसा हो सकता है। आपने थ्रेशर इंजरीज के बारे में भी कि जब थ्रेशर कोई इस्तेमाल करता है तो उससे कैसे घटना दुर्घटना घट सकती है। आपने एसी और कूलर के वजह से ड्राई आई की भी बात की कि आंखें ड्राई हो सकती हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है। आपने ये भी बताया कि कमरे की नमी और आर्द्रता को बनाए रखने के लिए बहुत सारी चीजें आती हैं, उसका हम इस्तेमाल करना है।
0: जी हाँ, जी हाँ।
1: डॉक्टर साहब, अगर ये सब बातें जो आपने बताई हैं, किसी को आंखों में दिक्कत होती है, तो एक चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगे कि समय नहीं गंवाना है, किसी भी जिला अस्पताल जाना है और जल्दी से जल्दी किसी को भी जिसके भी आंखों में भीषण पीड़ा हो रही है गेहूं की कटाई के समय या फिर कोई भी उसको आंखों का रोग होता है तो डॉक्टर को दिखाना है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सी CHCs हैं, PHCs हैं, तो क्या कहना चाहेंगे।
0: जी हाँ बिल्कुल, आंख बहुत ही कोमल अंग है और आंखें नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तो इसलिए कोई भी दिक्कत आती है आंख में उसको हल्के में नहीं लेना है, और अगर आंख में चोट लग जाती है चाहे वो बाली से लगे चाहे थ्रेशर से, तो उसमें तो समय गंवाना ही नहीं है और तुरंत नेत्र रोग विशेषज्ञ को जो है दिखा करके जो सही उपचार है और डॉक्टर साहब जो कहें उसके हिसाब से बात फॉलो करनी है, तो उससे आंखों की बचत हो सकती है। और गर्मी का मौसम है, उसको बहुत हल्के में नहीं लेना है और आंखों को ध्यान से बचा के रखना है।
1: डॉक्टर,
2: आज तो पार्टी चाहिए,
3: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
4: आइडिया, यही करते हैं पार्टी,
2: पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
4: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
2: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है, सुना नहीं? नो शेयरिंग।
4: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
2: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
4: सो गर्ल्स, क्या हो रहा है?
6: बिल हो रहा है।
5: चल अपना कार्ड दे, पिन दे।
4: RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: पंची, एक बार फिर से स्वागत है, आप सुन रहे हो कार्यक्रम आंगनबाड़ी। और देखो, समय धीरे धीरे इतनी तेजी से निकलत है कि हम समय का नहीं पकड़ सकते हैं। और डॉक्टर संदीप सक्सेना रहे हैं और इनसे बात कही करें नीना से, उनका पूरी उम्मीद है कि आप इनकी बातन पे अमल करिए। और देखो, ये हमारे पास आवा है मेल, दुर्गेश नागनपुरे भैया लिखे, ग्राम जसवाड़ी, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से। इनके साथ हैं राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से। लेकिन है कि शुभ दोपहरिया, नमस्कार, आकाशवाणी लखनऊ के सभी कार्यक्रम बहुत नीक लागत हैं, आंगनबाड़ी कार्यक्रम बहुत नीक लागत है, आपके कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार की जानकारी और लोकगीत बहुत नीक लागत है, कार्यक्रम DTH पर भी सुन रहे हैं। ठीक है भैया, सबको और जोड़ो तो, है ना। किसान रेडियो क्लब से ग्राम व पोस्ट ललौवा, जिला लखीमपुर खीरी से विजयपाल यादव, शुभम यादव, शिखा यादव, ऋचा गुड़िया, सुरभि, राजेश और विजय पांडे भैया लिखिन है कि थैलेसीमिया पर जो जानकारी दीन 6 मई का दिन गई वो बहुत नीक रही और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का, आंगनबाड़ी नीक लागत है, स्वास्थ्य अच्छा रोज सुनाथन और लाभ उठाथन। हम आपको बता दें कि ई जौन जानकारी दिनरा थैलेसीमिया के बारे में ई दिनरा डॉक्टर कौशिक मंडल, जो SGPGI लखनऊ के जेनेटिक यानी अनुवांशिक विभाग के विभागाध्यक्ष हैं, उनका ढेर सारा हम दे दें धन्यवाद। कैसे वो आए नहीं पाए लेकिन फ़ोन पर हमसे बात करें और उनकी रिकॉर्डिंग हम आपके समक्ष प्रस्तुत किया जिससे आप लोग लाभ उठा पाओ। इंद्र कुमार मिश्रा भैया हैं, ये लिखे ने ग्राम अमृता कारी पाकर सीतापुर से। इंद्रपाल मिश्रा, दीपिका, सोनी, संजय, अजय, राहुल मिश्रा और परिवार के सब सदस्य, लेकिन 6 मई का थैलेसीमिया के बारे में जानकारी बहुत है उपयोगी लगी, गीतों पसंद आवा जो उन गौनाई रही, स्वास्थ्य चर्चा नियमित सुनाथन, उपयोगी बातन का ग्रामीण श्रोता पंचन तक पहुँचा थन और इतने अच्छे

0: कार्यक्रम के लिए धन्यवाद भैया, सबका दिल से धन्यवाद। और फिर चलत चलत बताए दे कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जौन है आपे की वदे है, ई हर जौन पात्र है ऊ है गरीब और कमजोर जो आय वर्ग के मनाई है उनके लिए है। इके लाभ उठाओ और जल्दी से पता नोट कर लो। कार्यक्रम है आंगनबाड़ी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ, पिन संख्या है 226001। देव अब नीना सुनकर बहनी का आज के कार्यक्रम समाप्त करी की अनुमति सभ्य श्रोता पंचन का नमस्कार। जय हिंद।
1: हरा समंदर गोपी चंदर गुंडिर मछली चिट्टा पानी, चिट्टा पानी, चिट्टा पानी, ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला

अभी आप सुन रहे थे मातृ शिशु स्वास्थ्य का कार्यक्रम आंगनबाड़ी। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं और लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम जवानों के लिए।

जवानों के लिए कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। फौजी साथियों, जय हिंद। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये कार्यक्रम है मेरा मेल और पत्रों पर आधारित। तो सबसे पहले मेल आईडी सुन लीजिए, जिसमें हमारे नए श्रोता भी हमें मेल करें और सुने अपनी पसंद के फिल्मी गाने। तो हमारी मेल आईडी है कार्यक्रम जवानों के लिए @gmail.com। तो अब देखते हैं हमारे आज का जो पहला मेल है वो किसका है और उनकी फरमाइश क्या है। जी हाँ, ये मेल आया है हमारे पास मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ का। इन्होंने लिखा है कि हमें सुनवा दीजिए आपकी कसम फिल्म का गीत, जिसके बोल हैं जय जय शिव शंकर। तो चलिए दिग्दर्शन जी और कविता गौड़ जी, आपकी पसंद का ये गीत हम आपको सुनवा देते हैं।

0: और देखिए ये मेल आया है हमें ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से। दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई बाबू, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से, ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से, प्रेमलाल वर्मा, वेदिका, वंश, निकेश, धर्मेंद्र, मेघा, नंदिनी, हर्षिता और ममता बाई वर्मा, रिंग रोड नर्मदा नगर से, सूरज वर्मा, नीरज, शिवम, धीरज, चिंता वर्मा, ऋषभ, कनक और भावना वर्मा का आपने लिखा है शुभ दोपहर। भाई आप लोग को भी शुभ दोपहर। और फिल्म का नाम लिखा है बेवफा, फिल्म का गाना सुनना है इनको और आवाज़ गुलाम अली की है, बोल है तेरी याद याद याद। तो चलिए आप सबकी पसंद का ये गीत हम आपको सुनवाते हैं, इंजॉय कीजिए।
1: के भी

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ से कार्यक्रम जवानों के लिए। तो देखिए, ये जो मेल आया है हमारे पास, वो है ज़िला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से रामराज राजू भानु, राम शंकर पत्रकार भाई वाले रक्षा मौर्य, राम सागर साहू रसूलपुर वाले, और आप सब ने फरमाइश की है फिल्म हमराज के गाने को सुनने की। तो आप सबकी पसंद का ये गाना फिल्म हमराज से।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जवानों के लिए। मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 2:15 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। CBSE ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और IPL क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार ने 144 विधायकों का बहुमत साबित कर विश्वास

0: मत हासिल कर लिया है। एडापड़ी पलनीसामी के नेतृत्व में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। एक रिपोर्ट।
1: लोक निवास में आयोजित एक सादे समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने मुख्यमंत्री और आज शपथ लेने वाले दो मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले मुख्य सचिव शरद चौहान ने केंद्र सरकार की उस अधिसूचना को पढ़कर सुनाया जिसमें मुख्यमंत्री और दो मंत्रियों की नियुक्ति की गई थी। समारोह के बाद श्री रंगासामी पुदुचेरी विधानसभा भवन स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय गए और अपना कार्यभार संभाला। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पुदुचेरी को सिंगापुर की तर्ज पर विकसित करने की दिशा में काम करेगी। श्री रंगासामी के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार प्रदेश में एनडीए की सरकार बनी है। अन्य मंत्रियों, विभागों और विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सरकारी सचेतक की नियुक्ति को लेकर एनडीए में विचार विमर्श जारी है। बिपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में 18वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से विधायक के रूप में शपथ ली, जबकि नंदीग्राम सीट रिक्त रखी गई है। इसके बाद मंत्रिमंडल के 5 अन्य सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण की। वहीं नौदा सीट से विजयी आम जनता उन्नयन पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर ने भी शपथ ली। कबीर ने रजीनगर सीट से भी जीत हासिल की है। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस राय ने सभी विधायकों को शपथ दिलाई। राज्य में फालता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को पुनर्मतदान होना है। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज कर दिए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। एक रिपोर्ट।
2: ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। सूत्रों के अनुसार काफिले का आकार कम करने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो बिना कोई नई खरीद किए उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया जाए। अंकित की रिपोर्ट के साथ अमीषा।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करके और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाकर आर्थिक स्थिरता में योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नागरिकों से की गई 7 अपीलों के अनुरूप है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। एक रिपोर्ट।
3: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों, अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया है और सरकारी काफिले से अनावश्यक वाहनों को हटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने, अनावश्यक सोने की खरीद से बचने और घर से काम करने को बढ़ावा देने की अपील भी की। राज्य सरकार ने मेट्रो सेवाओं और सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग पर बल दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। श्री यादव ने मंत्री परिषद के सदस्यों से राष्ट्रीय हित में पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कारपूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो तथा बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी राज्य में पेट्रोल और डीजल की बचत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने जनता से वाहनों का अनावश्यक उपयोग न करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम करने का निर्णय लिया है और मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को वाहनों के उपयोग में संयम बरतने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट, डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष CBSE की कक्षा 12वीं की विज्ञान, वाणिज्य और मानविकीय विषयों की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। CBSE

0: एक बयान में बताया कि 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 15,07,000 से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% है, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% है। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्री ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैककेना से मुलाकात की। एक रिपोर्ट।
1: श्री फ्रांसिस्को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल प्रमुख भाग लेंगे। श्री फ्रांसिस्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी करेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के लेख को साझा किया है, जिसमें बताया गया है कि पंजाब में आधुनिक रेलवे स्टेशन और बेहतर रेलवे नेटवर्क से प्रगति के नए द्वार खुल रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परिवर्तन क्षेत्र के लोगों के लिए अनेक अवसर लेकर आ रहा है। उन्होंने कहा कि ये लेख दर्शाता है कि पंजाब में किस प्रकार बदलाव आ रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 16वीं पेंशन अदालत का शुभारंभ किया। देश भर के पेंशन भोगियों ने इसमें हाइब्रिड मोड के माध्यम से भाग लिया। इन अदालतों का उद्देश्य पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए मौके पर भी निर्णायक समाधान प्रदान करना है, जिसमें पेंशन भोगियों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता न पड़े, उनका समय और धन दोनों की बचत हो और उन्हें एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र प्राप्त हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने वांछित भगोड़े प्रदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के समन्वय से यह कार्य किया। सीबीआई ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ एनडीपीएस अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रभदीत वांछित था। इस मामले में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए और कई सह आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम ने केवल नीति निर्माण के बजाय अंतर्राज्यीय समन्वय, सुगम सामाजिक सुरक्षा और श्रम कानूनों के सुदृढ़ कार्यान्वयन जैसे प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। वे प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, सरकार और निजी क्षेत्र की साझा जिम्मेदारी विषय पर आयोजित आयोग की बैठक को संबोधित कर रहे थे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माय भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने बताया कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,821 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिन के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% बढ़ाकर 15% कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार के आज दोपहर के कारोबार में 0.5% की वृद्धि देखने को मिली।

0: सेंसेक्स 403 अंक बढ़कर 74,962 जबकि निफ्टी 146 अंक की वृद्धि के साथ 23,526 पर था। भारत में इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन जल्दी हो सकता है। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ जाएगा। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून आमतौर पर हर साल पहली जून के आसपास केरल में शुरू होता है। विभाग ने देश के पूर्वोत्तर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि हो सकती है। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब में भी आज बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री फखरुद्दीन अली अहमद देश के पांचवें राष्ट्रपति थे। उन्होंने 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक पदभार संभाला। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। उधर बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे की तुंग स्यू टोंग को सीधे सेट में 21-9, 21-12 से सिर्फ 33 मिनट में हरा दिया। छठी वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का क्वार्टर फाइनल में मुकाबला डेनमार्क के अमाली शुल से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन किदाम्बी श्रीकांत ने सिंगापुर के लो केन यू को आसानी से 21-14, 21-15 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अगले दौर में उनका सामना चीनी ताइपे की सू ली योंग से होगा। हालांकि भारत के आयुष शेट्टी जापान के कोदाई नाराउका से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में कोरिया की सेंगमिन ली को 5-0 से हराकर लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। अन्य चार मुक्केबाजों को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। CBSE ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने या चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं और लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विज्ञान और किसान। इसके अंतर्गत आज सुनिए डॉक्टर यशपाल सिंह से की गई भेंटवार्ता। विषय है ऊसर सुधार की उन्नत तकनीक। भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जहां आपके पास समस्याग्रस्त भूमि है यानी ऊसर भूमि है तो उस का सुधार करके आप अच्छी खेती कैसे करें, टिकाऊ उत्पादन कैसे करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर यशपाल सिंह साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ऊसर सुधार की उन्नत तकनीक पर बात करें, लेकिन उसके पहले जो समस्याग्रस्त भूमि है यानी ऊसर भूमि है वो है क्या, इसके बारे में जरा बता दें।
3: किसान भाइयों बहनों नमस्कार। ये जो प्रश्न किया गया है ये आज के परिदृश्य में बहुत ही आवश्यक है इस विषय पर चर्चा करना, क्योंकि हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में लगभग 1.7 लाख हेक्टर जमीन ऊसर से प्रभावित है। अब उसमें से इसमें बहुत सारी जमीनें जो हैं हमारे वो छोटे कृषकों के पास हैं। अब ऊसर जमीन का पहचान तो किसान एक अपनी स्वयं ही पहचान को उसे मालूम ही है कि

0: मेरे पास जो ऊसर जमीन है, तो ऐसी जमीन जिसमें एक घास का तिनका तक नहीं जमता, उस बिल्कुल सफेद पाउडर सा आपको दिखाई देता है, और वो पाउडर जो है जिसको कि आप आराम से उसको भर करके, और पहले तो वो पाउडर जो होता था उसको कपड़े धोने और उन सब चीजों में इस्तेमाल किया जाता था,
1: यानी
0: जी जिसको रेह कहते हैं, और वही इन जमीनों की पहचान है। मुख्य रूप से गर्मियों के दिनों में ये रेह पूरी तरह से बाहर दिखाई देता है, जब बारिश होती है तो ये जमीन और इनकी जो पहचान है वो ये है कि बारिश के टाइम में जैसे ये रेह नीचे बैठता है और जैसी जमीन सूखती है तो इसमें बहुत मोटी मोटी दरारें पड़ जाती हैं। तो ये एक मुख्य पहचान है इन ऊसर जमीनों की, जिससे कि आप पहचान सकते हैं।
1: यानी अगर आपके खेत का बुखार बढ़ा हुआ है तो आप जानिए कि जमीन ऊसर है।
0: बिल्कुल, और इसका जो वैज्ञानिक पहचान है वो तो पीएच मान है। आपको सैंपल लेकर के प्रयोगशाला में अपना सैंपल का परीक्षण कराना होगा। अगर आपकी जमीन का पीएच मान 8.5 से अगर ऊपर आ रहा है, जैसे बुखार नापते हैं उस तरीके से इसको नापेंगे, 8.5 से ऊपर है तो आप समझ लीजिए कि आपकी जमीन ऊसर है।
1: तो अभी तक जहां ऊसर भूमि थी तो जिप्सम या पाइराइट के माध्यम से सुधार होता था, कुछ नया प्रयोग भी हुआ है, कुछ नई तकनीक आई है जिससे जो बीमार माटी है उसका सुधार हो सके?
0: अब समय के अनुसार नई नई तकनीकें आती जा रही हैं। उस समय जब जिप्सम का इजाद हुआ था, उस समय क्या था कि हमारे पास जब जिप्सम का इजाद हुआ था इन जमीनों को, ऊसर जमीनों को सुधारने के लिए, उस समय हमारे पास और कोई तकनीक नहीं थी, क्योंकि जो इन जमीनों को सुधारने के लिए जो इनमें सोडियम जो लवण होता है जो सबसे खतरनाक होता है,
1: यानी नमक,
0: नमक जो होता है, उस नमक को ही हमें हटाना है जमीनों से। हम नमक की मात्रा को कैसे कम करें, तो उसके लिए कैल्शियम जो होता है वो सबसे बड़ा एक सोर्स होता है, जो कैल्शियम सल्फेट होता है। तो कैल्शियम सल्फेट का कोई भी सोर्स अगर हो तो हम उसके माध्यम से इन जमीनों को सुधार सकते हैं। जब जिप्सम का इजाद हुआ था तो उस समय क्या था डॉक्टर साहब, हमारे पास लवण सहनशील किस्में उपलब्ध नहीं थी। तो तकनीकी जब आई तो सीधे हमने कहा कि जिप्सम हम डालें, पीएच मान को पहले लैब में एनालिसिस कराएं और पीएच मान के अनुसार हम निर्धारित कर लें कि हमें इतना जिप्सम डालना है। जैसे मान लीजिए पीएच मान अगर 9.5 है तो हमें 10 टन से लेकर 12 टन तक जिप्सम प्रति हेक्टेयर डालना होगा,
1: यानी 2.5 एकड़ में।
0: जी, तो उसी हिसाब से कैलकुलेशन कर लेते थे पीएच मान के अनुसार, और करने के बाद जिप्सम डाल के और किसान को कहते थे कि भाई अब आपके पास जो भी धान की, गेहूं की जो भी वैरायटी है, धान से ही शुरू होता था, जो भी वैरायटी बाजार में उपलब्ध है वो लगा लो। लेकिन जब से हमारे पास लवण सहनशील किस्में आई हैं डॉक्टर साहब, उन किस्मों को आने के बाद से जिप्सम की मात्रा को हमने आधा कर दिया। ऐसी तकनीकी निकाली जहां 10 टन जिप्सम डलता था
1: वहां
0: 5 टन जिप्सम डाल के और किसान से कहा गया कि आप लवण सहनशील किस्म उगाओ, तो उसकी जमीन ये किस्में लवण सहनशील किस्में है, ये अपने आप जो है जो नमक है उस नमक को खाती हैं और उनको
1: अच्छी
0: पैदावार देती हैं।
1: तो ये तो जिप्सम की बात हुई डॉक्टर साहब, इसके अलावा और कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे सुधार भी हो और पैदावार भी अच्छी मिले?
0: बिल्कुल सर, बिल्कुल। उसके बाद जो हमने काम किया उसमें फिर एक नया जो जिप्सम की जगह पर अब क्या हुआ कि जो हमारे ज्यादातर जिप्सम का जो सोर्स था वो राजस्थान के माइंस से निकलता था डॉक्टर साहब। अब जब वहाँ के जो एनवायरमेंटलिस्ट जो दी रुक, तो उसके बाद से फिर हमने नया इजाद किया फॉस्फो जिप्सम।
1: जी,
0: एक फॉस्फो जिप्सम भी जिप्सम की तरह ही काम करता है,
1: उत्पाद है।
0: बिल्कुल, वही एक उत्पाद है। और वो कहां से मिलता है कि जहां पर फॉस्फोरस की जो इंडस्ट्रीज है, जहां हमारा फॉस्फोरस खाद बनता है, उसका एक ये बाई प्रोडक्ट है ये निकलता है। और वो जहां फास्फोरस की इंडस्ट्री है वहां ढेरों पड़ा हुआ है।
1: तो इसका भी उपयोग करके ऊसर को सुधारा जा सकता
0: है बहुत अच्छी तरह से, और उतनी ही मात्रा जितनी जिप्सम की डलती थी उतनी फास्फो जिप्सम की डाल करके हम अपनी जमीन को सुधार सकते।
1: डॉक्टर साहब, क्या कचरा को कंचन बना करके या कबाड़ से जुगाड़ करके, यानी फसल अवशेष का प्रबंधन करके भी ऊसर सुधार सकते हैं?
0: बिल्कुल बिल्कुल सर, मैंने डॉक्टर साहब इस पर बहुत काम किया है मेरा, और बहुत सारे इस पर मैंने शोध किया है, और मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में क्या मैं हिंदुस्तान में पहला एक वैज्ञानिक हूँ जिन्होंने कचरा को, जो शहरी कचरा निकलता है, उस कचरे को हमने किसान के दरवाजे पर कंपोस्ट में कन्वर्ट किया है। वहां पर हमने क्या किया है कि जिप्सम की मात्रा को जहां 1/4 घटा दिया, उस कंपोस्ट को कचरे से कंपोस्ट बना के और उसको जिप्सम की मात्रा को 1/4 घटा दिया, 25% केवल, जहां 100% डलता था वह 25%,
1: यानी 3/4 घटा दिया,
0: 3/4 घटा दिया। क्योंकि खर्चा जो आता है सबसे ज्यादा ऊसर सुधार पर खर्चा जो होता है डॉक्टर साहब वो जिप्सम पर ही होता है।
1: डॉक्टर साहब, क्या जो कोयले की राख है, फ्लाई ऐश है, जो बिजली के कारखानों से कोयला जलता है, तो उसकी जो राख है वो भी फायदेमंद है?
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इस पर भी शोध कार्य हुआ है, और इस पर ये पाया गया कि ये जो ऊसर जमीनें हैं ये ऑर्गेनिक कार्बन में, जिसको जो कार्बनिक पदार्थ होता है जमीनों में, वो बहुत उसमें बहुत कमजोर होती हैं, बहुत कम होती है, मतलब भूखी होती है एक तरह से कही आप। तो ये जो फ्लाई ऐश है जिसको हम जो थर्मल पावर प्लांट से जो निकलता
1: उड़न
0: है,
1: राख,
0: उड़न राख जो निकलती है, आप

0: ऊंचाहार अगर थर्मल पावर पर चले जाएं तो वहां ढेर के ढेर पड़े हैं और फ्री में मिलता है
1: जी।
0: केवल जो ट्रक भरने का बस पैसा लगता है लेबर का, और कोई चार्ज नहीं है। ले आइए और आप उसको अपनी जमीन में डालिए, उससे जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ती है और उसका पोर स्पेस जो जमीन के जो जिस पानी सोखने की जो क्षमता है
1: जी,
0: वो बढ़ती है और उससे पैदावार भी हम उतनी ही प्राप्त कर सकते हैं जितना कि हम जिप्सम की मात्रा डाल करके।
1: डॉक्टर साहब, क्या कुछ जीवाणु खादे भी आ गई हैं जिनका इस्तेमाल ऊसर सुधार में हो सकता है, अच्छी पैदावार में हो सका है, इसके अलावा कंपोस्ट और वृक्षारोपण करके?
0: जी, ये भी तकनीकी हैं, जो नई नई तकनीकी हैं, जिन पर मतलब कहने का ये है कि सस्ती से सस्ती तकनीकी का इजाद किया जाए। हम लोग वैज्ञानिक इसी में लगे हुए हैं दिन रात कि खर्चा ऊसर सुधार पर खर्चा कैसे कम हो। तो उसमें अब जो हमारे जीवाणु युक्त जो खाद आई हैं, जैसे हमारे इंस्टीट्यूट संस्थान से निकला है, हेलो एजो है, हेलो पीएसबी है, ये क्या करते हैं कि ये जमीन में जो पोषक तत्व हैं जो पौधों को उपलब्ध नहीं होते हैं उन उपलब्धता को बढ़ाती
1: है जमीन में।
0: हाँ डॉक्टर साहब, ऊसर जमीन में जो पोषक तत्व हैं जो पौधों को नहीं मिल पाते उनकी उपलब्धता को बढ़ा देते हैं, और हमारा उद्देश्य

0: डाल करके
1: करते। डॉक्टर साहब, क्या कुछ जीवाणु खादें भी आ गई हैं जिनका इस्तेमाल ऊसर सुधार में हो सकता है, अच्छी पैदावार में हो सका है, इसके अलावा कंपोस्ट और वृक्षारोपण करके?
0: जी, ये भी तकनीकी हैं, जो नई नई तकनीकी हैं, जिन पर मतलब कहने का ये है कि सस्ती से सस्ती तकनीकी का इजाद किया जाए। हम लोग वैज्ञानिक इसी में लगे हुए हैं दिन रात कि खर्चा ऊसर सुधार पर खर्चा कैसे कम हो। तो उसमें अब जो हमारे जीवाणुयुक्त जो खाद आई हैं, जैसे हमारे इंस्टीट्यूट संस्थान से निकला है, हेलो एजो है, हेलो पीएसबी है, ये क्या करते हैं कि ये जमीन में जो पोषक तत्व हैं जो पौधों को उपलब्ध नहीं होते हैं उन उपलब्धता को बढ़ाती है
1: जमीन में।
0: हाँ डॉक्टर साहब, ऊसर जमीन में जो पोषक तत्व हैं जो पौधों को नहीं मिल पाते उनकी उपलब्धता को बढ़ा देते हैं। और हमारा उद्देश्य यही है कि अगर वो पोषक तत्व अधिक मात्रा में पौधों को मिल जाएंगे तो हमारी पैदावार बढ़ जाएगी और साथ में हमारी जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ जाएगा। ये जीवाणु जो है जो ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाते हैं और उसके साथ साथ पैदावार भी बढ़ती है।
1: डॉक्टर साहब, क्या ऊसर सुधार करके उस पर समन्वित कृषि प्रणाली यानी IFS मॉडल लगा सकते हैं किसान?
0: बिल्कुल साहब, IFS मॉडल बहुत ही सफल एक प्रयोग है जो हमारे संस्थान ने जो किया, जो बछरावा एक जगह बछरावा है रायबरेली रोड पर बछरावा वहां पर। लेकिन ये मॉडल उन जमीनों में जहां पर लवण जो वाटर लॉगिंग जो जल से प्रभावित जहां पर
1: नहरी
0: इलाकों में जहां पर जल स्तर बहुत ऊंचा है उन जमीनों में और कोई तकनीकी काम ही नहीं करती डॉक्टर साहब, न वहां जिप्सम काम करता न फॉस्फो जिप्सम काम करता, वहां केवल IFS मॉडल। वहां आप पॉन्ड खोद करके और पॉन्ड से जो नहरी इलाका है नहर के पानी को पॉन्ड में इकट्ठा करके वहां हमने IFS मॉडल का एक ऐसा प्रयोग किया जिसमें किसान केवल 6000 वर्ग मीटर जमीन में से आज की डेट में सर 3-4 लाख रुपया प्रति हेक्टर वो उसमें से कमा रहा है।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे ऊसर सुधार के उन्नत तकनीक के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: 730-956-3010 7309563010 730-956-3010।
1: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं किसान भाइयों बहनों का ऊसर सुधार की उन्नत तकनीक के बारे में? डॉक्टर साहब,
0: मैं ये किसान भाइयों आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये सही समय है। अब आप अपने ऊसर के खेत की चारों तरफ से मेड़बंदी कर दें अभी, और मेड़बंदी करके और तुरंत उसको खेत को, अगर आपका बड़ा खेत है तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके उसको लेबलिंग करके, और उसमें आपके पास अगर जिप्सम उपलब्ध है तो जिप्सम, और नहीं है तो आप उसमें और जो भी आपके पास कचरा है तो कचरा आप डाल दें, गोबर की खाद है वो डाल दें, धान का पुआल है आप वो डाल दें, और आपके पास जो बर्मी कंपोस्ट है वो डाल दें, और आप उसको अभी पानी से भर दें और 10 दिन तक 15 दिन तक उसमें पानी भरा रहने दें। उससे क्या होगा, जो नमक है वो नमक पानी के साथ नीचे बैठ जाता है और आपकी जमीन सुधर जाएगी, और उसके बाद आप जो लवण सहनशील किस्में जो हमारे संस्थान से जिनके बीज उपलब्ध हैं वहां से बीज लेकर अगर आप लगाएंगे तो आपके उसी टुकड़े में जिसमें कुछ नहीं हो रहा था पिछले 10-20 सालों से उसमें आप धान की अच्छी पैदावार ले सकते हैं।
1: डॉक्टर यशपाल सिंह साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और ऊसर सुधार की उन्नत तकनीक क्या है इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आपने सुना डॉक्टर यशपाल सिंह से ऊसर सुधार की उन्नत तकनीक विषय पर। आपसे बातचीत की डॉक्टर सुशील कुमार राय ने।
3: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: इसी के साथ ही आज का विज्ञान और किसान कार्यक्रम समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है और लीजिए अब सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। दिलीप चौहान पुत्र जगन्नाथ, 521/109 बड़ा चांदगंज थाना अलीगंज लखनऊ से सूचित करते हैं कि निशा चौहान 16 मार्च 2026 से कहीं लापता हैं। निशा चौहान का हुलिया इस प्रकार है, उम्र 22 वर्ष, लंबाई 5.2 इंच, रंगे हुआ, इनके बाल काले और लंबे हैं। जिस समय ये घर से निकली थी इन्होंने काले रंग के जीन्स और नीले

कलर की हाफ टी शर्ट पहनी हुई थी। इनके मिलने की सूचना आप इस पते पर दे सकते हैं, 521/109 बड़ा चांदगंज थाना, अलीगंज, लखनऊ।

ये सूचना मिली है। ओम प्रकाश यादव पुत्र स्वर्गीय बद्री प्रसाद यादव निक्सा 521/7 बड़ा चांदगंज थाना अलीगंज लखनऊ से, विशाल यादव 26 मार्च 2026 से कहीं लापता हैं। विशाल यादव का हुलिया इस प्रकार है, उम्र 31 वर्ष, लंबाई 5.5 इंच, रंग गोरा, इनके बाल काले हैं और जिस समय ये घर से निकले थे इन्होंने पीली शर्ट और काले कलर का लोअर पहना हुआ था। इनके मिलने की सूचना आप दे सकते हैं इस पते पर, ओम प्रकाश यादव पुत्र स्वर्गीय बद्री प्रसाद यादव निक्सा 521/7 बड़ा चांदगंज थाना अलीगंज लखनऊ। राजू गुप्ता पुत्र स्वर्गीय रामचंद्र गुप्ता निवासी 50/74 जयनारायण रोड हुसैनगंज लखनऊ से सूचित करते हैं कि सागर गुप्ता 7 अप्रैल 2026 से कहीं लापता हैं। सागर गुप्ता का हुलिया इस प्रकार है, उम्र 60 वर्ष, लंबाई 158 सेंटीमीटर, रंग गेहुआ, चेहरा औसत, इनके माथे पर हल्के चोट का निशान है। ये मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं और थोड़ा लंगड़ा के चलते हैं। इनके बाल काले और सफ़ेद हैं। जिस समय ये घर से निकले थे इन्होंने हरे रंग की टी शर्ट और काले रंग का लोअर पहना हुआ था। इनके मिलने की सूचना आप इस मोबाइल नंबर पर दे सकते हैं, 9415546157। नंबर एक बार फिर से, 9415546157।

सबके मिलने की सूचना आप इस पते पर भी दे सकते हैं, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राज अपराध अभिलेख ब्यूरो उत्तर प्रदेश लखनऊ। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं और लीजिए अब सुनिए लोक संगीत के कार्यक्रम लोक माधुरी में अच्छे लाल सोनी के गाए कुछ भोजपुरी लोकगीत। सबसे पहले सुनते हैं अच्छे लाल सोनी से ये खेमटा।

अभी आपने सुना अच्छेलाल सोनी के स्वर में ये खेमटा, और आइए अब अच्छेलाल सोनी से सुनते हैं ये विरह गीत।

सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ से प्रसारित लोक संगीत का कार्यक्रम लोकमादरी, जिसमें आज आप सुन रहे हैं अच्छेलाल सोनी के गाए कुछ भोजपुरी लोकगीत। और आइए अब सुनते हैं अच्छेलाल सोनी से ये विदेशिया।

अभी आपने सुना अच्छेलाल सोनी की आवाज़ में भोजपुरी लोकगीत। इनके साथ संगत करता थे नाल पर अवध बिहारी वर्मा और मुन्ना अनवर, हारमोनियम पर संतोष तिवारी, बांसुरी पर दिगंत सैकिया और साइड रिदम पर शैलेंद्र सिंह। इसी के साथ ही आज का लोक संगीत का कार्यक्रम लोकमादरी अब यहीं संपन्न हुआ। मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं 401.6 मीटर। इस समय दोपहर के 3 बजे हैं। अब हमारी आज की ये सभा यहीं समाप्त होती है। अपनी सांध्यकालीन सभा में शाम 5 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

0: प्रकाश वाणी का सिग्नेचर ट्यून पियानो पर बजाया गया था।
1: यस।
2: गलत जवाब।
0: अगला सवाल है कि क्या पॉडकास्ट और रेडियो एक ही चीज है?
3: नहीं।
0: सही जवाब है ये।
4: अब ये है थर्ड राउंड एमसीक्यूज अगेन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं राउंड थ्री। ऑल इंडिया रेडियो का नियंत्रण किस संस्था के पास है? कंट्रोल इन विच कॉन्स्टिट्यूशंस हैंड? प्रसार भारती, PIB, DD, यूनेस्को।
5: प्रसार भारती।
4: आकाशवाणी की सिग्नेचर ट्यून किसने क्रिएट की थी? 1936 वो ईयर था। ऑप्शंस आर वॉल्टर कॉफमैन, उस्ताद बिस्मिल्ला खान, पंडित रविशंकर या उस्ताद अली अकबर खान। पंडित रविशंकर इज द रॉन्ग आंसर। इसका राइट आंसर है वॉल्टर कॉफमैन। आकाशवाणी का राष्ट्रीय महत्व किस कारण है? ऑप्शन ए मनोरंजन का आसान माध्यम है, ऑप्शन बी तकनीकी प्रसारण, ऑप्शन सी सरकारी सूचना, ऑप्शन डी जन जन तक सूचना।
3: जन जन तक सूचना
4: राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आकाशवाणी की विदेश सेवा कब शुरू हुई? 1939, 1947, 1957 या 1965? एक्सटर्नल सर्विस डिवीजन। 39 इज द राइट आंसर। आकाशवाणी में क्लासिकल आर्टिस्ट जैसे पंडित रविशंकर, उस्ताद बिस्मिल्ला खां, उनका योगदान किस चीज को बढ़ाने में रहा? मनोरंजन, दूसरा सांस्कृतिक संरक्षण, तीसरा समाचार या चौथा विज्ञापन?
6: संस्कृति।
4: राइट आंसर। हमारा थर्ड राउंड भी एंड हो गया है। फाइनल राउंड में आकाशवाणी की एक्सटर्नल सर्विस कितनी भाषाओं में प्रसारण करती है? हाउ मेनी लैंग्वेजेस? ओके, ऑप्शन ए 10, बी 20, सी 30+, डी 50+।
5: 30+।
4: 30+ इज द राइट आंसर। आकाशवाणी पर राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम या नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक पहली बार कब शुरू हुआ था? 20 जुलाई 1952, 8 जून 1936, 11 अक्टूबर 1967, 2 अप्रैल 1938।
6: ऑप्शन ए।
4: ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल इंडिया रेडियो का नाम आधिकारिक तौर पर आकाशवाणी कब पड़ा? ए 1957, बी 1950, सी 1959, डी 1961।
5: 1950
4: इज द रॉन्ग आंसर। राइट आंसर वॉज 1957। अच्छा, आ जाते हैं लखनऊ की बात करते हैं। आकाशवाणी लखनऊ की स्थापना कब हुई थी? ए 22 जुलाई 1948, 22 जुलाई 1948, 2 अप्रैल 1938, 15 अगस्त 1947 या 14 सितंबर 1953।
3: डी ऑप्शन।
4: ऑप्शन डी इज रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लखनऊ में FM रेनबो प्रसारित किया जाता है, पता ही आपको। जब हम इसे रेडियो पर सुनते हैं तो किस फ्रीक्वेंसी पर सुनते हैं? आपको फ्रीक्वेंसी बतानी है। 102.6, 107 मेगाहर्ट्ज़, 100.7 मेगाहर्ट्ज़, 107.1 मेगाहर्ट्ज़। ए बी सी डी।
1: थर्ड ऑप्शन थ्री।
4: 100.7 इज द राइट आंसर। इट्स 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग। FM पर एक प्रोग्राम आता है शाम को 8 बजे, आबशार। उस प्रोग्राम में हम क्या सुनवाते हैं? ऑप्शन ए रॉक म्यूजिक, ऑप्शन बी गजलें, ऑप्शन सी पुराने फिल्मी गाने, ऑप्शन डी भजन।
7: ऑप्शन थ्री। ऑप्शन थ्री पुराने फिल्मी गाने
4: इज द रॉन्ग आंसर। तो अब हमारे फाइनल कंटेस्टेंट्स सेंटर में आ जाइए। आकाशवाणी FM रेनबो पर रात में, पुराने फिल्मी गानों की बात हुई थी अभी, रात में रोज 10 से 12 एक प्रोग्राम आता है, उसका नाम क्या है? पहला ऑप्शन है भूले बिसरे गीत, ऑप्शन टू सदाबहार गीत, ऑप्शन थ्री ओल्ड मेलोडीज एंड ऑप्शन फोर रजनीगंधा।
3: सदाबहार गीत।
4: सदाबहार गीत इज रॉन्ग। तो चलिए, इसका आंसर है रजनीगंधा। चलिए, रात के प्रोग्राम से सीधे वापस चलते हैं। सुबह सुबह भजन का सुबह प्रोग्राम आता है, उसका नाम बताना है आपको। ऑप्शन आर ए अर्चना, दूसरा आराधना, तीसरा पुष्पांजलि और चौथा भावांजलि। अर्चना, आराधना, पुष्पांजलि, भावांजलि, कौन है बताइए?
1: अर्चना।
4: दोनों का आंसर रॉन्ग है।
6: पुष्पांजलि।
4: पुष्पांजलि इज द राइट आंसर। चलिए, आस्था को हम जोरदार तालियों से बधाई देते हैं। तो ये है हमारी आज की विनर। तालियां बजा दीजिए सबसे पहले। बहुत सारी बधाइयां मोहम्मद आबिद, आस्था, अनिका महेश्वरी। फाइनली हमारे आज के इस इवेंट के हमारे 3 विनर्स मिल गए हैं और बहुत मजा आया। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। जो फर्स्ट विनर है हमारा इस इवेंट का, यानी आस्था को यूथ के प्रोग्राम में लाइव इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तालियों के साथ बहुत बहुत बधाई। और मैं निरुपमा मैम से अनुरोध करूंगी कि प्लीज आए और कुछ दो शब्द कहें वोट ऑफ थैंक्स की तरह से।
8: माय सिंसियर थैंक्स to the entire Akashwani team. I really enjoyed and I know all my students enjoyed a lot. After the hectic schedule of the examination that ended yesterday, I think all of us have enjoyed a lot.

0: वंस अगेन आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बस इसी तरह हमारा साथ निभाते रहिए और सुनते रहिएगा आकाशवाणी। थैंक यू, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यूथ आउटरीच इनिशिएटिव कार्यक्रम के तहत एरा मेडिकल कॉलेज लखनऊ में आयोजित हुई प्रश्नोत्तरी एवं संवाद प्रतियोगिता। इस प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता की विजेता थी आस्था सिंह, फर्स्ट और सेकंड रनर अप थे मोहम्मद आबिद और अनिका महेश्वरी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे प्रिंसिपल एरा मेडिकल कॉलेज लखनऊ प्रोफेसर डॉक्टर जमाल मसूद, हेड डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी डॉक्टर निरुपमा लाल, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी डॉक्टर सुमैया इरफान, प्रोफेसर हेड स्टेम सेल डिपार्टमेंट एरा मेडिकल कॉलेज सैयद शादाब रजा। कार्यक्रम में मौजूद थे सहायक निदेशक कार्यक्रम आकाशवाणी आशीष चतुर्वेदी, कार्यक्रम अधिशासी ज्योति चंद्रा। कार्यक्रम का संचालन किया 100.7 FM रेनबो RJ अंजू शुक्ला, अनुष्ठा और दिव्यांशु ने। उम्मीद है आपको ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। इसी के साथ दीजिए रेडियो दोस्त अनुष्ठा को इजाजत। नमस्कार
2: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एरा मेडिकल कॉलेज की प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता और संवाद, और इसी के साथ अब कार्यक्रम में वक्त है एक अंतराल का।
3: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। <So easy.
4: laughs> अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम आपसे कल और सुनवाएंगे आपको हमारी ऐतिहासिक धरोहर बड़ा इमामबाड़ा के बारे में। तब तक दीजिए मुझे यानी विष्णुप्रिया
3: और आयुषी को इजाजत।
2: नमस्कार।

मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम नई उड़ान।

कठपुतली का से खेल है चलता, कठपुतली का खेल है चलता, एक आता एक जाता है, डोर है ऊपर किसी और के हाथों में, डोर है ऊपर किसी और के हाथों में, ये सारा जग वही चलाता है। बस यही बात साथियों अगर हम याद रख लें तो हम बहुत सारे द्वंद्वों से अपने जीवन को बचा सकते हैं। दोस्तों ये पंक्तियाँ निराशाजनक बिल्कुल भी नहीं हैं, बल्कि ये पंक्तियाँ हमें हमारे अंदर के बहुत से बोझ को और ओवर थिंकिंग को हमारे अंदर पनपने से रोक सकती हैं। आज का नई उड़ान कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपके रेडियो दोस्त रीना। नई उड़ान का मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को हासिल करना ही नहीं है, बल्कि नई उड़ान का मतलब नए तरीके से सोचना भी हो सकता है। सिर्फ एक सोच ही तो है, बस और क्या, एक सोच ही तो है जिसके वजह से हम अपने जीवन को चलाते हैं। अगर हम ये सोचते हैं कि हम ही सारे काम करते हैं तो निश्चित ही हम हर बात का भार अपने ऊपर लेते हैं और इस

इसी बात में उलझ जाते हैं कि अपने कामों को हम कैसे पूरा करें और उन्हें पूरा करने के लिए क्या तिकड़म लगाई जानी चाहिए। फिर बस बात तो वही है कि एक सोच ही तो है। अगर हम ये सोच लें कि कोई और है जो ऊपर बैठकर हमारे सारे काम हमसे करवा रहा है, तो हम अपने आप ही अपने आप को निर्भर कर लेंगे, क्योंकि जब कोई और करवा रहा है तो हमें वज़न लेने की, लोड लेने की या बोझ युक्त होने की ज़रूरत नहीं रह जाती, क्योंकि करवा तो कोई और ही रहा है। फिर क्या सच्चाई और क्या कल्पना, सब एक दूसरे में मिल जाते हैं, है ना। अब ऐसे विचार साथियों तब मन में आते हैं जब हम किसी को बहुत कम उम्र में इस दुनिया से जाते हुए देखते हैं और सुनते हैं। तब मन में विचार आता है कि सामने से हंसता खेलता इंसान कैसे अचानक एक दिन इस दुनिया को छोड़ के जा सकता है, जबकि उसे कोई बीमारी भी नहीं है, कोई ऐसी वजह भी नहीं है। तब लगता है कि हम अपने मन के द्वंद्वों से ही हार जाते हैं। हमारे मन की जो उलझने हैं, जो मन की गांठें हैं, वही हमारी सेहत पर असर डालती हैं और उन्हीं के चलते एक दिन अचानक ऐसा हो जाता है। अब ये तो दुनिया है, कहीं खुशी है तो कहीं गम है। एक ही दिन हम किसी की जयंती मना रहे होते हैं और किसी की पुण्यतिथि भी मना रहे होते हैं। जैसे कि आज 13 मई का दिन जो है वो पुण्यतिथि का भी है और जयंती का भी है। आज का दिन दो महापुरुषों को याद करने का दिन है। एक है हमारे देश के 5वें राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन अली अहमद जी, जिनकी आज जयंती है। आप आज़ादी से पहले भी नेशनल कांग्रेस पार्टी में सक्रिय रहे और फिर बाद में असम विधानसभा के सदस्य भी रहे, राज्यसभा के भी सदस्य रहे और लोकसभा में भी आपने केंद्रीय मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी। फिर 1974 में आपने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और जीता और हमारे देश के 5वें राष्ट्रपति के रूप में आपने अपनी सेवाएँ दी। दूसरी ओर हम उन्हें भी याद कर रहे हैं जिनकी आज पुण्यतिथि है, और वो शख्सियत हैं रसीपुरम कृष्ण स्वामी नारायण स्वामी, यानी कि आर के नारायणन। वही आर के नारायण जिनका लिखा हुआ उपन्यास मालगुडी डेज हमने बचपन में देखा और पसंद किया। ये एक ऐसा उपन्यास है जो कि पूरी तरह से एक काल्पनिक गांव पर आधारित है। आर के नारायण जी को उनके उपन्यास मालगुडी डेज के साथ साथ और भी बहुत से साहित्यिक कृतियों के लिए जाना जाता है और इसीलिए आपको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। राजनीति से कोसों दूर आप साहित्य की सेवा में ही रत रहे और आपको बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया। तो साथियों, ये जीवन है, यहाँ जन्म भी है, मृत्यु भी है, यहाँ सुख भी है, यहाँ दुख भी है, यहाँ सफलता भी है, यहाँ असफलता भी है, यहाँ निराशा भी है और यहाँ आशा भी है। हम पर है कि हम किसको चूज करते हैं, किसका चुनाव करते हैं और कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। अगर हम आशा को चुनते हैं तो हमारा जीवन आशावादी रहता है, और अगर निराशा को चुनते हैं तो हम बहुत जल्द डिप्रेशन में जा सकते हैं। लेकिन हमें चूज करना है आशा को, उम्मीद को, साहस को, हौसले को और नई उड़ान को। अब नई उड़ान में हम आपके लिए प्रस्तुत करने जा रहे हैं स्थल ध्वन्यांकन पर आधारित अपनी अगली प्रस्तुति, डिजिटल एग्रीकल्चरल रियल टाइम हैसल फ्री असिस्टेंस एंड न्यू इनिशिएटिव। इस विषय पर शोभित शर्मा जी की प्रस्तुति।

धरती जो केवल अन्न नहीं उगाती बल्कि उम्मीदें, सपने और देश का भविष्य भी तैयार करती है। भारत की पहचान उसके गांवों से है और गांवों की ताकत है हमारा किसान। लेकिन बदलते समय के साथ खेती का स्वरूप भी बदल रहा है। अब खेतों तक पहुंच रही है डिजिटल तकनीक, मोबाइल पर मौसम की जानकारी, एक क्लिक पर फसल सलाह और रियल टाइम सहायता। इससे खेती बन रही है ज्यादा स्मार्ट और आसान। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे डिजिटल एग्रीकल्चर, रियल

0: टाइम सर्विसेज और हैसल फ्री असिस्टेंस और इनिशिएटिव्स की, और जानेंगे किसानों के अनुभव, किसान सेवा केंद्र की भूमिका और युवाओं की सोच और विशेषज्ञों की राय भी। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त शोभित और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नई उड़ान। तकनीक कितनी भी आधुनिक क्यों न हो, उसकी असली सफलता तभी मानी जाती है जब उसका लाभ सीधे किसान तक पहुंचे। आइए सबसे पहले सुनते हैं खेतों में मेहनत करने वाले किसानों से कि डिजिटल सुविधाओं ने उनकी खेती और जिंदगी में क्या बदलाव किए हैं।
1: नाम क्या है भाई साहब आपका?
2: सोम प्रकाश।
1: आजकल जो खेती है उसमें आप कोई आधुनिक तकनीकी अपना रहे हैं? डिजिटल एग्रीकल्चर की तरफ आपका रुझान है, कुछ ऐसा अगर कर रहे हैं तो बताइए हमारे श्रोताओं को।
2: आजकल जो खेती हो रही है उसमें हम लोग एक नई विधि सिंचाई की, जैसे कि सोलर पंप हो गया और सरकारी ट्यूबवेल का भी कभी कभी इस्तेमाल हो जाता है।
1: अच्छा।
2: और दूसरी चीज, हम लोग गन्ने की खेती ज्यादा करते हैं
1: जी,
2: उसमें फुटाव ज्यादा हो
1: जी,
2: इसके लिए जमीन को मुलायम बनाने के लिए ह्यूमिक एसिड, अमीनो एसिड जैसी जैविक जो खाद है
1: जी जी,
2: प्रयोग हम लोग ज्यादा कर रहे हैं।
1: तो आप अपने साथ साथ और भी किसानों को इसके लिए प्रोत्साहित करते हैं
2: ना? जहाँ कहीं भी खेती से संबंधित चर्चाएं होती हैं
1: जी,
2: हमें जहाँ तक जानकारी है मैं अपने विचार जरूर साझा करता रहता
3: हूँ। भैया नाम क्या है तुम्हारा?
4: सचिन।
3: तो ये खेत आपके हैं या ठेके या बटाई पर ले रखा है?
4: ठेके पे लिए।
3: क्योंकि आप खेती करते हैं तो खेती से जुड़ी कोई भी अगर जानकारी लेनी होती है तो वो आपको समय पर मिल पाती है या कभी कभार देर हो जाती है जिससे नुकसान हो जाता है?
4: नहीं, वैसे तो मिल जाती है।
3: अच्छा।
4: जाना पड़ता है, मिल जाती है।
3: अच्छा, मान लो कोई सरकारी योजना का लाभ आप अगर लेना है, बीज खाद या इसकी सलाह, इन सब चीजों की दिक्कत कभी होती है?
4: नहीं, वैसे दिक्कत तो नहीं हुई है।
3: तो खाद वगैरह आपको कहाँ से मिलती है?
4: बस ये कठुआरे से।
3: अच्छा, यही आप पड़ोस के गांव से आपको मिल जाती है। कभी अपने मोबाइल में कोई खेती से रिलेटेड कोई ऐप आपने यूज किया है?
4: नहीं,
3: कभी नहीं। चाचा नाम क्या है तुम्हारा?
5: बालक।
3: ये जमीन तुम्हारी ही है?
5: हाँ, हमारी है।
3: अच्छा, ये बताओ ये जो आजकल खेती का माध्यम डिजिटल हो गया है, फोन पर सारी चीजें सुविधाएं हैं, उस बारे में कुछ जानकारी है तुमको?
5: हमको नहीं साहब, हम जब आधार कार्ड ले जाते तो हमें मिल जाती खाद।
3: तो आधार कार्ड कहाँ ले जाते हैं?
5: यहाँ मतलब ब्लॉक में जहाँ खाद बढ़ती है।
3: अच्छा, क्षेत्र के ब्लॉक में ले जाते हो।
5: हाँ।
3: तो फोन रखते हो, डिजिटल कोई फोन है तुम्हारे पास?
5: हमारे पास जब बाबू जी पढ़े लिखे नहीं तो हम क्या बताएं।
3: चाचा नाम क्या है आपका?
6: हमारा नाम है नन्हा।
3: मोबाइल फोन, स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं?
6: नहीं।
3: अच्छा, खेती किसानी में अगर मान लीजिए आजकल सब जमाना डिजिटल हो रहा है, मोबाइल से अगर कुछ जानकारी आपको लेनी हो तो फिर आपकी जानकारी तो छूट जाती होगी?
6: जब कोई बड़ा मोबाइल ही नहीं रखे हैं तो उससे कहाँ जानकारी।
3: तो कभी सोचा नहीं कि जो है बड़ा मोबाइल रख ले कुछ आपको सुविधा हो जाएगी?
6: नहीं, सोचे तो, लेकिन अब इतना हमारे लोगों के पास काम ही नहीं तो कैसे क्या करें।
3: आपका क्या नाम है?
7: कैलाश नाम है।
3: आप कुछ ऐसा डिजिटल माध्यम यूज करते हैं खेती किसानी?
7: अच्छा,
3: तो कभी ये स्मार्टफोन रखे हैं?
7: नहीं नहीं, फोन नहीं रखे।
3: फोन नहीं रखे?
7: हाँ, नहीं रखे।
0: आज किसान केवल अनुभव के भरोसे नहीं बल्कि जानकारी और तकनीक के साथ आगे बढ़ रहा है। इस बदलाव में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं किसान सेवा केंद्र, जहां किसानों को मिल रही है मौसम, बीज, फसल सुरक्षा और सरकारी योजनाओं से जुड़ी रियल टाइम सहायता। आइए सुनते हैं किसान सेवा केंद्र क्या क्या सुविधाएं किसानों तक पहुंचा रहे हैं।
3: भाई साहब क्या नाम है आपका?
8: सुजीत श्रीवास्तव।
3: ये आप किसान सेवा केंद्र कितने समय से चला रहे हैं?
8: ये हमें चलाते हुए लगभग 10-12 साल हो गए हैं।
3: अच्छा, ये बताइए कि यहाँ इस सेवा केंद्र पर किसानों को कौन कौन सी ऐसी डिजिटल सुविधाएं मिल रही हैं जिससे उनको खेती किसानी में आसानी हुई है?
8: ये हमारे केंद्र पे किसानों को जैसे मिट्टी परीक्षण है, बीज और उर्वरक की सलाह, फसल रोग नियंत्रण और सरकारी योजनाओं की जानकारी तुरंत उपलब्ध हम लोग कराते हैं।
3: अच्छा, ये बताइए कि जो गाँव के छोटे किसान है या जो सीमांत किसान होते हैं, उनको नई तकनीक अपनाने में सबसे बड़ी क्या दिक्कत आती है और आपके यहाँ उनकी कैसे मदद हो जाती है?
8: जैसे कई किसानों को मोबाइल ऐप या डिजिटल सेवाओं की जानकारी कम होती है, हम उन्हें आसान भाषा में प्रशिक्षण देते हैं।
3: अगर किसी किसान को फसल बीज है या कोई फसल में अगर बीमारी लग गई है उससे जुड़ी अगर सलाह लेनी है, आपके यहाँ से किस तरह मदद उनको मिल जाती है?
8: किसान सीधे हमारे किसान सेवा केंद्र पर आकर या फोन के माध्यम से संपर्क करते हैं तो हमारी टीम तुरंत विशेषज्ञों की सलाह लेकर किसानों को सही जानकारी देती है ताकि फसल का नुकसान कम हो और उत्पादन बेहतर हो सके।
0: खेती का भविष्य केवल खेतों में ही नहीं बल्कि कृषि

0: विश्वविद्यालयों और युवा सोच में भी तैयार हो रहा है। नई पीढ़ी डिजिटल एग्रीकल्चर को केवल तकनीक नहीं बल्कि खेती की नई क्रांति मान रही है। आइए जानते हैं कृषि विज्ञान के युवा छात्र छात्राओं से कि वो इस बदलाव को किस नजर से देख रहे हैं।
1: निखिल प्रताप से मेरा नाम है।
0: आप यहाँ पे कौन सा कोर्स कर रहे हैं?
1: BSc AG।
0: ये बताइए, ये डिजिटल एग्रीकल्चर को आप कैसे समझते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए।
1: डिजिटल फार्मिंग जो होती है, आधुनिक डिजिटल तकनीकों का उपयोग उत्पादन को बढ़ाने के लिए, जैसे कि हम GPS का उपयोग कर रहे हैं कि किस क्षेत्र में कितना फसल का नुकसान हुआ है और किस क्षेत्र में कीटों ने अटैक किया है, इन चीजों की जानकारी लिए हम GPS का उपयोग कर रहे हैं सर।
0: इन सब चीजों का प्रैक्टिकल नॉलेज भी आप लोगों को मिलता है?
1: जी सर।
0: अच्छा, आपको क्या लगता है कि डिजिटल तकनीक जो है वो किसानों की समस्याओं को कम कर सकती है?
1: सर, मोबाइल आधारित खेती जो होती है सर, मोबाइल ऐप से मंडी का भाव, बीज, खाद, दवाओं की जानकारी समय पर उपलब्ध होती रहती है। जब फार्मर जानकारी मिलेगी तो सर आगे धीरे धीरे इन समस्याओं का समाधान की ओर बढ़ेंगे।
2: मेरा नाम है भूपेंद्र प्रताप सिंह।
0: ये बताइए कि जो ये कृषि शिक्षा है, इसमें जो डिजिटल तकनीक है, इनका कितना महत्व बढ़ गया है?
2: अब ऑनलाइन क्लास स्मार्टफोन और मोबाइल ऐप के जरिए और नए नए प्रैक्टिकल करके हम लोगों को व्यवहारिक रूप से सिखाया जा रहा है।
0: जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें आपको क्या लगता है कि आज भी डिजिटल एग्रीकल्चर सिस्टम लागू नहीं उतने अच्छे से हो पा रहा है, उसमें क्या है सबसे बड़ी?
1: सर, सबसे पहले ये बात है कि वहाँ का ग्रामीण एरिया का जो फार्मर है इतना जागरूक नहीं है, इतना पढ़ा लिखा नहीं है सर।
0: जब अनुभव और तकनीक साथ आते हैं तभी विकास की नई राह बनती है। डिजिटल एग्रीकल्चर के बढ़ते प्रभाव, चुनौतियों और भविष्य को बेहतर समझने के लिए अब बात करते हैं कृषि विशेषज्ञ से, जो ये बताएंगे कि आने वाले समय में तकनीक खेती को किस दिशा में ले जा सकती है।
3: मैं डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह, कृषि कीट विज्ञान विभाग, चंद्रमान गुप्ता कृषि महाविद्यालय, बक्शी का तालाब।
0: सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम नई उड़ान में। सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज के समय में डिजिटल एग्रीकल्चर आम किसान की खेती को कैसे आसान और ज्यादा फायदेमंद बना रहा है।
3: देखिए, पिछले हम 10 साल से अगर ये बात करें कि हमारा जो अन्नदाता है
0: जी,
3: उसके सामने पहले बहुत सारी समस्याएं आती थी कि किसान को समय पर जो है बीज नहीं मिल पाता था, समय पर जो है जुताई नहीं हो पाती थी, खाद उर्वरक की समस्या रहती थी। जब से सरकार की जो नई क्रांति आई है जिसको हम डिजिटल क्रांति कहते हैं, कृषि क्रांति कहते हैं, इसमें फायदे हुए कि किसान यदि उसके पास अपना एंड्रॉयड फोन है और उस फोन पर जो है किसान अपनी वेबसाइट पर, किसान प्रदेश सरकार की वेबसाइट है, वहां पर जा करके अपनी रजिस्ट्री कर देता है, फार्मर रजिस्ट्री कर देता है
0: जी।
3: तो उसको बहुत सारी जानकारी, जैसे कि समय पर कीट और बीमारियां फसलों में लग रही हैं, तो उसका एक SMS आ जाता है कि इस समय मौसम में बदलाव है, मौसम में नमी है, तो आम की फसल पर या गन्ना की फसल पर या मक्का की फसल पर या लता वर्गीय फसल पर जो है कीट और बीमारियों का खतरा बढ़ेगा। तो किसान को ये एहसास हो जाता है कि हम जो है बाजार से समय पर कीटनाशक खरीद लें और अपनी जो फसलें हैं उन पर जो है समय से पूर्व हम अपना प्रबंधन कर दें, जिससे हमारा नुकसान ना हो पाए। तो एक तो ये लाभ, सीधा लाभ किसान को मिलता है। दूसरा जो है, बहुत सारी जैसे यंत्र को खरीदना हुआ किसानों को, तो उसके लिए अगर किसान की रजिस्ट्री है तो एक जो टेलीफोन नंबर उसका रजिस्टर है उस पर मैसेज आ जाएगा कि आपको जो है ट्रैक्टर खरीदना है या कृषि यंत्र खरीदने हैं या रोटावेटर खरीदना है, तो आपको सब्सिडी मिलेगी। और सीधे जो है DBT के माध्यम से किसानों को सब्सिडी का भी लाभ मिलता है, तो ये मैसेज उनको मिल रहा है, इसका लाभ किसान भाई हमारे ले रहे हैं। दूसरा है कि सोलर पंप किसानों को इस समय ग्रीन एनर्जी का समय है
0: जी।
3: बिजली की व्यवस्था थोड़ा डैमेज रहती है समय समय पर, जैसे ग्रीन एनर्जी से सोलर पंप के माध्यम से किसानों का रजिस्ट्रेशन होना, तो उनको भी मैसेज मिल जाता है कि अगर कोई किसान सोलर पंप लगवाना चाहता है तो अपना रजिस्ट्रेशन पूर्ण कर ले। तो एक ये लाभ किसानों को मिल रहा है, इसका लाभ जो है हमारे प्रदेश के किसान ज्यादा ले रहे हैं। तीसरा ये होता है कि फसल बीमा का है, फसल बीमा का भी हमारे किसान भाई लाभ ले रहे हैं। अभी तक ये नहीं था, ये 2 साल पहले जो है जितनी ज्यादातर फसलें जो हैं वो फसल बीमा के तहत रजिस्ट्रेशन हो गई। तो उसमें जैसे सपोज दैट किसी क्षेत्र में ओलावृष्टि हो गई तो वो एरिया आइडेंटिफाई कर लिया गया, जब आइडेंटिफाई हुआ तो किसान उस पर जाकर के अपना पूरा विवरण भर देगा, आधार नंबर, बैंक का खाता जो रजिस्टर्ड होता है आधार से उसको लिंक कर देगा, जो सीडिंग होती है उसी से करने के बाद फिर उसको सीधा लाभ उसके खाते में मिल जाता है।

0: है और पूरा प्रोसेस कि किस तरह से जो है आपने अप्लाई किया है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, बीमा कंपनी ने आपको मैसेज दे दिया तो इतना रकबा आपका डैमेज हुआ है, वो इतना पैसा आपके खाते में आ रहा है, तो इसका लाभ भी मिल जाएगा।
1: अच्छा सर, एक चीज हम ये जानना चाहेंगे, बहुत सारे हमारे किसान भाई हैं जो स्मार्टफोन यूज नहीं करते, आज भी वो टेक्नोलॉजी से दूर है, तो उनके लिए कैसे ये सुविधाएं उन तक पहुंचती है, या वो कैसे जो है वो बिना किसी दफ्तर के चक्कर लगाए या भाग दौड़ किए?
0: कुछ ही परसेंट ऐसे किसान होंगे, क्योंकि जो सुविधाएं हैं वो एंड्रॉइड फोन से ही मिल रही हैं। तो किसान के पास जो है, ज्यादातर किसानों के पास एंड्रॉइड फोन है, जिनके पास नहीं है तो अपने गांव के, अपने घर के, परिवार के द्वारा भी वो रजिस्ट्रेशन करा सकता है और उससे भी उसका जो है लाभ मिल सकता है।
1: अच्छा सर, ऐसे कोई नई पहल जो कृषि संस्थानों या सरकार की तरफ से छोटे और सीमांत किसानों तक पहुंच रही है, उसके बारे में?
0: नई पहल जैसे कि अभी हाल ही में ई गन्ना करके एक पोर्टल बनाया गया, तो उस पर जो है जो गन्ना किसान है हमारे, वो अपना रजिस्ट्रेशन कर देते हैं कि हमारा इतना रकबा है, तो उनको पर्ची उपलब्ध हो जाती है जिससे सीधे उनको लाभ मिल जाता है। दूसरा जो है, किसान ऐप बनाए गए हैं, बहुत सारे ऐप हैं जिस पर सीधे आपको जो है कृषि विभाग की जो योजनाएं हैं उनका लाभ मिलता है। अब तो AI के माध्यम से कि अगर किसी भी फसल पर कोई बीमारी लगी है, कोई भी ऐसा चिन्ह दिख रहा है जिससे फसल नुकसान कर रही, तो किसान उसका फोटो खींच करके AI पर डाल देता है, तो उसको एक जानकारी मिल जाती है कि संबंधित फसल में ये कीट लगा हुआ है, ये बीमारी लगी हुई है, इसका प्रबंधन कैसे करना है, तो एक सटीक जानकारी मिल जाती है, किसान को दौड़ना भागना नहीं पड़ता है।
1: सर, अभी आपने कहा था कि कुछ कैंप लगते हैं समय समय पर जो किसानों को अवगत कराते रहते हैं जो नई नई सुविधाएं आ रही है, तो उन कैंप का अंतराल लगभग कितने दिन में?
0: देखिए, ऐसा होता है कि खास करके कृषि विभाग के द्वारा हर महीने एक चौपाल लगाई जाती है, गाँव में जाकर के वहाँ किसानों को इकट्ठा किया जाता है और किसानों की समस्याएं पहले सुनी जाती है, फिर उनका निदान होता है।
1: सर, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आभार।
2: डिजिटल तकनीक, रियल टाइम जानकारी और आसान सहायता व्यवस्था, ये केवल नई सुविधाएं नहीं बल्कि आत्मनिर्भर और मजबूत किसान की नई पहचान बन रही है। जब किसान तकनीक से जुड़ेगा तभी खेती और अधिक समृद्ध बनेगी और गाँवों से विकास की नई रोशनी निकलेगी। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ आज इस कार्यक्रम से मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलेंगे आपसे किसी नए विषय को लेकर के। नमस्कार।

0: पुलिस।
1: साथियों, अभी आप सुन रहे थे स्थल ध्वन्यांकन पर आधारित आज की प्रस्तुति, डिजिटल एग्रीकल्चर, रियल टाइम हसल फ्री असिस्टेंस एंड न्यू इनिशिएटिव। ये कार्यक्रम आपके लिए तैयार किया था शोभित शर्मा ने। और अब हम लेंगे एक छोटा सा अंतराल, लेकिन अंतराल लेने से पहले मैं आपको बता दूं कि पेपर और पेन आपको तैयार रखना है, क्योंकि हम आपको देंगे अवसरों की जानकारी।
2: मिस सीमा
3: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
3: क्यों, लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
3: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 दो, बन जाओगे।
3: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
3: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
4: हेलो मम्मा।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, KYC अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत KYC अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: साथियों, अब हम आपको दे रहे हैं अवसर की जानकारी। पेपर पेन आपके पास होगा, सबसे पहले नोट कीजिए एक वेबसाइट www.gonda.kvk4.in। फिर से सुनिए, www.gonda.kvk4.in। अब आपको जानकारी दे देती हूँ, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च गवर्नमेंट ऑफ इंडिया

नई दिल्ली से स्पॉन्सर्ड लाल बहादुर शास्त्री कृषि विज्ञान केंद्र गोपाल ग्राम गोंडा स्थित दीनदयाल शोध संस्थान के द्वारा सहायक कार्यक्रम सहायक कंप्यूटर आशुलिपिक और चालक के पद पर कार्य करने के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए आयु सीमा है 30 वर्ष और अधिक जानकारी के लिए आप देख सकते हैं रोजगार समाचार का 9 से 15 मई का अंक। और अब बारी विकास समाचारों की, तो अब आपको एक खुशखबरी दे देती हूँ। कानपुर नगर के सरसौल विकासखंड स्थित सैमसी झील के पुनरोद्धार का काम अब किया जाएगा। इसे अब इको टूरिज्म के स्पॉट के रूप में विकसित किया जाएगा और इस झील को राजापुर कैनाल से भी जोड़ा जाएगा जिससे यहाँ पर पानी की कोई कमी ना हो और इससे पहले इसकी सफाई भी की जाएगी और आसपास हरियाली भी विकसित की जाएगी, है ना अच्छी बात। एक और अच्छी बात आपको बता दूं कि नाथ परंपरा से जुड़े विभिन्न पवित्र स्थलों को अब एक सूत्र में पिरोकर विकास और पर्यटन पर विशेष बल दिया जाएगा। इस कड़ी में बरेली के 10 प्रमुख आध्यात्मिक स्थलों के विकास के लिए 60 करोड़ से अधिक की लागत से यात्रा विश्राम गृह वैदिक लाइब्रेरी आदि का निर्माण भी किया जाएगा। इस बात की भी आगे पूरी योजना बना ली गई है। तो ये तो अच्छी खबरें थी जो हमने आपको बताई और अब कार्यक्रम का समय जो है वो समाप्ति की ओर है। हम आपसे ये कहेंगे कि कल का कार्यक्रम नई उड़ान सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के कार्यक्रम से अपनी रेडियो दोस्त रीना को अब दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नई उड़ान, मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं, अब से कुछ ही पलों में यानी के शाम 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो किसान। आज के कार्यक्रम में श्रोताओं के सवालों के लिए विषय होगा जायद फसलों की सामयिक देखभाल, ग्रीष्मकालीन जुताई और हरी खाद उत्पादन, कृषि विभाग से देह सुविधाएं और खरीफ उत्पादन की योजना और तैयारी। स्टूडियो में मौजूद हमारे विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर पंकज त्रिपाठी, कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश, और कार्यक्रम की प्रस्तुति एवं संचालन डॉक्टर सुशील कुमार राय का।
1: नई उड़ान में आपके अनुभव की उड़ान हो या हो हौसलों के नए कदम। अगर आप साझा करना चाहते हैं कोई अनुभव या हमें भेजनी हो प्रतिक्रियाएं और सुझाव, तो आप हमें मेल कर सकते हैं नई उड़ान AIR@gmail.com पर, या लिख भेजिए अपने पत्र कार्यक्रम नई उड़ान, आकाशवाणी केंद्र, 18

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
3: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
4: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। प्रत्येक बुधवार सायं 6:30 पर सुनिए कार्यक्रम हेलो किसान, प्रायोजक इफको।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: शाम 6:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम हेलो किसान। आज के कार्यक्रम में सवालों का विषय है जायद फसलों की सामयिक देखभाल, ग्रीष्मकालीन जुताई और हरी खाद उत्पादन, कृषि विभाग से दे सुविधाएं और खरीफ उत्पादन की योजना और तैयारी। सवालों के जवाब के लिए स्टूडियो में मौजूद हमारे विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर पंकज त्रिपाठी, कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश।
3: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती।
2: संस्कृत समाचार अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
4: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। पश्चिम एशिया संघर्षेण उद्भूतस्य वैश्विक ऊर्जा संकटकालस्य मध्ये प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः आवाहनस्य अनन्तरं केन्द्र राज्ययोः ईंधन संरक्षणस्य उपायाः तीव्राः जाताः। केन्द्रीय मंत्रिमंडलेन चतुर्दश खरीफेति ग्रैष्मिक सस्यानां न्यूनतम समर्थन मूल्यं स्वीकृतम्। सूर्यपुष्पस्य बीजस्य सर्वाधिक वृद्धिः, तदनन्तरं कर्पासतिलयोः च। तमिलनाडु राज्ये सी जोसेफ विजयस्य नेतृत्वे टीवी के सर्वकारेण राज्य विधानसभायां सहज बहुमतेन शक्ति परीक्षणं विजितम्। एन रंगासामी पंचमं वारं पुडुचेरी राज्यस्य कार्यकालाय मुख्यमंत्री रूपेण शपथं स्वीकृतवान्। अपि च CBSE द्वारा अखिल भारतीय वरिष्ठ माध्यमिक वर्गस्य द्वादशी कक्षायाः परीक्षा परिणामाः घोषिताः। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विशेष रक्षा समूहस्य SPG प्रोटोकॉल इत्यस्यान्तर्गतं सर्वाः आवश्यकाः सुरक्षा व्यवस्थाः अवलम्ब्य सद्यः एव आन्तरिक यात्रासु स्वस्य यात्रा वाहनानां संख्या न्यूनीकृतवान्। सूत्रानुसारं प्रधानमन्त्रिणः यात्रा वाहनानां संख्यायां न्यूनीकरणं तस्य सद्यः गुजरातस्य, असम राज्यस्य च भ्रमणकाले कार्यान्वितम्। आर्थिक स्थिरतायै योगदानाय नागरिकान् प्रति प्रधानमन्त्रिणः सप्ताग्रहाणाम् अनुरूपम् एतदभवत्। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः आग्रहानन्तरं केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहेन उत्तरप्रदेशस्य, मध्यप्रदेशस्य, दिल्ल्याः च मुख्यमन्त्रिभिः, विधायकैः, जनप्रतिनिधिभिः च आधिकारिकयानानां संख्या 50% यावत् न्यूनीकर्तुम् आदेशः प्रदत्तः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवासरे संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे, इटली देशानां 6 यात्रां करिष्यति। अद्य सायंकाले नवदिल्ल्यां प्रसारमाध्यमान् संबोधयन् विदेश मंत्रालयस्य सचिवः सीबी जॉर्जः संसूचितवान् यत् 5 यात्रायाः प्रथमे चरणे श्रीमोदी शुक्रवासरे संयुक्त अरब अमीरात देशं प्राप्स्यति, यत्र हि सः राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान इत्यनेन सह मेलनं करिष्यति। सः अवदत् यत् उभौ नेतारौ द्वैपाक्षिक विषयेषु, विशेषतः ऊर्जा सहकारे, अपि च परस्पर हित सम्बद्धेषु क्षेत्रीय अन्ताराष्ट्रिय विषयेषु च विचार विनिमयं करिष्यतः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना अद्य 98-90 वर्षे अस्मिन्नेव दिने भारते कृत परमाणु परीक्षणस्य स्मरणं कृतम्। सामाजिक माध्यमेषु एकं संस्कृत सुभाषितं विनिमयी कुर्वन् प्रधानमंत्री उक्तवान् यत् एतत् परमाणु परीक्षणं देशस्य अविचल संकल्पं प्रदर्शयति। श्रीमोदी अवदत् यत् अस्य परीक्षणस्य अनन्तरं सम्पूर्णेन विश्वेन भारतं संपीडितम्, परञ्च देशेन सिद्धीकृतं यत् कापि शक्तिः भारतम् अवरोद्धुं न शक्नोति।

0: केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन विपणन सत्रस्य 27-2000 वर्षयोः कृते 14 खरीफ इति ग्रैष्मिक सस्यानां न्यूनतम समर्थन मूल्ये वृद्धिं स्वीकृतम्। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलस्य सभायाः अनन्तरं प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् सर्वकारेण ग्रैष्मिक सस्यानां न्यूनतम समर्थन मूल्यं वर्धितम् अस्ति, येन उत्पादकेभ्यः तेषाम् उत्पादानां कृते लाभप्रदं मूल्यं सुनिश्चितं भविष्यति। सः अवदत् यत् ग्रैष्मिककालस्य कृते कृषकाणां कृते प्रायः 60,000-2,00,000 रूप्यकाणि प्रदीयन्ते। सः अवदत् यत् अस्मिन् ऋतौ 24,800,000 मैट्रिक टन् इत्यतोप्यधिकानि सस्यानि प्राप्तानि भविष्यन्ति। श्रीवैष्णवः अवदत् यत् MSP मध्ये सर्वाधिकं 22,600 रूप्यकाणि प्रति क्विंटल वृद्धिः सूर्यमुखी बीजानां कृते अनुशंसितम्। तदनन्तरं 57,500 रूप्यकाणि प्रति क्विंटल कर्पासस्य कृते, 500 रूप्यकाणि प्रति क्विंटल तिलस्य कृते च अनुशंसितम् अस्ति।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824,00,000 मेट्रिक टन LMT।
0: प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन AIR चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन भू अंगारस्य तथा लिग्नाइट गैसिफिकेशन परियोजनायाः प्रोत्साहनाय 37,50,000,000,000 रूप्यकाणां वित्तीय व्ययस्य योजना अनुमोदिता। प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् केन्द्रीय सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् इयं योजना भारतस्य अंगारस्य लिग्नाइट गैसिफिकेशन इत्यस्य च कार्यक्रमं गतिप्रदानाय प्रमुखं पदाक्षेपमस्ति। श्रीवैष्णवः अवदत् यत् योजनायाः अन्तर्गतं 3,00,000,000,000 रूप्यकाणाम् अपेक्षित निवेशः भविष्यति।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसिफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: तमिलनाडु राज्ये सी जोसेफ विजयस्य नेतृत्वे तमिलगा वेट्रिकझगम दलस्य सर्वकारेण तमिलनाडु विधानसभायां बहुमत परीक्षणं विजितम्। 44,00,000 विधायकाः पक्षे मतदानं कृत्वा सभायां स्पष्टं बहुमतं प्रदर्शितवन्तः। अत्रांतरे 22 विधायकाः विश्वासप्रस्तावस्य विरुद्धं मतदानं कृतवन्तः। कार्याचरणावधौ प्रमुखः विपक्षिदलं DMK विधानसभा सदनात् बहिरगच्छत्। सद्यैव समाप्तेः विधानसभा निर्वाचने तस्य दलेन केवलम् 88 आसनानि प्राप्तानि आसन्। तमिलनाडोः राज्यपालेन राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकरवर्येण विजयाय सदने बहुमतं साधयितुम् आज्ञापितमासीत्। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दलस्य नेता एन रंगासामी अद्य पुदुचेरी राज्यस्य मुख्यमंत्री रूपेण पंचमं वारं शपथ ग्रहणं कृतवान्। लोकनिवासे आयोजिते समारोहे पुदुचेरी नगरस्य उपराज्यपालः के कैलासनाथन वर्यः पदस्य गोपनीयतायाः च शपथ ग्रहणं कारितवान्। दलस्य मल्लादी कृष्णरावः भाजपेति दलस्य एन नमशिवायं च अस्मिन् समारोहे मंत्री रूपेण शपथं स्वीकृतवन्तः। भारत ऋतु विभागेन अद्य राजस्थान राज्ये उष्णतरंगस्य कृते रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीया संचेतनायाः सूचना प्रसारिता। गुजरात राज्ये, महाराष्ट्रे, पश्चिम मध्य प्रदेशे च श्वः यावत् उष्णतरंगस्य स्थितिः भवितुम् अर्हति। अपि च अद्य हिमाचल प्रदेशे, उत्तराखण्डे च ओलावृष्ट्या सह वर्षायाः संभावना विद्यते। अद्य दिल्ली, चण्डीगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तरप्रदेश, झारखण्ड

0: उत्तराखंड पंजाब इत्येतेषु प्रदेशेषु विद्युत सहित वृष्टिः तीव्रवायुवेगः च भविष्यति इति भारत ऋतु विभागेन पूर्वानुमानितम्। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा द्वादशी कक्षायाः परीक्षा परिणामाः प्रसारिताः। छात्राः आधिकारिक वेबसाइट डिजिलॉकर इत्यत्र उमंग ऐप इत्यत्र च स्वानुक्रमान् प्रविश्य परिणामं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अस्मिन् वर्षे केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा द्वादशी कक्षायाः फरवरी मासस्य 17 दिनांकतः अप्रैल मासस्य 10 दिनांक पर्यन्तं लक्ष्योपलक्ष्य छात्राणां कृते परीक्षा आयोजिता। अन्ते मुख्यवार्ताः पुनः एकवारम्। पश्चिम एशिया संघर्षेण उद्भूतस्य वैश्विक ऊर्जा संकट कालस्य मध्ये प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिना आवाहनस्य अनन्तरं केन्द्र राज्ययोः ईंधन संरक्षणस्य उपायाः तीव्राः जाताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन 14 खरीफेति ग्रैष्मिक सस्यानां न्यूनतम समर्थन मूल्यं स्वीकृतम्। तमिलनाडु राज्ये सी जोसेफ विजयस्य नेतृत्वे टीवी के सर्वकारेण सहज बहुमतेन शक्षि परीक्षणं विजितम् इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है शाम के 6:30 और अब प्रस्तुत है किसानों के लिए सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान।

0: प्लस और नैनो डीएपी के निर्माता इफको।
1: नैनो यूरिया प्लस अपनाओ, अधिक उपज गुणवत्ता पाओ, इसमें है गुण अपार, उपज के लग जाए भंडार, ये है शक्तिशाली और प्रभावशाली।
2: 20% नाइट्रोजन का असर दमदार, इफको नैनो यूरिया प्लस, दे वही दाम में बेहतर पैदावार। इफको

0: 20% नाइट्रोजन का असर दमदार, इफको नैनो यूरिया प्लस, दे वही दाम में बेहतर पैदावार।
1: इफको नैनो यूरिया प्लस की बात है निराली, गुड़ है इसके दमदार शक्तिशाली, किसानों के जीवन में लाए खुशहाली, हो खेतों में हरियाली ही हरियाली।
2: 20% नाइट्रोजन का असर दमदार, इफको नैनो यूरिया प्लस, दे वही दाम में बेहतर पैदावार।
3: पंचो जय हिंद।
4: ओम भैया।
5: हाँ ओम प्रकाश भैया।
4: देखो ये समय जो अपने सजग किसान हैं वो ही अपने खेत की निगरानी कर रहे हैं जहाँ जायद वाली फसलें बोई हैं, साथ ही साथ उन्हें तैयारी कर रहे हैं खरीफ में, यहाँ जो मुख्य फसल है धान, उनके नर्सरी डाले के लिए। तो बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो अपने कृषि विभाग द्वारा सुविधाएं दी जा रही हैं, प्रजातियों के चुनाव में यहाँ जो है मदद की जा रही है, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं जो हम सबका जो है अब जानने चाहिए और अपने पंचन का भी जानने चाहिए।
5: बिल्कुल भैया सही कहा था। और देखो आज है दिन बुधवार, एक ही खातिन अपने कार्यक्रम में देखो विशेषज्ञ भैया आ चुके हैं, यही सब चीजन की जानकारी देखा
4: तो आज के विशेषज्ञ विशेष भी हैं, उनके परिचय करा दो।
5: तो आज के जो विशेषज्ञ भैया हैं डॉक्टर पंकज त्रिपाठी भैया जो कि कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश हमें, और जो आज का विषय रही वो सबसे जरूरी है, विषय रही जायद फसलों की सामयिक देखभाल, ग्रीष्मकालीन जुताई और हरी खाद उत्पादन, कृषि विभाग से देय सुविधाएं और खरीफ उत्पादन की योजना और तैयारी।
4: एक के बारे में यहाँ विस्तार से बातचीत हुई और अपने पंचन से निवेदन है कि अपने कार्यक्रम में यहाँ अपनी जो समस्या है अपने फोन के माध्यम से जरूर भेजें ताकि जो उनकी समस्या है उनके निदान फोन के माध्यम से ही उनका मिल जाए। तो आज का जो फोन नंबर है वो है 0522 2238825, वही पुरान वाला नंबर है। और कार्यक्रम के संचालन कर रहे हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया। तो बैठकी में विलम्ब न की जाए।
5: हाँ भैया बिल्कुल बिना देरी के।
6: धन्यवाद। ओम प्रकाश भैया। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, हर बुधवार की तरह एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। किसान भाइयों बहनों, डॉक्टर पंकज त्रिपाठी साहब जो कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश हैं हमारे साथ स्टूडियो में हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में आपका।
7: बहुत

0: धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमें अवसर दिया है। मैं आज देश और प्रदेश के परिश्रमी अन्नदाता कृषकों, महिला कृषकों को सादर नमन करते हुए उनका स्वागत करता हूं।
1: और अब से लेकर के 7:20 तक आप हमारे साथ स्टूडियो में होंगे और किसान भाइयों बहनों के सवाल होंगे, उनकी जिज्ञासाएं होंगी, उनकी शंकाएं होंगी, जिनका समाधान आपको करना है। डॉक्टर साहब
0: स्वागत है आपके। विषय में कुछ बिंदु पहले आपके अवगत करना चाहूंगा।
1: बीच बीच में किसान भाइयों बहनों के फोन आएंगे तो उसके लिए फोन इन का नंबर बता दें, 0522-223-8825 यानी 0522-2238-825। डॉक्टर साहब एक किसान भाई टेलीफोन लाइन पर हैं, लेकिन आजकल फार्मर रजिस्ट्री का नाम सुना जा रहा है कि फार्मर रजिस्ट्री किसान का एक आईडी बन रहा है, ये है क्या?
0: वास्तव में किसान भाइयों को यह जानते हुए बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हर किसान का अपना जो खेत है, उसके पास जितने खेत हैं उन सभी का एक प्रकार का एकत्रीकरण, एक प्रकार का डाटा है, जिससे कि यह सुनिश्चित हो सकेगा कि किस व्यक्ति किसान के पास किस गांव में कहां पर कितने खेत हैं।
1: जी,
0: इसके कई उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है कि वास्तविक किसकों को वास्तविक जो सामग्री है, जो भी कृषि निवेश हैं, चाहे बीज हो, चाहे उर्वरक हो, कृषि अच्छा रसायन हो, किसान क्रेडिट कार्ड हो, इसमें सीधे उन किसान भाइयों को सुविधा दी जा सके।
1: लेकिन इसकी आवश्यकता पड़ी क्यों डॉक्टर साहब?
0: इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी है क्योंकि अभी तक ऐसा कोई डेटा उपलब्ध नहीं था
1: जी,
0: जिससे कि यह कहा जा सके कि उनके पास कितना खेत है। और डिजिटल डेटा, आज समय आ गया है डिजिटल डेटा का। यह डिजिटल डेटा हमारे पास उपलब्ध होगा तो किसान भाइयों को जो किसान क्रेडिट कार्ड के लिए 10 बार दौड़ना पड़ता था, जो विभिन्न तरह के रिकॉर्ड निकालने पड़ते थे, उसकी आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। दूसरा, किसान भाइयों को आसानी से समय की बचत होगी और आसानी से उन्हें राजकीय या जो भी सुविधाएं हैं वो आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे।
1: डॉक्टर साहब इस पर चर्चा जारी रहेगी, लेकिन एक किसान भाई जुड़े हैं
0: जी।
1: हेलो,
2: हेलो, नमस्कार जी।
0: नमस्कार, नमस्कार, बताएं।
2: भैंसा बोना चाहते हैं तो कितना एकड़ में डालें?
0: हैं,
2: भैंसा सीपुर सीतापुर ब्लॉक बैठा है, सीतापुर से बोल
0: रहे हैं। में उपलब्ध हो चुका है जो 77.50 रुपये में प्रति किलो के हिसाब से उपलब्ध है। ढैंचा लेने के लिए आवश्यक है कि आप कृषि विभाग के पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा लें। यदि आपने पंजीकरण करा लिया है तो ढैंचा का बीज उपलब्ध हो चुका है, आप अपने विकास खंड से बीज प्राप्त कर सकते हैं।
1: आप अपने ब्लॉक के राजकीय कृषि बीज भंडार पर संपर्क करें और वहां से ढैंचा ले लें। प्रति एकड़ लगभग 15 से 20 किलो बीज की आवश्यकता होगी।
0: नहीं, या अधिक से अधिक, जो ढैंचा का आपका, यदि आप बीज ढैंचा की हरी खाद के रूप में ले जाना चाहते हैं
1: जी,
0: हरी खाद के लिए, तो हम लोग इसको 8 किलो प्रति एकड़।
1: अच्छा,
0: के हिसाब से हम दे,
1: बहुत बढ़िया। तो कम बीज में आप
0: 16 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हम दे रहे हैं उसको
1: जी। 16 किलो प्रति एकड़ में आवश्यकता होगी, यानी लगभग 40 किलो 2.5 एकड़ में प्रति हेक्टेयर।
0: प्रति हेक्टेयर,
1: तो बहुत धन्यवाद भैया फोन करने के लिए।
0: 8 किलो के पैक में उपलब्ध है।
1: तो डॉक्टर साहब ऐसा तो नहीं है कि एक किसान भाई को 1 8 किलो का पैकेट ही मिलेगा?
0: नहीं, उसमें यह है कि जिसका जितना क्षेत्र है, जितने के लिए उन्होंने अपनी मांग रखी है
1: जी
0: पोर्टल पर, हम लोग अधिकतम 2 हेक्टेयर की सीमा में सभी को देंगे।
1: तो डॉक्टर साहब कोई भी बीज राजकीय कृषि बीज भंडार से लेना है तो उसके पहले क्या कोई पंजीकरण कराना होगा?
0: हाँ, यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसान भाई को पर्याप्त मात्रा में सही किसान को बीज उपलब्ध हो सके, यह आवश्यक कर दिया गया है कि चाहे वह कृषि विभाग से कोई भी बीज,
1: हाँ,
0: चाहे सहकारिता से लेना हो
1: जी,
0: तो वह बीज लेने के लिए किसान भाइयों को हम कृषि विभाग के पोर्टल पर अपनी मांग देनी होगी।
1: डॉक्टर साहब इस बीच एक किसान भाई जुड़े हैं
0: जी।
1: हेलो,

0: हेलो, नमस्कार राय साहब।
1: नमस्कार, अपना नाम बताएं भैया।
0: मैं राकेश बात कर रहा हूँ।
1: अच्छा राकेश, हिमाचल प्रदेश के किसान हैं, बड़े जागरूक किसान हैं। जल्दी से सवाल पूछिए।
0: जी जी, मेरा ये प्रश्न है, जो कि फार्मा इंटरेस्टिंग है कि हम रजिस्टर करते हैं क्या ऑनलाइन में, क्या
1: देखिए ये उत्तर, हाँ अच्छा, ये हिमाचल के किसान है, ये भी रजिस्ट्री, फार्मर रजिस्ट्री कराना चाहते हैं, तो पूरे देश में चल रहा है।
2: हाँ ये तो पूरे देश में चल रहा है, और आपका जो आधार नंबर है

0: अपने फार्मर अपनी रजिस्ट्री करा सकते हैं।
1: बहुत धन्यवाद राकेश जी, हिमाचल प्रदेश के जागरूक किसान हैं। डॉक्टर साहब, हम लोग बात कर रहे हैं कि इधर कई बेमौसम बारिश भी हुई, कहीं ओले भी गिरे, तो इस समय जहां माटी नरम है, क्या गर्मी की जुताई फायदेमंद होगी?
0: देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। मृदा का स्वास्थ्य निरंतर गिरता जा रहा है और उसमें भी जीवांश कार्बन की स्थिति अत्यंत शोचनीय हो चुकी है।
1: यानी खेत का हीमोग्लोबिन घट रहा है,
0: बहुत तेजी से घट रहा है। इसलिए किसान भाइयों से मेरी करबद्ध प्रार्थना भी होगी कि ऐसे मौसम का लाभ उठाएं, यदि बारिश हो गई तो तत्काल गर्मी की गहरी जुताई
1: जरूर कर दें,
0: कल्टीवेटर से नहीं बल्कि
1: मिट्टी पलट हल
0: से, हैरो से कर लें, जिससे कि खेत खुल जाए और उसमें एक तो पानी सोखने की क्षमता बढ़ेगी, जो कीड़े मकोड़े हैं वो खत्म हो जाएंगे और खेत को एक अच्छा तैयारी हो जाएगी आगामी खरीफ के लिए। जो किसान भाई ढैंचा का बीज ले रहे हैं वह ढैंचा का बीज की बुआई कर दें, साथ ही यदि आपके पास ढैंचा का बीज उपलब्ध नहीं है
1: जी,
0: तो आप एक काम और कर सकते हैं।
1: क्या डॉक्टर साहब?
0: वो ये है कि ढैंचा का बीज कम है तो ढैंचा, मक्का, लोबिया, भिंडी, इनका एक मिक्स करके,
1: अच्छा,
0: यदि आप बुआई कर लें और 30 दिन पर इसकी पलटाई कर दें,
1: यानी बायोमास जो तैयार होगा,
0: ताकि खेत को बायोमास मिल सके, खेत को जीवांश कार्बन मिल सके, इन सभी को मैं इसलिए कर रहा हूं, मिक्स करके इसकी बुआई कर लें।
1: डॉक्टर साहब, इस पर चर्चा अभी और होनी है
0: जी।
1: एक किसान भाई जुड़े हैं इस बीच। हेलो।
2: हेलो सर, हम कुलदीप तिवारी बोल रहे हैं, नारायणपुर सखीपुर उन्नाव से। सर प्रणाम है।
1: प्रणाम कुलदीप तिवारी।
2: निदेशक साहब को भी हमारा प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम है। हमारा
0: प्रणाम तिवारी जी।
2: हेलो,
1: जल्दी से सवाल पूछिए।
2: हाँ, हमारे साथ प्रश्न यही है कि फार्मर रजिस्ट्री हमारी हुई गए है, का हमारा किसान क्रेडिट कार्ड आसानी से बन जाए, और दूसरी चीज यह किया है हमका अब तक वो जो किट मिलत है ना सीड स्टोर से, राजकीय कृषि बीज भंडार से, वही हमका न मिलत है।
1: अच्छा, मिनी किट की बात कर रहे हैं।
2: नहीं कर ही रहा है वही मां।
0: कौन से मिनी किट की आवश्यकता है आपको?
2: हेलो,
0: आपको किस फसल के मिनी किट की आवश्यकता है?
2: अरे जितने अबे तक आए हमका कोनो मिले ही नहीं आज तक।
0: देखिए, मिनी किट के लिए भी हमारा पोर्टल खुला हुआ है और पोर्टल पर आपको अपना पंजीकरण कराना पड़ेगा। इस वर्ष हम लोग उर्द, मूंग, अरहर, तिल, मूंगफली, ज्वार, बाजरा, सावा, कोदो और रागी, इन सभी फसलों के मिनी किट दे रहे हैं
1: जी।
0: एक किसान भाई को हम अधिक से अधिक 2 मिनी किट दे रहे हैं। इसके लिए आवश्यक है कि हमारे पोर्टल पर जा करके अपना पंजीकरण अवश्य कर लें, पंजीकरण कर लेंगे निश्चित रूप से मिलेगा।
1: बहुत धन्यवाद कुलदीप तिवारी भैया, सफीपुर उन्नाव से। आप एक जागरूक किसान हैं, आप पोर्टल पर पंजीकरण भी करें और अपने नज़दीकी जो राजकीय कृषि बीज भंडार है ब्लॉक वाला, वहाँ के जो इंचार्ज हैं उनसे भी संपर्क में रहें, वो आपकी भरपूर मदद करेंगे डॉक्टर साहब।
0: जी बिल्कुल, जो भी मिनी किट की मांग आ रही है हम लोग उसमें 2 चीज़ें किए हैं। एक कि जो हमारी संख्या है उनका हम वहाँ तक ले जा रहे हैं, उसके बाद हम एक लॉटरी कर रहे हैं
1: जी।
0: यदि अधिक किसान भाई की मांग आई तो लॉटरी करनी पड़ेगी।
1: हाँ।
0: और लॉटरी हमने 10 को खोल दी है, अभी कल खोल दी है, पुनः यदि अवशेष रहेगा तो पुनः आप लोग किसान भाई अपना पंजीकरण कर ले, हम अगले सप्ताह पुनः लॉटरी करके किसानों का चयन कर ले रहे हैं।
1: डॉक्टर साहब, माटी की सेहत की बात हो रही थी जो अत्यंत जरूरी है, अगर माटी की सेहत ठीक रहेगी तभी जो फसल उत्पादन है हमको अभीष्ट मिलेगा, तो हरी खाद के अलावा और क्या क्या हम लोग कर सकते हैं?
0: हरी खाद के अलावा भी देखें, आजकल बहुत ही आवश्यक है प्राकृतिक खेती की
1: जी,
0: जिसमें हम तैयार कराते हैं गाय, देसी गाय के गोबर से, उनके उसके
1: जीवामृत है,
0: घन जीवामृत है, नीमास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, इस पर भी अति आवश्यक हो गया, किसान भाई इसे भी सीखें। और थोड़ी मेहनत जरूर है लेकिन इससे स्वास्थ्यवर्धक हम अनाज तैयार कर सकते हैं।
1: यानी जो थाली में पहुंचेगा, अगर स्वस्थ माटी रहेगी तभी स्वस्थ थाली भी रहेगी।
0: बिल्कुल।
1: एक किसान भाई इस बीच जुड़े हैं डॉक्टर साहब। हेलो।
3: हेलो, नमस्कार सर।
1: नमस्कार, नाम बताएं भैया।
3: डॉक्टर साहब, नमस्कार।
1: हाँ हाँ, अपना नाम बताएं
3: जी। सर मेरा नाम

0: संगम लाल है, हम जिला श्रावस्ती और जयंती नगर से मैं बात कर रहा हूँ।
1: बहुत स्वागत है संगम लाल जी, सवाल पूछिए।
0: सर हमारे यहाँ टीका लगा है तो सर बतिया मर जाती है, पता नहीं क्यों।
1: कौन सी फसल में
0: जी?
1: कौन सी फसल में बतिया मर रही है?
0: जी।
1: कौन सी फसल है, सब्जी है कोई?
0: हाँ सब्जी सब्जी।
1: तो आप देखिए, नीम का तेल सबसे अच्छा है। एक तो ये है कि खेत के नियमित रूप से निगरानी करते रहें, और कहीं ऐसा तो नहीं कि फूल की अवस्था में आप ज़्यादा सिंचाई करते रहें अपनी फसल में। तो
0: नहीं नहीं सर, फूल के समय ज़्यादा सिंचाई नहीं करते, वैसे मीडियम सिंचाई होती है।
1: हाँ देखिए, फूल की अवस्था में किसी भी फसल में अगर सिंचाई करेंगे तो फूल मर जाएंगे, और फूल के पहले हल्की सिंचाई करें और नीम का तेल आप छिड़काव करें, उससे ज़रूर अगर कोई हानिकारक कीट या बीमारी के चलते होगा तो उसका प्रबंधन हो जाएगा। बहुत धन्यवाद संगम लाल भैया। डॉक्टर साहब, हम लोगों की बात चल रही थी कि फार्मर रजिस्ट्री के बारे में, तो इसकी प्रक्रिया क्या है?
2: इसकी प्रक्रिया के लिए किसान भाई स्वयं भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरा, इसमें CSC पर जा करके,
1: यानी जन सेवा केंद्र
2: पर जा करके अपना पंजीकरण करा सकते हैं, और ये बहुत ही आसान प्रक्रिया, लेखपाल से बात करके अपना पंजीकरण करा सकते हैं किसान भाई। और ये तीनों मोड में सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश के 2,88,00,000 कृषकों में से आज 2,25,00,000 कृषकों द्वारा अपना पंजीकरण करा लिया गया,
1: यानी उनका किसान आईडी बन गया
2: है।
1: और फार्मर रजिस्ट्री ये किसान आईडी,
2: ये बधाई है हमारे किसान भाइयों को। उन्होंने कहा, जो किसान भाई बच गए हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपना
1: जल्दी से जल्दी,
2: क्योंकि आने वाले समय में यह आवश्यक हो जाएगा।
1: यानी एक महाअभियान के रूप में अपनी भागीदारी समझें, और जिनका अभी तक नहीं बना है जल्दी से जल्दी बनवा लें।
2: हाँ।
1: फार्मर रजिस्ट्री किसान आईडी, इसका फायदा आपको आगे मिलेगा। एक किसान भाई टेलीफोन लाइन पर हैं डॉक्टर साहब
2: जी।
1: हेलो भैया, नाम बताएं कहाँ से।
3: नमस्ते सर।
1: नमस्ते।
3: मेरा नाम सोम यादव से बोल रहे हैं।
1: सवाल क्या है भैया आपका?
3: सवाल ये है कि सर हमने उर्द बोए हैं, उसकी पत्तियों में छेद हो रहे हैं, कीड़ा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है।
1: कीड़ा कहीं पत्तियों के नीचे तो नहीं छिपा हुआ है?
3: नहीं नहीं, कीड़ा नहीं दिख रहा है।
1: तो कितने दिन की फसल हो गई आपकी?
3: फसल हो गई वही 1.5 महीने की।
1: तो आप नीम का तेल आप अपने ब्लॉक के राजकीय कृषि बीज भंडार या जो कृषि रक्षा इकाई है
2: प्राइवेट
1: या बाजार में विश्वसनीय दुकान से आप नीम का तेल ले लें, और 4 से 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से थोड़ा सा स्टिकर मिला दें उसमें, या शैम्पू मिला दें और इसका छिड़काव कर दें, तो कोई भी हानिकारक कीट होगा तो उसका प्रबंधन हो जाएगा। यह सबसे आसान है। बहुत धन्यवाद भैया। डॉक्टर साहब, हम लोग बात कर रहे थे कि जो जायद की फसलें हैं इस समय खेत में, उनकी निगरानी भी तो आवश्यक है।
2: बहुत ही आवश्यक है। और इस समय जो भी जायद की फसलें हैं,
1: चाहे मक्का है,
2: मूंगफली है, उर्द है, मूंग है, तो इन सभी में जैसे कि अभी एक पूर्व में किसान भाई पूछ रहे थे, तो उन्हें सतर्क रहने की आवश्यकता है,
1: यानी नियमित रूप से निगरानी
2: करने की आवश्यकता है। जैसा अभी आपने बताया कि फूल आ रहे हैं तो पानी थोड़ा सा रोक दें, अधिक ना करें, तो यह भी देखने की आवश्यकता है। तो और इसमें कीड़ों मकोड़ों से बचाव की भी आवश्यकता इस वक्त है,
1: यानी जब नियमित निगरानी करेंगे तभी जान पाएंगे कि फसल भूखी तो नहीं है, फसल प्यासी तो नहीं है।
2: खेत पर रोज जाने की एक बार आवश्यकता अवश्य होगी।
1: एक किसान भाई लाइन पर और हैं डॉक्टर साहब
2: जी।
1: हेलो
4: डॉक्टर साहब नमस्कार।
1: नमस्कार भैया, नाम बताएं।
4: राम शंकर यादव, हरदोई भरावन, हरदोई से।
1: बहुत स्वागत है राम शंकर भैया, आज का सवाल क्या है?
4: सर सवाल तो मेरा ये है कि एक कंपनी हमारे पास आई थी
1: जी,
4: तो अपना प्रोडक्ट दिखा रही थी कि हमारा ये प्रोडक्ट उसमें डालिए
1: जी,
4: क्या सर उससे हम डाल सकते हैं?
2: कौन सा प्रोडक्ट?
4: अरे अपने सब यही खेती बाड़ी के प्रोडक्ट बता रही थी।
1: आजकल बहुत सारी कंपनियां प्रमोशन करते हैं,
4: ये सब है जैविक में, DAP यूरिया।
2: नहीं देखिए, दो बातें हैं कि इस समय बहुत से ऐसे लोग भी आ सकते हैं जो कि न तो पंजीकृत हैं
1: हाँ,
2: और न ही वो ऑथेंटिक हैं, इसलिए मैं आपको

0: एक ही सलाह दूंगा, यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आ रहा है और कह रहा है कि हमारा यह प्रयोग करिए, उसके बारे में वहाँ के जनपदीय हमारे जिला कृषि अधिकारी हैं
1: जी
0: अथवा हमारे विकास खंड पर ADO AG उपलब्ध हैं, उप कृषि निदेशक हैं, कृपया उनसे उनके नॉलेज में अवश्य डालिए।
1: जी
0: और इसके बाद ही, क्योंकि हम जो आपको सलाह देंगे वह जो उचित होगा वही सलाह देंगे।
2: जी बिल्कुल, आपके यहाँ के सलाम करते हैं ना सर।
0: हाँ,
1: और जो संस्तुति है,
0: जो संस्तुति है
1: परीक्षण के बाद जो संस्तुति हुई है उसकी सलाह देंगे। बहुत धन्यवाद रामशंकर यादव भैया हरदोई से। डॉक्टर साहब, एक छोटा सा अंतराल
0: हाँ,
1: है,
0: जी
1: उसके बाद कार्यक्रम के दूसरे चरण में एक बार फिर मिलते हैं कार्यक्रम हेलो किसान में।
3: नैनो यूरिया प्लस अपनाओ, अधिक उपज गुणवत्ता पाओ, इसमें है गुण अपार, उपज के लग जाए भंडार, ये है शक्तिशाली और प्रभावशाली। 20% नाइट्रोजन का असर दमदार, इफको नैनो यूरिया प्लस, दे वही दाम में बेहतर पैदावार।

0: हरियाली। 20% नाइट्रोजन का असर दमदार, इफको नैनो यूरिया प्लस, बेवही दाम में बेहतर पैदावार।
1: इफको नैनो यूरिया प्लस की बात है निराली, गुड़ है इसके दमदार शक्तिशाली, किसानों के जीवन में लाए खुशहाली, हो खेतों में हरियाली ही हरियाली।
2: 20% नाइट्रोजन

0: हरियाली। 20% नाइट्रोजन का असर कमदार, इफको नैनो यूरिया प्लस, बेवही दाम में बेहतर पैदावार।
1: कार्यक्रम हेलो किसान के दूसरे चरण में एक बार फिर स्वागत है किसान भाइयों बहनों आप सभी का। डॉक्टर पंकज त्रिपाठी साहब कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश कार्यक्रम हेलो किसान में हैं, स्टूडियो में हैं। डॉक्टर साहब इस चरण में भी आपका स्वागत है। किसान भाइयों बहनों के लगातार सवाल हैं और हम लोग जायद फसलों की देखभाल की बात कर रहे थे। अब धीरे धीरे समय आ रहा है खरीफ उत्पादन का भी, लेकिन एक किसान भाई टेलीफोन लाइन पर हैं। हेलो
2: हेलो
1: भैया, अपना नाम बताएं।
2: जी विनीत कुमार बोल रहे हैं, ग्राम अर्थापुर पोस्ट ग्राम जिला सीतापुर से।
1: आज का सवाल क्या है विनीत भैया?
2: सवाल ये डॉक्टर साहब कि हमारे गन्ना में जो बुहारी गन्ना है शरदकालीन का
1: जी,
2: तो उसको हम जुताई निराई करवाए थे
1: हाँ।
2: तो दोबारा फिर उसमें धूप हो गई है, बहुत हो गई मतलब
1: जी,
2: तो उसको पलट वाले हर से पलटवा दे या हाँ। कोई दवाई आती है
1: जी? नहीं देखिए, इस समय कर्षण क्रियाओं के माध्यम से ही आप, दूब एक ऐसी घास है जिस पर कोई भी खरपतवार नाशी असर नहीं करेगा पोस्ट इमरजेंस, तो आप वही करें कि जुताई करा दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और खरपतवारों से मुक्ति मिलेगी। विनीत भैया कोई भी खरपतवार नाशी रसायन का प्रयोग इस अवस्था पर न करें। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। हम लोग खरीफ उत्पादन की बात कर रहे हैं कि अब समय आ गया है कि किसान भाई बहन अपनी खरीफ की योजना बनाएं
3: जी,
1: क्या कहना चाहेंगे?
3: निश्चित रूप से दो बिंदु मैं अपने किसान भाई को बताना चाहूँगा। देखें अल नीनो का प्रभाव
1: जी
3: अभी तक मौसम वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया है,
1: यानी जलवायु परिवर्तन,
3: जलवायु परिवर्तन का एक प्रभाव इस वर्ष संभावित है
1: जी।
3: अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि सूखा की स्थिति आएगी, लेकिन निश्चित रूप से वर्षा में कुछ कमी इस वर्ष हो सकती है
1: हाँ।
3: स्वाभाविक रूप से हमें अपने किसान भाइयों को तैयार रहना चाहिए कि जैसे ही हमें मौसम का
1: पूर्वानुमान मिले
3: हमें अपने खेतों की तैयारी कर लेनी चाहिए। विशेषकर यदि समय से हम धान की रोपाई कर लेंगे तो इंतजार न करें बारिश के आने का और बारिश के आने पर नर्सरी डालने का।

0: की नर्सरी की व्यवस्था अभी से शुरू कर दें, नर्सरी डालने की प्रक्रिया जल्दी से शुरू करें, 20 मई के आसपास से यदि मौसम अच्छा आपको पानी की व्यवस्था, ताकि समय से आपकी फसल की बुआई हो, रोपाई
1: और धान की सीधी बुआई भी,
0: धान की सीधी बुआई इस वक्त बहुत ही अच्छी होगी, जो जहां पर पर्याप्त सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, बहुत अधिक व्यवस्था नहीं है,
1: पानी नहीं है
0: वहां पर DSR में सीधी बुआई अर्थात सीड ड्रिल से या मल्च से बुआई कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। दूसरा, दलहनी और तिलहनी फसलें, विशेष करके उन क्षेत्रों में जहाँ बारिश लेट हो गई या बहुत दिक्कत हो, वहाँ पर तिल जहाँ कम पानी में जो हो जाता है
1: जी,
0: उर्द मूंग
1: इसको चुने अरहर भी,
0: अरहर की तैयारी करें, और इस साल सावा, ज्वार, बाजरा, सावा, कोदो, मड़ुआ
1: यानी मिलेट्स
0: के भी बीज उपलब्ध हो रहे हैं। किसान भाई यदि उनके पास पर्याप्त धान की व्यवस्था नहीं है, पर्याप्त वर्षा की संभावना नहीं दिख रही है, तो निश्चित रूप से इन फसलियां की फसलों पर जाना चाहिए,
1: और इनकी संभावनाएं भी बहुत,
0: इनकी संभावनाएं
1: और मार्केटिंग भी अच्छी
0: अच्छी है।
1: डॉक्टर साहब, एक किसान भाई इस बीच लाइन पर है। हेलो,
2: नमस्ते, मोहली सीतापुर।
1: हाँ, इंद्रपाल मिश्रा भैया एक जागरूक किसान है। आज का सवाल क्या है इंद्रपाल मिश्रा भैया?
2: डेढ़ महीने की मूंगफली है लेकिन पौधा सूखा है, पीली पत्ती,
1: कहीं दीमक का प्रकोप, बलुई जमीन है क्या? हेलो, बलुई जमीन है क्या आपकी?
2: हाँ, बलुई है, बलुई।
1: तो देखिए, दीमक का प्रकोप होगा, आप ऐसा करें कि जो सिंचाई है उसी के साथ
0: क्लोरोपाइरीफास
1: का सिंचाई नाली में प्रयोग कर दें, डॉक्टर साहब उसी का होगा दीमक का प्रकोप।
0: सबसे अच्छा है दीमक का प्रकोप,
1: और कोई कारण तो इस समय है नहीं। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। हम लोगों की बात हो रही थी कि खरीफ की योजना बनाते समय, जैसे आपने कहा कि धान की सीधी बुआई, धान की जहां रोपाई करनी है वहां नर्सरी, उन्नत प्रजातियां जिनका बीज आपके राजकीय कृषि बीज भंडारों पर पहुँच रहा है, उसके बारे में भी किसान भाइयों बहनों को बता दें।
0: हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि धान की लगभग 22 प्रजातियों के बीज हम विभिन्न सेवा अपने केंद्रों पर उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें बासमती भी है
1: जी,
0: और CO51 है, सुहाट्स पैडी है, M2 7029 है, IR 6452 है, PB 1509 है, तो कई प्रकार की वैरायटीज हमने
1: हर हम तरह रख रहे हैं, कम दिन वाला भी और अधिक दिन वाला भी।
0: इसी के साथ उर्द है, उर्द में IPU 13-1, IPU 11-2, Kota Urd 3, Kota Urd 4, PU 12, Pant Urd 12, मूंग में भी हमारे पास पर्याप्त वैरायटीज हैं।
1: डॉक्टर साहब, एक किसान भाई इस बीच लाइन पर हैं।
0: जी,
1: हेलो। हाँ भैया, कुलवंत सिंह निगासन लखीमपुर खीरी से।
3: नमस्कार राय साहब।
1: नमस्कार, सवाल जल्दी से पूछिए।
3: हमारे प्रिय कृषि निर्देशक पंकज त्रिपाठी जी को बहुत बहुत नमस्कार हमारी तरफ से।
0: प्रणाम।
1: जल्दी से सवाल पूछिए।
3: आपको मुबारकबाद सर देना चाहते हैं कि जो आप किसानों की डगमगाती नैया को सहारा देने की कोशिश, सफल कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए आप मुबारक के हकदार हैं।
1: बहुत शुक्रिया आपका।
0: धन्यवाद, शुक्रिया।
1: सवाल पूछिए। हेलो, लगता है कुलदीप सिंह भैया निगासन लखीमपुर खीरी से कट गया फोन, एक बार फिर से प्रयास कर लें। हेलो, फिर से प्रयास कर लें ताकि आपसे संवाद बात पूरी नहीं हो पाई डॉक्टर साहब। हाँ, हम लोगों की बात हो रही थी कि उर्द की जो प्रजातियां, हाँ, इसके अलावा
0: उर्द के अलावा मूंग में भी हमारे पास IPM 205.7 जिसे विराट बोलते हैं
1: जी,
0: सूर्जा है, शिखा है, अरहर में PU 16 एक अच्छी प्रजाति के रूप में आई है,
1: हाँ।
0: और इसके अलावा पूसा अरहर है, राजेंद्र अरहर 2 है, इनकी प्रजातियों के बीज उपलब्ध हैं
1: राजकीय कृषि बीज भंडारों पर।
0: साथ ही बाजरा, ज्वार में मैं अपने किसान भाइयों को अवगत कराना चाहूँगा कि हम लोग सामान्य संकुल बीज तो दे ही रहे हैं, साथ ही इस साल पर्याप्त मात्रा में हमने संकर बीजों की, जो कि जिसमें धान का 6,122 क्विंटल, बाजरा 24,000 क्विंटल, मक्का 22,000 क्विंटल,

0: ज्वार 3,500 क्विंटल बीज की सब्सिडी पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है
1: पूरे उत्तर प्रदेश
0: में, जो 50% अधिकतम 15,000 रुपये प्रति क्विंटल,
1: यानी आधे आध की
0: छूट पर हम उपलब्ध कराएंगे। जो भी किसान भाई बीज लेना चाहते हैं, वही अनुरोध कि अपना पंजीकरण
1: पोर्टल पर जरूर
0: कराएं। अवश्य कराएं।
1: डॉक्टर साहब, एक किसान भाई जुड़े हैं। हेलो।
2: हाँ सर, नमस्ते।
1: नमस्ते, नाम बताएं भैया।
2: हमारा विजय कुमार यादव, ग्राम कुड़वा।
1: और जिला?
2: जिला बाराबंकी से बोल रहे
1: हैं। बहुत स्वागत है कुड़वा से विजय भैया। आज का सवाल है क्या?
2: सवाल ये है कि फसल में तो कीड़ा साहब नहीं भाग रहा है।
1: क्या दवाई ज्यादा छिड़क दिए क्या?
2: ज्यादा नहीं, वहाँ 6 दिन बारिश से पूरा कीड़ा खत्म ही नहीं हुआ।
1: यही तो समस्या है कि देखिए, ऐसा है कि जब दवाई बेअसर हो जाएगी, एक स्थिति है। डॉक्टर साहब, IPM का उपाय इसमें?
0: बिल्कुल, इसमें यदि आप नीम आयल का प्रयोग करें
1: शुरुआती दौर में,
0: साथ ही जो ट्रैप आ रहे हैं, फेरोमेन ट्रैप है, चिपकाने वाले जो
1: पीला प्रपंच
0: है, इनका प्रयोग बढ़ाइए। निश्चित रूप
2: से
1: देखिए, दवाएं तो बहुत कुछ हैं, लेकिन ये है कि चूंकि ऐसा ये चीज है कि इसका तेल उपयोग में आता है, इसलिए जितना जहर डालेंगे उतना ही आपका बाजार भाव भी अच्छा नहीं मिलेगा।
0: इसके साथ साथ एक और चीज है, जो व्यक्ति छिड़कता है और जो उस खेत में गुजरता है,
1: दोनों को नुकसान,
0: उसके स्वास्थ्य को भी। हम दवाएं तो बहुत सी लाल देखिए, 3 तरह की दवाएं बाजार में उपलब्ध होती हैं। एक पर आपको हरे रंग का तिकोना बना होता है,
1: सबसे सुरक्षित।
0: दूसरा होता है पीला, उसके बाद लाल। तो यदि आप दवाओं का इतना ज्यादा प्रयोग करेंगे तो आखिर वो भी तो एक आदत हो गई है। तो इसलिए बड़ा सुरक्षित रूप से
1: जी
0: हमें मानव स्वास्थ्य को भी देखना है।
1: हाँ, सबसे बड़ी बात पैदावार के साथ
0: साथ मानव स्वास्थ्य को। और हमें जो IPM की टेक्नोलॉजी है,
1: हाँ,
0: कि हम कोशिश करें कि वो हमारे ब्लू ट्रैप पर, येलो ट्रैप पर आकर चिपक जाए,
1: और ताकि मित्र कीट भी बढ़े, और जब मित्र कीट बढ़ेंगे तो दुश्मन कीट का अपने,
0: इसलिए यह आवश्यक है कि हम सामान्य रूप से दवाओं का प्रयोग करें।
1: बहुत धन्यवाद विजय भैया, आप अपने नज़दीकी राज्य के कृषि बीज भंडार और सहकारी समिति और साथ में जो कृषि रक्षा इकाई है वहाँ से संपर्क कर लें, वो आपकी भरपूर मदद करेंगे। बहुत धन्यवाद। और खरीफ की बात चल रही है तो सहफस्ती खेती भी तो एक गुंजाइश है।
0: हाँ डॉक्टर साहब, इसमें देखें, सहफसली खेती में इस वर्ष कृषि विभाग ने गन्ना में के साथ सरसों और जायद में उर्द और मूंग
1: जी
0: की सहफसली का खेती का मॉडल लाने के लिए किसान भाइयों को मिनी किट के रूप में हम लोगों ने बीज उपलब्ध कराया
1: जी,
0: और उसके बड़े अच्छे प्रभाव अभी तक किसान भाइयों से प्राप्त हुए हैं, चाहे वो गन्ने के साथ उर्द मूंग हो, चाहे वो सरसों का। यह प्रयोग बहुत ही सफल रहा है, जो आने वाले समय में हमें और अच्छे रूप में हम लोग इसको कराएंगे।
1: एक तरह की बोनस फसल मिल
0: जाए, बोनस फसल
1: मिठास के साथ साथ दाल का कटोरा भी भरेगा,
0: कटोरा भर जाए।
1: खरीफ में भी दाल का उत्पादन बढ़े, इसके लिए क्या रणनीति है कृषि विभाग की?
0: हाँ, इसलिए हम लोगों ने इस साल मिनी किट दलहन के मिनी किट को बढ़ाया है, उर्द मूंग और अरहर। देखिए, हम लोगों ने इसलिए उर्द को बढ़ाने के लिए थोड़ी सी खरीफ में समस्या होती, जबकि जायद में उर्द मूंग आसानी से किसान
1: अच्छी पैदावार दे देते हैं।
0: लेकिन अरहर में हमें अपने किसान भाइयों से एक अनुरोध है कि अरहर की बुआई सबसे खराब खेत पर बड़े बेमन से जा करके लोग छिटक कर चले जाते हैं। वास्तव में अरहर की फसल को में यदि अच्छा उत्पादन लेना है तो हमें रिज बना कर,
1: यानी मेड़ पर,
0: मेड़ बना करके, जैसे आलू की खेती या
1: रिज मेकर से
0: यदि हम अरहर की खेती करें तो निश्चित रूप से अच्छा लाभ मिलेगा।
1: अब बहुत दलहन उत्पादन की आवश्यकता भी है। एक किसान भाई इस बीच जुड़े हैं डॉक्टर साहब। हेलो।
3: हेलो।
1: हाँ भैया, नाम बताएं।
3: हमारा नाम खुशीराम विश्वकर्मा है, जिला सीतापुर, तहसील लहरपुर।
1: खुशी भैया, आज का सवाल क्या है?
3: आज हमारी मेंथा की फसल है
1: जी,
3: इस पे फुनगी सूख रही है।
1: फुनगी फसल में नमी है पर्याप्त?
3: हाँ, नमी तो है अभी।
1: और फुनगी, देखिए पत्तियों के नीचे कोई कीड़ा चिपका तो नहीं है? देखिए ऐसा है, कई कई रस चूसने वाले कीट हैं और थ्रिप्स भी लगती है जो अष्टपदी बोलते हैं, पत्तियों की निचली सतह पे चिपकी रहती है जो रस चूसती है, जिसकी वजह से भी पत्तियां मुड़ती हैं और मतलब जैसा आप लक्षण बता रहे होता है। तो आप कोशिश करें कि जैसे इमिडा है, इमिडाक्लोप्रिड 1 ml दवा 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव कर दें और नियमित रूप से निगरानी करते रहें। बहुत धन्यवाद खुशीराम भैया। डॉक्टर साहब समय कम है और बातें बहुत कुछ हैं, एक छोटा सा अंतराल है, उसके बाद कार्यक्रम के अंतिम चरण में एक बार फिर मिलते हैं कार्यक्रम हेलो किसान में।

0: हरियाली। 20% नाइट्रोजन का असर कमदार, इफको नैनो यूरिया प्लस, दे वही दाम में बेहतर पैदावार।
1: इफको नैनो यूरिया प्लस की बात है निराली, गुड़ है इसके दमदार शक्तिशाली, किसानों के जीवन में लाए खुशहाली, हो खेतों में हरियाली ही हरियाली।
2: 20% नाइट्रोजन का असर दमदार इफको नैनो यूरिया प्लस।

0: खाली। 20% नाइट्रोजन का असर दमदार, इफको नैनो यूरिया प्लस, दे वही दाम में बेहतर पैदावार।
1: कार्यक्रम हेलो किसान के अंतिम चरण में एक बार फिर स्वागत है किसान भाइयों बहनों आप सभी का। कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश डॉक्टर पंकज त्रिपाठी साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, इस चरण में भी आपका स्वागत है और लगातार किसान भाइयों बहनों के फ़ोन आ रहे हैं और जो रेडियो सेट बाद में ऑन किए हैं उनको बता दें कि आज का फ़ोन इन का नंबर है 0522-223-8825 यानी 0522-223-8825 और एक किसान भाई डॉक्टर साहब जुड़ चुके हैं। हेलो,
2: नमस्ते।
1: नमस्ते भैया, नाम बताएं। अरे रामनाथ कुशवाहा भैया, गनीपुर बेहटा बांगर मऊ जिला उन्नाव के एक ऐसे किसान हैं जिनको हम स्मार्ट किसान कह सकते हैं। जल्दी से सवाल पूछिए।
2: हमारा सवाल ये है, हमारे खेत में भादा ज्यादा है,
1: भादा
2: तो उसकी जुताई भी करवा दी है, अब उसमें हम क्या करें?
1: देखिए ऐसा है कि गर्मी की जुताई अगर किया है आपने, भादा एक तरह का स्थानीय अखबार वो है, खरपतवार है जो समस्या बनता है, बलुई जमीन इनकी,
3: ग्लाइफोसेट।
1: हाँ ग्लाइफोसेट, लेकिन एक महीने तक 45 दिन तक,
3: दो महीने तक कुछ नहीं हो पाया।
1: अगर आप ग्लाइफोसेट डॉक्टर साहब कह रहे हैं अगर छिड़काव करें तो 45 दिन तक कोई फसल ना लें, लेकिन आप वैसा भी ना करें, आप गर्मी की जुताई करके छोड़ दें और गहरी जुताई करेंगे तो हमको लगता है कि 15 दिन तपने के बाद आगे नहीं बाधा जमेगा। डॉक्टर साहब,
3: गर्मी की जुताई करने के बाद कल्टीवेटर चला करके थोड़ा सा यदि उनके रूट्स निकाल करके अलग किए जा सके तो बहुत अच्छा रहेगा। और ग्लाइफोसेट एक ऐसी दवा जो समूल नष्ट करती है, इसलिए हम उसको बहुत ज्यादा,
1: क्योंकि आगे फसल लेना है और उसका रेजिडुअल इफेक्ट रहेगा, यानी अवशेष उसके रहेंगे जो अगली फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन वैसा मत करिए, आप गर्मी की गहरी जुताई कर दिए और जागरूक रहिए। मक्का के किसान हैं, मूंगफली के किसान हैं और अपनी खेती की रखवाली खुद करते हैं मचान पर और स्मार्ट भी हैं। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। क्या कहना चाहेंगे, जो बीज शोधन और भूमि शोधन भी तो जरूरी है,
3: बहुत आवश्यक है। मैं अपने सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि दलहनी बीजों को यदि बो रहे हैं तो राइजोबियम कल्चर से बीज का शोधन अवश्य करें। धान की बुआई कर रहे हैं तो थीरम का प्रयोग कर लें
1: जी,
3: कार्बन डाइजिम का प्रयोग कर लें, जिससे कि जो पौध जनित रोग है, बीज जनित रोग है,
1: हाँ।

0: ना होने पाए। एक किसान भाइयों से मैं अभी मैंने मौसम की बात की थी, तो एक बार पुनः मैं अपने किसान भाइयों से कहूँगा कि सरकार आपको बहुत बड़ी सुविधा तब दे सकती है जब आप सरकार के साथ आए।
1: जी,
0: उदाहरण मैं इसलिए देना चाहता हूँ कि फसल बीमा,
1: हाँ,
0: जब नुकसान होता है तब हर व्यक्ति कहता है खबर सरकार ने कोई सुविधा नहीं दी।
1: यानी पीएम फसल बीमा योजना की बात,
0: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसमें आपका मात्र 2% अथवा 1.5% धनराशि प्रीमियम की ली जाती है, बाकी राज्य सरकार और केंद्र सरकार
1: खरीफ में 2%,
0: हाँ 2% का। तो इसमें धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, उड़द, मूंग, अरहर, मूंगफली, सोयाबीन और तिल 10 फसलों को सरकार बीमित कराती है।
1: जी,
0: तो मैं अपने किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि यदि आप केसीसी धारक हैं,
1: हाँ,
0: और आपने अपनी धनराशि, अपना खाता सही नहीं कराया है, यदि आपका एनपीए हो गया है, तो कृपया करके अपनी केसीसी को सही करा लें।
1: जी,
0: नंबर एक। नंबर दो, अपने बैंकों से संपर्क करके अपनी फसल का बीमा अवश्य कराइए।
1: देख साहब, एक किसान भाई जुड़े हैं इस बीच।
0: जी,
1: हेलो, अपना नाम बताएं भैया।
2: हजारी लाल वर्मा।
1: क्या सवाल है हजारी भैया?
2: हमारा सवाल यह है सर, ये कल्टीवेटर हम लाए हैं जुताई करने वाला गन्ने की।
1: जी,
2: तो उसमें हम निदेशक साहब से पूछना चाहते हैं कि कुछ उसमें सब्सिडी मिल जाएगा?
0: हाँ,
1: बड़ा वाजिब सवाल है,
0: बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मैं आपको बता दूं, 10,000 तक के जो भी यंत्र जिस पर सब्सिडी है, जिस 50%, ये जो 20,000 तक की सामग्री है और आपने लिया है, तो आपको किस हमारे पोर्टल पर जाकर के अपनी मांग रखनी होगी और इस पर आप अपना बिल, जैसे ही आप करते हैं, आप अपना बिल अपलोड करेंगे और बिल पर अपलोड करने में हम 50% की सब्सिडी, 10,000 तक की सब्सिडी आपको उपलब्ध करा देंगे आपके खाते
1: तो
0: में।
1: तो आप पोर्टल पे पंजीकरण,
0: पोर्टल पर पंजीकरण करना आवश्यक है,
1: और अगर कोई दिक्कत है तो जो नजदीकी
0: नजदीकी उप कृषि निदेशक है जनपद में, अथवा ब्लॉक पर हमारे एडीओ एजी हैं, अथवा किसान सहायक, जो भी हमारे तकनीकी सहायक हैं, आप उनसे संपर्क कर लें। यदि आपको कोई कठिनाई होती है तो निश्चित रूप से आप मुख्यालय पर भी संपर्क कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, समय कम है और बातें बहुत कुछ हैं, चलते चलते आज हेलो किसान कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश के किसान भाइयों बहनों से क्या आह्वान करना चाहेंगे?
0: दो आह्वान मेरा है। एक, मृदा स्वास्थ्य को देखते हुए संतुलित उर्वरकों के प्रयोग, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, आह्वान किया, और मैं भी कह रहा हूँ कि आप खेतों को, एक तो गर्मी की जुताई
1: जी,
0: दूसरा ढैंचा की बुआई,
1: यानी हरी खाद,
0: हरी खाद चाहे जिस रूप में पड़े, जो भी आपके पास कार्बनिक खाद है उनका प्रयोग अवश्य करें, उपले के रूप में जलाएं नहीं।
1: जी,
0: यदि गोबर आपके यहाँ है तो उसे सड़ा कर खेतों में डालें,
1: हाँ,
0: जलाएं नहीं, और समय से बुआई सुनिश्चित करें जिससे कि अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सके, विशेष करके मौसम को ध्यान में रखते हुए
1: जी,
0: अपनी फसल योजना बनाए।
1: हाँ,
0: ये मेरा आप सभी से अनुरोध होगा।
1: और
0: लास्ट में फार्मर रजिस्ट्री, जो किसान भाई अभी भी रह गए हैं, छूट गए हैं, उनकी फार्मर रजिस्ट्री अवश्य कराइए। एक बात और हो रही है कि आप फार्मर रजिस्ट्री तो करा रहे हैं लेकिन एक खेत का, पता चला आपके पास 4 खेत हैं, आपने केवल एक खेत उसमें जोड़ा, तो 3 खेत आपके रह गए। जब आप उर्वरक लेने जाएंगे, बीज लेने जाएंगे या सुविधा लेने जाएंगे, तो निश्चित रूप से वह एक आपके लिए दिक्कत होगी कि आपका क्षेत्रफल कम,
1: सभी खेतों का
0: जितने खेत आपके वह उस रजिस्ट्री में बकेट में अवश्य डलवाएं।
1: डॉक्टर पंकज त्रिपाठी साहब, आज कार्यक्रम हेलो किसान में आप आए और आपने किसान भाइयों बहनों से सीधा संवाद किया, बहुत धन्यवाद। अब आज का मौसम क्या है और 4 मंडियों का थोक बाजार भाव, इसको बता रहे हैं ओम और ओम प्रकाश भैया। नमस्कार
3: ओम प्रकाश भैया।
4: हाँ ओम भैया,
3: देखो आज की बैठ के कितने नीक रहे अपन पंच भाई, अपन जो सवाल रहे वे कितने नीकी तनात्र पूछन और उतनी ही नीकी तनात्र जो अपन विशेषज्ञ भैया रहे वे सवाल।

0: उनका समाधान देने।
1: और इनके लिए अपने जो कृषि निदेशक हैं डॉक्टर पंकज त्रिपाठी भैया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने कार्यक्रम के जो संचालन के हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया, उन्होंने का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बारी है मौसम के हाल की और बाजार भाव की। तो पहले मौसम हाल बता दी जाए।
0: हाँ।
1: तो पृथ्वी मौसम विज्ञान विभाग मौसम केंद्र लखनऊ से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यहाँ आज के लिए गरज चमक के साथ बौछार पड़े की संभावना जताई गई है, और आज के बाद अगले चार दिन तक मौसम शुष्क रही पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी। तो अपने पंच जो है वही हिसाब से ध्यान रखें कि अगली जो है हमका कार्रवाई का करें अपनी खेती में।
0: हाँ भैया, ये तो रहे मौसम का हाल, और अब जो है बाजार भाव अगर अपने पंच बहन का पता चल जाते हैं तो अपन जो फसल उत्पादित किए हैं वह नीचे तरह मंडी में बेच सकते हैं। तो चार मंडी का थोक भाव है लखनऊ, कानपुर, गोंडा और अयोध्या का। जो गेहूं दड़ा रहा है लखनऊ मंडी में 2590 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से, और कानपुर में 2585 रुपये प्रति क्विंटल, गोंडा में 2515 रुपया और अयोध्या में 2585 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से।
1: चना जो देसी वाला रहा ओके लखनऊ मंडी में यहाँ भाव रहा 6620 रुपया, कानपुर में यहाँ रहा 6300 रुपया, गोंडा में यहाँ रहा 6725 रुपया और अयोध्या में यहाँ रहा 6350 रुपया प्रति क्विंटल।
0: और जो मक्का पीली वाली रही उसका दाम कानपुर मंडी में 1850 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से, और गोंडा में 2000 रुपये प्रति क्विंटल और अयोध्या में 2365 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से।
1: सफ़ेद मटर के भाव लखनऊ मंडी में यहाँ रहा 4350 रुपया, कानपुर में यहाँ रहा 4570 रुपया, गोंडा में यहाँ 4200 रुपया और अयोध्या में यहाँ रहा 4250 रुपया प्रति क्विंटल।
0: और आलू सफ़ेद का दाम रहा लखनऊ मंडी में 700 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से, कानपुर में 630 रुपया प्रति क्विंटल, गोंडा में 710 रुपया और अयोध्या में यहाँ 710 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से।
1: लाल प्याज के भाव लखनऊ मंडी में यहाँ रहा 1320 रुपया, कानपुर में यहाँ रहा 1250, गोंडा में यहाँ 1250 और अयोध्या में यहाँ रहा 1260 रुपये प्रति क्विंटल।
0: और भैया टमाटर पक्का का जो दाम रहा लखनऊ मंडी में 1330 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से, कानपुर में 1220 रुपये प्रति क्विंटल और गोंडा में 2050 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से और अयोध्या में 1900 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से।
1: बैंगन के भाव लखनऊ मंडी में यहाँ रहा 1850, कानपुर में यहाँ रहा 1700 रुपया, गोंडा में यहाँ रहा 2950 और अयोध्या में यहाँ रहा 2260 रुपया प्रति क्विंटल। तो ये तो थोक मंडी भाव रहा लखनऊ, कानपुर, गोंडा और अयोध्या का। और कल अपने कार्यक्रम में यहाँ यानी लोकायतन और खेती किसानी में यहाँ कौन कौन कार्यक्रम से जो है अपने पंच रूबरू हुई हैं?
0: तो पंच भाई लोकायतन में सुनिए सतत विकास लक्ष्य और ग्रामीण बदलाव, ऐके वार्ता कर रहे हैं डॉक्टर हरीशचंद भैया। और खेती किसानी में सुनिए भेंटवार्ता खरीफ सब्जियों की अगेती खेती, जिमा डॉक्टर राजीव कुमार वर्मा भैया जानकारी दे रहे हैं, उनसे भेंट कर रहे हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया।
1: तो देखो भैया घड़ी के इशारा हो रहा है कि समय समाप्त हो रहा है अपने कार्यक्रम के, तो पंचन सी लें जाए आज्ञा।
2: जय हिंद।
3: इफको नैनो यूरिया प्लस की बात है निराली, गुण है इसके दमदार शक्तिशाली, किसानों के जीवन में लाए खुशहाली, हो खेतों में हरियाली ही हरियाली।
4: 30% नाइट्रोजन का असर दमदार इफको नैनो यूरिया प्लस, दे वही दाम में बेहतर पैदावार।
5: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे नैनो यूरिया के निर्माता इफको।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो किसान, मीडियम वेव के मीटर पर। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: स्वामी विवेकानंद के अनुसार तुम ईश्वर में कभी भी विश्वास नहीं कर सकते जब तक स्वयं में विश्वास न कर लो। जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है,

लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिन के।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। 14 खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा। ग्रेड ए धान के लिए 2,461 रुपए और अरहर दाल के लिए 8,450 रुपए प्रति कुंतल होगी एमएसपी। वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटाया सुरक्षा काफिले का आकार। प्रदेश में भी ईंधन बचाने के विभिन्न उपायों पर जारी हुए दिशा निर्देश। सीबीएसई के 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित। 85% से ज्यादा विद्यार्थी पास, छात्राएं रही अव्वल। और राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत। सीतापुर और कानपुर देहात में गिरे ओले। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं से कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन के लिए किसानों को अनुमानित 2,60,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल की अधिकतम बढ़ोतरी सूर्यमुखी बीजों के लिए की गई है। ग्रेड ए धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,461 रुपए प्रति क्विंटल, सामान्य के लिए 2,441 रुपए प्रति क्विंटल, हाइब्रिड ज्वार के लिए 4,023 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरे के लिए 2,900 प्रति क्विंटल, मक्का के लिए 2,410 रुपए प्रति क्विंटल और अरहर दाल के लिए 8,450 रुपए प्रति कुंतल, मूंग के लिए 8,780 रुपए प्रति कुंतल होगा। मंत्रिमंडल के फैसलों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आभार जताया है। खरीफ फसलों की एमएसपी वृद्धि पर प्रदेश के किसानों ने खुशी जताई है। वाराणसी के किसान दुर्गेश ने बताया कि इससे किसानों को फायदा होगा।
2: जो केंद्र सरकार ने हम जैसे किसानों के लिए जो समर्थन मूल्य बढ़ाया है, ये एक तरह से अगर कहा जाए तो ये बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि जिस तरह से समर्थन मूल्य जो घट रहा था हम किसानों को बड़ा ही घाटा हो रहा था, लेकिन एमएसपी बढ़ने के साथ साथ हम लोगों की आय में भी दुगुना होगी और इस सरकार के फैसले को हम बहुत ही सराहना पूर्वक उन्हें धन्यवाद देते हैं।
0: पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी हैं। एक रिपोर्ट।
3: ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। सूत्रों के अनुसार काफिले का आकार कम करने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो बिना कोई नई खरीद किए उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया जाए। अंकित की रिपोर्ट के साथ अमीषा।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेशवासियों से प्रधानमंत्री के आह्वान से जुड़ने की अपील की। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से कहा कि ईंधन की खपत कम करें और अनावश्यक सोने की खरीद न करें। उन्होंने एक उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री व मंत्रियों आदि की फ्लीट में

0: तत्काल 50% की कमी की जाए। पेश है एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने और सोने की अनावश्यक खरीद से बचने का आग्रह किया। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री और अन्य लोगों के वाहनों के बेड़े को तत्काल 50% तक कम करने का निर्देश दिया। उन्होंने आधिकारिक काफिलों से अनावश्यक वाहनों को हटाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में घर से काम करने की संस्कृति को प्राथमिकता देने की भी अपील की। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो सेवाओं और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों के उपयोग पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को सप्ताह में कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। सप्ताह में एक बार वाहन निषेध दिवस यानी नो व्हीकल डे का भी आयोजन किया जाना चाहिए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: इसी क्रम में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने विधानसभा की संसदीय समितियों के पूर्व निर्धारित अध्ययन भ्रमण के समस्त कार्यक्रमों को अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव का 38 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनकी पत्नी अपर्णा यादव भाजपा की सदस्य हैं और वर्तमान में राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अपर्णा यादव के घर जाकर प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी घर जाकर शोक संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 16 मई को गोरखपुर में अंचल के पहले और प्रदेश के चौथे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री के संभावित कार्यक्रम को देखते हुए जिलाधिकारी दीपक मीणा ने संबंधित अधिकारियों के साथ आज परियोजना स्थल का निरीक्षण किया। एक रिपोर्ट।
2: निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने निर्माण कार्य की प्रगति, गुणवत्ता और व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कार्य में तेजी लाने और सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करने पर जोर दिया। गोरखपुर वाराणसी राजमार्ग पर स्थित ताल नदौर में यह इंटरनेशनल स्टेडियम 392.94 करोड़ रुपए की लागत से आकार लेगा। निर्माण के लिए पहली किस्त के रूप में 63.39 करोड़ रुपए जारी हो चुके हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए गिरीश नारायण चौबे, गोरखपुर।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष CBSE की कक्षा 12वीं की विज्ञान, वाणिज्य और मानविकी विषयों की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई थीं। CBSE ने एक बयान में बताया कि 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 15,07,000 से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% है, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% है। मुख्य सचिव SP गोयल ने आज जनगणना 2027 के तहत प्रदेश में चल रही स्वगणना प्रक्रिया की समीक्षा कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को अभियान में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि आम जनों के बीच व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाए। दुग्ध उत्पादक कंपनी अमूल ने दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी का ऐलान किया है, जो कल से पूरे देश में लागू हो जाएंगी। राजधानी लखनऊ और आसपास के जिलों में बारिश और तेज आंधी की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। सीतापुर जिले में कई स्थानों पर ओले गिरे, कई जगहों पर पेड़ गिरने से विद्युत आपूर्ति बाधित हुई। वहीं कानपुर देहात के रसूलाबाद थाना क्षेत्र में तेज बारिश के साथ ओले गिरे। अमरोहा में भी दिन में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। कई स्थानों पर पेड़ गिरने से यातायात प्रभावित हुआ। हालांकि मौसम विभाग ने कल से प्रदेश में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है। विभाग के मुताबिक प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में 16 और 17 मई को लू चलने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 14 खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा। ग्रेड ए धान के लिए 2,461 रुपए और अरहर दाल के लिए 8,450 रुपए प्रति कुंतल होगी।

एमएसपी। वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटाया सुरक्षा काफिले का आकार। प्रदेश में भी ईंधन बचाने के विभिन्न उपायों पर जारी हुए दिशा निर्देश। सीबीएसई के 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित। 85% से ज्यादा विद्यार्थी पास, छात्राएं रहीं अव्वल। और राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत। सीतापुर और कानपुर देहात में गिरे ओले। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।

0: गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का विचार है, समुद्र को किनारे खड़े रहकर उसे देखते रहने भर से तुम समुद्र के पार नहीं जा सकते।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है 7:31 और इसी के साथ प्रस्तुत है कार्यक्रम कानून की बात।
2: श्रोताओं नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत, मैं हूं अतिश श्रीवास। श्रोताओं, हमारे देश में आवश्यकता है ऊर्जा और ऊर्जा संवर्धन के लिए प्रयास किए जाते रहे हैं, तो अभी दिसंबर 2025 में एक शांति एक्ट बनाया गया है, तो ये क्या है, कैसे काम करेगा या क्या गाइडलाइंस है इसके पास, इस विषय पे अधिक जानकारी करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में बुला रखा है डॉक्टर राकेश चंद्रा को। आप पूर्व IAS भी हैं और पीडी से जुड़े हैं और इस पर उन्होंने डॉक्टरेट भी की है। डॉक्टर साहब का स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: तो हमारे श्रोताओं को आप क्या बताना चाहेंगे कि ऊर्जा की क्या जरूरत है देश में और इस एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी?
3: सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक प्रणाम। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारा देश इस समय विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और पूरा प्रयास है हमारे प्रधानमंत्री महोदय का और हमारे देश के नीति निर्माताओं का कि बहुत जल्दी हम विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए। पर इसके लिए जो आवश्यक है ये कि अगर हम अपने उद्योगों को जितना बढ़ा सकें, हमारे उद्योग जगत को इतनी ऊर्जा मिल सके, क्योंकि उद्योग चलते हैं ऊर्जा पर। और इसके अलावा अभी कंप्यूटर्स पे आजकल बहुत काम हो रहा है, कंप्यूटरों को चलाने के लिए हम उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके लिए अभी जो डाटा इकट्ठा होता है डाटा सेंटर्स के लिए, उसके लिए हमें बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता। वर्तमान में जितनी ऊर्जा हमको मिल रही है वो बहुत कम है, प्रति वर्ष 3 गुना ऊर्जा की वृद्धि हो जाती है मांग में, और अभी तक हम लोग जो हैं वो अपनी ऊर्जा का 70% केवल हम उस ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनको हम दोबारा नवीकरण नहीं कर सकते या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं उसको। 70% ऊर्जा जो हमको मिल रही है, जो हम फॉसिल फ्यूल जैसे कहते हैं, जो जीवाश्मों से प्राप्त ऊर्जा है, ये धीरे धीरे अब सब स्रोत इसके समाप्त हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। साथ में जो तापीय ऊर्जा है जो कोयले से मिलती है, वो उससे पर्यावरण संकट बहुत तगड़ा आ रहा है। जो ये ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती हैं, जिससे ओजोन होल की समस्या आ रही है, और ये जो जलवायु संकट है ये बहुत तगड़ा और गहराता जा रहा है। कोयले को तो अब हम धीरे धीरे समाप्त करने की दिशा में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, पर इसका विकल्प क्या है? क्योंकि पानी जो बड़ा स्रोत है वो जल विद्युत है, जिसे हाइड्रल पावर कहते हैं। इसमें हर साल मौसम जो है वो बदलता रहता है, पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता है, नदियाँ भरती नहीं है ठीक से, तो ये भी इनमें भी दिक्कत है। और साथ में अनेक प्रकार के पर्यावरणीय संकट, जैसे आपने उत्तरकाशी में देखा और जगह देखा, जहाँ ज़्यादा ये मनाए गए हैं वहाँ पर भूस्खलन या चीज़ें भी इससे होती हैं।
2: डॉक्टर साहब, सोलर एनर्जी भी तो हो सकता है इसका एक निदान?
3: जी हाँ, पिछले 2-3 सालों में ये भी हमारे प्रधानमंत्री की पहल थी, जो सोलर इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया, और पिछले 3-4 वर्षों में सोलर एनर्जी पे बहुत काम हुआ है, और बहुत उत्तर प्रदेश में तो खैर बहुत ही अच्छा काम हुआ है। लेकिन ये इसके संग कुछ अभी प्रारंभिक दिक्कतें हैं, जैसे कि इसको जो बनती है इस ऊर्जा को हम कहाँ स्टोर करें, इस पर भी बहुत दिक्कत है अभी। इसलिए अभी वो इतनी मात्रा में ना तो बन पा रही है और ना हम संचित कर पा रहे हैं।
2: तो डॉक्टर साहब, हम आ जाते हैं शांति एक्ट के बारे में, क्या है ये?
3: तो इसीलिए ये तय किया गया कि अब हम नाभिकीय ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी पे हम अपना फोकस लाएं, क्योंकि यही एक ऊर्जा है जो सबसे साफ सुथरी ऊर्जा है, और दूसरा कम ईंधन से बहुत बड़ी मात्रा में ये ऊर्जा हमको मिलती है।

0: और तीसरा, ये जो हमारा 2070 तक एक लक्ष्य है भारत सरकार का कि नेट जीरो एमिशन, यानी कि हम जो भी आसमान में हम कोई भी ऐसा वो नहीं छोड़ेंगे धुआं या विषाक्त पदार्थ जो हमारे क्लाइमेट को, हमारे उसको जलवायु को दूषित करे। ये तीनों चीज़ें इससे पूरी होती हैं।
1: क्या कारण है कि इसका नाम शांति एक्ट रखा गया?
0: शांति जो है वो एक संक्षिप्त नाम है, इसका पूरा नाम है द सस्टेनेबल, इसे एस लिया है, हार्नेसिंग इसे एच लिया है, एंड एडवांसमेंट ये ए लिया है, ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी NE, और फिर फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एक्ट 2025।
1: वाह क्या बात।
0: जी, तो ये शांति एक्ट बनाया है। इसका उद्देश्य केवल इतना है कि हम ऊर्जा की जो कमी है, क्योंकि हर साल 3 गुना ऊर्जा की मांग बढ़ रही है, और इसे पूरा करने के लिए हमारे पास अब केवल यही विकल्प बचा है नाभिकीय ऊर्जा को हम अधिक से अधिक प्रमोट करें। तो ये एक्ट दिसंबर 2025 में हमारी संसद द्वारा पारित हुआ है, और इसका उद्देश्य जो है वो पहली बार इसमें हमने प्राइवेट प्लेयर्स को इनवाइट किया है कि वो भी इसमें अपनी हिस्सेदारी कर सके। दूसरा ये है कि एक बड़ी दिक्कत ये आती थी कि जैसे हमारे यहाँ तो नहीं लेकिन विदेशों में, जैसे चेर्नोबिल रशिया में 1986 में बहुत बड़ी दुर्घटना हुई, और अभी 2011 में जापान में हुई, फुकुशिमा में हुई, ऐसे 3 माइल्स आइलैंड 1979 अमेरिका पेंसिल्वेनिया में हुई। इसमें क्या हुआ, इससे जो विकिरण निकलता है उससे कई लोग मारे गए, और वहाँ पर कई सालों तक बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कतें रही। तो इस विकिरण के डर से हम लोग नाभिकीय ऊर्जा की ओर कम जाते थे, लेकिन अब आज के समय में भी अगर तुलना करें तो हमारे यहाँ 70% ऊर्जा वो जहाँ कोयले और तेल इन सबसे मिल रही है, वहीं फ्रांस में 70% ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा से इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखें सेफ्टी का और उनकी सुरक्षा का मानदंड जो है उसको पालन करें, तो ये बहुत अच्छी जो है हमको एक ऊर्जा मिल रही है जिसमें किसी प्रकार का कोई प्रदूषण वातावरण का नहीं है।
1: जैसा भी उद्देश्य हमारे भारत सरकार का, तो हम इस दिशा में अभी तक किस स्तर तक पहुंचे हैं?
0: सर 1948 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन में ना, और महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी भाभा इसके जनक थे, तो उस समय 2-4 साल बाद एक बॉम्बे में, एक ट्रॉम्बे जगह, वहाँ पर पहला रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा वो स्थापित हुआ, और तब से लेकर आज तक हमारे पास 30 एटॉमिक रिएक्टर हम बना चुके हैं, 22 तो हमारे काम कर रहे हैं और 8 निर्माणाधीन हैं। तो इस दिशा में इसमें काफी काम हुआ है। नाभिकीय ऊर्जा के लिए जो मूल तत्व है वो है यूरेनियम, जो हमारे देश में नहीं होता है, ये हमको पूरा विदेशों से लेना पड़ता है, और हमको कभी पूरी मात्रा में नहीं मिलता, बहुत कम कम मात्रा में मिलता है। हमारे देश में ऐसे ही एक तत्व है थोरियम। थोरियम दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में ही होता है। हमने एक तकनीक विकसित की है कि हम थोरियम को यूरेनियम की जगह रखकर एटॉमिक रिएक्टर्स को चला सकते हैं।
1: जी।
0: तो अब उसके 3 स्टेप थे। जो पहला हमने रिएक्टर बनाए वो थे हैवी वाटर रिएक्टर, जो यूरेनियम पे ही थे। उसके बाद हमने बनाया जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, उसमें यूरेनियम के साथ प्लूटोनियम मिलाया, और अब हम जो तीसरी स्टेज पर आ रहे हैं जिसमें पूर्ण रूप से शुद्ध थोरियम। तो हम इसमें अगर ये बन जाएंगे 2033 तक हमको कुछ 5-6 रिएक्टर्स मिल जाएंगे, तो हम इस दिशा में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो जाएंगे।
1: थोरियम में हम आत्मनिर्भर
0: हैं, और हमको ऊर्जा के मामले में भी आत्मनिर्भर हो जाएंगे, और साथ में ऊर्जा की जो इतनी बड़ी कमी है वो तब हमको आसानी से पूरी हो सकेगी, हम शायद तीसरी क्या और आगे भी अर्थव्यवस्था बढ़ पाएंगे। इस संदर्भ में एक बात और आपको बतानी थी कि इस शांति एक्ट की खास बात थी, मैंने बताया कि प्राइवेट लोगों को भी इसमें इन्होंने अलाउ किया है कि आप भी अपना आइए बिजली बनाइए, लेकिन कंट्रोल जो है ना, जैसे सुरक्षा का कंट्रोल है, या आपने जो मानदंड सही अपनाए कि नहीं अपनाए हैं, यहाँ तक कि एक एक ग्राम आपने जो थोरियम है यूरेनियम है उसको आप कैसे इस्तेमाल करें, इस पर पूरी नज़र भारत सरकार रखेगी। एटॉमिक एनर्जी जो कंट्रोलर्स हैं वो रखेंगे, रेगुलेटरी बोर्ड वो AERB देगी, आपको सेफ्टी का लाइसेंस देगी, यानी कि सुरक्षा का पूरा
1: पूरा ध्यान
0: जो है वो भारत सरकार रखेगी। हाँ, बनाने के लिए प्राइवेट सेक्टर भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। दूसरी बात यह है कि एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले जब कभी दुर्घटना हो जाती थी तो लोगों को बड़ा कोशिश, कोर्ट भी जाते थे कि हमको मुआवजा मिले, और भटकते थे। इसमें यह सीधा है कि अगर हो गई तो पहली जिम्मेदारी जो जो चला रहा है ऑपरेटर उसकी होगी, उसे एक निश्चित तिथि तक सारा मुआवजा देना होगा, और अगर एक मुआवजा की एक निर्धारित राशि से ऊपर और जा रहा है मुआवजा तो भारत सरकार उसका वो करेगी। इसमें किसी को भी परेशान होना नहीं पड़ेगा, ये इसकी बहुत बड़ी अच्छाई है। कि
1: जैसा कि भोपाल गैस कांड हुआ था,
0: भोपाल में हुआ ना उसे, तो
1: अब तक उसका केस चल रहा है।
0: अब तक चल रहे हैं उसके, और वो भी जिनको मिला है वो भी अधूरा, आधा अधूरा मिला है।
1: जी, डॉक्टर साहब ने बताए थे कि 3 बिंदु हैं, तो तीसरा बिंदु के बारे में बताएं।
0: तीसरा बिंदु ये है कि जैसे हमारा लक्ष्य ये है कि हमको थोरियम पे आधारित रिएक्टर बनाने हैं, और उसकी तरफ हम जा रहे हैं, तो 2 स्टेजेस हमने पार कर ली है। पहला तो जो हमने हैवी वाटर यानी यूरेनियम के रिएक्टर्स बनाए, दूसरा हमने जो यूरेनियम प्लस प्लूटोनियम उसमें

0: पहला रिएक्टर अभी पिछले महीने फंक्शनल हो गया है, जैसे कहते हैं क्रिटिकलिटी उसने प्राप्त कर ली है, इसे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहते थे। अब इसके बाद तीसरी स्टेज जो थोरियम बेस है ये भी कुछ 5-6 सालों में हो जाएगी, पर इसके साथ साथ हमने एक और वो चीज़ सोची है जो स्मॉल रिएक्टर्स। तो स्मॉल रिएक्टर्स क्या होंगे कि 220 मेगावाट के बिजली उनमें पैदा होगी। ये इसी प्रकार से होंगे कि जैसे आप किसी इंडस्ट्री के बाहर एक ट्रांसफार्मर लगा देते हैं, जैसे कैप्टिव ट्रांसफार्मर कहते हैं, वो इंडस्ट्री के लिए ही होता है, पूरी बिजली उसी इंडस्ट्री को सप्लाई होती है।
1: तो एक इंडिविजुअल यूनिट
0: इंडिविजुअल यूनिट के लिए तो

0: से होंगे कि जैसे आप किसी इंडस्ट्री के बाहर एक ट्रांसफार्मर लगा देते हैं, जैसे कैप्टिव ट्रांसफार्मर कहते हैं, वो इंडस्ट्री के लिए ही होता है, पूरी बिजली उसी इंडस्ट्री की सप्लाई होती है।
1: तो एक इंडिविजुअल यूनिट,
0: इंडिविजुअल यूनिट के लिए। तो 220 मेगावाट के जो ये स्मॉल ट्रांसफार्मर्स हैं, ये हम इसकी हम तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, तो ये बन जाएंगे। तो अब हम इंडस्ट्रीज को भी अल उनकी मांग के अनुसार हम उनको उनके बाहर इंडस्ट्री के बाहर एक लगा देंगे, नाभिकीय ऊर्जा से जो पूरी बिजली उनको मिलेगी।
1: तो उसका नियंत्रण थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्या?
0: जी नहीं, उसका नियंत्रण वही है कि वो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड साथ में उसका भारत सरकार की और कुछ एजेंसीज हैं, मंत्रालय हैं, सब मिनट मिनट की इस पे मॉनिटरिंग होगी। और अभी भी हमारे विद्युत बोर्ड होता है, उसी प्रकार से जो AERB है, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, ये इसका पूरा पर्यवेक्षण करेगा और इसका हर चीज का वो उसके लिए उत्तरदायी होगा।
1: तो इसमें क्या संभावना है कि जो छोटे छोटे यूनिट्स है, क्या ऐसा कुछ क्रिएट करें कि जिससे कि नुकसान हो?
0: शांति एक्ट में सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि इसमें 1 ग्राम यूरेनियम या 1 ग्राम प्लूटोनियम या 1 ग्राम थोरियम का भी दुरुपयोग नहीं हो सकता, क्योंकि सीधे सर्विलांस भारत सरकार कर रही है, किसी किस्म की संभावना नहीं है कि वो उसको दुरुपयोग कर सके। साथ में एक बहुत बड़ा रिस्क भी है, कोई दुरुपयोग अगर करना भी चाहेगा तो उसका जो विकिरण इतना तेज फैलेगा तो उसका तत्काल प्रभाव जो होगा आसपास के रहने वालों पे होगा।
1: अच्छा, तो वहीं उसी यूनिट पे हो जाएगा,
0: उसी यूनिट के आसपास जितने लोग रह रहे हैं, तो ये खतरा कोई भी ऑपरेटर मोल नहीं लेगा, चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक से अंडरटेकिंग हो, तो वो खतरा तो कभी नहीं होगा। हाँ, ये है कि वो जैसे जो उनका संयंत्र है उसकी समय समय पर उसकी देखरेख होती रहे, अच्छी देखभाल होती रहे, और जो मानदंड बने हैं भारत सरकार के उनका पालन होता रहे, सप्लाई की चेन डिस्टर्ब ना होने पाए, ये सब बस देखते रहना है। और इसके लिए बोर्ड है और साथ में कुछ अधिकारी और भी रहेंगे इसको देखने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि ये इसमें किसी किस्म की दिक्कत है, क्योंकि हमारे सामने एक एग्जाम्पल भी है फ्रांस का, जहाँ 70% ऊर्जा जो है वो नाभिकीय ऊर्जा आज भी हो रही है।
1: डॉक्टर चंद्रा, आपने इतनी बातें हमें बताई, लेकिन अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है?
0: हाँ, ये मैं सभी श्रोताओं को जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6 जगहों का चयन किया है प्रदेश भर में, जहाँ पे हम इसी प्रकार के संयंत्र लगाएंगे नाभिकीय ऊर्जा पैदा करने के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे उत्तर प्रदेश की जो भी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही है कि ये हम इसको लाएंगे, उसके लिए ये बहुत बड़ा एक कदम है कि ऊर्जा हमारी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। इसके लिए 6 स्थानों का चयन कर लिया गया है, जहाँ शीघ्र ही जो है शुरू हो जाएगा काम।
1: तो डॉक्टर साहब, ये बहुत ही अच्छा उद्देश्य है भारत सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का, कि हम ऊर्जा में अगर आत्मनिर्भर हो गए तो हम किसी भी ऊंचाई तक पहुँच सकते हैं। और जो उद्देश्य है हमारे प्रधानमंत्री का कि हम विश्व की 3री आर्थिक शक्ति बने, आवश्यक रूप से प्राप्त कर लेंगे। स्टूडियो में आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर राकेश चंद्र से अतिश श्रीवास्तव की भेंटवार्ता, विषय था शांति एक्ट। और इसी के साथ ही आज का कानून की बात, ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

0: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर पत्र रोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है, बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है शाम के 7:45 और इसी के साथ प्रस्तुत है कार्यक्रम बातों बातों में।
1: मैं कस्तूरी सिंह स्वागत करती हूं आप सभी सुनने वालों का कार्यक्रम बातों बातों में। किसी से मत बताना ये कहनाना दुनिया की सबसे खतरनाक बात है, क्योंकि उसके बाद जो शुरू होता है वो सिर्फ बातें नहीं होती, वो भरोसे का टूटना होता है, रिश्तों का बिखरना होता है और कई बार किसी की मुस्कुराहट का खो जाना होता है। आज हम बात करने जा रहे हैं बातों बातों में कार्यक्रम के माध्यम से एक ऐसे विषय पर जिस पर शायद कोई नहीं सोचता, लेकिन सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम बात करने जा रहे हैं गॉसिप कैसे रिश्तों को खराब करती है। गॉसिप यानी वो बातें जो सामने नहीं पीठ पीछे होती हैं, वो शब्द जो सच से ज्यादा मसालेदार होते हैं और वो लोग जो कहते हैं हम तो बस बता रहे थे। लेकिन कभी सोचा है कि ये एक छोटी सी बात किसी की जिंदगी में कितना बड़ा तूफान ला सकती है। गॉसिप की सबसे खतरनाक बात ये नहीं कि लोग बातें करते हैं, बल्कि ये है कि लोग उन बातों पर भरोसा भी कर लेते हैं और फिर शुरू होता है गलत फहमियों का सिलसिला, दूरियों का सफर और रिश्तों का धीरे धीरे खत्म होना। कभी दोस्ती टूटती है, कभी प्यार में शक आ जाता है, तो कभी परिवार में खामोशियां बढ़ जाती हैं और कई बार तो परिवार भी टूट जाते हैं। अजीब बात है ना, लोग कहते हैं हम रिश्ते बनाते हैं, लेकिन वही लोग 2 मिनट की गॉसिप के लिए सालों पुराने रिश्ते दांव पर भी लगा देते हैं। गॉसिप सिर्फ शब्द नहीं होते, वो धीरे धीरे इंसान की इमेज बदल देते हैं। लोग आपको जानने से पहले आपके बारे में सुनी हुई बातों पर यकीन करने लगते हैं और सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब ये बातें किसी अपने से शुरू होती हैं, क्योंकि चोट दुश्मन नहीं अपने देते हैं। और जब यही बात करने हम लड़कियों के बीच पहुंचे, हाँ हाँ लड़कियों के बीच, क्योंकि हमारे समाज में ना एक सबसे बड़ा मिथ है कि गॉसिप सिर्फ लड़कियां करती हैं। गॉसिप के मजे ना बड़े चटकारे के साथ लड़के भी लेते हैं, पर इस बार बातों बातों में कार्यक्रम में हमने बातें साझा की लड़कियों की, तो आइए सुनते हैं कि उन्होंने अपनी क्या राय हमारे साथ साझा की।
2: मेरा नाम खुशी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि गॉसिप लोग उन्हीं के साथ करते हैं जो उनका उस गॉसिप में या उस बातचीत में साथ देते हैं, और मोस्टली उस गॉसिप में वो किसी एक इंसान की या किसी एक ग्रुप की बुराई कर रहे होते हैं, या फिर उनके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं या उन्हें नीचा दिखा रहे होते हैं। लेकिन धीरे धीरे वही किसी रिश्ते की सबसे बड़ी कमज़ोरी बन जाती है जब लोग किसी की बातों को बढ़ा चढ़ा कर आगे पहुँचाते हैं या अधूरी सच्चाई को सच की तरह पेश करते हैं, तो रिश्तों में गलत फहमियाँ या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा होने लगती हैं। भरोसा जो किसी भी रिश्ते की नींव होता है वो धीरे धीरे टूटने लगता है, और अक्सर ऐसा होता है कि 2 लोगों के बीच की छोटी सी बात दूसरों तक पहुंचते पहुंचते बिल्कुल ही बदल जाती है और फिर बिना वजह दूरियां बढ़ने लगती हैं। गॉसिप जो रिश्तों की मिठास होता है, जो रिश्तों में सच्चाई और अच्छाई होती है, उसे बिल्कुल ख़त्म कर देती है। और सबसे ख़राब और दुख की बात यह है कि कई बार रिश्ते टूटने के बाद लोगों को एहसास होता है कि असली समस्या कोई बड़ी गलती नहीं बल्कि लोगों की कही हुई बातें ही हैं। तो मेरा मानना यही है कि किसी को भी किसी की कही हुई बातों में नहीं आना चाहिए, गॉसिप से बचना चाहिए, क्योंकि गॉसिप वही लोग करते हैं जो किसी को नीचा दिखाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है उनसे दूरी ही बनाना बेहतर है, क्योंकि गॉसिप करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है या किसी के बारे में कुछ बुरा बोलना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है।
3: मेरा नाम शिखा है और मुझे ऐसा लगता है कि गॉसिप इंसान के मन में शक पैदा कर देती है। जब किसी को बार बार दूसरों के बारे में गलत चीज़ें या नकारात्मक बातें सुनाई जाती हैं तो वो चाहकर भी उन लोगों पर पहले जैसा विश्वास नहीं कर पाता है। इससे दोस्ती, परिवार और यहाँ तक कि प्यार भरे रिश्तों में भी तनाव आने लगता है। कई बार लोग सामने से अच्छे बनते हैं लेकिन पीछे किसी की बुराई करते हैं, और जब यह सच सामने आता है तो रिश्तों की इज्जत और अपनापन दोनों ख़त्म होने लगता है। गॉसिप का सबसे बुरा असर ये होता है कि ये लोगों को दूर कर देती है। इसीलिए हर रिश्ते को बचाने के लिए ज़रूरी है कि हम सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने के बजाय सीधे सीधे बात करना सीखें, क्योंकि सच्चे रिश्ते अफवाहों से नहीं बल्कि भरोसे और समझदारी से मजबूत होते हैं। इसीलिए हमें गॉसिप नहीं करनी चाहिए और गॉसिप करने वाले लोगों से दूरी बनाए रखनी चाहिए।
4: मेरा नाम मान्यता

0: बारी है, और मेरा मानना है कि गॉसिप यानी चुगली धीरे धीरे रिश्तों में विश्वास को खत्म कर देती है। जब हम किसी की बात उसकी गैर मौजूदगी में करते हैं तो जाहिर सी बात है कि गलत फहमियां बढ़ने लगती हैं और अपनेपन की जगह दूरियां आ जाती हैं। कई बार तो छोटी छोटी बातें भी बढ़कर बड़े झगड़ों का कारण बन जाती हैं। अगर रिश्तों को मजबूत रखना है तो हमें दूसरों की बुराई करने के बजाय खुलकर और सच्चाई से बात करनी चाहिए। अच्छे रिश्ते विश्वास, सम्मान और समझ से बनते हैं, गॉसिप से नहीं।
1: नमस्ते, मेरा नाम स्तुति तिवारी। गॉसिप एक ऐसा शब्द है यानी कि चुगली, केवल एक शब्द नहीं होते या धीरे धीरे रिश्तों में जहर घोल देते हैं। जब हम किसी की अनुपस्थिति में उसकी बातें करते हैं तो उसके भरोसे को तोड़ देते हैं और बिना सच्चाई जाने हम बातों को आगे बढ़ा देते हैं, तो उसके विश्वास को कमज़ोर कर देते हैं और एक भरोसा टूट जाता है। तो रिश्ते को पहले जैसे बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए गॉसिप कई बार छोटी सी गलतफहमी को भी बड़े बड़े विवादों में बदल देती है, जिससे रिश्ते, परिवार, दोस्ती और अपनेपन में भी दूरियां आ जाती हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति सम्मान का हकदार है। अगर हम दूसरों की कमियों की जगह उनकी अच्छाइयों की बात करें तो रिश्ते और भी खूबसूरत बन सकते हैं।
2: सुनो कहा, कहा
3: सुना।

0: नहीं।
1: हर बात का समाधान भी होता है। अगर रिश्तों को बचाना है तो आदत बदलनी होगी। हर सुनी हुई बात पर भरोसा नहीं करना होगा। किसी की निजी जिंदगी को चर्चा बनाने पर थोड़ा विचार करना होगा। और अगर कोई समस्या है तो सीधे उस इंसान से बात करनी होगी जिसके साथ आपको समस्या है। क्योंकि रिश्ते ना लोग क्या कहेंगे से नहीं, हम क्या समझेंगे से चलते हैं। याद रखिए, गॉसिप कुछ मिनटों का मनोरंजन हो सकता है, लेकिन उसका असर किसी की जिंदगी पर सालों तक रह सकता है। इसलिए अगली बार जब कोई कहे एक बात बताऊं, तो जरा सोचिएगा, क्या वो बात किसी रिश्ते को तोड़ सकती है। क्योंकि शब्द दिखाई नहीं देते, लेकिन उनका असर हमेशा दिखता है। आज के कार्यक्रम बातों बातों में बस इतना ही। इस कार्यक्रम की प्रस्तुति थी डॉक्टर शिबा राकेश की। अब मुझे यानी कस्तूरी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
4: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
3: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
4: 8700001-4242।
5: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।

लव 6 1 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 8 हो चुके हैं, आइए सुनते हैं हिंदी कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं डॉक्टर राकेश धर त्रिपाठी की वार्ता। विषय है बदलते समय में, माफ कीजिएगा, आपको सुनवाने जा रहे हैं नवगीत और मुक्त कविता का महत्व। वार्ताकार डॉक्टर ओम शर्मा ओम।

0: हिंदी कार्यक्रम के आज के संक में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, सुरेंद्र राजेश्वरी की ओर से। श्रोतावाजिक वार्ता आप सुनवाते हैं जिसका विषय है नवगीत और मुक्त कविता का महत्व। वार्ताकार हैं डॉक्टर ओम शर्मा।
1: मुक्त कविता आधुनिक हिंदी साहित्य की एक अत्यंत लोकप्रिय और प्रभावशाली काव्य शैली है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, यह कविता छंदों के बड़े अनुशासन, मात्राओं की गिनती और तुकबंदी के बंधनों से मुक्त होती है। इसमें किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता है। पारंपरिक कविताओं में लय और ताल बनाए रखने के लिए एक निश्चित ढांचा होता है, जबकि मुक्त कविता में कवि अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किसी ढांचे का पालन नहीं करता। इसमें कविता की लंबाई, पंक्तियों का क्रम और शब्दों का चयन कवि की आंतरिक लय पर निर्भर करता है। मुक्त कविता की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। छंद मुक्ति, छंद से मुक्त होता है ये। तुकबंदी का अभाव, इसमें तुकबंदी की कोई आवश्यकता नहीं होती। भावों की प्रधानता, इसमें जो प्रधान होता है वो भाव होता है, भाव को प्रधानता दी जाती है। बोलचाल की भाषा, आमतौर पर हम कविता में खड़ी भाषा का उपयोग करते हैं, पर इसमें बोलचाल की भाषा हो, चाहे अवधी हो, चाहे भोजपुरी हो, जो भी हमारी बोलचाल की भाषा होती है हम उसमें कविता लिखते हैं। और आखिरी है आंतरिक लय, इसमें आंतरिक लय होती है, इसलिए लय की भी कोई बाध्यता नहीं होती। आज के दौर में लिखी जाने वाली अधिकांश कविताएं मुक्त कविता ही होती हैं। अगर मैं उदाहरण दूं तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित वह तोड़ती पत्थर भी एक मुक्त कविता है। मैं आपके बीच वो कविता रखना चाहता हूं जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी, कि वह तोड़ती पत्थर। देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर, कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मालिका अट्टालिका प्राकार, वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर। ये तो हुई मुक्त कविता की बात। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ नवगीत के बारे में। नवगीत क्या होता है? ये हिंदी कविता की एक आधुनिक विधा है जो परंपरा और आधुनिकता के बीच एक सेतु का काम करती है। इसे गीत का नया और विकसित रूप भी माना जाता है। 1950 के दशक के आसपास जब हिंदी साहित्य में नई कविता का दौर चल रहा था, तब कुछ गीतकारों ने पारंपरिक गीतों में आधुनिक जीवन को पुरोना शुरू किया, जिसमें डॉक्टर शंभुनाथ सिंह जी को नवगीत आंदोलन का मुख्य प्रवर्तक माना जाता है। नवगीत की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं: यथार्थवाद, लोक संस्कृति, शिल्प में नयापन, बौद्धिकता, प्रतीक और बिंब, इन सबको मिलकर नवगीत बनता है। नवगीत की जो वर्तमान स्थिति है वो ऐसी है कि आज के समय में नवगीत सोशल मीडिया और कवि सम्मेलनों के माध्यम से फिर से जीवित हो रहा है। आज के कवि आधुनिक विषयों और संस्कृति तकनीकी युग पर भी गीत लिख रहे हैं, जिसे आज की नई पीढ़ी काफ़ी पसंद कर रही है। मैं एक अपने गीत से जोड़ना चाहता हूं आप सभी को। एक नवगीत मैंने लिखा, वो आपके बीच रखता हूं और आप सभी का ध्यान मांगता हूं। गीत सुनना। गीत के बोल हैं कि क्या वजह थी, क्या सबब था, क्या विवशता थी जो कान्हा रुक्मिणी के हो गए पर राधिका के हो न पाए। क्या वजह थी, क्या सबब था, क्या विवशता थी जो कान्हा रुक्मिणी के हो गए पर राधिका के हो न पाए। और गीत का बंद इस तरह है कि प्रीत के अंत

ना पाए क्या, और गीत का अंतिम बंद रखता हूँ और प्रमाण देना चाहता हूँ कि वो रुक्मिणी के हो गए पर राधिका के क्यों नहीं हो पाए, कि प्रेम है उन्मुक्त पंछी जो खुले आकाश उड़ता,

समाहित, प्रीत है संबंध वैसा, ओ साथ खेले साथ खेले, साथ गाए साथ में बंसी बजाकर, साथ खेले साथ गाए।

0: क्या वजह थी।
1: नवगीत और मुक्त कविता का महत्व, ये वार्ता भी आप सुन रहे थे। वार्ताकार थे डॉक्टर ओम शर्मा। इसके साथ ही हिंदी कार्यक्रम का आज का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। सुरेंद्र राजेश्वरी को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम। मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।

हाँ, मैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है रात के 8:10। इसी के साथ प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं रूना लैला की गायी गजलें।

अभी आप सुन रहे थे रूना लैला की गाई गजलें, और इसी के साथ ही सुगम संगीत का आज का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट से। सबसे पहले आपको सुनवाने जा रहे हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में जब प्यार किसी से होता है, इस फिल्म का गीत जिसे लिखा आनंद बख्शी ने और धुन बनाई जतिन ललित ने।

अलका याग्निक और कुमार सानू को सुन रहे थे आप, जब प्यार किसी से होता है, इस फिल्म के गीत में। आइए अब सुनते हैं यस बॉस फिल्म का गीत, आवाज़ अभिजीत की, गीत के बोल जावेद अख्तर के और संगीत जतिन ललित का।

यस बॉस, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, और आइए अब सुनते हैं मन फिल्म का गीत, जिसे गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और संगीत संजीव दर्शन का।

0: मन फिल्म के इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। समाचार अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में

0: कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। और गुजरात के गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारत्तोलन चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वरी यादव ने 2 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को देश के करोड़ों किसानों को अपने उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि इस निर्णय से देश के किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं की संवर्धन योजना से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार सृजित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। सीबीआई इस मामले में शुरुआती जांच करने वाले राजस्थान के विशेष कार्यबल के भी समन्वय में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन की खपत कम करने की अपील का

0: बड़ा प्रभाव पड़ा है और पेट्रोल तथा डीजल का उपयोग कम हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपने काफिले का आकार काफी कम करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी ऐसा ही कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने वाहनों के बेड़े में तत्काल कमी करने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों की हवाई यात्राओं में 50% की कटौती का आदेश दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्रियों विधायकों के सरकारी वाहनों की संख्या सीमित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों, ऊर्जा सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होगा।
1: During the visit,
2: यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
1: People to people connect.
0: श्री जॉर्ज ने बताया कि 4 यूरोपीय देशों की यात्रा के दौरान श्री मोदी 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
1: The visit to the 4 European countries.
2: 4 यूरोपीय देशों की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को इसी वर्ष अंतिम रूप दिया गया है। इस दौरान 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। भारत इन देशों को मेक इन इंडिया अभियान के अहम साझेदार के रूप में देखता है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य व्यापार और निवेश, हरित प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्टार्टअप्स और आपसी जनसंपर्क को मजबूत करने का रहेगा।
1: पीपल टू पीपल कनेक्ट।
0: संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अमेरिका के स्मिथसोनियन राष्ट्रीय एशियाई कला संग्रहालय से 3 भारतीय प्राचीन वस्तुओं की वापसी का उद्देश्य भारत की चोरी हुई सांस्कृतिक विरासत को पुनः स्थापित और संरक्षित करना है। नई दिल्ली में श्री शेखावत ने कहा कि देश की विरासत जिसे अनैतिक तरीकों से देश से बाहर ले जाया गया था, अब वापस लाई जा रही है।
3: ऐतिहासिक एंटीक्विटीज को जो भारत लाने का क्रम पिछले वर्षों से चल रहा है, उस दिशा में हम आज ऑस्ट्रेलिया से 11 और अमेरिका से 3 और मूर्तियों को भारत में लाने में सफल हुए। इसके अतिरिक्त भी 657 एंटीक्विटीज को आइडेंटिफाई करके हमने अमेरिका के साथ चर्चा की। US एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उनको भारत के दूतावास को अमेरिका में सुपुर्द कर दिया है। उनको लाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। 657 एंटीक्विटीज उसके बाद में भारत आएंगे।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल होने वाले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन से पहले आज नई दिल्ली में रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और मालदीव के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि सभी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई और आपसी हित के बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। ये फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। ये कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंपने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार ने इन मामलों में भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। असम सरकार 26 मई को समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में पेश करेगी। मुख्यमंत्री हिमंता

0: विश्व शर्मा ने पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद ये घोषणा की। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक विवाह की कानूनी उम्र, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों सहित कई मुद्दों पर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक प्रचलन इस विधेयक के दायरे से बाहर रहेंगे।
1: इसे असम की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। साथ ही राज्य के लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली सभी रस्मों, परंपराओं और रीति रिवाजों को भी इससे बाहर रखा गया है।
2: आउटसाइड द स्कोप ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड।
0: पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने पांचवी बार पद ग्रहण करने के बाद स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, शिक्षा, खेल और औद्योगिक विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसमें गरीबी रेखा से ऊपर के राशन कार्ड धारकों को 3 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना, इंदिरा गांधी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और मॉडल विद्यालय स्थापित करना शामिल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त नरसिंहपुर जिले के ग्राम मुंगवानी से जारी की। उन्होंने 1,25,00,000 से अधिक लाडली बहनों के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा नगर निगम चुनावों में भाजपा की जीत पर लोगों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत ने फिर स्पष्ट कर दिया है कि जनता ने भाजपा एनडीए सरकार की विकास और सुशासन नीतियों पर अटूट विश्वास व्यक्त किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 50 अंक बढ़कर 74,609 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 33 अंक की बढ़त के साथ 23,413 पर स्थिर हुआ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 7 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी 95 रुपए और 70 पैसे पर बंद हुआ। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक ब्रेंट क्रूड $107.62 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।
0: गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। उन्होंने स्नैच में रजत पदक और कुल 194 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदांबी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। महाराष्ट्र में आज नाशिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले के लोगों का अनावरण किया गया। इसमें त्रिशूल दर्शाया गया है और गोदावरी नदी को शिवलिंग के रूप में चित्रित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये लोगो भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और राष्ट्रीय एकता का सशक्त संदेश देता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Union Cabinet increases minimum support prices MSP of 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Cabinet also gives nod for promotion of surface coal and lignite gasification projects worth 37,500 crore rupees. CBI arrests 5%

0: ब्यूरो सीबीआई के हवाले करने का फैसला किया है। वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने आज टीएमसी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने बदउनवान अफसरों को तहफ़ फराहम करने के लिए इन मामलों में कोई कार्रवाई नहीं की। हुकूमत ने उन अफराद की मुलाजमत भी ख़त्म कर दी है जिन्हें टीएमसी हुकूमत ने रिटायरमेंट के बाद मुलाजमत दी थी। आसाम हुकूमत इस माह की 26 तारीख को रियासती असम्बली में यकसा सिविल कोड यूसीसी बिल पेश करेगी। वजीर आला हेमंत बिस्व सरमा ने नई मुद्दतकार की पहली काबीना मीटिंग की सदारत के बाद सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए इसका ऐलान किया। जनाब सरमा ने कहा कि आसाम असम्बली का खसूसी इजलास 21 से 26 मई तक मुनाकिद होगा जिसके दौरान 9 मुंतखब अरकान असम्बली हलफ लेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि यकसां सिविल कोड बिल असम्बली इजलास के आखिरी दिन पेश किया जाएगा। इस इकदाम के साथ आसाम उत्तराखंड और गुजरात के बाद यकसां सिविल कोड बिल पेश करने वाली तीसरी रियासत बन जाएगी। मणिपुर में आज सुबह तकरीबन 10:10 पर नामालूम मुसल्ला अफराद ने 2 बोलेरो गाड़ियों पर फायरिंग कर दी जिसके नतीजे में 3 अफराद हलाक और 4 दिगर जख्मी हो गए। सकाफत के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज कहा कि अमरीका में स्मिथसोनियन के नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट से चुराए गए 3 भारतीय नवादरात की वतन वापसी का मकसद भारत के सकाफती विरसे की हिफाजत है। नई दिल्ली में इन तारीखी नवादरात की वापसी के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब शेखावत ने कहा कि ये कोशिश अजायब घरों में अखलाकी उसूलों को मजबूत बनाने के लिए भारत के अज़्म को जाहिर करती है।
1: ऐतिहासिक एंटीक्विटीज को जो भारत लाने का क्रम पिछले वर्षों से चल रहा है उस दिशा में हम आज ऑस्ट्रेलिया से 11 और अमेरिका से 3 और मूर्तियों को भारत में लाने में सफल हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी 657 एंटीक्विटीज को आइडेंटिफाई करके हमने अमेरिका के साथ चर्चा की। यूएस एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उनको भारत के दूतावास को अमेरिका में सुपुर्द कर दिया है। उनको लाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। 657 एंटीक्विटीज उसके बाद में भारत आएंगे।
0: अमरीकी सर डोनाल्ड ट्रंप चीन के अपने हमनसब शी जिनपिंग के साथ सरबराह मुलाकात के लिए आज बीजिंग पहुंचे हैं। कल शुरू होने वाली अपनी 2 रोज़ा बातचीत के दौरान इम्कान है कि दोनों रहनुमा ईरान के साथ जंग, ताइवान को अमरीकी हथियारों की फरोख्त, तजारत और मसनूई ज़हानत समेत अहम मामलात पर तबादले ख्याल करेंगे। दोनों रहनुमा दुनिया की 2 सबसे बड़ी मईशतों के दरमियान महसूलात और बढ़ती इकतसादी और तकनीकी कशीदगी पर भी बातचीत कर सकते हैं। वेट लिफ्टिंग में आज गांधीनगर में एशियन सीनियर चैंपियनशिप में भारत की ज्ञानेश्वरी यादव ने 2 तमगे जीते जिसमें चांदी और कांसे का एक एक तमगा शामिल है। ज्ञानेश्वरी ने 53 किलोग्राम स्नैच जुमरे में चांदी का तमगा जीता और फिर मजमूई तौर पर 194 किलोग्राम का वजन उठाकर कांसे का तमगा अपने नाम किया। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन और किदांबी श्रीकांत ने बैंकॉक में मुनाकिदा सिंगल्स मुकाबलों के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मरकजी काबीना ने मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों की कम अज कम इमदादी कीमत में इजाफा किया है। काबीना ने कोयले और लिग्नाइट को गैस में तब्दील करने से मुतालिक 37,500 करोड़ रुपये मालियत के प्रोजेक्टों को फरोग दिए जाने की भी मंजूरी दी है। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 के पेपर लीक के सिलसिले में 5 अफराद को हिरासत में लिया है। मुख्तलिफ रियासतों में छापों की कार्रवाई जारी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले से गाड़ियों की तादाद को कम कर दिया है जिसके बाद बीजेपी के वज़रा आला और दिगर रहनुमाओं ने अखराजात को कम करने से मुतालिक इकदाम किए हैं। और वेट लिफ्टिंग में गांधीनगर में एशिया सीनियर चैंपियनशिप में भारत की ज्ञानेश्वरी यादव ने चांदी और कांसे का तमगा जीता है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।

0: चर्चा का विषय है।
1: दुनिया की नब्ज पश्चिम एशिया के तेल कुओं की धड़कनों से जुड़ी है। जब इन धड़कनों में युद्ध का शोर सुनाई देने लगे तो वैश्विक बाजार की सांसें फूलने लगती हैं। लाल सागर की लहरों से लेकर तेल के टैंकरों के बदलते रास्तों तक, आज एक बार फिर दुनिया ब्लैक गोल्ड यानी कच्चे तेल की अस्थिरता के मुहाने पर खड़ी है। जब हॉर्मुज की जलधारा में हलचल होती है

0: तो दिल्ली, मुंबई और हर भारतीय शहर की सड़कों पर उसकी गूंज सुनाई देती है। लेकिन 2026 का भारत कल की तुलना में कहीं अधिक सजग है। आज हम केवल तेल के दाम गिरने का इंतजार नहीं करते, बल्कि ऊर्जा के नए विकल्पों और सामरिक भंडारों से अपनी सुरक्षा की दीवार ऊंची कर रहे हैं। नमस्कार, चर्चा का विषय है कार्यक्रम के आज के अंक के साथ मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। आज हम चर्चा करेंगे पश्चिम एशिया संकट और ऊर्जा बाजार, उभरती चुनौतियों के बीच भारत की तैयारियों पर। आज के कार्यक्रम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत पश्चिम एशिया के इस झटके को सहने के लिए तैयार है और कैसे हमारी एनर्जी डिप्लोमेसी वैश्विक राजनीति के नए समीकरण लिख रही है। कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो बेहद खास मेहमान, पूर्व सीएमडी ओएनजीसी के सुभाष कुमार और ऊर्जा विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू।
2: थैंक्स आनंद।
0: सुभाष जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। और हम सब जानते हैं कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का लगभग 85% आयात करता है, जो इस समय हॉर्मूज की मौजूदा स्थिति है उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि भारत की जो सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन की रणनीति है, जिसमें रूस, इराक और अमेरिका के बीच जो संतुलन भी है, कितना प्रभावी सिद्ध हो रही है?
2: आनंद जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। एक्चुअली आज के दिन में भारत जो है अपनी सप्लाई के लिए हॉर्मूज पे ओवरली डिपेंडेंट है। इनफैक्ट यदि हम तेल का देखें तो लगभग 80% से ऊपर वो हॉर्मूज से आता है और 40-50% तो गल्फ स्टेट से आता है। एलपीजी का भी इसी हिसाब से देखें तो लगभग सारी एलपीजी इस प्रॉब्लम से पहले गल्फ स्टेट से ही आती थी। तो अब इस हालात में एक्चुअली जो एनर्जी एक का चीज है, एक और एक एस्पेक्ट है कि इस क्षेत्र में, खाड़ी क्षेत्र में, ना केवल एनर्जी के लिए इम्पोर्टेंट है बट यहाँ पे लगभग 1 करोड़ इंडियंस भी रहते हैं और जो कि इंडिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉरेन एक्सचेंज रिमिट करते थे। तो आज की डेट में गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिए हैं उसमें उन्होंने जो क्रूड जो सोर्सिंग है वो डाइवर्सिफाई की है और इस डिफिकल्ट सिचुएशन में किसी तरह मॉलिक्यूल्स पे की सप्लाई को कंटिन्यू करने के लिए अमेरिका, लैटिन अमेरिका, रशिया और अफ्रीका से भी तेल जो है इंपोर्ट किया है। तो ये जो सारा एक्शन है ये अभी तक काफी सक्सेसफुल रहा है क्योंकि यदि पूरा इफेक्ट इस डिसरप्शन का पड़ता तो शायद सिर्फ इसके भरोसे एक्चुअली इंडिया में तेल और तेल के प्रोडक्ट्स की किल्लत हो सकती थी।
0: पश्चिम एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से आह्वान किया है कि रोजमर्रा के जीवन में वो कैसे बदलाव लाकर इस संकट के समय देश और सरकार को बेहतर करने में मदद कर सकते हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या अपील की है।
3: मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलें, जिनके पास ईवी है वे भी दूसरों की मदद के लिए आगे आए। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। साथियों, सिर्फ ईंधन ही नहीं, खाने के तेल पर भी देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अगर हम थोड़ा संयम बरतें, तेल की खपत कम करें खाने के तेल, तो इससे देश और हमारी शहर दोनों को लाभ होगा।
0: नरेंद्र जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि जब भी बात ऊर्जा की होती है और भविष्य की तरफ हम देखते हैं तो स्ट्रैटेजिक रिजर्व यानी एसपीआर की भी चर्चा होती है और कई सारे मंत्रालय की तरफ से ये बयान दिया गया कि भारत के पास 74 दिन, 80 दिन, 60 दिन के आसपास का रिजर्व है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा हम विश्लेषण के नजरिए से देखें तो विशाखापत्तनम, मैंगलोर और पादूर में भारत ने जो अपने नए रिजर्व की खोज की है, क्या आपको लगता है कि अगर युद्ध लंबा चला तो भारत के लिए ये 3 सेंटर्स या कुछ और सेंटर्स एनर्जी शॉक से बचाने के लिए पर्याप्त है?
1: देखिए, हमको देखना होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था का साइज क्या है। आज हम दुनिया की अगर जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, जो लार्ज इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और किसी भी अर्थव्यवस्था का, खासतौर से अगर आप विकासशील अर्थव्यवस्था हैं जो भारत है, उसकी जो

0: बैकबोन होती है, उसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो ऊर्जा होती है। बिना ऊर्जा के अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ती है। और जब विकासशील अर्थव्यवस्था जैसी होगी, खासतौर से भारत जैसी, वहां ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा होती है। हमारे देश में तेल की खपत जो है वो लगभग 3.5% से 4% प्रतिवर्ष बढ़ रही है, क्योंकि देश का विकास हो रहा है, क्योंकि प्रगति हो रही है, क्योंकि ज्यादा लोग जो है वो जो गरीबी से बाहर आ रहे हैं, मिडिल क्लास के अंदर आ रहे हैं, तो इसलिए उसकी खपत बढ़ रही है। हम आज की तारीख में लगभग 57 और 58 लाख बैरल तेल प्रतिदिन उसकी हमारे यहाँ खपत है, 5.8 मिलियन रफली बैरल्स पर डे। और उसका भारी मात्रा में लगभग 53 लाख बैरल हम आयात करते हैं लगभग 42 अलग अलग देशों से। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारे सामने जो है दुविधा ये होती है, क्या हम जो विकास की गति है उसको रोकें, या वो लोग जिनको अभी भी और ऊर्जा की आवश्यकता है क्या उनको हम रोक सकते हैं, या किस हिसाब से हम ऊर्जा का इस तरह का प्रयोग करें जिससे कि हमारे को दिक्कत ना हो। जहां तक अब युद्ध जो है ये भारत ने तो शुरू नहीं किया, जैसे जो कोविड था, कोविड की शुरुआत चाइना से हुई थी, ये युद्ध तो फारस की खाड़ी से शुरू हुआ है, खासतौर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो है सबसे बड़ी दिक्कत वहां से आ रही है। तो ऐसे में भारत जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल का उपभोक्ता है, ऊर्जा का उपभोक्ता है, दूसरा सबसे बड़ा आयातक है, और भारी तेजी से जो आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, तो हमारे सामने चुनौती ये हो जाती है हम इसको कैसे देखें। जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स की आपकी बात करी गई, स्ट्रेटेजिक रिजर्व इसलिए बनाए जाते हैं कभी कोई ऐसे हालात पैदा हो जाए कि देश के अंदर जो तेल लाने में जो है डिस्ट्रप्शन हो जाए, मतलब विदेशों से तेल लाने में दिक्कत हो, तो हम उसका प्रयोग कर सकें। लेकिन हमारा इतना विशाल देश है और हम इतनी तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है कि हमारी जो जरूरत है वो बहुत ज्यादा है। हालांकि हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व जिनको SPRs बोलते हैं वो हैं, लगभग 25 से 28 दिन के रिजर्व हमारे पास वो हैं। इसके अलावा जो तमाम रिफाइनरीज हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके जो है ऑयल टैंक फार्म्स होते हैं, उनके अंदर भी हमेशा क्रूड ऑयल जो है और प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर हम उन दोनों को जोड़ लें तो हमारे पास 50 से लेकर के 55 दिन के रिजर्व तो होते हैं। और दूसरा ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी पूरी दुनिया के अंदर ऐसे अच्छे रिलेशंस हैं, खासतौर से जो तेल के निर्यातक हैं, ऊर्जा के निर्यातक हैं, कि वह हमने जो है कहीं ना कहीं से हम तेल का इंतजाम हो रहा है। और आज भी भारत उन गिने चुने देशों के अंदर है जहां पे पेट्रोल या डीजल की कहीं कोई किल्लत नहीं है, उपलब्ध है, हर जगह उपलब्ध है।
1: जी
0: और दाम भी भारत में अगर आप देखें अन्य देशों के मुकाबले तो काफी हुए। तो चूंकि हमारे अच्छे रिलेशनशिप हैं, और दूसरी बात एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा, चूंकि हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल के उपभोक्ता हैं
1: जी
0: और दूसरे सबसे बड़े आयातक, हमारे लिए एनर्जी सिक्योरिटी होती है टू सिक्योर सप्लाई। लेकिन जो तेल के बड़े निर्यातक हैं, सऊदी अरब हो गया, अमेरिका हो गया, कुवैत हो गया, ईरान, इनके लिए आवश्यक होता है भारत से अच्छे संबंध रखें, क्योंकि उनकी एनर्जी सिक्योरिटी डिमांड से ताल्लुक रखती है। और डिमांड कहां सबसे ज्यादा पैदा हो रही है, वो भारत में। पूरी दुनिया में ऑयल की डिमांड का लीडर आज कौन है, वो भारत है। तो वो भी भारत से अच्छे संबंध रखना चाहते हैं, इसलिए ये भी हमको सिक्योरिटी देता है। आपने जिक्र किया एनर्जी डिप्लोमेसी का, साथ में मैंने आपको ये बताया कि हिसाब से उनके लिए भारत एक हम बाजार है, इसलिए आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हमारा अभी तक जो देखा जाए, अब बहुत लंबा युद्ध चलता है, डिस्ट्रप्शन बहुत बड़ा हो जाता है, वो तो भविष्य के गर्भ में है, उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। लेकिन आज के धरातल पर जब मैं देखता हूं, ठीक है, हम तैयारी हमको चाहिए, कंजर्वेशन हमको करना है, तेल को हमको वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन पैनिक बटन दबाने की कोई जरूरत नहीं है।
1: जी बिल्कुल, आपने जिस तरफ चर्चा को आगे बढ़ाया कि भारत के पास अभी पैनिक बटन दबाने की जरूरत नहीं है, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा कि भारत के पास आने वाले कुछ महीनों के लिए रिजर्व मौजूद हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: Our LPG, the cylinder gas which you use in kitchens, about 60% used to come from the Strait of Hormuz. Now we had to make arrangements. I am amazed at what we were able to do. Our domestic production of LPG prior to the crisis was 35 or 36,000 metric tons per day. We ramped up our domestic production from 36 to 54,000 metric tons. This by itself is a mind-boggling thing.
1: सुभाष जी, भारत सरकार लगातार कुछ नए प्रयोग कर रही है और इसी दिशा में आज कैबिनेट ने एक अहम फैसला लिया कि जो कोल गैसीकरण परियोजना है उसको बढ़ावा देने के लिए 37,500 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत स्वच्छ कोयला उपयोग, ऊर्जा सुरक्षा और आयात पर निर्भरता कम होगी। हम सब जानते हैं कि आज के समय में जब तेल बिल्कुल अस्थिर हो गया है, उसकी कीमतें और रिसोर्सेस कम होते जा रहे हैं, तो ऐसे में दूसरे विकल्पों पर हम ध्यान दे रहे हैं। कैसे देखते हैं इस पहल को जो आज कोल गैसीकरण योजना को मंजूरी दी गई है?
3: जैसे कि तनेजा जी ने पहले ही बताया था कि भारत एक तेजी से विकसित होती हुई इकोनॉमी है और लगभग थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर

पर है ऑयल और गैस का, तो इंडिया का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो एक बहुत ही तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी का है, और इकोनॉमी को यदि ग्रो करना है तो उसके लिए एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, वो है एनर्जी। और लकीली इंडिया में कोयले के काफी विशाल भंडार हैं, तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छी पहल है कि हम कोल गैसिफिकेशन, अपने इंटरनल जो रिसोर्सेज हैं उसको किसी तरह इकोनॉमिकली सस्टेनेबल मैनर में यूज कर पाए, बिकॉज कोल के साथ जनरली ये कहा जाता है कि उससे एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन जो है वो बहुत ज्यादा होती है, एमिशन रेट इज वेरी हाई, बट यदि कोल गैसिफिकेशन होता है इंस्टीट्यूट तो आपको ना तो बड़ी बड़ी खदानें खोदनी पड़ेंगी और ना ही उसका जो एमिशन है वो एक पॉइंट के बियॉन्ड जाएगा। इनफैक्ट उससे ये होगा आपको दोनों एक टाइमली एनर्जी भी मिल जाएगी और एमिशन लेवल जो है ग्रोथ के लिए, जो इंडिया अगेन हैज कमिटेड टू कंफर्म विद द ग्लोबल कमिटमेंट्स टू फॉर ए क्लीन एनवायरनमेंट, तो उसको भी अचीव करने में एक सहायता मिलेगी। तो इंडिया को एक्चुअली चाहे वो बायोफ्यूल हो, चाहे वो कोयला हो, चाहे

0: वो एक पॉइंट के बियॉन्ड जाएगा। इनफैक्ट उससे ये होगा, आपको दोनों एक टाइमली एनर्जी भी मिल जाएगी और एमिशन लेवल जो है ग्रोथ के लिए, जो इंडिया अगेन हैज कमिटेड टू कंफॉर्म विद द ग्लोबल कमिटमेंट्स टू फॉर ए क्लीन एनवायरनमेंट, तो उसको भी अचीव करने में एक सहायता मिलेगी। तो इंडिया को एक्चुअली, चाहे वो बायोफ्यूल हो, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो जो पोटेंशियल सीबीजी का हो, वो सब कुछ हार्नेस करना पड़ेगा, बिकॉज हमारी आवश्यकताएं आज ही बहुत बड़ी हैं और आगे आने वाले दिनों में, जबकि हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, 25 से 30 ट्रिलियन इकोनॉमी जो कि 6 गुना के बराबर होती है आज के स्तर से, तो उसके लिए ये सब तरह के साधन, और यदि डोमेस्टिक है तो ये सोने पे सुहागे की तरह है।
1: हम अपने श्रोताओं को बता दें कि कोयला गैसीकरण आपके लिए अगर नई चीज है तो ये होता क्या है। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें कोयले को उच्च तापमान और दबाव पर ऑक्सीजन और पानी के साथ प्रतिक्रिया कराई जाती है। इससे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से युक्त सिनी गैस प्राप्त होती है, जिसे औद्योगिक उपयोग के लिए संसाधित किया जा सकता है। ये पहल भारत की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत प्राकृतिक गैस, उर्वरक और रसायनों के आयात पर निर्भरता को कम कर आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाना है। इस योजना के तहत प्रोजेक्ट का चयन एक पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना है। और इसी पर और जानकारी दी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: आज हम सब जानते हैं कि गैस का जितना रिक्वायरमेंट है और दुनिया भर में जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, उस हिसाब से हम आत्मनिर्भर कैसे बने। भारत में प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध है, करीब करीब अगर देखें तो आगे के 200 साल के लिए जितना कोयला चाहिए उतना भारत में ऑलरेडी उपलब्ध है। तो उस कोयले का उपयोग करके क्या हम गैस बना सकते हैं, इस विषय पे एक अच्छा प्रयास चल रहा था, उसका आज फैसला लिया गया है और बहुत ही सामयिक फैसला है, बहुत ही टाइमली फैसला है, कोल गैसिफिकेशन की स्कीम। इस गैस से आगे उस गैस को जला के पावर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उस गैस से एलपीजी का इक्विवेलेंट फॉर्म भी बना सकते हैं और उस गैस से हम फर्टिलाइजर का मैन्युफैक्चरिंग हो, कई सारे जो पेट्रोकेमिकल्स के माने जो एक रिफाइनरी में बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, उसी तरह के बाय प्रोडक्ट्स यहाँ पर भी निकाले जा सकते हैं। तो एक तरीके से कोयले से गैस, गैस से फर्टिलाइजर, कोयले से गैस, गैस से पावर, कोयले से गैस, गैस से कई तरह के केमिकल्स, ये बनाने की ये प्रोसेस है और ये बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि इस युग में हमें जितना आत्मनिर्भर बने उतना अच्छा है और उतना ही देश के लिए भविष्य का बड़ा इंश्योरेंस बनता है।
1: नरेंद्र जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आपसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि भारत सरकार ने हाल ही में इथेनॉल ब्लेंडिंग और ग्रीन हाइड्रोजन पर जोर दिया है। क्या ये ग्रीन फ्यूल्स आने वाले समय में, चाहे शॉर्ट टर्म की ही हम बात करें, कच्चे तेल की कीमतों के झटके को सहने में हमारी मदद कर सकते हैं?
3: ये हम बहुत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, जैसे मैंने पहले कहा, और हमारी अर्थव्यवस्था जो है कुल मिलाकर के फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी है। फॉसिल फ्यूल का मतलब हुआ तेल, गैस और कोयला, कोयला भी फॉसिल फ्यूल होता है। पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था 80% आज की तारीख में भी वो फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी है, लेकिन क्योंकि हमारी निर्भरता तेल पे, गैस पे बहुत ज्यादा है अन्य देशों के मुकाबले अगर आप देखें तो, इसलिए हमारी कोशिश ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा ऐसे रिसोर्सेज को ढूंढें जिससे हमारी आयात पर निर्भरता कम हो सके। हालांकि ये अलग बात है कि हमारी आयात पर निर्भरता एकदम कम होने वाली नहीं है, इसलिए क्योंकि हम बहुत तेजी से हमारा विकास हो रहा है, हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत तेजी से उसका विस्तार हो रहा है, इसलिए आने वाले समय में हमारे देश में तेल की जो जरूरत है वो भी बढ़ने वाली है, गैस की भी बढ़ने वाली है और कोयले की भी बढ़ने वाली है। लेकिन साथ में जो है हमने इथेनॉल जो ब्लेंडिंग करके उसमें जो लगभग 20% पेट्रोल में भी वो किया जाता है, डीजल में नहीं किया जाता, पर उससे हमने आयात में थोड़ी सी निर्भरता जो है कम करी है। ठीक उसी तरीके से जो देश होता है वो भविष्य की तरफ भी देखता है और जिसमें हाइड्रोजन को एक ऐसी ऊर्जा माना जाना है कि आने वाले समय के अंदर जो हमारा मिशन है कि एनर्जी इंडिपेंडेंस, मतलब ऊर्जा की स्वतंत्रता हमको चाहिए 2047 तक, 2047 तक, उसमें हाइड्रोजन जो है एक फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी जो है और उसमें बड़ी भूमिका वो निभाएगा। लेकिन ये दोनों चीजें जिसका भी मैंने जिक्र किया, इसका जो ये भविष्य के बारे में ज्यादा है, भविष्य का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 100 साल बाद, लेकिन अभी इनको थोड़ा समय लगने वाला है, हाइड्रोजन का को भी समय लगने वाला है, लेकिन ये है कि देश उस तरफ बढ़ रहा है। लेकिन जो सबसे जरूरत चीज ये है वो है कि इस समय हमारी सरकार की कोशिश कि जो ऊर्जा की गरीबी के नीचे के लोग हैं उनको कैसे ऊर्जा उपलब्ध कराया जाए, उसके तहत एलपीजी हर एक को दी गई उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत, साथ में भी ये कोशिश है कि जो चाहे वो डोमेस्टिक कंज्यूमर हो या वो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हो या जो हमारी ऊर्जा एनर्जी की आवश्यकता है उसके लिए हमको क्या करना है, क्योंकि युद्ध जो है कब खत्म होगा ये कोई नहीं जानता, और खत्म भी हो जाएगा फिर भी उसका जो असर है हमारे

0: अर्थव्यवस्था पे, विश्व की अर्थव्यवस्था पे वो एक लंबे समय तक रह पाएगा। तो एक तरफ तो सरकार जो है इस बात की तैयारी कर रही है, फ्यूचर के लिए तैयारी हो रही है, भविष्य की तैयारी हो रही है, लेकिन साथ में जो वर्तमान है, वर्तमान में भी पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां से जो है तेल लेके आया जा सकता है, प्राकृतिक गैस लेके आया जा सकती है, उसको लाया जा रहा है। उसके लिए दो चीजों का प्रयोग करा जा रहा है। एक तो ये कि हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, जो हमारी गुडविल है, जो G20 में हमारा दबदबा है, और इसके अलावा विकसित देशों में भी जो हमारा अच्छे संबंध है, जैसे क्वाड के अंदर है उसको, साथ में इसके अलावा ब्रिक्स के अंदर है। आपको पता है ब्रिक्स की मीटिंग विदेश मंत्री की जा रही है, जहां भी एक विषय रही रहने वाला है, उस सबका यूज करा जा रहा है, जिससे कि जो तेल की जो सप्लाई है उसमें किसी तरह की बाधा ना आए। जो इस समय सरकार का सबसे बड़ा फोकस है कि सप्लाई डिसरप्शन नहीं होना चाहिए, और भारत तो उन गिने चुने देशों में है, खासतौर से विकासशील दुनिया में या ग्लोबल साउथ में, जहां अभी तक सप्लाई का डिसरप्शन आपने नहीं देखा है, खासतौर से तेल को लेकर के। LPG में थोड़ी चुनौतियां आई हैं, लेकिन उसको भी काफी हद तक एड्रेस कर दिया गया है, काफी हद तक। तो मेरा ये मानना है कि हमको दो चीजें, एक तो प्रेजेंट और एक साथ में मीडियम टू लॉन्ग टर्म, और दूसरा फ्यूचर, ये तमाम चीजें जिसमें हमने जो कोल गैसिफिकेशन की बात करी, ये जो है मीडियम टारगेट्स में ज्यादा आती हैं और लॉन्ग टर्म की तैयारी में आती है कि आज से अगर 15 साल बाद, 10 साल बाद वो हालात पैदा जो आज हैं, तो हम जो है काफी हद तक उसमें बिना किसी घबराहट के उसका जो है जो सोल्यूशन है वो हम देश के अंदर ही ढूंढ पाए। देखिए, हमको ध्यान रखना पड़ेगा जो ऊर्जा सुरक्षा है, एनर्जी सिक्योरिटी, वो आर्थिक सुरक्षा या इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बुनियाद होती है, और इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है वो नेशनल सिक्योरिटी की बुनियाद होती है। अगर आप तीनों सिक्योरिटीज को देखते हैं, सबके बॉटम में या बुनियाद में वो एनर्जी सिक्योरिटी होती है। एनर्जी के बिना कुछ नहीं मूव करता, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वो परिवार हो या समाज हो, मोहल्ला हो, शहर हो, देश हो, बिना एनर्जी के कुछ नहीं चलता। और इसलिए सरकार की पूरी कोशिश है कि दुनिया में चुनौतियां आती रहती हैं, ये तो सुनामी जैसी चुनौती है। तमाम अर्थशास्त्री इसको जो है एनर्जी कोविड के नाम से बुला रहे हैं, यूरोप में कुछ अर्थशास्त्री इसको जो है इकोनॉमिक कोविड के नाम से बुला रहे हैं, लेकिन भारत ने जिस जिम्मेदारी और मुस्तैदी से इसका जवाब दिया है, देश को तैयार किया है। और अब अगर प्रधानमंत्री की स्पीच को देखें तो प्रधानमंत्री ने आम जनता से संवाद किया है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करी है खुले प्लेटफॉर्म पर। प्रधानमंत्री की ब्रेनस्टॉर्मिंग और संवाद यह है, दुनिया में ऐसा ऐसा हो रहा है और हमको उसके लिए क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। हो सकता है इतनी जरूरत ना पड़े, लेकिन प्रधानमंत्री वो देश से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, खुल के जैसे डेमोक्रेसी में होना चाहिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं कि दुनिया के हालात क्या है और हम जो है कैसे कैसे हमने जो है इसकी तैयारी करनी चाहिए। उनके विचार जो है वो आम आदमी से साझा कर रहे हैं, इसी को लोकतंत्र कहते हैं।
1: जी हाँ, बिल्कुल। और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भारत ने काफी प्रगति की है और आने वाले वर्षों में हमें इसमें और सफलता मिलने की उम्मीद है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: ग्रीन हाइड्रोजन इज द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। ग्रीन हाइड्रोजन विल अल्टीमेटली सक्सीड वेयर देयर इज लोकल डिमांड, देयर इज लोकल प्रोडक्शन एंड देयर इज लोकल कंजम्पशन, एंड देयर आर नॉट मेनी प्लेसेस इन द वर्ल्ड एज यूनिकली क्वालिफाइड as India is to make that happen. We set ourselves a target of producing 5 million tons of green hydrogen annually by 2030, supported by strong policy frameworks and a significant financial outlay.
1: सुभाष जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, जब पश्चिम एशिया का संकट है और दुनिया के कई देश प्रभावित हो रहे हैं और भारत भी इससे अलग नहीं है, ऐसे में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर आने वाले समय में आप और किस तरह की पहल की उम्मीद कर रहे हैं, चाहे वो सरकार की तरफ से हो या निजी कंपनियों की तरफ से?
3: जी, ये आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया। एक्चुअली जहां तक ऊर्जा सुरक्षा की बात है और जिस तरह का ये क्राइसिस है, उसमें सबको आगे आना पड़ेगा। गवर्नमेंट जो अपने स्तर पे इमीडिएट बेसिस पे कर सकती थी वो कर रही है और आगे भी करती रहेगी। अभी क्योंकि देश को आगे बढ़ना है और उसके लिए बड़ी क्लैरिटी है कि अगले 25 साल में कहाँ जाना है और 2070 तक कहाँ जाना है, वो क्लैरिटी है। तो इसके लिए मैं जो कुछ चीजें समझता हूँ कि बहुत जरूरी है, एक तो जो एनर्जी एफिशिएंसी है, टू बी एबल टू, जो एग्जिस्टिंग एनर्जी जितनी कंज्यूम हो रही है उससे जितना ज्यादा से ज्यादा वर्क या आउटपुट ली जा सके, दैट शुड बी आइटम ऑन प्रायोरिटी। जो दूसरा इशू है वो जो डोमेस्टिक एंडोमेंट्स है, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, उनको किसी तरह यूज करके यदि हम अपनी जो ऊर्जा की सप्लाई है उसको बढ़ा पाए। और इसमें मिसाल जैसे आपने एथेनॉल की दी, मैं एक्चुअली उससे एक स्टेप और आगे जाऊंगा। CBG एक ऐसा पोटेंशियल है जो आइडेंटिफाइड है और 15 मिलियन टन का गवर्नमेंट ने ऑलरेडी सतत प्रोग्राम एनविसेज किया था। टोटल पोटेंशियल जो है वो लगभग 62 मिलियन टन का है। तो अब क्योंकि इस तरह की स्थिति

0: हैं वो एक एरिया होगा जहां हम ट्रिगर करें और जो सीबीजी का पूरा पोटेंशियल है उसको यूज करें, और ये सबसे लो कॉस्ट ऑप्शन होगा फॉर द रीजन कि सारा कंट्री लकीली सीजीडी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, तो आपको सेपरेट सप्लाई चेन्स नहीं बनानी है। सप्लाई चेन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, यदि आप डोमेस्टिक सप्लाई को बढ़ा सकते हैं तो देश को ही जो किसान है और जो गांव है हमारे, क्योंकि सीबीजी लार्जली उन एरियाज में प्रोड्यूस होगी, तो उसके लिए बहुत बड़ा एक साधन बनेगा। तीसरा जो है, जो देश में बाकी जितने साधन है, चाहे वो हाइड्रोजन की बात हो रही है, आपकी सोलर की बात है, या इवन थर्मल पावर की बात है, सब जो है वो इस टाइम ट्रिगर करने के लिए एक दीर्घकालीन प्रोग्राम बनाना पड़ेगा और उसको फॉलो करना पड़ेगा, जिससे कि आगे कोई इस तरह का डिसरप्शन आता है। ऑफ कोर्स इस बार भी इंडिया ने उसको बड़ा बखूबी फेस किया है, पर क्योंकि आने वाले समय में 10 साल बाद लेट से यदि इकोनॉमी 2.5-3 गुना हो जाती है, तो उस स्थिति में आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट भी कम से कम दुगनी होगी, और यदि वो दुगनी होगी तो आप डोमेस्टिकली कितनी प्रोड्यूस कर सकते हैं वो होना चाहिए। और एक जो बात है, जो पिछले कुछ सालों में अच्छा भला देश ने काफी ऑयल और गैस प्रॉपर्टीज भी काफी एक्वायर की थी दुनिया में, और वो एक बहुत बड़ा कुशन की तरह काम कर सकती है, तो हमें स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन ऑफ एसेट्स जो है वो कंटिन्यू करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। मतलब यदि आप कोशिश करिए कि आपका अपने रिसोर्सेज हो, पर यदि वो बाय चांस आपके वो एडिक्वेट नहीं है तो कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट आपको ग्लोबली इतनी ओनरशिप है कि जब जरूरत पड़े तो आप इंडिया को भेज सकें। तो और कोल गैसिफिकेशन तो एक बहुत ही बढ़िया कदम है जो उठाया जा रहा है, और यदि इसका ही भी पोटेंशियल और कंट्रीब्यूशन काफी रहेगी, तो मैं सोचता हूँ ये 4-5 चीजें डेफिनेटली गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में होंगी, और काम ऑलरेडी चल रहा है तो ये काफी कंट्रीब्यूट करेंगी एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ।
1: और हम बात कर रहे हैं ऊर्जा सुरक्षा की, और देशवासियों की चिंताओं को लेकर लगातार अंतर मंत्रालयीय संवाददाता सम्मेलन हो रहे हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि भारत की क्या स्थिति है ऊर्जा को लेकर।
2: वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते जैसा आप जानते हैं कि ऊर्जा आपूर्ति वर्ल्ड सप्लाई डिस्ट्रप्शंस हुए हैं ऊर्जा आपूर्ति में, और इंटरनेशनल मार्केट में भी काफी प्राइस वॉलेटिलिटी देखी जा रही है, परंतु भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि आम उपभोक्ता को कम से कम असुविधा के साथ फ्यूल सप्लाई की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। और इन सभी जो स्टेप्स लिए हैं उनके फलस्वरूप हमारी क्रूड इन्वेंट्री मेंटेन है, टाइड अप है, हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम लेवल पर ऑपरेट कर रही हैं, किसी रिटेल आउटलेट पर कोई ड्राई आउट नहीं है, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर भी कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है, पेट्रोल और डीजल के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं, और घरेलू कुकिंग के लिए एलपीजी की आपूर्ति की जा रही है।
1: नरेंद्र जी, कार्यक्रम में समय बहुत ज्यादा नहीं है, आपसे एक सवाल पर संक्षिप्त टिप्पणी आपसे चाहेंगे कि तेल की कीमतों में जो अस्थिरता का असर हो रहा है भारतीय रुपए और करंट अकाउंट डेफिसिट पर, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि तेल व्यापार के लिए रुपया पेमेंट मैकेनिज्म, जिसकी चर्चा कुछ समय से चल रही है, इसको और प्रभावी बनाने से कुछ राहत मिल सकती है?
3: नहीं, अच्छा प्रश्न है और काफी इसकी चर्चा भी है, लेकिन ये जो हमारे जो कुल मिला के संबंध है पूरी दुनिया के बड़े बड़े देशों से, उस पर डिपेंड करेगा हम उसको कैसे बैलेंस करते हैं। अमेरिका से हमारे बड़े अच्छे संबंध है, सामरिक संबंध है और लॉन्ग टर्म संबंध है, हम क्वाड के मेंबर हैं और अमेरिका को हम चाहते हैं या ज्यादा और निवेश करे, और वो जो फ्री वर्ल्ड जिसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक वर्ल्ड, उसका अमेरिका काफी उसमें दबदबा है, और अमेरिका जो है वो पेट्रो डॉलर को मजबूत रखना चाहता है, वो बड़ी आपत्ति करता है अगर कोई लोकल करेंसीज में तेल खरीदता है, लेकिन हमको अपने राष्ट्रीय हित देखने हैं, और पिछले दिनों को हमने रूस के साथ तमाम जो डील हुई है उसमें रुपए की बड़ी भूमिका रही है, और इस तरीके की बातचीत कुछ अन्य देशों से भी चल रही है, लेकिन कुल मिलाकर के हमको बैलेंस बना के चलना होता है राजनीति के अंदर, क्योंकि तेल के बारे में कहा जाता है तेल 90% जियोपॉलिटिक्स है, तो उसमें हमको उसको भी बैलेंस रख के चलना है, लेकिन साथ साथ मुझे लगता है आवश्यक हमारे लिए यह है कि हम एक लॉन्ग टर्म जो हमारा प्लान रहेगा उस पे और थोड़ा जोर डालें, देश के अंदर जो तेल का खनन है, उत्पादन है, उसको और इंसेंटिवाइज करें, विदेशों में जाकर के जहां भी तेल के भंडारों में हम हिस्सेदारी खरीद सकते हैं उसको थोड़ा और एग्रेसिवली खरीदें, और साथ में जो रिन्यूएबल एनर्जी को हम काफी जोर दे ही रहे हैं, लेकिन हमको ये भी साथ में समझना पड़ेगा कि हमारी देश का जो प्रगति है, जो हमारा विकास, उससे तो हम समझौता कर नहीं सकते, और आने वाले समय के अंदर

0: हमें और तेल की जरूरत पड़ेगी, हमारी अर्थव्यवस्था को और गैस की भी जरूरत पड़ने वाली है। और ये सारा कुछ सौभाग्य से हमारे आसपास के देशों में उपलब्ध है, खासतौर से खाड़ी के देशों में। एक नया वेस्ट एशिया बनेगा, ये जब भी युद्ध समाप्त होता है ईरान की अर्थव्यवस्था शायद खुलेगी, यूनाइटेड अरब एमिरेट से जो है वहां नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, सऊदी अरब का रवैया जो बड़ा कड़ा रहा है वो थोड़ा नरम पड़ेगा। तो मुझे लगता है हमारे देश के आसपास ही नई संभावनाएं जो है उनका शीघ्र जन्म होगा। और हमको देखना पड़ेगा क्या वहां से हम पाइपलाइन बना सकते हैं या हम अपने एलएनजी टैंकर बना सकते हैं, अपने टैंकर्स बना सकते हैं, बहुत सारी इसमें चीजें हैं। तो मुझे लगता है युद्ध तो है, लेकिन युद्ध में हमको देखना है कि अवसर क्या है। और हमारे इतने अच्छे संबंध हैं तमाम देशों से जो तेल के बड़े निर्यातक हैं, और साथ में हमारी जो भारत की जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है,
1: जी
0: अपने विजन में बिल्कुल क्लियर है। तो मुझे लगता है कि हमको चिंता का विषय नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि समय के साथ साथ जरा थोड़ा हमको इस दिशा में खासतौर से एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ थोड़ा और स्मार्टली और तेजी से बढ़ना पड़ेगा।
1: जब हमारे आपके परिवार पर संकट आता है तो हम अपने अभिभावकों की तरफ देखते हैं और उनके दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी समझते हैं। जब पश्चिम एशिया में संकट है तो भारत के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों से अपील की है कि वो टीम इंडिया की तरह एकजुट होकर इसका सामना करें। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: देश का हित, देश के लोगों का हित, ये हमारे लिए सर्वोपरि है। आप देख रहे हैं कि इस समय वैश्विक स्तर पर किस तरह की चुनौतियां हैं। वेस्ट एशिया में संकट की स्थितियां लगातार बनी हुई है। युद्ध के इस माहौल का बहुत नकारात्मक असर पूरे विश्व पर पड़ा है और भारत भी इससे प्रभावित हो रहा है। देश के बढ़ते हुए सामर्थ्य में हमें अपना संयम भी बढ़ाना होगा, हमें मिलकर संसाधनों को बचाना होगा, देश के हितों की रक्षा करनी होगी। जिस तरह कोरोना काल में हमने संकटों का मिलकर सामना किया था, वैसे ही देशभक्ति की भावना से हमें फिर एक बार भारत को इन वैश्विक संकटों से निकालने के लिए एक साथ खड़ा होना ही होगा।
1: कहते हैं संकट ही समाधान की जननी है। पश्चिम एशिया की ये चुनौतियां भारत को याद दिलाती हैं कि हमारा रास्ता आत्मनिर्भरता की ओर ही जाता है। चाहे वो हमारी सड़कों पर दौड़ती इलेक्ट्रिक गाड़ियां हों, रेलवे का सोलर विजन हो, या फिर रेगिस्तानों के नीचे छुपा हमारा सामरिक तेल भंडार, भारत अपनी सुरक्षा की कहानी खुद लिख रहा है। पश्चिम एशिया की रेत में भले ही हलचल हो, लेकिन भारत का संकल्प अडिग है। हम न केवल इस संकट से उभरेंगे बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया को एक नई राह भी दिखाएंगे। सुभाष जी आपका, नरेंद्र जी आपका आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और श्रोताओं के साथ विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
0: थैंक यू,
3: धन्यवाद।
1: आप ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
4: चर्चा का विषय है। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। इस समय रात्रि के 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं पुराने फिल्मी नगमों का कार्यक्रम ओल्ड इज गोल्ड। श्रोताओं, हाजिर हैं हम लेकर पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ओल्ड इज गोल्ड, और आज का ये सफर आप तय करेंगे अपनी रेडियो साथी आकांक्षा के साथ। और कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं दो आंखें 12 हाथ इस फिल्म के गीत के साथ। इस गीत को गाया है वसंत देसाई और लता मंगेशकर ने। गीत के बोल लिखे हैं भारत व्यास ने और धुन वसंत देसाई की।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे दो आँखें बारह हाथ इस फिल्म का गीत। आइए अब सुनते हैं आशा भोसले को हावड़ा ब्रिज फिल्म के गीत में। गीत के बोल हैं कमर जलालाबादी के और संगीत ओपी नैयर का।

अभी आप सुन रहे थे हावड़ा ब्रिज फिल्म का गीत, आवाज़ थी आशा भोसले की। आशा भोसले की ही आवाज़ में कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं। फिल्म का नाम है बम्बई का बाबू। गीत के बोल हैं मजरू सुल्तानपुरी के और धुन एसडी परमन की।

बम्बई का बाबू इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, आवाज थी आशा भोसले की। कार्यक्रम में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं बहार फिल्म का गीत, जिसे गाया शमशाद बेगम ने। गीत के बोल लिखे राजेंद्र कृष्णा ने और संगीतबद्ध किया सचिव देव बर्मन ने।

बहार फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, आवाज थी शमशाद बेगम की। कार्यक्रम में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं श्री 420 इस फिल्म का गीत। गीत को गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने, लिखा शैलेंद्र ने और धुन बनाई शंकर जयकिशन ने।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे श्री 420 इस फिल्म का गीत, और आप सुन रहे हैं पुराने फिल्मी नगमों का कार्यक्रम ओल्ड इज गोल्ड। और कार्यक्रम में अब अंतिम गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर और सी रामचंद्र की आवाज़ों में। अलबेला फिल्म का गीत है, गीत लिखा है राजेंद्र कृष्णा ने और धुन सी रामचंद्र की।

अलबेला फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, और इसी गीत के साथ ही ओल्ड इज गोल्ड, पुराने फिल्मी नगमों का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है रात्रि के 10:30 और इसी के साथ अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं पंडित सी आर व्यास का राग मालव में ख्याल गायन।

0: अभी आप सुन रहे थे पंडित सी आर व्यास का राग मालव में ख्याल गायन, और इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। समाचार अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
2: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रति वर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़

0: रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धौलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धौलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज ये मंजूरी दी। प्रवीण सूद का वर्तमान कार्यकाल इस महीने की 24 तारीख को समाप्त हो रहा था। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 193 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 6 ओवर में 1 विकेट पर 66 रन बना लिए हैं। कोलकाता की ओर से अंग कृष्ण रघुवंशी ने 71 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, the news read by R.S. Raghu. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved increase in minimum support prices, MSP, for 14 kharif crops for marketing season 2026-27. Addressing media after the Union Cabinet meeting in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said, the government has increased the MSP of kharif crops to ensure remunerative prices to the growers for their produce. Mr. Vaishnaw said, the highest increase of 622 rupees per quintal in MSP has been recommended for sunflower seed, followed by 557 per quintal for cotton and 500 rupees per quintal for sesamum. He said, for grade A paddy, the MSP will be 2,461 rupees per quintal. For Jowar hybrid, it will be 4,023 rupees per quintal. For Bajra, the MSP will be 2,900 rupees. And for Tur, it will be 8,450 rupees per quintal. The Union Cabinet has also approved a scheme for promotion of surface coal and lignite gasification projects with a financial outlay of 37,500 crore rupees. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved Ahmedabad Sarkhej Dholera Semi-High-Speed Double Line Project with a total cost of nearly 20,667 crore rupees. The Union Cabinet has also approved upgradation and modernization of Nagpur International Airport through long-term license involving private partner under public-private partnership. Prime Minister Narendra Modi has said that the Union Cabinet's decision of approving an increase in the minimum support price MSP for kharif crops for the marketing season 2026-27 will ensure that crores of food providers in the country receive fair and profitable prices for their produce. In a social media post, Mr. Modi said that this decision will bring greater prosperity to the lives of the farmers of the country. The Central Bureau of Investigation, CBI, has arrested 5 accused persons in connection with the alleged